सुप्रभात। मीडियम वेव 314.47 मीटर अर्थात 954 किलो हर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। आज रविवार है, शक संवत 1948 के भाद्रपद मास की 8वीं तिथि, तदनुसार 30 अगस्त सन 2026। प्रातः के 5:58 हो रहे हैं।

0: मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलोहर्ट्ज पर। ये आकाशवाणी का नजीबाबाद केंद्र है। सवेरे के 6 बजने को है। अब आप हिंदी में समाचार सुनेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं नवीन सक्सेना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ताशकंद में उज़्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शफकत मिर्ज़ियोयेव के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। दोनों नेता राष्ट्रपति भवन में व्यापार और निवेश, रक्षा, डिजिटल संपर्क, ऊर्जा, शिक्षा और दोनों देशों के लोगों के बीच संपर्क बढ़ाने जैसे मुद्दों पर सहयोग की समीक्षा करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि श्री मोदी के स्वागत के लिए ताशकंद शहर में विशेष प्रबंध किए गए थे।
2: पूरा ताशकंद शहर भारतीय झंडों और होर्डिंग से सजा हुआ है। हर कोई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चौथी यात्रा का बेसब्री से इंतजार कर रहा था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उज़्बेकिस्तान के राष्ट्रपति मिर्ज़ियोयेव सदियों पुराने आपसी संबंधों को और मजबूत करने पर विचार विमर्श करेंगे। दोनों नेता राष्ट्रपति भवन में व्यापार और निवेश, रक्षा, डिजिटल कनेक्टिविटी, ऊर्जा, शिक्षा और जन संबंधों के क्षेत्रों में सहयोग की समीक्षा करेंगे। वे विकसित भारत 2047 और उज़्बेकिस्तान 2030 के साझा विकास लक्ष्यों को आगे बढ़ाने पर भी अपने विचार साझा करेंगे। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, ताशकंद, उज़्बेकिस्तान।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम के माध्यम से अपने विचार साझा करेंगे। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम की 137वीं कड़ी होगी। मन की बात का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों, एआईआर न्यूज की वेबसाइट और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी किया जाएगा। कार्यक्रम का सीधा प्रसारण एआईआर न्यूज, डीडी न्यूज, प्रधानमंत्री कार्यालय और सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर भी होगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद आकाशवाणी विभिन्न क्षेत्रीय भाषाओं में भी मन की बात का प्रसारण करेगा। गुजरात में भारतीय जनता पार्टी ने विभिन्न स्थानों पर विशेष कार्यक्रम आयोजित किए हैं। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल अहमदाबाद में, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष जगदीश विश्वकर्मा गांधीनगर में और केंद्रीय जलशक्ति मंत्री सीआर पाटिल सूरत में लोगों के साथ मन की बात सुनेंगे। वहीं पार्टी नेताओं की ओर से युवाओं, किसानों, महिलाओं और विभिन्न सामाजिक समुदाय के साथ भी कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज लखनऊ में उद्योग सम्मेलन को संबोधित करेंगे। पीएम सेतु योजना के अंतर्गत आयोजित इस सम्मेलन में कौशल विकास, उद्यमिता और व्यावसायिक शिक्षा से संबंधित विषयों पर चर्चा होगी। कार्यक्रम से पहले श्री राजनाथ सिंह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम को सुनेंगे। इसके बाद वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में लखनऊ छावनी क्षेत्र में 101 करोड़ रुपए की 12 विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कहा है कि मुस्लिम को भारत का हिस्सा न मानने की सोच हिंदुत्व की भावना के विपरीत है। न्यूयॉर्क में एक दुनिया एक मानवता सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री भागवत ने कहा कि हिंदुत्व पर हर व्यक्ति के सम्मान और सभी धर्मों के प्रति समान भाव से विश्वास करता है। श्री भागवत ने कहा कि धार्मिक नेताओं की जिम्मेदारी है कि वो समाज में मानव एकता और आपसी सद्भाव का संदेश लगातार पहुंचाते रहें। नेपाल में आई बाढ़ में मरने वालों की संख्या बढ़कर 675 हो गई है। लगातार बारिश के बीच राहत और बचाव कार्य जारी है। करीब 2400 लोग अब भी लापता हैं, जिनमें से 320 से ज्यादा विदेशी नागरिक हैं। अब तक 4400 से अधिक लोगों को सुरक्षित निकाला गया है। नेपाल के प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह ने कहा है कि सरकार की प्राथमिकता हर नागरिक की जान बचाना है। विदेश मंत्रालय ने बताया है कि अब तक 108 भारतीय नागरिकों को सुरक्षित निकाला गया है। करीब 50 अन्य भारतीयों से भी दोबारा संपर्क हो गया है। भारत आज महिला क्रिकेट में थाईलैंड के साथ T20 एशिया कप अभियान की शुरुआत करेगा। भारतीय समय के अनुसार मैच रात 8:30 बजे से खेला जाएगा। हरमनप्रीत कौर भारत की कप्तानी करेंगी, जबकि स्मृति मंधाना उपकप्तान होंगी। मौसम विभाग ने उड़ीसा में अगले 2 दिनों के लिए तेज बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल के गंगा के तटवर्ती क्षेत्र में भी आज मूसलाधार बारिश की चेतावनी है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
0: मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलो हर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का नजीबाबाद केंद्र है। प्रातः के 6:05 हो रहे हैं। प्रस्तुत है भक्ति संगीत का दैनिक कार्यक्रम वंदना। वंदना कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को हमारा प्यार भरा नमस्कार और आप सभी का श्रोताओं कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत। और कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं हम कार्यक्रम के इस पहले भजन से। आवाज है हरिओम शरण की। श्रोताओं, सुबह की सुहानी बेला में हमारा मन शांत और शुद्ध रहता है। अगर अपने साफ मन से प्रभु की स्तुति कर ली जाए तो सारा दिन सफल हो जाता है और हम प्राणियों के जीवन की नैया को पार लगाने वाले प्रभु के चरणों में आइए हम सब शीश नवाते हैं।

श्रोताओं, जब एक बार उस परम परमात्मा के चरणों में हमारा मन लग जाता है, तब दुनिया की कोई भी माया हमें हमारे मार्ग से विचलित नहीं कर सकती। उस ईश की भक्ति में ऐसा सुख है जो संसार के किसी भी वस्तु में नहीं है। तो श्रोताओं, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और सुनते हैं जगजीत सिंह की आवाज में ये भजन।

अभी हमारे श्रोता सुन रहे हैं भक्ति संगीत का दैनिक कार्यक्रम वंदना आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे सुरजीत सिंह रागी के स्वर में ये शब्द। और अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और सुनते हैं सखावत हुसैन खान की आवाज में ये नात। श्रोताओं, सुबह का ये मुबारक लम्हा जब फिजा इबादत की रौनक से महक उठती है तो हर मोमिन के दिल में उसके दर की हाजिरी की आरजू भी जाग उठती है और उसी आरजू और उसी इश्क के रसूल को अल्फाज देती सुनते हैं ये खूबसूरत सी नात।

तिश्निगी का इलाज संगे अस्वद के पास चारा इख्तिलाज सब्ज गुंबद के पास

श्रोताओं, अब वंदना कार्यक्रम का समापन कर रहे हैं सूर्य देव की इस आरती के साथ, जिसे आवाज दी है कमल कुमार और साथियों ने।

0: श्रोताओं, इसी के साथ कार्यक्रम वंदना अब यहीं पर संपन्न होता है। अभी आप सुन रहे थे भक्ति संगीत का दैनिक कार्यक्रम वंदना, मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलो हर्ट्ज पर। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। प्रातः के 6:30 हो रहे हैं। प्रस्तुत है श्री रामचरितमानस से आज का ये प्रसंग। गायक कलाकार हैं उत्तरा केलकर और संगीत निर्देशन सतीश भाटिया का।
1: एपिसोड नंबर 250 250।

पंचवटी में निवास करते हुए श्री राम ने अनुज लक्ष्मण को ज्ञान, वैराग्य, माया, ईश्वर और जीव के भेद आदि का रहस्य बताया। इस प्रकार नीति की कथाएं कहते सुनते कुछ दिन बीते थे कि एक दिन शूर्पणखा वहां पहुंची। वो लंकापति रावण की बहन थी, नागिन के समान भयानक और दुष्ट हृदया। पंचवटी में दो सुंदर राजकुमारों को देख धर्म ज्ञान रहित वो नारी काम से विकल हो गई। सुंदर नारी का रूप धारण करके शूर्पणखा ने श्री राम से प्रणय निवेदन किया। विनोद में राम ने उसे लक्ष्मण के पास जाने को कहा। लक्ष्मण ने अपने को दास तथा पराधीन बताते हुए उसे पुनः श्री राम के पास जाने को कहा। श्री राम ने एक बार फिर लक्ष्मण से प्रणय निवेदन करने को कहा। लक्ष्मण ने अब उसे वास्तविकता बताई। तुझे वही वरेगा जो निपट निर्लज्ज होगा। खिसियाकर वो श्री राम के पास गई और उसने अपना भयंकर रूप प्रकट किया। सीता जी को भयभीत देख श्री रघुनाथ जी ने लक्ष्मण को इशारा किया। श्री राम से इशारा पाकर लक्ष्मण ने शूर्पणखा को बिना नाक कान के कर दिया।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरितमानस से आज का ये प्रसंग। गायक कलाकार थे उत्तरा केलकर और संगीत निर्देशन था सतीश भाटिया का। मीडियम वेव 314.47 मीटर अर्थात 954 किलो हर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का नजीबाबाद केंद्र है। लीजिए सुनिए आज का चिंतन।
1: फल से लदे वृक्ष सहनशीलता के सबसे अच्छे उदाहरण होते हैं। तभी तो जब हम उन्हें पत्थर मारते हैं तो वो बदले में हमें फल देते हैं। वास्तव में सहनशीलता हमारे व्यक्तित्व को निखारती है। हम जितने सहनशील होंगे उतने ही शांत और विनम्र भी होंगे। जीवन में कई बार ऐसे क्षण आते हैं जब हम परेशान हो उठते हैं। अनेक परिस्थितियां हमें झकझोर देती हैं, हमारी सहनशीलता डगमगाने लगती है। यदि उस क्षण हम अपना संतुलन खो देते हैं तो उसका परिणाम सिवाय झगड़े के और कुछ नहीं होता। एक क्षण में बिगड़ा संतुलन हमारी सहनशीलता के सिंहासन को चकनाचूर कर देता है। इसलिए उस क्षण बहुत सावधान रहें, अपने मन पर पूरी शक्ति से काबू रखें और सहनशीलता पर आघात करने वाली परिस्थितियों का मुकाबला करें। एक बार एक जिज्ञासु संत कबीर के पास आया, बोला, मेरे सामने एक अजीब प्रश्न है, मैं गृहस्थ बनूं या संत बनूं? कबीर कपड़ा बुन रहे थे, प्रश्न सुना और बोले, चिंता ना करो, तुम्हारे प्रश्न का उत्तर मैं दूंगा। इसके बाद अपना काम करते रहे। वो व्यक्ति अगले दिन फिर आया, वो अपने प्रश्न का उत्तर चाहता था। दोपहर का समय था, धूप निकली हुई थी। कबीर ने अपनी पत्नी को पुकार कर कहा, जरा दीपक जला लाना, सुई कहीं गिर गई है, खोजना चाहता हूं। उस व्यक्ति के आश्चर्य का ठिकाना न रहा जब कबीर की पत्नी सचमुच दीपक जलाकर ले आई। कबीर ने पास ही पड़ी सुई उठाकर रख ली, पत्नी दीपक लेकर वापस चली गई। अब उस व्यक्ति से रहा न गया। उसने पूछा, महाराज ये क्या है? धूप की तेज रोशनी में आपने दीपक मंगवाया और आपकी पत्नी दीपक ले आई, उसने ये भी न कहा कि भला धूप के होते दीपक? कबीर ने हंसते हुए उसे रोक कर कहा, गृहस्थ बनना है तो ऐसी ही सहनशीलता होनी चाहिए। अब दूसरे प्रश्न का उत्तर शेष था। अगले दिन वो व्यक्ति फिर आया। कबीर उसे लेकर एक महात्मा के पास गए। उन महात्मा की कुटिया एक ऊंचे टीले पर थी। दोनों टीले की ऊंची चढ़ाई पार कर पहुंचे। महात्मा से कबीर की बातचीत होने लगी। कबीर ने बातचीत के दौरान महात्मा से पूछा, आपकी उम्र क्या है? महात्मा ने उत्तर दिया, 80 साल। फिर बातचीत होने लगी। कुछ देर बाद कबीर ने फिर प्रश्न दोहराया। महात्मा ने कहा, बेटा 80 साल। जब बातचीत पूरी हो गई तो चलते समय कबीर ने फिर पूछा, महात्मा जी आपकी उम्र कितनी है? महात्मा ने उसी शांत भाव से कहा, बेटा 80 साल। वापस आते समय टीले से आधी दूर आने पर कबीर ने फिर आवाज दी, महात्मा जी आपकी उम्र कितनी है? महात्मा कुटिया से बाहर आए और बोले, बेटा 80 साल। कबीर और वो व्यक्ति जब टीली से नीचे आ गए तो फिर आवाज दी, महात्मा जी आपकी उम्र क्या है? महात्मा ने अपनी कुटिया से बाहर आकर उत्तर दिया तो कबीर ने इशारे से कहा कि आवाज सुनाई नहीं दे रही है। इस पर महात्मा टीले से नीचे उतर कर आए और बोले, बेटा 80 साल। वो व्यक्ति उन महात्मा को देखकर हैरान था कि उन्हें एक भी बार गुस्सा नहीं आया और वो बार बार शांत भाव से उत्तर देते रहे। बाद में कबीर ने कहा, यह था तुम्हारे दूसरे प्रश्न का उत्तर। अगर महात्मा बनना है तो ऐसा ही सहनशील बनना होगा। सहनशीलता कई बार हमारे भविष्य की परेशानियों से बचा लेती है। आज जो कठिनाइयां और परेशानियां हैं वे सदा नहीं रहने वाली। आज यदि हम उन्हें सहन कर लेते हैं और शांति से आज का समय गुजार देते हैं तो कल हमें इसका अच्छा परिणाम अवश्य मिलेगा।
0: अभी आप सुन रहे थे चिंतन, ये आकाशवाणी का नजीबाबाद केंद्र है। प्रस्तुत है काव्यधारा। श्रोता, इसमें आज आपको सुनवा रहे हैं सीमा गर्ग का पूर्व प्रसारित काव्य पाठ।
2: मैं मत गयंद सवैया छंद बाबा सिद्ध बली जी को अर्पित करते हुए यह अपनी रचना प्रस्तुत करती हूँ। जय हनुमान सदा सुखदायक, हे गुणवान सुजान पधारो, मंगल मूर्ति संकट मोचन, नाथ दया कर काज संवारो, बुद्धि निधान गुणी बल आगर, राम लला ने

शीश झुके दरबार सदा जग भारत में सबसे दर आला। जय जगपालन राम सुहावन पीर हरो सबके रखवाले। जय जगपालन राम।

सुर प्याले। मैं अपनी यह रचना माँ वसुधा को अर्पित करती हूँ। जैसा कि आजकल बहुत पेड़ काटे जा रहे हैं, तो उसी के लिए मैंने एक अपील की है कि हम ताल तलैया तड़ाक भरें और पेड़ों का कटान ना करें, माता वसुधा का पोषण करें। दग्ध

0: सूरत ड्रैगन समाई, नैना दीप जलाते हैं, नैना दीप जलाते।
1: अब मैं आपके सामने एक मुक्तक प्रस्तुत करती हूँ।
0: चलो वादा अभी कर लें, सुहानी शाम हो जाए। चलो

0: एकस्य अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अपि च न्यूज ऑन एआईआर इति चलदूरभाषीय तन्त्रांशे अपि उपलब्धौ भविष्यति। आकाशवाणी दूरदर्शन वार्ता प्रधानमंत्री कार्यालय सूचना प्रसारण कार्यालयानां यूट्यूब वाहिनीभिः अपि अस्य कार्यक्रमस्य साक्षात् प्रसारणं भविष्यति। हिंदी भाषायां प्रसारणस्य पश्चात् अस्य प्रसारणं आकाशवाण्याः क्षेत्रीयासु भाषासु अपि भविष्यति। भारत ऋतु विभागेन आगामि दिनद्वयोः ओडिशा राज्ये अतिवृष्ट्यै रक्तवर्णीया संचेतना प्रसारिता। अद्य अरुणाचल प्रदेशस्य असम राज्यस्य मेघालयस्य छत्तीसगढ़स्य गांगेय पश्चिम बंगालस्य च केषुचित् स्थानेषु अपि प्रचंड वृष्टिः भविष्यति इति ऋतु विभागेन पूर्वानुमानं प्रकटितम्। अद्य बिहार पूर्वी मध्यप्रदेश पूर्वी उत्तर प्रदेश झारखंड नागालैंड मणिपुर मिजोरम त्रिपुरा उप हिमालय पश्चिम बंगाल सिक्किम उत्तराखंड विदर्भ इत्येतेषु स्थानेषु अपि अतिवृष्टेः संभावना अस्ति। महिला क्रिकेट क्रीडायां भारतम् अद्य दुबई अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट क्रीडांगणे थाईलैंड देशस्य विरुद्धं स्वस्य विंशतिं प्रति विंशति एशिया कप इत्यभियानस्य आरम्भं करिष्यति इति वार्ताः।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ताशकंद में उज़्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शफकत मिर्ज़ियोयेव के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि दोनों नेता राष्ट्रपति भवन में व्यापार और निवेश, रक्षा, डिजिटल संपर्क, ऊर्जा, शिक्षा और दोनों देशों के लोगों के बीच संपर्क बढ़ाने जैसे मुद्दों पर चर्चा करेंगे।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सबसे पहले योगा फेडरेशन ऑफ उज़्बेकिस्तान की ओर से आयोजित योग कार्यक्रम से रूबरू होंगे और उसके बाद वो सीधे उज़्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शौकत मिर्ज़ियोयेव के महल जाएंगे, जहां दोनों नेता द्विपक्षीय बातचीत में हिस्सा लेंगे। रक्षा के क्षेत्र में दोनों देशों के बीच सहयोग लगातार बढ़ रहा है, लेकिन खनन, रेयर अर्थ मिनरल, सोने जैसी धातुएं, अन्य उपयोगी खनिज पदार्थ, इसके अलावा मेडिकल, कृषि और स्किल डेवलपमेंट के साथ साथ कनेक्टिविटी के नए रास्ते तलाशने पर दोनों देश जोर देंगे। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, ताशकंद।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम के माध्यम से अपने विचार साझा करेंगे। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम की 137वीं कड़ी होगी। मन की बात का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों, आकाशवाणी समाचार की वेबसाइट और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। कार्यक्रम का सीधा प्रसारण एआईआर न्यूज, डीडी न्यूज, प्रधानमंत्री कार्यालय और सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर भी होगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद आकाशवाणी विभिन्न क्षेत्रीय भाषाओं में भी मन की बात का प्रसारण करेगा। इसके लिए गुजरात में भारतीय जनता पार्टी ने विभिन्न स्थानों पर विशेष कार्यक्रम आयोजित किए हैं। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल अहमदाबाद में, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष जगदीश विश्वकर्मा गांधीनगर में और केंद्रीय जलशक्ति मंत्री सीआर पाटिल सूरत में लोगों के साथ मन की बात कार्यक्रम सुनेंगे। वहीं पार्टी नेताओं की ओर से युवाओं, किसानों, महिलाओं और विभिन्न सामाजिक समुदायों के साथ भी कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज लखनऊ में उद्योग सम्मेलन को संबोधित करेंगे। पीएम सेतु योजना के अंतर्गत आयोजित इस सम्मेलन में कौशल विकास, उद्यमिता और व्यावसायिक शिक्षा से संबंधित विषयों पर चर्चा होगी। कार्यक्रम से पहले श्री राजनाथ सिंह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम को सुनेंगे। इसके बाद वे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में लखनऊ छावनी क्षेत्र में 101 करोड़ रुपए की 12 विकास परियोजनाओं की आधारशिला भी रखेंगे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कहा है कि मुस्लिम को भारत का हिस्सा न मानने की सोच हिंदुत्व की भावना के विपरीत है। न्यूयॉर्क में एक दुनिया एक मानवता सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री भागवत ने कहा कि हिंदुत्व हर व्यक्ति के सम्मान और सभी धर्मों के प्रति समान भाव में विश्वास करता है। श्री भागवत ने कहा कि धार्मिक नेताओं की जिम्मेदारी है कि वे समाज में मानव एकता और आपसी सद्भाव का संदेश लगातार पहुंचाते रहें। नेपाल में आई बाढ़ में मरने वालों की संख्या बढ़कर 675 हो गई है। लगातार बारिश के बीच राहत और बचाव कार्य जारी है। करीब 2400 लोग अभी भी लापता हैं। जिनमें 320 से अधिक विदेशी नागरिक शामिल हैं। अब तक 4,400 से अधिक लोगों को सुरक्षित निकाला गया है। नेपाल के प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह ने कहा कि सरकार की पहली प्राथमिकता हर नागरिक की जान बचाना है। इस बीच विदेश मंत्रालय ने बताया है कि अब तक 108 भारतीय नागरिकों को सुरक्षित निकाला गया है। करीब 50 अन्य भारतीयों से दोबारा संपर्क स्थापित हो गया है। भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस पर दलित समुदाय को राजनीतिक फायदे के लिए इस्तेमाल करने का आरोप लगाया है। नई दिल्ली में एक संवाददाता सम्मेलन में भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर गुरु प्रकाश पासवान ने आरोप लगाया कि कांग्रेस का दलित समुदाय का अपमान करने का इतिहास रहा है। उन्होंने कहा कि इसके विपरीत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर की विरासत का सम्मान किया है। भारत आज महिला क्रिकेट में थाईलैंड के साथ T20 एशिया कप अभियान की शुरुआत करेगा। भारतीय समय के अनुसार मैच रात 8:30 बजे से शुरू होगा। हरमनप्रीत कौर भारत की कप्तानी करेंगी, जबकि स्मृति मंधाना उपकप्तान होंगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलोहर्ट्ज़ पर। ये आकाशवाणी का नजीबाबाद केंद्र है। सवेरे के 7:05 हो रहे हैं। लीजिए सुनिए स्वास्थ्य चर्चा। इसमें आज जानकारी का विषय है डायबिटीज कारण और बचाव।
1: डायबिटीज या मधुमेह एक हार्मोन से संबंधित बीमारी है जिसमें कि शरीर में इंसुलिन बनने की प्रक्रिया जो होती है वो या तो होती ही नहीं है और या फिर जो होती है ये काफी कम हो जाती है और उस इंसुलिन की कमी के कारण से शरीर में जो शुगर का लेवल होता है वो बढ़ जाता है और ये एक बीमारी का रूप ले लेता है। इस बीमारी के कुछ लक्षण होते हैं और इन लक्षणों में खास ये है कि अचानक से भूख ज्यादा लगने लगना या प्यास ज्यादा लगने लगना या पेशाब ज्यादा आने लगना या ये तीनों ही मिला के इस तरह के लक्षण नोटिस करना या ध्यान में आना और इसके अतिरिक्त कुछ लोगों में जैसे कि वजन एकदम से कम होना शुरू हो जाता है शरीर का तो ये भी एक लक्षण होता है खास तौर से डायबिटीज टाइप 2 जिसको बोलते हैं उसके उसमें। डायबिटीज को मोटे तौर पर दो कैटेगरीज में बांटा गया है टाइप 1 डायबिटीज और टाइप 2 डायबिटीज। तो टाइप 1 डायबिटीज जिसको कि पहले इंसुलिन डिपेंडेंट कहते थे ये बचपन से ही होती है या बहुत अर्ली एज में पता लग जाता है इसका और इसमें शरीर के अंदर इंसुलिन बिल्कुल ही नहीं बनती या बहुत ही नाममात्र को बनती है तो इसके लिए बाहर से इंसुलिन हार्मोन देना जरूरी होता है उसके बिना काम नहीं चल सकता। जो टाइप 2 डायबिटीज होती है ये आमतौर पर 40 साल या 45 साल की उम्र के बाद में होती है और जिसके लक्षण मैंने आपको जैसे पहले बताए थे वही इसके लक्षण होते हैं और ये जो है इसमें एक तो ये होता है कि अगर आपको किसी को खानदानी ये बीमारी है माता को है या पिता को है तो आदमी को इस बारे में सतर्क रहना चाहिए कि उसको भी ये होने के चांसेस काफी ज्यादा रहते हैं और साथ साथ में उसके अंदर अगर ये लक्षण डेवलप हो जाते हैं तो फिर तो उसको बहुत ही केयरफुल रहना चाहिए और समय समय पर अपना टेस्ट भी कराना चाहिए। डायबिटीज जो है इसका इंसिडेंस मतलब बहुत ज्यादा बढ़ गया है आजकल के समय में पिछले कुछ सालों के अंदर और हमारे देश के अंदर लगभग 56 मिलियन है ना करीब 5.5 करोड़ लोग जो है डायबिटीज से प्रभावित है। ये संख्या जो है चीन के बाद दूसरे नंबर पर आती है। चीन में जो है 90 मिलियंस या करीब 9 करोड़ लोग जो है डायबिटीज से प्रभावित हैं। चीन के बाद हमारा नंबर आता है और ऐसा एक्सपेक्ट किया जाता है जिस दर से डायबिटीज की बीमारी हमारे यहाँ बढ़ रही है तो हो सकता है कि कुछ सालों बाद हमारी जो डायबिटिक पॉपुलेशन है वो दुनिया में सबसे ज्यादा होगी चीन से भी ज्यादा होगी। मैं ये कहूंगा कि जो एक शहरीकरण हुआ है इस देश के अंदर वो इसके लिए जिम्मेदार है यानी हमारी जो जीवन शैली है लाइफ स्टाइल वो अचानक से बदल गई है। पहले हम फिजिकल शारीरिक मेहनत करते थे वो अब बहुत कम हो गई है पैदल चलने या साइकिलों की स्थान जो है वो मोटरसाइकिलों और गाड़ियों ने ले लिया है। चलना फिरना व्यायाम करना खेलना कूदना ये सब बहुत ही कम हो गया है। लोग अपने बाकी समय में टीवी के सामने बैठना ज्यादा पसंद करते हैं बजाय कोई फिजिकल एक्टिविटी करने के। और दूसरी बात जो ये है वो हमारा खान पान है तो हमारे खान पान में भी जो एक संतुलित आहार पहले हुआ करता था उसके स्थान पर अब जो फास्ट फूड्स जिनके अंदर की शुगर की मात्रा जिनके अंदर की फैट्स

0: तरह काफी ज्यादा होती है, तो वो भी इसका एक कारण है। उनकी वजह से एक हमारे अंदर जो एक मोटापा एक आने की प्रवृत्ति हो गई है, तो ये भी एक कारण है डायबिटीज के इंसिडेंस बढ़ने का। तो संक्षेप में मैं कहूंगा कि जीवन शैली के बदलाव से, जिसमें कि भोजन और व्यायाम दो चीजें शामिल हैं, वो कारण हैं इस बीमारी के बढ़ने का। छोटे बच्चों में जो डायबिटीज हो रही है या पता लग रही है, ये इंसुलिन डिपेंडेंट होती है, शरीर में इंसुलिन बनता ही नहीं है। ये किसी वायरल इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है, जिसमें कि पेनक्रियास के बीटा सेल्स जो होते हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं और वो इंसुलिन नहीं बनाते हैं, या ये जेनेटिक मॉडिफिकेशन से हो सकता है, जिससे कि बीटा सेल्स होते नहीं हैं या काफी कम होते हैं, जिसकी वजह से इंसुलिन नहीं बनती है। एक दूसरा कारण जो होता है, जिसको कि हम MODY कहते हैं, मैच्योरिटी ऑनसेट डायबिटीज ऑफ द यंग, मतलब ये टाइप 2 डायबिटीज है, लेकिन कम उम्र के लोगों में हो जाती है, बच्चों में भी हो जाती है। और उसका कारण वही है, खान पान के ऊपर ध्यान न देना, अत्यधिक खाना, व्यायाम न करना, जिससे कि बच्चे मोटे हो जाते हैं और उनके अंदर ये डायबिटीज के लक्षण बचपन में ही आ जाते हैं।
1: अभी आप सुन रहे थे स्वास्थ्य चर्चा, विषय था डायबिटीज कारण और बचाव। मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलो हर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का नजीबाबाद केंद्र है। लीजिए सुनिए खेती की बातें। आज इसमें जानकारी का विषय है, कृषि ऋण का सही समय पर भुगतान करें।
2: राम राम। खेती की बातें कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। किसान भाइयों, आज जो जानकारी हम आपके लिए लेकर आए हैं, उसका विषय है कृषि ऋण का सही समय पर करें भुगतान। देखिए किसान भाइयों, खेती के लिए किसान को समय समय पर पूंजी की जरूरत होती है। बीज, खाद, कीटनाशक, सिंचाई, कृषि मशीनरी, पशुपालन, डेयरी, मत्स्य पालन, बागवानी और कृषि उपज के भंडारण व विपणन जैसी गतिविधियों के लिए संस्थागत ऋण महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कृषि ऋण को मोटे तौर पर अल्पावधि फसल ऋण, किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से मिलने वाला ऋण और कृषि और संबद्ध गतिविधियों के लिए ऋण जैसी श्रेणियों में समझा जा सकता है। देखिए किसान भाइयों, आप सबके मन में ये बात जरूर आ रही होगी कि आपने जो किसान क्रेडिट कार्ड से ऋण लिया है उसको आपने समय पर चुका दिया है और उसका समय पर चुकाने का हमें फायदा क्या मिल रहा है। तो देखिए, आप बहुत अच्छा सोच रहे हैं। सबसे पहला लाभ तो ये है कि ब्याज का बोझ इससे कम हो जाता है। सरकार की वर्तमान ब्याज सहायता व्यवस्था के अंतर्गत पात्र अल्पावधि कृषि ऋण पर रियायती ब्याज दर का लाभ मिलता है और समय पर भुगतान करने वाले किसानों को शीघ्र पुनर्भुगतान प्रोत्साहन भी मिल सकता है। आप तो जानते हैं कि वर्तमान व्यवस्था में पात्र किसानों के लिए 3 लाख रुपए तक के कृषि ऋण पर 7% की रियायती दर और समय पर भुगतान पर अतिरिक्त 3% प्रोत्साहन का प्रावधान बताया गया है, जिससे प्रभावी ब्याज दर 4% तक हो सकती है। हालांकि वास्तविक लाभ ऋण की प्रकृति, बैंक पात्रता और लागू नियमों पर निर्भर करता है। इसलिए किसान भाइयों, इस बात का ध्यान रखें कि ऋण की नियत तारीख केवल कैलेंडर की एक तारीख नहीं है, बल्कि ये आपकी आर्थिक योजना का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। समय पर ऋण चुकाने का दूसरा बड़ा लाभ है भविष्य में ऋण प्राप्त करने में सुविधा। जब किसान अपने ऋण खाते को नियमित रखता है और किस्तों का समय पर भुगतान करता है तो उसकी ऋण अनुशासन की अच्छी छवि बन जाती है। इससे भविष्य में फसल उत्पादन, कृषि यंत्र खरीदने, सिंचाई व्यवस्था विकसित करने, डेयरी या पशुपालन बढ़ाने जैसे निवेशों के लिए ऋण प्राप्त करने में मदद मिल सकती है। किसान भाइयों, कृषि ऋण के बहुत सारे प्रकार हैं। बात करते हैं फसल ऋण की। ये मुख्य रूप से खेती के मौसमी खर्चों जैसे बीज, खाद, दवाइयां, मजदूरी और अन्य उत्पादन लागत के लिए लिया जाता है। इसका भुगतान सामान्यतः फसल के मौसम और बिक्री से प्राप्त आय के अनुसार निर्धारित होता है। किसान क्रेडिट कार्ड यानी KCC किसानों को खेती की नियमित जरूरतों के साथ साथ कई संबद्ध गतिविधियों की कार्यशील पूंजी जरूरतों के लिए ऋण सुविधा देता है। इसके बाद आता है कृषि सावधि या निवेश ऋण। ट्रैक्टर, कृषि मशीनरी, सिंचाई उपकरण, भूमि विकास, डेयरी, पोल्ट्री, मधुमक्खी पालन, मत्स्य पालन, बागवानी, कृषि बागवानी, पॉली हाउस और अन्य कृषि निवेशों के लिए इस प्रकार का ऋण लिया जा सकता है। इसके अलावा पशुपालन, डेयरी, मत्स्य पालन, पोल्ट्री बागवानी, कृषि उपज के भंडारण, शीत गृह, कृषि विपणन और कृषि प्रसंस्करण जैसी संबद्ध गतिविधियों के लिए भी ऋण उपलब्ध हो सकता है। ऋण का समय पर भुगतान से ब्याज और दंडात्मक भार को नियंत्रित करने में मदद मिलती है। ऋण खाता नियमित रहता है और भविष्य की वित्तीय योजनाएं बेहतर ढंग से बनाई जा सकती हैं। वहीं भुगतान में अनावश्यक देरी होने पर ब्याज का बोझ बढ़ सकता है और आगे ऋण लेने में कठिनाई पैदा हो सकती है, इसलिए एक सरल नियम अपनाने की जरूरत है। ऋण लेने से पहले उसकी शर्तें समझनी जरूरी हैं। नियत तारीख लिखकर रखनी चाहिए। फसल या अन्य आय के अनुसार पहले से धन की व्यवस्था करनी जरूरी है और भुगतान की तारीख का इंतजार किए बिना समय पर ऋण चुका देना चाहिए। किसान भाइयों, याद रखिए, समय पर ऋण चुकाना केवल कर्ज से मुक्ति नहीं बल्कि मजबूत आर्थिक भविष्य की नींव है। सही समय पर भुगतान कीजिए, ब्याज का बोझ कम रखिए और खेती के अगले मौसम की तैयारी आत्मविश्वास के साथ कीजिए। इन्हीं सब बातों के साथ आज का खेती की बातें कार्यक्रम अब यहीं पर संपन्न करते हैं। कल फिर एक नई जानकारी के साथ आपके बीच में उपस्थित होंगे। किसान भाइयों, राम राम।
1: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे खेती की बातें। इसमें आज जानकारी का विषय था कृषि ऋण का सही समय पर भुगतान करें। हम आकाशवाणी के नजीब आबाद केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, प्रस्तुत है हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले आज के प्रमुख कार्यक्रमों की संक्षिप्त जानकारी। हमारे श्रोता सुनेंगे प्रातः 10:55 पर माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा भारत की जनता को संबोधित मन की बात का 137वां संस्करण। रात्रि 9:00 सुनेंगे कार्यक्रम अनुगूंज और रात्रि 10:00 सुनेंगे अखिल भारतीय रविवासरीय संगीत सभा। ये तीनों कार्यक्रम हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। सवेरे 9:15 पर लखनऊ केंद्र से सामयिक चर्चा प्रसारित की जाएगी। धरती गाती है, इसमें आपको सुनवाएंगे बीना के गाए रुहेलखंडी लोकगीत सवेरे 9:20 पर। श्रोताओं, आपके पत्रों पर आधारित कार्यक्रम आप सुनेंगे। आपका पत्र मिला दिन में 12:05 पर और दिन में 12:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम फिल्मी संडे। इसमें फिल्म रहेगी हम हैं राही प्यार के। बाल वाटिका कार्यक्रम बच्चे सुनेंगे दिन में 1:15 पर। लोकल से वोकल की ओर बढ़ते कदम और राष्ट्रीय विकास विषय पर चर्चा की जाएगी और राष्ट्रीय लघु उद्योग दिवस में जानकारी भी दी जाएगी। लोकधारा में आनंद लीजिएगा भानुराम सुकोटी के गाए कुमावनी लोकगीतों का दिन में 1:45 पर। तो श्रोताओं, ये थी जानकारी कार्यक्रमों के संबंध में। मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलोहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का नजीबाबाद केंद्र है। 7:18 होने को है श्रोताओं। अब आप समाचार सुनेंगे।

0: जगह तक न पहुंच जाओ। यही अद्वितीय तुम हो। जिंदगी में एक लक्ष्य रखो, लगातार ज्ञान प्राप्त करो, कड़ी मेहनत करो और महान जीवन को प्राप्त करने के लिए दृढ़ रहो। APJ अब्दुल कलाम।
1: एक सैनिक के रूप में आपको हमेशा 3 आदर्शों को संजोना और उन पर जीना होगा, सच्चाई, कर्तव्य और बलिदान। जो सिपाही हमेशा अपने देश के प्रति वफादार रहता है, जो हमेशा अपना जीवन बलिदान करने को तैयार रहता है, वो अजेय है। अगर तुम भी अजेय बनना चाहते हो तो इन 3 आदर्शों को अपने हृदय में समाहित कर लो। सुभाष चंद्र बोस।
0: असली शिक्षा एक इंसान की गरिमा को बढ़ाती है, उसके स्वाभिमान में वृद्धि करती है। यदि हर इंसान द्वारा शिक्षा के वास्तविक अर्थ को समझ लिया जाता और उसे मानव गतिविधि के प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ाया जाता तो यह दुनिया रहने के लिए कहीं अच्छी जगह होती। APJ अब्दुल कलाम।
1: बढ़ते हुए या धुएं से है सब परेशान, शुद्ध वायु दुर्लभ, खतरे में है मनुष्य की जान। कूड़ा और प्लास्टिक जो लोग जलाएं, प्रदूषण के कारण बन जाएं, सांस लेने में तकलीफ आए, आरोग्य को हानि पहुंचाएं।
2: आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं विकास राय। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से साझा करेंगे अपने विचार। आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी नेटवर्क पर होगा प्रसारण। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शासन स्तर के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ जनहित से जुड़े विभिन्न विषयों की समीक्षा की। वर्षों से लंबित राजस्व मामलों को समयबद्ध ढंग से निस्तारित करने के दिए निर्देश। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह लखनऊ में बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में हुए शामिल। कहा, आज जब भारत बोलता है तो दुनिया सुनती है। और बारिश और बैराजों से पानी छोड़े जाने की वजह से प्रदेश में कई नदियां उफान पर। चित्रकूट में मंदाकिनी, वाराणसी और बलिया में गंगा ने किया खतरे के निशान को पार। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी के मासिक रेडियो कार्यक्रम की 137वीं कड़ी के तहत मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। ये कार्यक्रम आकाशवाणी और दूरदर्शन के समस्त नेटवर्क, आकाशवाणी समाचार की वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर सीधे प्रसारित होगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद आकाशवाणी क्षेत्रीय भाषाओं में कार्यक्रम प्रसारित करेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शासन स्तर के वरिष्ठ अधिकारियों तथा पुलिस व प्रशासन के अधिकारियों के साथ जनहित से जुड़े विभिन्न विषयों की समीक्षा की एवं आवश्यक निर्देश दिए। एक रिपोर्ट।
3: मुख्यमंत्री ने राजस्व न्यायालयों में वर्षों से लंबित मामलों को समयबद्ध ढंग से निस्तारित करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि आम नागरिक की जमीन, संपत्ति और अधिकारों से जुड़े मामलों में अनावश्यक देरी स्वीकार नहीं की जा सकती है। मुख्यमंत्री ने कहा कि नायब तहसीलदार कोर्ट से लेकर राजस्व परिषद के न्यायालयों तक 5 वर्ष से अधिक समय से लंबित सभी राजस्व मामलों को प्राथमिकता से चिन्हित कर नियोजित प्रयासों के साथ निस्तारित कराया जाए। साथ ही धारा 33 के अविवादित वरासत के मामलों को मिशन मोड में निस्तारित किया जाए। इस दौरान मुख्यमंत्री ने जनता दर्शन, IGRS में प्राप्त जन शिकायतों के संतुष्टि परक निस्तारण, राजस्व न्यायालयों की कोटवार समीक्षा और लंबित प्रकरणों की नियमित मॉनिटरिंग करने के साथ अपराध नियंत्रण के लिए सतर्कता और प्रभावी कार्रवाई जारी रखने के निर्देश दिए। समाचार कक्ष से विवेक सिंह।
2: बैठक में मुख्यमंत्री ने चित्रकूट, फरुखाबाद, अयोध्या, आजमगढ़ और बाराबंकी के जिलाधिकारियों के साथ बाढ़ राहत कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि राहत कार्य पूरी संवेदनशीलता और सजगता के साथ किया जाए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल देवरिया के सलेमपुर और भाटपर रानी विधानसभा क्षेत्रों में 305 करोड़ रूपये लागत की 80 लोकहितकारी परियोजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया। इस अवसर पर श्री योगी ने कहा कि डबल इंजन सरकार के सुशासन का परिणाम है कि आज गरीब को बिना मांगे राशन, बिजली, आवास, शौचालय और नौजवान को रोजगार व सरकारी नौकरी मिल रही है। उन्होंने कहा कि डबल इंजन सरकार में देवरिया सर्वांगीण विकास के नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है।
3: देवरिया आज विकास के नए प्रतिमान को स्थापित कर रहा है। कनेक्टिविटी बेहतर हो रही है, कहीं बाईपास बन रहे हैं, कहीं फ्लाईओवर बन रहे हैं, कहीं सिंगल लेन की सड़क डबल लेन में, डबल लेन की फोर लेन में, फोर लेन की सिक्स लेन में, कहीं कंपोजिट विद्यालय बन रहे हैं, कहीं पर कस्तूरबा गांधी विद्यालय का उच्चीकरण हो रहा है, कहीं नौजवानों की प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी कोचिंग की व्यवस्था की जा रही है, और कहीं पर ऑपरेशन कायाकल्प के अंतर्गत बेसिक शिक्षा के विद्यालयों में एक नया परिवर्तन करके अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य को आगे बढ़ाने के लिए कार्य कर रही है।
2: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल गोरखपुर में 130 करोड़ रुपए से अधिक लागत की 170 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करने के साथ ही राप्ती नगर क्षेत्र में नवनिर्मित कल्याण मंडपम का शुभारंभ किया। इस अवसर पर श्री योगी ने कहा कि हर जनपद में सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम पर एम्प्लॉयमेंट और इंडस्ट्रियल जोन बनाने का काम हो रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में सुरक्षा का बेहतर माहौल है। ग्रुप कैप्टन और अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला और सेशल्स गणराज्य की प्रथम महिला वेरोनिक हार्मनी कल गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय ग्रेटर नोएडा में आयोजित मिशन शक्ति सेट स्पेस वॉक कार्यक्रम में शामिल हुए। इस कार्यक्रम में छात्राओं द्वारा बनाए गए मॉडलों का प्रदर्शन किया गया। इस अवसर पर ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला ने कहा कि अंतरिक्ष मिशन में टीम वर्क की अहम भूमिका होती है।
4: 108 देशों से बच्चियां आई हैं जो जुड़ी हैं इस मिशन से और जिन्होंने मिलकर शक्तिसैट का एक इंजीनियरिंग मॉडल बनाया है, और बहुत खुश हूं मैं ये जानकर कि इतने सारे देशों को हम जोड़ पाए और एक साथ जगह इस जगह पे ला पाए जो कि अब इस सैटेलाइट को अंतरिक्ष में लॉन्च करें। स्पेस एक्सप्लोरेशन में टीम वर्क की बहुत बड़ी अहमियत होती है और इससे ज़्यादा अहमियत हम दिखा नहीं सकते इस मिशन ने दिखाई है।
2: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे YouTube चैनल AIR News गोरखपुर और X हैंडल AIR News _GKP पर भी उपलब्ध है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कल लखनऊ के बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय में आयोजित 11वें दीक्षांत समारोह में शामिल हुए। इस अवसर पर रक्षा मंत्री ने कहा कि आज जब भारत बोलता है तो दुनिया सुनती है। नए भारत में सबसे बड़ा परिवर्तन यह है कि देश अब केवल वैश्विक नियमों का अनुसरण नहीं कर रहा है बल्कि नियम बनाने में भी योगदान दे रहा है। रक्षा मंत्री ने कहा कि विश्वविद्यालयों का उद्देश्य केवल डिग्री देना नहीं होना चाहिए बल्कि राष्ट्र निर्माण भी होना चाहिए।
5: विद्यालय अथवा विश्वविद्यालय जो होते हैं व्यक्तित्व निर्माण के केंद्र होते हैं, और जब व्यक्तित्व निर्माण होता है तो ऐसे लोग समाज के निर्माण में और राष्ट्र को आगे ले जाने में अपनी अहम भूमिका का निर्वाह करते हैं। इसलिए इस विश्वविद्यालय का उद्देश्य केवल डिग्री देने तक सीमित नहीं होना चाहिए बल्कि ऐसे युवाओं के निर्माण का भी होना चाहिए जो जस्टिस, इक्वालिटी, लिबर्टी और फ्रेटर्निटी के आदर्शों से प्रेरित होकर नेशन बिल्डिंग में अपना कॉन्ट्रीब्यूशन दे।
2: प्रदेश सरकार स्वाइन फ्लू की वर्तमान स्थिति को लेकर अलर्ट मोड में है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्वास्थ्य विभाग, जिलाधिकारियों और संबंधित विभागीय अधिकारियों को स्वाइन फ्लू को लेकर लगातार निगरानी रखने और चिकित्सकीय व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।
6: मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा कि प्रदेश में स्वाइन फ्लू के मामलों की नियमित समीक्षा की जाए और किसी भी स्तर पर लापरवाही न बरती जाए। मुख्यमंत्री ने अस्पतालों में मरीजों के उपचार के लिए पर्याप्त तैयारियां सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों से अपील की है कि स्वाइन फ्लू के लक्षण दिखाई देने पर समय रहते चिकित्सकीय सलाह लें और आवश्यक जाँच कराएं। समाचार कक्ष से राघवेंद्र त्रिपाठी।
2: नेपाल में आई भीषण बाढ़ में मृतकों की संख्या 669 हो गई है और 2000 से अधिक लोग लापता हैं। प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव अभियान जारी है। बचाए गए लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। बंद सड़कों को साफ करने का काम भी तेजी से चल रहा है। विदेश मंत्रालय ने बताया है कि नेपाल में अब तक 88 भारतीय नागरिकों को बचाया जा चुका है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि 287 भारतीय नागरिक लापता हैं। उन्होंने कहा कि 128 भारतीय मूल के लोग भी लापता हैं। रसुवा स्थित एक जल विद्युत परियोजना से 4 भारतीय नागरिकों को बचाया गया। कल 120 भारतीय नागरिक चीन से नेपाल में दाखिल हुए हैं। बारिश और बैराजों से पानी छोड़े जाने के कारण प्रदेश की कई नदियों का जलस्तर बढ़ रहा है। अतिवृष्टि के कारण पिछले कुछ दिनों में करीब 26 जनपद बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। चित्रकूट में मंदाकिनी नदी उफान पर है। प्रशासन और एनडीआरएफ की ओर से चित्रकूट में राहत और बचाव का कार्य जोर शोर से चल रहा है। वाराणसी में गंगा नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। बलिया में गंगा नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। मौसम विभाग ने अगले 48 घंटे के लिए प्रदेश में गरज और चमक के साथ बारिश का अनुमान जताया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल बलिया में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण किया। उन्होंने बाढ़ प्रभावितों को राहत सामग्री भी वितरित की। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि सरकार आपदा प्रभावितों के साथ खड़ी है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से साझा करेंगे अपने विचार। आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी नेटवर्क पर होगा प्रसारण। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शासन स्तर के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ जनहित से जुड़े विभिन्न विषयों की समीक्षा की। वर्षों से लंबित राजस्व मामलों को समयबद्ध ढंग से निस्तारित करने के दिए निर्देश। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह लखनऊ में बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में हुए शामिल। कहा, आज जब भारत बोलता है तो दुनिया सुनती है। और बारिश और बैराजों से पानी छोड़े जाने की वजह से प्रदेश में कई नदियां उफान पर। चित्रकूट में मंदाकिनी, वाराणसी और बलिया में गंगा ने किया खतरे के निशान को पार। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला समाचार अब से थोड़ी देर बाद सुबह 8 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
0: तब तक लड़ना मत छोड़ो जब तक अपनी तय की हुई जगह तक ना पहुंच जाओ। यही अद्वितीय तुम हो। जिंदगी में एक लक्ष्य रखो, लगातार ज्ञान प्राप्त करो, कड़ी मेहनत करो और महान जीवन को प्राप्त करने के लिए दृढ़ रहो। APJ अब्दुल कलाम। असंतुष्ट व्यक्ति के लिए सभी कर्तव्य नीरस होते हैं। उसे तो कभी भी किसी वस्तु से संतोष नहीं होता। फलस्वरूप उसका जीवन असफल होना स्वाभाविक है। स्वामी विवेकानंद।
1: एक सैनिक के रूप में आपको हमेशा 3 आदर्शों को संजोना और उन पर जीना होगा। सच्चाई, कर्तव्य और बलिदान। जो सिपाही हमेशा अपने देश के प्रति वफादार रहता है, जो हमेशा अपना जीवन बलिदान करने को तैयार रहता है, वो अजेय है। अगर तुम भी अजेय बनना चाहते हो तो इन 3 आदर्शों को अपने हृदय में समाहित कर लो। सुभाष चंद्र बोस।
7: मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलो हर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, पेश है ज्ञान, मनोरंजन और जानकारियों से भरपूर कार्यक्रम सूरज के साथ साथ।

हर सुबह आपकी इतनी सुहानी हो जाए, हर सुबह आपकी इतनी सुहानी हो जाए, गम की हर बात पुरानी हो जाए, दे जाए इतनी खुशियाँ ये दिन आपको, दे जाए इतनी खुशियाँ ये नया दिन आपको, कि सारी खुशियाँ आपकी दीवानी हो जाए। जी हाँ श्रोताओं, हम तो यही चाहते हैं कि हमारे श्रोताओं के जीवन में खुशियों की बारिश हो, आप सभी हमेशा मुस्कुराते रहें, खुश रहें और आपका और हमारा ये रिश्ता हमेशा यूं ही बना रहे। इन्हीं कामनाओं के साथ कार्यक्रम का आगाज कर रही हूँ मैं आपके साथी रिमझिम बलूनी, और कार्यक्रम है आप सभी का पसंदीदा सूरज के साथ साथ। जी हाँ श्रोताओं, श्रोताओं ईश्वर के द्वारा दिए हुए हमारे इस जीवन में हमारे कई रिश्ते और कई संबंध बनते हैं। कुछ जन्म से हमें मिलते हैं और कुछ रिश्ते समय के साथ बनते हैं। लेकिन श्रोताओं, कभी हमारे जीवन में ऐसा समय भी आता है कि जो हमारे कुछ संबंध हैं, कुछ प्यारे रिश्ते हैं और जो हमारे संबंधी हैं, उन्हें किसी न किसी कारण से हमसे दूर होना पड़ता है। जी हाँ, कहीं ना कहीं अपनों से दूर होने की जो पीड़ा है वो हमें बहुत परेशान करती है और इससे हमारे मन में बहुत दुख होता है। जरा सोचिए, अगर कोई व्यक्ति बिना बताए कहीं चला जाए या फिर उसको जबरन गायब कर दिया जाए तो उसके परिवार पर क्या बीतेगी। जी हाँ श्रोताओं, उन पीड़ितों के परिवार मित्र धीरे धीरे मानसिक पीड़ा से गुजरते हैं, क्योंकि उन्हें ये पता ही नहीं होता कि पीड़ित व्यक्ति जीवित है या नहीं। अगर जीवित है तो उसे किस परिस्थितियों में रखा गया है या वो किस परेशानी में रह रहा है, उन्हें अपनों के लौट आने की प्रतीक्षा बनी रहती है ना श्रोताओं। और इन्हीं सभी बातों को ध्यान में रखकर 21 दिसंबर 2010 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने इस दिन को आधिकारिक तौर पर मान्यता दी ताकि इस गंभीर अपराध के खिलाफ कार्रवाई की जाए। जी हाँ, वो गंभीर अपराध है जबरदस्ती गुम किए गए पीड़ितों के लिए, और इसीलिए ये अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। इसका उद्देश्य दुनिया भर में जबरन गायब किए गए लोगों के मामलों के प्रति जागरूकता बढ़ाना और पीड़ितों तथा उनके परिवारों के अधिकारों का सम्मान करता है। संयुक्त राष्ट्र ने इस दिवस की शुरुआत की ताकि विश्व भर की सरकारें और समाज इस अमानवीय कृत्य को रोक लगाने के लिए कदम उठाएं, और इस दिन मानव अधिकार संगठनों द्वारा जागरूकता अभियान, चर्चाएं और कार्यक्रम भी आयोजित किए जाते हैं। श्रोताओं, इसका संदेश ये है कि हर व्यक्ति को जीवन स्वतंत्रता और सुरक्षा का अधिकार है। ये दिवस हमें मानवता, न्याय और संवेदनशीलता की रक्षा के लिए जागरूक रहने की प्रेरणा देता है। तो श्रोताओं, हम मनुष्य एक ऐसे प्राणी हैं जिनमें दया, करुणा और प्रेम के साथ बहुत कुछ करने की क्षमता होती है। इसीलिए पूरी मानव जाति का ये कर्तव्य बनता है कि अपने जीवन के साथ वो और प्राणियों की भी सुरक्षा का ध्यान रखें। लेकिन जाने अनजाने में कई लोग अपने स्वार्थ के बारे में सोचते हैं और इसका असर हमारे आसपास रहने वाले जीव जंतुओं पर भी पड़ता है श्रोताओं। और आज हम एक और अंतर्राष्ट्रीय दिवस मना रहे हैं जिसका नाम है व्हेल शार्क दिवस। श्रोताओं, इस दिन का उद्देश्य दुनिया भर की सबसे बड़ी मछली कहलाने वाली शार्क के संरक्षण और उसके महत्व के प्रति जागरूकता फैलाना है। व्हेल शार्क आकार में विशाल होते हुए भी एक शांत प्राणी है और समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र के संतुलन में अपनी अहम भूमिका निभाती है, लेकिन कुछ कारणों से इनकी संख्या घटती जा रही है, जो कि एक हमारे लिए बहुत ही सोचनीय विषय है।
इसके बहुत सारे कारण हैं, जैसे मछुआरे द्वारा मछलियां पकड़ना, प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन भी इसका कारण है। और श्रोताओं, इसीलिए ये दिन मनाया जाता है कि हम अपने जो भी ये प्राणी हैं, चाहे वो मछली हो चाहे और भी प्राणी हैं, उनकी रक्षा करें। और इस दिन विभिन्न संगठन और पर्यावरण प्रेमी जागरूकता अभियान, सेमिनार और संरक्षण कार्यक्रम आयोजित करते हैं, ताकि लोगों को ये बताया जा सके कि समुद्र में रहने वाले जीवों की सुरक्षा भी हम सभी की जिम्मेदारी है। और इसी के साथ हमें संकल्प लेना चाहिए कि जब ईश्वर ने हमें इतना सुंदर बनाया है हम मनुष्य को, कि हम अपनी बुद्धि का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, हम अपनी इंद्रियों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, हम अपने शरीर के अंगों का भी इस्तेमाल कर सबकी रक्षा और सुरक्षा कर सकते हैं, तो क्यों ना हम जो ये वेल हैं, जो ये मछलियां हैं, इनकी सुरक्षा में, इनकी रक्षा में अपनी भूमिका निभाएं। और कार्यक्रम को और आगे बढ़ाते हैं एक और जानकारी के साथ। जी हाँ, आज यानी कि 30 अगस्त को मनाया जाता है राष्ट्रीय लघु उद्योग दिवस। श्रोताओं, देश तभी आगे बढ़ेगा जब वहाँ पे संसाधन होंगे, रोजगार होगा। जी हाँ श्रोताओं, किसी भी राष्ट्र को समृद्ध बनाने में जो वहाँ के उद्योग हैं उनका बहुत बड़ा महत्व होता है। और इस दिन का उद्देश्य देश में छोटे उद्योगों के महत्व को पहचान देना और उद्यमिता को प्रोत्साहित करना है। लघु उद्योग न केवल रोजगार के अवसर पैदा करते हैं, बल्कि ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों की अर्थव्यवस्था को, श्रोताओं, मजबूत भी बनाते हैं। श्रोता, लघु उद्योग कम पूंजी में यानी कि कम धन में शुरू होकर स्थानीय संसाधनों का इसमें हम प्रयोग करते हैं और आत्मनिर्भर भारत की दिशा में अहम भूमिका भी निभाते हैं। कपड़ा उद्योग, हस्तशिल्प, खाद्य संस्करण, कुटीर उद्योग जैसे अनेक क्षेत्र लघु उद्योग से जुड़े हैं। हमारी सरकार भी लघु उद्योग को बढ़ावा देने के लिए कई योजनाएं और नीतियां लागू कर रही है, जिनका लाभ उठाकर अपना उद्योग शुरू किया जा सकता है। और देखिए, बिना धन के कोई भी उद्योग शुरू नहीं किया जा सकता, कोई भी काम नहीं किया जा सकता है। इसके लिए भी बहुत सारी योजनाएं हैं जो कम ब्याज दरों पर लोन उपलब्ध करवाती हैं। बस ज़रूरत है जागरूक होने की। और आज के समय में श्रोताओं, पुरुष ही नहीं बल्कि महिलाएं भी हर क्षेत्र में योगदान दे रही हैं। कई छोटे छोटे उद्योगों के माध्यम से वो स्वयं को सशक्त बना रही हैं, साथ ही अपने साथ कई लोगों को रोजगार देकर देश की प्रगति में अपनी भूमिका निभा रही हैं। तो श्रोताओं, राष्ट्रीय लघु उद्योग दिवस पर सेमिनार, कार्यशालाएं और प्रदर्शनियां आयोजित की जाती हैं, ताकि नए उद्यमियों को मार्गदर्शन और प्रेरणा मिल सके। और ये दिन हमें याद दिलाता है कि छोटे उद्योग ही बड़े सपनों को साकार करने की मजबूत नींव है।

0: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
1: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
0: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
1: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
0: बुकिंग है तो संपर्क करें 8700001-4242 पर।
1: 8700001-4242।
2: श्रोताओं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सूरज के साथ साथ, और कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। जैसे कि श्रोताओं, बरसात का मौसम चल रहा है और ये मौसम सभी को पसंद है ना। लेकिन इस मौसम में श्रोताओं, स्वास्थ्य का ध्यान रखना बेहद ही जरूरी है। ये जो मौसम है वो मौज मस्ती के साथ सर्दी, खांसी, बुखार जैसी बीमारियां भी अपने साथ लेकर आता है अगर हम जरा सी लापरवाही कर दे तो। इस मौसम में शरीर में दर्द भी हो सकता है, अकड़न जैसी परेशानियों से भी हम जूझ सकते हैं, और ऐसा होने पर श्रोताओं, हम कई बार लापरवाही कर देते हैं अपने स्वास्थ्य को लेकर। लेकिन श्रोताओं, आप समझ लीजिए कि अगर आपको ऐसे लक्षण दिखाई दें तो ये लक्षण स्वाइन फ्लू के भी हो सकते हैं। श्रोताओं, स्वाइन फ्लू एक प्रकार का श्वसन संक्रमण है जो इन्फ्लुएंजा ए वायरस के कारण फैलता है। इसके लक्षण सामान्य फ्लू जैसे ही होते हैं, जैसे तेज बुखार लगना, ठंड लगना, सूखी खांसी, गले में खराश, नाक बहना, शरीर में दर्द, सिर में दर्द, और कभी कभी उल्टी भी हो सकती है, पेट में भी दर्द देखने को मिलता है। बच्चों में ये लक्षण ज़्यादा दिखाई देते हैं और आजकल दिखाई भी दे रहे हैं। तो जो ये वायरस है श्रोताओं, ये एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है। अगर आपको स्वाइन फ्लू के लक्षण दिखाई देते हैं, चाहे वो अपने आप में दिखाई दें या अपने परिवार के लोग या जान पहचान के लोगों में दिखाई दें, तो सबसे पहले आप डॉक्टर से मिलें। जी हाँ, और साथ ही स्वच्छता का ध्यान रखें। नियमित रूप से साबुन और पानी से अपने हाथों को धोएं और ताज़ा खाना खाएं, और खांसते छींकते वक्त सावधानी रखें। मुंह और नाक को श्रोताओं रुमाल से ढकें और जितनी कोशिश हो भीड़ भाड़ वाले स्थानों से दूरी बनाए रखें, और पौष्टिक आहार लें और साथ ही साथ पर्याप्त नींद भी लें। तो श्रोताओं, अगर ऐसी कोई भी परेशानी आपको देखने को मिल रही है तो हम यही कहेंगे कि सबसे पहले डॉक्टर से परामर्श लें। और कार्यक्रम को श्रोताओं आगे बढ़ाते हैं और नज़र डालते हैं आज के समाचार पत्रों की कुछ सुर्खियों पर। तो सबसे पहले अमर उजाला की सुर्खियां। तो अमर उजाला लिखता है कि सुरंग में फंसे लोगों को निकालने के लिए भारत ने भेजे 11 विशेषज्ञ। श्रोताओं, जल प्रलय के बाद नेपाल में अब सबसे बड़ी चुनौती मलबे और जल विद्युत परियोजनाओं की सुरंगों में फंसे लोगों को निकालने की है। नेपाल ने इसके लिए तकनीकी मदद की गुहार लगाई है।

संचालन प्रभावित हुआ है और वहीं प्रयागराज में गंगा और यमुना का जलस्तर बढ़ने से बाढ़ का खतरा भी पैदा हो गया है। और दैनिक जागरण आगे लिखता है कि नेपाल ने पूरी दुनिया से मदद मांगी, ग्लेशियर टूटने के बाद नेपाल में आई विनाशकारी बाढ़ के बीच अब जिंदगी बचाने की जंग तेज हो गई है। 8 जिलों में राहत व बचाव अभियान चलाया जा रहा है, लेकिन खराब मौसम के कारण इसमें दिक्कतें आ रही हैं। कई लोग बेघर हो गए हैं, कई के सामने जीवन यापन का संकट है। तो हालात को देखते हुए नेपाल सरकार ने दुनिया भर से मदद की गुहार लगाई है। आगे दैनिक जागरण की सुर्खियां हैं कि सिग्नल कोर ने लद्दाख की 3 हिमालयी चोटियों पर फहराया तिरंगा। जी हां श्रोताओं, साहस अनुशासन और टीम भावना का परिचय देते हुए सेना के सिग्नल कोर के अभियान दल ने लद्दाख की 3 दुर्गम हिमालयी चोटियों पर सफल आरोहण कर तिरंगा फहराया है। और हिंदुस्तान लिखता है कि CSIR UGC नेट के परिणाम घोषित कर दिए गए हैं। तो राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने संयुक्त CSIR UGC नेट जून 2026 के परिणाम जारी कर दिए हैं। परीक्षा में शामिल अभ्यर्थी अपना अंक पत्र आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं। और अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं श्रोताओं, और सुनते हैं कार्यक्रम में ये प्यारा सा गीत।

0: अपने व्यापार को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाना चाहते हैं?
1: तो इंतजार किस बात का,
0: अभी बुक कराइए अपना विज्ञापन आकाशवाणी नजीबाबाद के संग।
1: विज्ञापन बुकिंग कराने के लिए आज ही संपर्क करें।
0: हमारा मोबाइल नंबर है 8865845809।
1: नंबर एक बार फिर सुन लीजिए 8865845809।
0: और हमारा ईमेल आईडी है
1: akashwaninajibabad@gmail.com।
0: तो देर किस बात की, उठाइए अपना फोन और बुक कराइए अपना विज्ञापन
1: आकाशवाणी नजीबाबाद के संग।
2: तो श्रोताओं, कार्यक्रम में अब समय है तिथि विशेष का, और आइए जानते हैं आज का दिन इतिहास के पन्नों में अपनी क्या जगह रखता है, क्या महत्व रखता है। आज ही के दिन यानी 30 अगस्त सन 1947 में भारतीय संविधान का प्रारूप तैयार करने के लिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नेतृत्व में एक समिति का गठन किया गया था। जी हाँ श्रोताओं, दिन था

आज ही का, यानी कि 30 अगस्त सन 1947 का। इसे 26 नवंबर 1949 को संविधान के सामने पेश किया गया और बाद में 26 जनवरी 1950 को ये लागू हुआ और हमारा देश गणतंत्र बना। फिलीपींस और अमेरिका ने साल 1951 में 30 अगस्त के दिन एक रक्षा संधि पर हस्ताक्षर किए थे और 1984 को श्रोताओं यानी कि आज ही के दिन नासा के स्पेस शटल डिस्कवरी ने अपनी पहली उड़ान भरी थी। डिस्कवरी अमेरिका का सबसे पुराना अंतरिक्ष और अंतरिक्ष में सबसे ज्यादा यात्रा करने वाला अंतरिक्ष यान है। श्रोताओं, 30 अगस्त साल 1928 में राज बिहारी बोस और जवाहरलाल नेहरू ने द इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया लीग की भारत में स्थापना की। इसका मकसद प्रवासी भारतीयों को भारत में ब्रिटिश राज हटाने के लिए प्रेरित करना था। और आइए जानते हैं आज ही के दिन ऐसे लोगों के विषय में, ऐसे व्यक्तियों के विषय में जिनका जन्म आज ही के दिन हुआ और जिन्होंने आज ही के दिन इस संसार को अलविदा कह दिया। तो भगवती चरण वर्मा हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध उपन्यासकार, कवि और नाटककार थे। इनका जन्म आज ही के दिन 30 अगस्त 1903 में हुआ था। वो अपनी सशक्त लेखनी और यथार्थवादी दृष्टिकोण के लिए जाने जाते हैं। श्रोताओं, उनका उपन्यास चित्रलेखा हिंदी साहित्य में क्लासिक माना जाता है, जिसमें पाप और पुण्य की गहन दार्शनिक व्याख्या है। उन्होंने अनेक कहानियां, निबंध और नाटक भी लिखे। साहित्यिक योगदान के लिए उन्हें पद्म भूषण और साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया। और श्रोताओं, आज ही के दिन 1988 को क्रांतिकारी कनाईलाल दत्त का जन्म हुआ था, जो भारत की आजादी के लिए फांसी के फंदे पर झूल गए थे। जी हां श्रोताओं, क्षमा कीजिए, आज ही के 3 अप्रैल 1908 ईस्वी में खुदीराम बोस प्रफुल्ल चाकी ने मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ट पर आक्रमण किया और इस कारण इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। ये क्या थे? ये एक देश प्रेमी थे और 5 वर्ष की आयु में ये मुंबई आ गए और उनकी आरंभिक शिक्षा यहीं पर हुई। बीए की परीक्षा संपन्न होते ही कनाईलाल कोलकाता चले गए और वहां ऐसे मकान में रहने लगे जहां क्रांतिकारियों के लिए शस्त्र अस्त्र रखे जाते थे। और इसके बाद इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और इन्हें मृत्युदंड दिया गया। श्रोताओं, और अब कार्यक्रम को ये अब इस जो क्रम है तिथि विशेषांक, इसे यहीं पर संपन्न करते हैं और कार्यक्रम का अंतिम गीत आपको सुनवाते हैं।

0: साथ साथ।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सूरज के साथ साथ। मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलो हर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। सवेरे के 8 बजने को हैं, अब आप समाचार सुनेंगे।

0: आज देश में हर एक सेकंड में होते हैं 1 करोड़ रुपए के UPI पेमेंट्स और हैं 81 करोड़ से ज्यादा UPI पेमेंट पॉइंट्स।
1: स्ट्रीट वेंडर से लेकर आपकी गाड़ी के शोरूम तक आपकी सारी पेमेंट सिर्फ एक QR कोड स्कैन करके हो जाती है।
0: UPI के 10 साल डिजिटल आत्मनिर्भर बेफिक्र।
2: मेरी बैंक हमेशा मेरे साथ चलती है। सुबह उठती हूँ तो पैसे जमा कर आती है, कस्टमर ज्यादा हो जाते हैं तो पूरा गल्ला संभाल लेती है, आधी रात को भी उठा के बताती है कि मैडम लक्ष्मी फल भंडार का पेमेंट आ गया है। जनधन बैंक खाता क्या मिला मुझे, तो उंगलियों के छोर पर बीमा, पेंशन, DBT सारी बैंकिंग सुविधाएं मिल गई हैं।
3: 12 साल में 59 करोड़ जनधन खाते खुले, जिसमें 56% खाते तो सिर्फ महिलाओं के हैं। PM जनधन योजना के 12 साल, ज्यादा बचत, ज्यादा काम।
4: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार बल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ताशकंद में उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शफकत मिर्जियोयेव के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। नेपाल में बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 675 हुई, 2400 लोग लापता। नेपाल ने भोटे कोशी नदी के लिए बाढ़ की नई चेतावनी जारी की। विदेश मंत्रालय ने बताया नेपाल से 108 भारतीय नागरिकों को सुरक्षित निकाला गया, बचाव दल सहित 11 टन राहत सामग्री की चौथी खेप भेजी गई। और महिला T20 एशिया कप क्रिकेट में आज भारत का सामना थाईलैंड से। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ताशकंद में उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शफकत मिर्जियोयेव के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। राष्ट्रपति भवन में व्यापार, निवेश, रक्षा, ऊर्जा, शिक्षा, लोगों के बीच संपर्क और डिजिटल क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की जाएगी। प्रधानमंत्री मोदी कल शाम मध्य एशियाई देश उज्बेकिस्तान की 2 दिन की यात्रा पर राजधानी ताशकंद पहुंचे। प्रधानमंत्री की इस यात्रा को कवर करने गए हमारे संवाददाता ने बताया कि हवाई अड्डे पर उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति ने उनका स्वागत किया।
5: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सबसे पहले योगा फेडरेशन ऑफ उज्बेकिस्तान की ओर से आयोजित योग कार्यक्रम से रूबरू होंगे। उसके बाद वो सीधे उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शौकत मिर्जियोयेव के महल जाएंगे, जहां दोनों नेता द्विपक्षीय बातचीत में हिस्सा लेंगे। रक्षा के क्षेत्र में दोनों देशों के बीच सहयोग लगातार बढ़ रहा है, लेकिन खनन, रेयर अर्थ मिनरल, सोने जैसी धातुएं, अन्य उपयोगी खनिज पदार्थ, मेडिकल, कृषि और स्किल डेवलपमेंट के साथ साथ कनेक्टिविटी के नए रास्ते लाशने पर दोनों देश जोर देंगे। प्रधानमंत्री के प्रयासों से पिछले 10 सालों में दोनों देशों के बीच व्यापार कई गुना बढ़ा है। ऐसे में अब दोनों देश मिलकर आने वाले समय में मौजूदा $1 बिलियन के कारोबार को दोगुना से ज्यादा करने का लक्ष्य लेकर चल रहे हैं। ऐसे में इस दिशा में कुछ महत्वपूर्ण समझौतों पर भी हस्ताक्षर हो सकते हैं। प्रधानमंत्री इसके बाद यहां शास्त्री स्मारक और ताशकंद स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ ओरिएंटल स्टडीज में महात्मा गांधी केंद्र का दौरा भी करेंगे। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, ताशकंद।
4: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम के माध्यम से अपने विचार साझा करेंगे। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम की 137वीं कड़ी होगी। मन की बात का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों, आकाशवाणी समाचार की वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। कार्यक्रम का सीधा प्रसारण AIR न्यूज, DD न्यूज, प्रधानमंत्री कार्यालय और सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय के YouTube चैनलों पर भी होगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद आकाशवाणी विभिन्न क्षेत्रीय भाषाओं में मन की बात का प्रसारण करेगा। इसके लिए गुजरात में भारतीय जनता पार्टी ने विभिन्न स्थानों पर विशेष कार्यक्रम आयोजित किए हैं। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल अहमदाबाद में, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष जगदीश विश्वकर्मा गांधीनगर में और केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल सूरत में लोगों के साथ मन की बात कार्यक्रम सुनेंगे। पार्टी नेताओं की ओर से युवाओं, किसानों, महिलाओं और विभिन्न सामाजिक समुदायों के साथ भी कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज लखनऊ में उद्योग सम्मेलन को संबोधित करेंगे। PM सेतु योजना के अंतर्गत आयोजित इस सम्मेलन में कौशल विकास, उद्यमिता और व्यावसायिक शिक्षा से संबंधित विषयों पर चर्चा होगी। कार्यक्रम से पहले श्री सिंह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम को सुनेंगे। इसके बाद वे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की उपस्थिति में लखनऊ छावनी क्षेत्र में 101 करोड़ रुपए की 12 विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कहा है कि मुस्लिम समुदाय को भारत का हिस्सा न मानने की सोच हिंदुत्व की भावना के विपरीत है। न्यूयॉर्क में एक दुनिया एक मानवता सम्मेलन में श्री भागवत ने कहा कि हिंदुत्व हर व्यक्ति के सम्मान और सभी धर्मों के प्रति समान भाव में विश्वास करता है।
6: Every nation has a mission.
7: प्रत्येक राष्ट्र का एक मिशन होता है, प्रत्येक राष्ट्र की एक नियति होती है। भारत दुनिया को विविधता में एकता का एहसास कराता है। हम एक हैं और विविधता के कारण एक रूपता सुशोभित है, इसलिए विविधता का जश्न मनाया जाना चाहिए।
6: So diversity has to be celebrated.
4: श्री भागवत ने कहा कि धार्मिक नेताओं की जिम्मेदारी है कि वे समाज में मानव एकता और आपसी सद्भाव का संदेश लगातार पहुंचाते रहें। भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस पर दलित समुदाय को राजनीतिक लाभ के लिए इस्तेमाल करने का आरोप लगाया है। नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर गुरु प्रकाश पासवान ने आरोप लगाया कि कांग्रेस का दलित समुदाय का अपमान करने का इतिहास रहा है। उन्होंने कहा कि इसके विपरीत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर की विरासत का सम्मान किया है।
8: हमारी प्रतिबद्धता, हमें कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी जी से किसी प्रकार को कोई प्रमाण पत्र लेने की आवश्यकता नहीं है। बाबा साहेब अम्बेडकर के जीवन काल में, जन्म से लेकर के उनके देहांत तक, जहां जहां जिन जिन स्थानों पर उनका स्पर्श हुआ, उस स्थान को तीर्थ का दर्जा किसने दिया है, तो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने दिया है। स्कॉलरशिप हो, प्रतिनिधित्व हो, संस्थान हो, हर स्थान पे यदि वाकई में सामाजिक न्याय बढ़ा है तो पिछले 12 वर्षों में बढ़ा है।
4: नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने दलित समुदाय के साथ भेदभाव का मुद्दा उठाया था, जिसके बाद ये प्रतिक्रिया आई है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं।
9: लगातार खबरों से जुड़े रहने के लिए एक्स पर @AIR न्यूज हिंदी को फॉलो करें और हमारे व्हाट्सएप चैनल आकाशवाणी समाचार से जुड़े।
4: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। नेपाल में आई बाढ़ में मरने वालों की संख्या बढ़कर 675 हो गई है। लगातार बारिश के बीच राहत और बचाव कार्य जारी है। करीब 2400 लोग अब भी लापता हैं, जिनमें 320 से अधिक विदेशी नागरिक शामिल हैं। अब तक 4400 से अधिक लोगों को सुरक्षित निकाला गया है। नेपाल के प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह ने कहा कि सरकार की पहली प्राथमिकता हर नागरिक की जान बचाना है। काठमांडू को देश के दूसरे हिस्सों से जोड़ने वाला मुगलिंग काठमांडू राजमार्ग फिर खोल दिया गया है। इस बीच नेपाल सरकार ने भोटे कोशी नदी में बाढ़ के खतरे को देखते हुए नई चेतावनी जारी की है। प्रशासन ने नदी के किनारे रहने वाले लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। रसुआ, नुवाकोट और धादिंग जिलों में नदी के आसपास रहने वाले लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। भोटे कोशी तिब्बत से निकलने वाली तेज बहाव वाली हिमालय से निकली नदी है। हाल ही में आई अचानक बाढ़ से रसुआ जिले में भारी तबाही हुई थी। नेपाल के लिए 11 टन राहत सामग्री लेकर चौथी उड़ान काठमांडू पहुंच गई है और नेपाल सरकार को सौंप दी गई है। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि नेपाल में चल रहे बचाव और राहत कार्यों को सफल और सुचारू बनाने के लिए सही सामग्री और तकनीकी क्षमताओं का होना महत्वपूर्ण कदम है। इससे पहले भारत 3 उड़ानों के जरिए 57 टन से अधिक आपातकालीन राहत सामग्री नेपाल भेज चुका है। उपराष्ट्रपति CP राधा कृष्णन आज 2 दिन के आधिकारिक दौरे पर केरलम पहुंचेंगे। वे अलापुझा में केरल कौमुदी दैनिक के जयंती समारोह में शामिल होंगे। इसके बाद श्री राधा कृष्णन पत्थनमथिट्टा जिले में अरणमुला नौका दौड़ का उद्घाटन करेंगे। शाम को उपराष्ट्रपति तिरुवनंतपुरम में ओणम पर्यटन सप्ताह के समापन समारोह की परेड को झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने निर्वाचन आयोग से मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के दौरान आपत्तियां और शिकायतें दर्ज कराने की समय सीमा बढ़ाने की मांग की है। मुख्यमंत्री ने मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार को पत्र लिखकर मौजूदा 16 सितंबर की समय सीमा को 4 सप्ताह बढ़ाने की मांग की है। उन्होंने मतदाता सूची के अंतिम प्रकाशन की निर्धारित तारीख 19 अक्टूबर को भी बदलने का अनुरोध किया है। एशिया कप टी20 क्रिकेट में आज भारतीय महिला टीम का सामना थाईलैंड से होगा। दुबई में ये मैच भारतीय समय के अनुसार रात 8:30 बजे से शुरू होगा। कप्तान हरमनप्रीत कौर की अगुवाई में भारत प्रतियोगिता में अपने अभियान की शुरुआत करेगा। स्मृति मंधाना उपकप्तान होंगी। प्रतियोगिता में 8 टीमें हैं। भारत ग्रुप ए में थाईलैंड, हांगकांग और पाकिस्तान के साथ है। मौसम विभाग ने आज उड़ीसा में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, छत्तीसगढ़ और गंगेय पश्चिम बंगाल में भी तेज बारिश की संभावना है। बिहार, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, झारखंड और पूर्वोत्तर के कुछ राज्यों में ऐसी ही स्थिति रहने का अनुमान है। वहीं जम्मू कश्मीर, लद्दाख, तमिलनाडु और अंडमान निकोबार में भी तेज हवाएं चल सकती हैं। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं।
9: आकाशवाणी समाचार से जुड़े रहिए, expert@airnews हिंदी को फॉलो करें और ताजा खबरों के लिए newsonair.gov.in पर जाएं।
4: और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं नवीन सक्सेना।
10: धन्यवाद मुकेश। राजधानी दिल्ली से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों ने आज अलग अलग खबरों को अपने पहले पन्ने पर जगह दी है। नेपाल बाढ़ त्रासदी पर हिंदुस्तान ने लिखा है, भूटेकोशी नदी पर बनी नई झील में बढ़ रहा है पानी। अमर उजाला की सुर्खी है, जिंदगी बचाने का संघर्ष, भारत ने नेपाल के आग्रह पर भेजे 11 विशेषज्ञ। दैनिक भास्कर संघ प्रमुख मोहन भागवत के बयान को मुख पृष्ठ पर छापते हुए लिखता है, भारत में मुस्लिम नहीं होने चाहिए, ऐसा सोचने वाला हिंदू नहीं। पत्र ने कल जारी होने वाली प्रारूप मतदाता सूची पर सुर्खी दी है, दिल्ली की ड्राफ्ट वोटर लिस्ट से 47,70,000 मतदाता बाहर, दावा आपत्ति 30 सितंबर तक। राजस्थान पत्रिका ने फोमो इकोनॉमी, दिखावे में गैर जरूरी चीजों पर भी खर्च करने की आदत को सुर्खी बनाया है। पत्र लिखता है, जरूरत नहीं, पीछे छूटने के डर से हो रही युवाओं की जेब ढीली। खरीदने से पहले खुद से पूछें 3 सवाल, क्या मुझे इसकी जरूरत है? अगर ये आज उपलब्ध नहीं होता तो क्या मैं इसे फिर भी खरीदना चाहता? क्या मैं इसे अगले 7 दिन के बाद भी खरीदना चाहूंगा? सितारों से आगे देखने के लिए चिली में बन रहा दुनिया का सबसे बड़ा टेलीस्कोप, दैनिक जागरण की खबर है। पत्र लिखता है, 260 फीट ऊंचा होगा गुंबद, 128 फीट का मुख्य लेंस, 2030 तक अंतरिक्ष में झांकने लगेगा टेलीस्कोप। नवभारत टाइम्स ने पैकेट बंद खाद्य पदार्थों में हाई फैट, हाई शुगर, हाई सॉल्ट या हाईली स्वीटेंड बेवरेज जैसी चेतावनी को पैकेट के ऊपर लाल चेतावनी वाले स्टिकर के रूप में छापने की खबर को प्रकाशित किया है। लोकसत्ता ने भी इस खबर पर लिखा है, FSSAI ने सुप्रीम कोर्ट में कहा, अब दर्ज होगी चेतावनी, सावधान, इस पैकेट में नमक, शक्कर, तेल ज्यादा है।
4: धन्यवाद नवीन। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ताशकंद में उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शवकत मिर्जियोयेव के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। नेपाल में बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 675 हुई, 2,400 लोग लापता। नेपाल ने भूटेकोशी नदी के लिए बाढ़ की नई चेतावनी जारी की। विदेश मंत्रालय ने बताया, नेपाल से 108 भारतीय नागरिकों को सुरक्षित निकाला गया। बचाव दल सहित 11 टन राहत सामग्री की चौथी खेप भेजी गई। और महिला टी20 एशिया कप क्रिकेट में आज भारत का सामना थाईलैंड से। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम अभिषेक मुखोपाध्याय। द हेडलाइंस। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी टू होल्ड टॉक्स विद उज़्बेकिस्तान्स प्रेसिडेंट शफकत मिर्ज़ियोयेव इन ताशकेंट टुडे। Prime Minister to share his thoughts in Mann Ki Baat program on Akashwani at 11 this morning. Death toll from flash floods in Nepal rises to 675. Nearly 2,400 people still missing. Nepal issues fresh flood alert for Bhote Koshi River. External Affairs Ministry says 108 Indian nationals rescued so far. India sends fourth relief flight carrying 11 tons of humanitarian aid to Nepal. And in women's cricket, India to begin the T20 Asia Cup campaign against Thailand in Dubai this evening. Prime Minister Narendra Modi will hold bilateral talks with President of Uzbekistan Shavkat Mirziyoyev in Tashkent today. The two leaders will review cooperation in trade and investment, defense, digital connectivity, energy, education and people-to-people domains at the presidential palace. We have more from a correspondent.
1: Today, Prime Minister Narendra Modi will first attend a yoga program organized by Yoga Federation of Uzbekistan. And after that, he will directly go to the palace of Uzbekistan President Shavkat Mirziyoyev, where both the leaders will participate in bilateral talks. The leaders will review cooperation in the areas of trade and investment, defense, digital connectivity, energy, education, and people-to-people relations. Cooperation between the two countries is continuously increasing in the field of defense, but both the countries will focus on mining, especially rare earth minerals, metals like gold, other useful minerals. Besides this, the field of medicine, agriculture and skill development, as well as finding new avenues of connectivity, can be focus of discussion between the two leaders. Due to the Prime Minister's efforts, trade between the two countries has increased by 300% in the last 10 years. Together, the two countries are aiming to double the current $1 billion trade in the coming years. In this regard, some important agreements may be signed today. Sushil Chandra Tiwari, Akashwani News, Tashkent.
0: Prime Minister Modi reached Tashkent yesterday for his two-day visit to Uzbekistan. He was received by President Shavkat Mirziyoyev at the airport. The Prime Minister laid a wreath at Yangi Uzbekistan Park in Tashkent, honoring Uzbekistan's rich history, heritage and national spirit. Later, he was given a warm welcome by the Indian and Uzbek community in a traditional manner. Prime Minister Narendra Modi will share his thoughts with the people of the country and abroad in the Mann Ki Baat program on Akashwani at 11 a.m. today. It will be the 137th episode of the monthly radio program. The program will be broadcast across the entire Akashwani and Doordarshan network, the AIR news website and the news on AIR mobile app. It will also be live streamed on the YouTube channels of AIR News, DD News, the PMO and the Minister of Information and Broadcasting. Akashwani will broadcast the program in regional languages immediately after the Hindi broadcast. Bharatiya Janata Party has planned a series of community-focused gatherings across Gujarat for the 137th episode of Prime Minister Narendra Modi's Mann Ki Baat today, with senior party leaders set to listen to the program alongside youth, farmers, professionals and community members. According to party leaders, Chief Minister Bhupendra Patel will listen to the program in the Ghat Lodhia Assembly constituency in the Thal Tej area of Ahmedabad. State BJP President Jagdish Vishwakarma will attend a youth-focused gathering at Pramukh Arcade in Kudasan area of Gandhinagar. Union Jal Shakti Minister C.R. Patil will listen to the program with chartered accountants and company secretaries at the Surat City BJP office in Udhna. The BJP has accused the Congress of using the Dalit community as a political tool. Addressing a news conference in New Delhi, BJP national spokesperson Dr. Guru Prakash Paswan alleged that the Congress has a history of insulting the community. He said the Narendra Modi government, in contrast, has honored the legacy of B.R. Ambedkar by according pilgrimage status to places associated with him. BJP national spokesperson Dr. Sudhanshu Trivedi accused the Congress of seeking to divide Hindus for political gain.
2: It is quite clear what the real face of Congress is. Congress is raising issues like backward, forward and Dalit community. In reality, they are dividing Hindus for political gain.
0: Early in the day, senior Congress leader Rahul Gandhi had raised the issue of discrimination against Dalit community. Vice President C.P. Radhakrishnan will arrive in Keralam today for a two-day official visit. He will attend the Jubilee celebrations of the Kerala Komudi Daily in Alappuzha. Following this, he will inaugurate the Aranmula boat race in Pathanamthitta district. Defence Minister Rajnath Singh will address the industry conclave in Lucknow today. It has been organised under the PM Setu Yojana, where discussions will be held on topics related to skill development, entrepreneurship and vocational education. Before attending the conclave, Mr. Singh will listen to Prime Minister Narendra Modi's Mann Ki Baat program. He will also lay the foundation stones for 12 development projects worth 101 crore in the Lucknow cantonment area in the presence of Chief Minister Yogi Adityanath. This is Akashvani giving you the news.
3: For news at your fingertips, follow us on X at AIR News Alerts and join our WhatsApp channel, Akashvani News.
0: Nepal's flash flood death toll has risen to 675 as search and rescue operations continue amid renewed rainfall and fears of further flooding. Nearly 2,400 people remain missing, including at least 320 foreign nationals. More than 4,400 people have been rescued or evacuated, including 261 foreign tourists who had lost contact. Our correspondent has the details.
4: The Nepal police reported that 675 bodies have been recovered from 8 districts, with the highest numbers reported in Chitwan, Nawalparasi East and Nawalparasi West. Over 15,000 security personnel have been deployed, while helicopters are carrying out repeated sorties to rescue stranded people and deliver relief supplies. According to officials, in hard-hit Rasuwa district, search and rescue operations resumed yesterday after being temporarily halted because of rain and fog. Nepal government has issued fresh alert for flood in Bhote Koshi River and urged residents living along the river to remain cautious. National Disaster Risk Reduction and Management Authority has reported an increased flood flow in the river. Rasuwa District Administration said it has heard an increase in water flow and advised people in areas near the Bhote Koshi River in Rasuwa, Nuwakot and Dharding District to exercise caution. It said further updates will be provided as more information becomes available. The Bhote Koshi is a fast-flowing Himalayan river originating in Tibet. 7 people have also died on the Chinese side of the border, with more than 550 reported missing. The Mughling-Kathmandu Highway, a major road link connecting the capital with other parts of the country, reopened yesterday after remaining closed since Wednesday. But several other roads remain blocked or difficult to access. Vidyashasvi Kiryal, Akashvani News, Delhi.
0: An 11-member technical team from India carried out on-site reconnaissance of hydropower tunnels in Nepal's flood-affected areas yesterday to facilitate search and rescue of stranded individuals. The team, comprising doctors, paramedics and tunnel engineers, had arrived in Kathmandu on Friday. Yesterday, they reached Trishuli and Nuwakot districts to assist in efforts to rescue workers trapped in tunnel belonging to hydropower project. After completing an aerial survey of the Chilime and the Langtang areas, the Indian team began necessary rescue-related work around the tunnel area, according to the National Disaster Risk Reduction and Management Authority. The External Affairs Ministry has said that 108 Indian nationals have been rescued so far in Nepal following flash flood tragedy on Wednesday. In a social media post, External Affairs Ministry spokesperson Randeep Jaiswal said that the contact was re-established with around 50 Indian nationals who were earlier uncontactable. The ministry said that 275 Indian nationals are reportedly missing and around 128 people of Indian origin holding other nationalities also remain missing. As per local government source, 598 Indian nationals crossed into Nepal from China in the last 2 days. Meanwhile, 900 Indian nationals who are yet to depart from China are safe with Indian Embassy in Beijing, is in touch with them directly or through the local government. Government of India has offered the National Disaster Response Force to support Nepal's search and rescue efforts and also mobilized immediate humanitarian assistance with Indian Air Force aircraft carrying emergency relief material to Nepal. The fourth flight carrying 11 tons of relief assistance has landed in Kathmandu and relief material has been handed over to Nepal government. In a social media post, External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar said that the flight carried essential supplies and technical capabilities to support Nepal's ongoing rescue and relief operations. Earlier, India had sent more than 57 tons of emergency relief supplies in three flights. Union Finance and Corporate Affairs Minister Nirmala Sitharaman has said that as global companies reassess their supply chains and capital allocation, India offers not only the scale of a vast market, but also the depth of a long-term investment and operating platform. She made these remarks while addressing a high-level business roundtable with leading investors and business leaders in Chicago, United States. She highlighted India's broad-based growth, reform momentum, and expanding opportunities for long-term investment. Rashtriya Swayamsevak Sangh RSS Chief Mohan Bhagwat has said that a Hindu who believes Muslims should have no place in India ceases to be a Hindu, asserting that Hindutva recognizes the dignity of every human being and accepts different paths to the same truth. Speaking at the One World, One Humanity Faith Leaders Conference in New York, Mr. Bhagwat recalled a question posed to him by Muslims during a lecture series in Delhi in 2018, where he answered the same.
5: Every nation has a mission to accomplish. Every nation has a destiny to fulfill. What is the destiny given to Bharat? Bharat is there to realize and from time to time make the world realize this unity in diversity. We are one, and due to diversity, that oneness is decorated. So diversity has to be celebrated.
0: Mr. Bhagwat's remarks in New York came during the RSS centenary period. UAE's central bank has decided to conduct a special and urgent examination of the Banque Misr branches in the Emirates after the US Treasury flagged that the processed transactions potentially part of the Iranian shadow banking networks. Under Operation Economic Outcast, the US Department of the Treasury had proposed to revoke Banque Misr UAE's correspondent banking access to US financial institutions. This would effectively block U.S. dollar transactions for UAE branches of Egypt's second largest bank. In women's cricket, India will begin the T20 Asia Cup campaign against Thailand today at Dubai International Cricket Stadium. The match will start at 8:30 p.m. Indian time. Harmanpreet Kaur will lead India, while Smriti Mandhana will be the vice-captain. Union Minister of Youth Affairs and Sports Dr. Mansukh Mandaviya today participated in the 88th edition of Fit India Sundays on Cycle in New Delhi. The event was a special National Sports Day edition of the initiative organized in collaboration with BRICS at the Jawaharlal Nehru Stadium. Talking to media, Dr. Mandaviya said that cycling has become popular among citizens. The India Meteorological Department has issued red colour warning for heavy to very heavy rainfall with isolated extremely heavy rainfall over Odisha today. The IMD warning is for Baleshwar, Bhadrak, Kendrapara and Mayurbhanj, forecasting heavy to very heavy rainfall at a few places with extremely heavy rainfall at one or two places. And now for a look at today's newspapers, it's over to Shagun Chopra.
6: Thank you, Abhishek. Prime Minister Narendra Modi's visit to Tashkent is noticed prominently by the dailies. Modi flags shared vision in Tashkent, trade and culture to energy defense, headlines the Sunday Express. Hindustan Times quotes RSS Chief Mohan Bhagwat in New York City as saying, must respect and protect diversity. Finance Minister Nirmala Sitharaman urges global companies to build for world from India, states the Economic Times. On the flash floods in Nepal, the Asian Age headlines, Indian experts join rescue relief operations, Nepal lauds Modi, timely aid. And finally, special feeling, Harry Kane reacts after winning Germany's Footballer of the Year award, says the Sunday Statesman. And with that, it's back to you, Abhishek.
0: Thank you, Shagun. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi to hold talks with Uzbekistan's President Shavkat Mirziyoyev in Tashkent today. Prime Minister to share his thoughts in Mann Ki Baat program on Akashvani at 11 this morning. Death toll from flash floods in Nepal rises to 675. Nearly 2,400 people still missing. Nepal issues fresh flood alert for Bhote Koshi River. External Affairs Ministry says 108 Indian nationals rescued so far. India sends forth relief flight carrying 11 tons of humanitarian aid to Nepal. And in women's cricket, India to begin the T20 Asia Cup campaign against Thailand in Dubai this evening. And for details of these stories and more, log on to our website www.newsonair.gov.in and news on AIR app. And with that, we end the morning news. Have a nice day.
7: आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब, खबरनामे के साथ मैं शबाना बेगम। पहले इस वक्त की खास खास खबरें। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज ताशकंद में उज़्बेकिस्तान के सदर शौकत मिर्ज़ियोयेव से बातचीत करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी के प्रोग्राम मन की बात के जरिए अपने ख्यालात का इजहार करेंगे। नेपाल में अचानक सैलाब में मरने वालों की तादाद बढ़कर 675 हो गई है और 2400 अफराद अब भी लापता हैं। नेपाल ने भूटेकोशी नदी में सैलाब से मुतालिक ताज़ा वार्निंग जारी की है। वजारत खारजा ने कहा है कि नेपाल के अचानक सैलाब के हादसे में अब तक 108 भारतीयों को बचा लिया गया है। भारत ने नेपाल को इंसानी हमदर्दी के तहत 11 टन इमदाद पर मबनी चौथी खेप बजरिए तैयारा रवाना की है। और खवातीन क्रिकेट के T20 एशिया कप में आज शाम दुबई में भारत थाईलैंड के खिलाफ मैच के जरिए अपनी मुहिम की शुरुआत करेगा। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज ताशकंद में उज़्बेकिस्तान के सदर शौकत मिर्ज़ियोयेव से दो तरफा बातचीत करेंगे। दोनों रहनुमा सदारती महल में तिजारत और सरमायाकारी, दिफा, डिजिटल कनेक्टिविटी, तवानाई, तालीम और अवाम से अवाम के ताल्लुक से वाबस्ता शोबों में बाहमी ताउन का जायजा लेंगे। पेश है एक रिपोर्ट।
8: वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज सबसे पहले उज़्बेकिस्तान की योगा फेडरेशन के ज़ेर एहतमाम योगा प्रोग्राम में शिरकत करेंगे। इसके बाद वो उज़्बेकिस्तान के सदारती महल जाएंगे, जहां दोनों रहनुमा दो तरफा बातचीत में शिरकत करेंगे। दोनों रहनुमा तिजारत और सरमायाकारी, दिफा, डिजिटल कनेक्टिविटी, तवानाई, तालीम और अवाम से अवाम ताल्लुकात के शोबों में बाहमी ताउन का जायजा लेंगे। दोनों मुल्कों के दरमियान दिफा के शोबे में ताउन में मुसलसल इजाफा हो रहा है। अलबत्ता दोनों ममालिक कानकनी, खासतौर पर कमियाब मादनियात, धातों जैसे सोना और दीगर अहम मादनियात समेत अद्वियात के शोबे, ज़िरात और हुनरमंदी की तरक्की, नीज कनेक्टिविटी के नए मौके की तलाश जैसे शोबों पर भी तवज्जो मरकूज करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म की कोशिशों की बदौलत गुज़िश्ता 10 वर्षों में दोनों मुल्कों के दरमियान तिजारत में 300% का इजाफा हुआ है। दोनों ममालिक एक साथ मिलकर आइंदा वर्षों में बाहमी तिजारत को मौजूदा $1 अरब से बढ़ाकर 2 गुना करने का इरादा रखते हैं। इस सिलसिले में आज कुछ अहम माहदों पर दस्तखत किए जाने का इम्कान है। सुशील चंद्र तिवारी की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए जमीर रजवी।
7: वज़ीर-ए-आज़म जनाब मोदी उज़्बेकिस्तान के अपने 2 रोज़ा दौरे पर कल ताशकंद पहुंचे थे, जहां सदर शौकत मिर्ज़ियोयेव ने हवाई अड्डे पर उनका इस्तकबाल किया। वज़ीर-ए-आज़म ने ताशकंद के यंगी उज़्बेकिस्तान पार्क में उज़्बेकिस्तान की मालामाल तारीख, विरासत और कौमी जज्बे के एहतराम में गुलहाय अकीदत नजर किए। इसके बाद भारत और उज़्बेक बिरादरी ने रिवायती अंदाज में जनाब मोदी का गर्मजोशी से इस्तकबाल किया। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज दिन में 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात प्रोग्राम में मुल्क और बैरून मुल्क लोगों से अपने ख्यालात का इजहार करेंगे। ये महाना रेडियो प्रोग्राम का 137वां नशरिया होगा। ये प्रोग्राम आकाशवाणी और दूरदर्शन के तमाम नेटवर्क्स, एआईआर न्यूज की वेबसाइट्स और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी नशर होगा। इसे एआईआर न्यूज, डीडी न्यूज, वज़ीर-ए-आज़म के दफ्तर और इत्तला-ओ नशरियात की वजारत के यूट्यूब चैनलों पर बराह रास्त सुना जा सकेगा। हिंदी नशरिये के फौरन बाद आकाशवाणी से इस प्रोग्राम को इलाकाई जबानों में नशर किया जाएगा। बीजेपी ने आज वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के मन की बात की 137वें नशरिये के लिए पूरे गुजरात में समाज के मुख्तलिफ तबकात पर मरकूज जलसे मुनाकिद करने का प्रोग्राम तैयार किया है। पार्टी के सीनियर लीडर नौजवानों, किसानों, पेशावराना अफराद और समाज के मुख्तलिफ तबकात के अराकीन के साथ मिलकर मन की बात सुनेंगे। पार्टी के रहनुमाओं के मुताबिक वज़ीर आला भूपेंद्र पटेल अहमदाबाद के घटोलदिया असेंबली हलके में यह प्रोग्राम सुनेंगे। बीजेपी के रियासती सदर जगदीश विश्वकर्मा गांधीनगर के कोडासन इलाके में प्रमुख आर्केड में नौजवानों के लिए मुनाकिद एक प्रोग्राम में शामिल होंगे। जल शक्ति के मरकजी वजीर सीआर पाटिल सूरत शहर के उधना में वाक बीजेपी के दफ्तर में चार्टर्ड अकाउंटेंट्स और कंपनी सेक्रेटरीज के साथ मन की बात सुनेंगे। बीजेपी ने कांग्रेस पर दलित समाज को सियासी हरबे के तौर पर इस्तेमाल करने का इल्जाम लगाया है। नई दिल्ली में अखबारी कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए बीजेपी के कौमी तर्जुमान डॉक्टर गुरु प्रकाश पासवान ने इल्जाम लगाया कि दलित समाज की तौहीन करने की कांग्रेस की तारीख रही है। उन्होंने कहा कि इसके बरक्स नरेंद्र मोदी हुकूमत ने डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के विरसे की ताजीम के तौर पर उनसे वाबस्ता मकामात को मुकद्दस मकामात का दर्जा दिया है। बीजेपी के कौमी सदर डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी ने भी कांग्रेस पर अपने सियासी फायदे के लिए हिंदुओं में फूट डालने का इल्जाम आयद किया है। दफा 370 का हवाला देते हुए जनाब त्रिवेदी ने कहा कि 370 के इंतजाम में जम्मू कश्मीर में वाल्मीकि समाज के अराकीन के खिलाफ इम्तियाज पर मबनी डोमिसाइल पाबंदियां आयद कर रखी थीं।
9: अब यह बात बहुत साफ दिखाई पड़ती है कि कांग्रेस का असली चेहरा क्या है। कभी अगड़े पिछड़े का मुद्दा उठाना है, कभी सामान्य और दलित का मुद्दा उठाना है, हकीकत में एक ही एजेंडा है कि हिंदुओं को आपस में लड़ाना है और पीछे से मैकाले, मार्क और मौलाना के एजेंडा को आगे बढ़ाना है।
7: इससे पहले कांग्रेस रहनुमा राहुल गांधी ने दलित समाज के खिलाफ इम्तियाज से मुतालिक मामलात उठाए थे। नायब सदर सीपी राधाकृष्णन आज दो रोजा दौरे पर केरलम पहुंचेंगे। वो अलप्पुजा में एक नुमाया मलयाली रोजनामा केरला कौमुदी के 115वें यौम तासीस की तकरीब में शिरकत करेंगे। वो अरनमुला वाटर फेस्टिवल का भी इफ्तिताह करेंगे, जो कि केरलम की सबसे मशहूर और कदीम कश्तियों की दौड़ में से एक है। पंपा नदी में होने वाले सालाना कश्ती दौड़ के मुकाबले में 51 कश्तियां हिस्सा लेंगी। वजीर दिफा राजनाथ सिंह आज लखनऊ में इंडस्ट्री कॉन्क्लेव से खिताब करेंगे। पीएम सेतु योजना के तहत मुनक्किद होने वाले इस प्रोग्राम में हुनरमंदी के फरोग, एंटरप्रेन्योरशिप और पेशावराना तालीम जैसे मौजूदात पर तबादला ख्याल किया जाएगा। कॉन्क्लेव में शिरकत से पहले जनाब सिंह वजीर आजम नरेंद्र मोदी के मन की बात प्रोग्राम को सुनेंगे। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ के साथ वो लखनऊ कंटोनमेंट इलाके में 101 करोड़ रूपये के 12 तरक्याती प्रोजेक्टों का संग बुनियाद रखेंगे। ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है।
10: आपको हर खबर से रखे अपडेट, expert@AIRNews हिंदी और पब्लिक पर @AIRNews अलर्ट्स को फॉलो करें।
7: नेपाल में अचानक सैलाब में मरने वालों की तादाद 675 हो गई है। दोबारा शदीद बारिश और मजीद सैलाब के अंदेशों के दरमियान तलाश और बचाव का रवाई जारी है। तकरीबन 2400 अफराद लापता हैं, जिनमें से कम 320 गैर मुल्की शहरी हैं। 261 गैर मुल्की सयाहों समेत 4400 से ज्यादा अफराद को बचा लिया गया है। पेश एक रिपोर्ट।
11: नेपाल पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक 8 जिलों से 675 लाशें निकाली जा चुकी हैं, जिनमें सबसे ज्यादा तादाद चितवन नवलपरासी ईस्ट और नवलपरासी वेस्ट से है। 15,000 से ज्यादा सिक्योरिटी अहलकारों को तैनात किया गया है, जबकि सैलाब में फंसे हुए लोगों को बचाने और राहत का सामान पहुंचाने के लिए हेलीकॉप्टर मुतअद्दिद परवाजें कर रहे हैं। सरकारी ज़राए के मुताबिक तलाश और बदतरीन तौर पर मुतासर रसूबा जिले में कल बारिश और कोहरे के सबब बचाव कार्रवाई के आर्जी तौर पर रोके जाने के बाद तलाश और राहत रसानी की कार्रवाइयां दोबारा शुरू कर दी गई हैं। नेपाल हुकूमत ने भोटेकोशी दरिया में सैलाब के मद्देनजर ताजा अलर्ट जारी किया है और दरिया के करीब रहने वाले लोगों से एहतियात बरतने की अपील की है। रसूबा जिला इंतजामिया ने कहा है कि उसे पानी के बहाव में इजाफे के तनाजुर में रसूबा, नवाकोट और ढांढिंग जिलों में लोगों से इंतहाई एहतियात बरतने का मशवरा दिया है। चीन से मुतसिल सरहद पर भी 7 अफराद हलाक हुए हैं और 550 से ज्यादा लापता हैं। मिगलिंग काठमांडू शाहराह को कल से खोल दिया गया है, जो राजधानी को मूल के दीगर हिस्सों से जोड़ने वाली अहम सड़क है। अलबत्ता कई दीगर सड़कें अब भी बंद हैं या उनके रसाई में रखना है। न्यूज डेस्क की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं अब्दुल वाहिद।
7: वजारत खारजा ने कहा है कि नेपाल में बुध को आए अचानक सैलाब के सानहे के बाद अब तक वहां 108 भारतीय शहरियों को बचा लिया गया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में वजारत खारजा के तर्जमान रणधीर जायसवाल ने कहा कि तकरीबन 50 भारतीय शहरियों जिनका राबता मुनक़ते हो गया था, उनसे दोबारा राबता कायम कर लिया गया है। वजारत ने कहा कि 275 भारतीय शहरियों के लापता होने की खबर है, जबकि 128 भारत नजाद अफराद भी लापता हैं, जिनके पास दीगर ममालिक की शहरियत है। मकामी सरकारी जराये के मुताबिक गुज़िश्ता 2 दिनों में 598 भारतीय शहरी चीन के रास्ते नेपाल में पहुंच गए हैं। इस दौरान 900 भारतीय शहरी जिन्हें चीन से रवाना होना है, बीजिंग में भारतीय सफारतखाने में महफूज हैं और मकामी सरकार के जरिए या बराह रास्त राबते में हैं। इस दौरान भारतीय हुकूमत ने नेपाल के तलाश और बचाव की कार्रवाइयों में मदद के लिए आफात से निपटने के कौमी दस्ते को नेपाल भेजने की पेशकश की है। नीज भारतीय फजाइया के जरिए हंगामी इमदादी सामान नेपाल भेजकर फौरी इंसानी इमदाद भी फराहम की गई है। इस दौरान वजीर खारजा डॉ जयशंकर ने कहा है कि चौथी इमदादी परवाज C-130J हरक्यूलियस 11 टन इमदादी सामान के साथ कल काठमांडू के लिए रवाना किया गया है और इमदादी सामान नेपाल हुकूमत को सौंप दिया गया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में वजीर खारजा ने कहा कि इस परवाज के जरिए जरूरी अशिया और तकनीकी साजो सामान भेजा गया है ताकि नेपाल में जारी तलाश बचाव और राहत रसानी की कार्रवाइयों में मदद फराहम की जा सके। इससे पहले भारत ने 3 परवाजों के जरिए 57 टन से ज्यादा हंगामी इमदादी सामान नेपाल भेजा था। भारत की 11 रुकनी तकनीकी टीम ने कल नेपाल के सैलाब से मुतासर इलाकों में पनबिजली टनल्स का मौके पर जाकर मुआयना किया ताकि टनल्स में फंसे अफराद की तलाश और बचाव कार्रवाइयों में सहूलत फराहम की जा सके। डॉक्टरों, नीम तिब्बी अमले और टनल इंजीनियरों पर मुश्तमिल ये टीम जुमे को काठमांडू पहुंची। नेपाल की हुकूमत ने भोटे कोशी नदी में सैलाब के ताल्लुक से ताजा अलर्ट जारी किया है और नदी के आसपास के लोगों को चौकस रहने की अपील की है। नेपाल के नेशनल डिजास्टर रिस्क रिडक्शन एंड मैनेजमेंट अथॉरिटी की रिपोर्ट के मुताबिक नदी की तुगयानी में मजीद शिद्दत आई है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ RSS के सरबरा मोहन भागवत ने कहा है कि जो लोग ये समझते हैं कि भारत में मुसलमानों के लिए कोई जगह नहीं है वो हिंदू नहीं हो सकता। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि हिंदुत्व हर इंसान का एहतराम करता है और राह हक की तरफ जाने वाले मुख्तलिफ रास्तों को भी तस्लीम करता है। न्यूयॉर्क में एक दुनिया एक इंसानियत के मौजू पर मुख्तलिफ मजाहिब के रहनुमाओं की कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए जनाब भागवत ने मुसलमानों की जानिब से 2018 में दिल्ली में एक लेक्चर सीरीज के दौरान पूछे गए सवाल का भी हवाला दिया जिसमें उन्होंने यही जवाब दिया था। RSS के 100 साल मुकम्मल होने के मौके पर जनाब भागवत ने न्यूयॉर्क में ये बयान दिया है। मुत्तहिदा अरब अमारात की UAE सेंट्रल बैंक ने इमारात में बैंक के मिस्र की शाखों का फौरी तौर पर खसूसी मुआयना करने का फैसला किया है। अमरीकी ट्रेजरी की जानिब से मुमकिन तौर पर दरेपर्दा ईरानी बैंकिंग नेटवर्क लेन देन किए जाने के तनाजुर में ये कार्रवाई की गई है। भारत के महकमे मौसमियात ने आज ओडिशा में शदीद से बहुत शदीद बारिश और कुछ इलाकों में इंतहाई शदीद बारिश के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। महकमे मौसमियात के मुताबिक आज अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मेघालय, छत्तीसगढ़ और गंगा के मगरबी बंगाल के इलाकों में शदीद से बहुत शदीद बारिश मुतवक्का है। महकमा मौसमियात ने आज बिहार, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, मशरकी उत्तर प्रदेश, झारखंड, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, जैली हिमालयी मगरबी बंगाल, सिक्किम और विदर्भ में शदीद बारिश की पेशगोई की है। इसके अलावा महकमा मौसमियात ने आज जम्मू कश्मीर, लद्दाख, अंडमान और निकोबार जजायर, तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकाल में गरज चमक के साथ बिजली गिरने और तेज हवाएं चलने की भी पेशगोई की है। भारत आज थाईलैंड के खिलाफ मैच के साथ खवातीन के T20 एशिया कप में अपनी मुहिम का आगाज करेगा। ये मैच दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। ये मैच भारतीय वक्त के मुताबिक रात 8:30 बजे शुरू होगा। हरमनप्रीत कौर भारतीय टीम की कप्तानी करेंगी जबकि स्मृति मंदना नायब कप्तान होंगी। T20 एशिया कप में भारत ने शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा किया है। अब तक हुए 5 एडिशन में से 3 में भारत जीत दर्ज कर चुका है। और अब अखबारात के आईने के साथ हैं जमीर रजवी।
8: शुक्रिया शबाना। कौमी राजधानी दिल्ली से आज शाये होने वाले ज्यादातर उर्दू अखबारात ने मुख्तलिफ खबरों को नुमाया तौर पर शाये किया है। रोजनामा इनकलाब ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी के उज्बेकिस्तान दौरे के तहत ताशकंद पहुंचने की खबर को सफ़े अव्वल की शह सुर्खी बनाया है। वजीर आजम मोदी का ये उज्बेकिस्तान का चौथा दौरा है। 4 रोजा गैर मुल्की दौरे के तहत वजीर आजम मोदी उज्बेकिस्तान से किर्गिस्तान जाएंगे। वहीं रोजनामा इनकलाब ने वजीर दिफा राजनाथ सिंह के उस बयान को अपनी शह सुर्खी बनाया है जिसमें उन्होंने कहा है कि भारत तेजी से तरक्की की जानिब गामजन है। एक तकरीब से खिताब करते हुए जनाब सिंह ने कहा कि भारत आज मरीख तक पहुंच गया है और खला में प्राइवेट स्टेशन और इंसानी मिशन की जानिब कदम बढ़ा रहा है। रोजनामा प्रताप ने अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के उस बयान को अहमियत के साथ शाया किया है कि अमेरिका वेनेजुएला के साथ दुनिया के सबसे बड़े तेल माहदे पर पहुंच गया है जिससे वेनेजुएला के 65 बिलियन बैरल से ज्यादा तेल के जखायर पर अमेरिका का कंट्रोल हो गया है।
7: और अब खास खास खबरों की सुर्खियां।

0: घर घर तक पहुंचाएं आपका विज्ञापन, आकाशवाणी और दूरदर्शन के विभिन्न चैनल देश के किसी भी कोने में विज्ञापन देने के लिए प्रसार भारती के मार्केटिंग प्रभाग से संपर्क कीजिए।
1: श्रोताओं, कार्यक्रम का अगला गीत आपको सुनवा रहे हैं। फिल्म का नाम है अनुपमा, आवाज है लता मंगेशकर की और गीत लिखा है कैफी आजमी ने और धुन तैयार की है हेमंत कुमार ने। तो लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

जो आपको सुनवा रहे हैं वो है किशोर कुमार और लता मंगेशकर की युगल आवाजों में। फिल्म का नाम है सिलसिला और इस गीत के बोल लिखे हैं जावेद अख्तर ने और संगीत निर्देशन है शिव हरी का। तो लीजिए सुनिए कार्यक्रम का ये अगला गीत।

0: चंदन का एहसास।
1: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम गोल्डन हिट्स आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से। और अब कार्यक्रम का अगला गीत आपको सुनवा रहे हैं लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की युगल आवाज़ों में। फिल्म का नाम है असली नकली और इस गीत को संगीत दिया है शंकर जयकिशन ने और गीत लिखा है हसरत जयपुरी ने।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में फिल्म असली नकली का ये गीत। और अब

कार्यक्रम का अगला गीत आपको सुनवा रहे हैं। फिल्म का नाम है सहरा, आवाज है लता मंगेशकर की। इस गीत को लिखा है हसरत जयपुरी ने और इस गीत की धुन तैयार की है रामलाल ने। तो लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत लता मंगेशकर की आवाज में।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे लता मंगेशकर को फिल्म सहरा में, और उम्मीद करते हैं कि गीत आपको अच्छा लगा होगा। और अभी आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम गोल्डन हिट्स आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से। और कार्यक्रम का अंतिम गीत अब जो हमने लिया है, उस फिल्म का नाम है कश्मीर की कली। आवाज़ें हैं मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले की, और इस गीत को जो संगीत दिया है वो ओपी नैयर ने दिया है, और गीत लिखा है SH बिहारी ने। तो श्रोताओं, लीजिए पेश है कार्यक्रम का अंतिम गीत फिल्म कश्मीर की कली से। आवाज़ें हैं मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले की।

0: अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत का कार्यक्रम गोल्डन हिट्स। मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलोहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। 9:15 होने को हैं। अब आप सुनेंगे सामायिक चर्चा हमारे लखनऊ केंद्र से। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।
1: हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं 747 किलोहर्ट्ज़ पर। हमारा अगला कार्यक्रम थोड़ी ही देर में होगा। ये आकाशवाणी लखनऊ है, प्रस्तुत है सामयिक चर्चा।
2: सामयिक चर्चा, सामयिक चर्चा में आज आप सुनेंगे भारत सरकार की खिलौनों के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना के तहत उत्तर प्रदेश में हो रहे कामों पर सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विभाग के निदेशक और आयुक्त KV पांडियन से खास बातचीत। वार्ताकार हैं आकाशवाणी संवाददाता ओम अवस्थी।
3: भारत सरकार ने देश को एक वैश्विक खिलौना निर्माण के केंद्र के रूप में विकसित करने का लक्ष्य रखा है। इस विजन को धरातल पर उतारने में उत्तर प्रदेश एक अहम भूमिका निभा रहा है। इसमें प्रदेश का MSME विभाग किस तरह से YIDA और इन्वेस्ट UP के साथ मिलकर काम कर रहा है, कैसे प्रदेश वाराणसी और चित्रकूट के खिलौनों को तकनीक से जोड़कर विदेशों तक पहुंचा रहा है, साथ ही गुणवत्ता मानकों, नई तकनीक, ऑनलाइन बाजार, महिला उद्यमियों, स्टार्टअप और युवाओं को इस क्षेत्र में अवसर उपलब्ध कराने के लिए काम किया जा रहा है। इन्हीं सब पर बात करने के लिए आज हमारे साथ हैं उत्तर प्रदेश सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विभाग के आयुक्त और निदेशक KV पांडियन जी। सर, आकाशवाणी के कार्यक्रम में आपका स्वागत है।
4: नमस्कार।
3: भारत सरकार ने राष्ट्रीय खिलौना कार्य योजना के माध्यम से देश को वैश्विक खिलौना निर्माण केंद्र बनाने का लक्ष्य रखा है। इस कार्य योजना के क्रियान्वयन में उत्तर प्रदेश का MSME भाग क्या भूमिका निभा रहा है?
4: देखिए, उत्तर प्रदेश का MSME पूरे भारत का सबसे बड़ा सेक्टर के रूप से है। 96 लाख के ऊपर के MSME यहाँ रजिस्टर्ड है। लगभग 1 करोड़ का MSME यहाँ काम करते हैं और यहाँ तो तकरीबन 14-20% एक्सपोर्ट में उनका कॉन्ट्रीब्यूशन डायरेक्ट रहता है और बहुत सारे आइटम्स में 60-70% तक कॉन्ट्रीब्यूशन रहता है, वैसे कारपेट, टेक्सटाइल इत्यादि का। और यहाँ का जो उत्तर प्रदेश का ग्रोथ है ज्यादातर MSME ड्रिवन है। अभी डायरेक्टली इनडायरेक्टली 4 करोड़ से ज्यादा लोगों का रोजगार यहाँ MSME से मिलता है, इसलिए तो MSME का बेस उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा है, सबसे वाइडर है।
3: जी, राष्ट्रीय खिलौना कार्य योजना जो है सर, उसके तहत पारंपरिक जो खिलौने हैं उनको और जो आधुनिक खिलौने को निर्माण है उसके बीच किस तरह का तालमेल स्थापित किया जा रहा है और इसको और विकसित करने के लिए क्या योजना अपनाई जा रही है?
4: देखिए, उत्तर प्रदेश में बहुत सारे योजना चल रही है। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना उत्तर प्रदेश में 2018-19 से प्रारंभ हुआ है और उसके बाद पूरे प्रदेश में उसका अच्छा योजना के रूप से फैल गया था। इस पे हम लोग 162 प्रोडक्ट आइडेंटिफाई करते हैं ताकि यहाँ उत्तर प्रदेश में 75 जनपद है। हर जनपद में कम से कम एक प्रोडक्ट हम सेलेक्ट करते हैं और कुछ जनपद में 2-3 भी है। मान लीजिए वाराणसी में बनारस साड़ी भी है, वहाँ का वुडन टाइज भी है और वहाँ मीनाकारी वर्क भी है, इसी टाइप का मल्टीपल प्रोडक्ट भी है। उसी पे 162 आइटम को हम उसका पूरा वर्क करते हैं, प्रोडक्ट में, डेवलपमेंट में, इत्यादि में। उसमें बहुत सारे जगह हमारा ट्रेडिशनल टाइस भी है, यानी मान लीजिए तो लकड़ी से बना हुआ टाई है, आज का नहीं, सदियों से पूर्वजों ने कर करके जो अपने बच्चे के देते हैं। मान लीजिए बनारस में हमारा लकड़ी से बना हुआ टाई बहुत फेमस है, चासा चित्रकूट में भी बनता है, ये तो हमारा ट्रेडिशनल है। और कुछ नया सेगमेंट है, मान लीजिए झांसी हो गया, ललितपुर हो गया, वहाँ स्टफ्ड टाइस बनाते हैं और कुछ जगह मेरठ है, जलौन है और बाकी जगह हमारा स्पोर्ट्स का टाइस बनता है। मतलब ये एक आधुनिक टाई भी है, पुराना भी है, वो दोनों का हमें नाता निभाना है, दोनों का कनेक्ट करना है। उस पर कितने ट्रेडिशनल आर्ट मेकर्स है उन लोगों का हम नया तकनीकी हम समझाते हैं, कितने नया तरीके से टेक्निक कराने वाले उनको एक्सपोर्ट को जोड़ते हैं, इसी टाइप का हम दोनों को ब्रिज करने के एक तरफ MSME काम करते हैं।
3: जी, आपने वाराणसी के और चित्रकूट के पारंपरिक खिलौनों का जिक्र किया, तो इन्हें नई पीढ़ी और नए बाजारों से जोड़ने के लिए किस तरह की योजना अपनाई जा रही है?
4: देखिए, हमारा जो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में 4 तरह का हम इंटरवेंशन करते हैं। एक तो प्रोडक्ट एंड पैकेजिंग का इंटरवेंशन, जो पहले का जो कितने टेक्नोलॉजी कौन सी चीज में बना हुआ चीज है उसको प्रोडक्ट का बिल्कुल आधुनिक करते हैं, यानी जो यूज करने वाले पेंट से लेके, प्रोडक्ट से लेके, मेक से लेके हम ध्यान देते हैं। और दूसरा उसका पैकेजिंग का है, आज का जो पैकेजिंग बहुत मैटर करता है, जो पैकेजिंग अच्छा होता है उसका ही बिक्री अच्छा होता है, वो प्रोडक्ट के हिसाब से हम करते हैं। दूसरा एक वर्टिकल हम काम करते हैं, उस पर हम मार्केट एक्सेस देते हैं, यानी ऑनलाइन में जोड़ते हैं उनका, अमेजन फ्लिपकार्ट से लेके जो कितने आधुनिक जो प्लेटफॉर्म होता है उनसे मार्केटिंग का व्यवस्था कराते हैं। तीसरा इन लोग का फंडिंग का व्यवस्था कराते हैं। हम लोग 1.5 करोड़ यानी 1.5 करोड़ तक का इस योजना का जो करने वाले का लाभ मिलता है, उससे 50 लाख तक हम सब्सिडी देते हैं, फाइनेंस से जोड़ते हैं और उनका जगह भी चाहिए उसी के हिसाब से जगह भी व्यवस्था कराते हैं। इसी टाइप का हम चार वर्टिकल में हम काम करते हैं ताकि जो प्रोड्यूसर है उनका जो प्रोडक्ट से लेके मार्केटिंग से लेके फाइनेंस से लेके इवन जो उनका जगह है उसी के लेके जो भी समस्या है सबको एड्रेस कराते हुए आगे बढ़ते हैं। अब तक लगभग 7 लाख लोग का हम इस पे आगे हम बढ़वा चुके हैं इस योजना
3: जी। आपने पारंपरिक कारीगरों के लिए जो सुविधाएं दी जा रही है उसकी जिक्र किया, तो हमें ये बताएं कि जो आधुनिक डिजाइन है और पैकेजिंग है इसके साथ साथ ऑनलाइन बिक्री से जोड़ने के लिए किस तरह का प्रयास किए जा रहे हैं?
4: देखिए आज का मैक्सिमम जो डोमेस्टिक मार्केट कहते हैं यानी इंडिया का अंदर जो खरीदने वाले हैं मैक्सिमम अभी ऑनलाइन में ही खरीदना पसंद करते हैं। और आज का 2-3 फेमस वेबसाइट है पॉपुलर है जो अमेजॉन फ्लिपकार्ट है ONDC है और बाकी मिंत्रा बहुत सारे वेबसाइट्स। हम क्या करते हैं जो हमारा जो कितने भी जो पारंपरिक प्रोड्यूसर्स है उनका प्रोडक्ट का स्टैंडर्डाइज कराते हुए इसी प्लेटफॉर्म में हम लोग ऑनबोर्ड कराने के लिए प्रयास करते हैं। 2-3 लोग के साथ हमारा डीप MOU भी साइन हुआ है। मान लीजिए फ्लिपकार्ट के साथ हमारा एक माइक्रो वेबसाइट बनाने के लिए भी एक MOU साइन हुआ है। फ्लिपकार्ट में अभी एक ODOP के लिए अलग फ्लिपकार्ट ने एक साइट ही बना रखा है और DTDC के साथ भी हमारा टाई अप है। DTDC तो कहीं भी पहुंचाना तो वो पहुंचा देता है। फिर यहाँ पोस्टल के साथ भी हमारा टाई अप है, पोस्टल भी कहीं भी किसी कोने से लेकर के एक जगह पोस्टल का पहुंचा देता है। इसी टाइप का जो कितने भी माध्यम हम अपना सकते हैं उतने अपनाते हैं ताकि हमारा प्रोडक्ट जो गांव में बनाते हुए प्रोडक्ट भी आज के शहर में और इवन विदेश में जो रहने वाले कस्टमर का भी ग्राहक का भी पहुंच जाए।
3: जी आपने जिक्र किया वित्तीय सहायता का, तो खासकर जो इस खिलौना बनाने के जो कारीगर हैं उनको किस तरह से प्रशिक्षित किया जा रहा है और किस तरह की वित्तीय सहायताएं उपलब्ध कराई जा रही है विभाग की ओर से?
4: देखिए प्रशिक्षण एक अहम भूमिका निभाता है प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग प्रशिक्षण। हम तो 3-4 तरह का योजना के अंदर प्रशिक्षण करते हैं। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में हमारा 10 दिन का प्रशिक्षण अनिवार्य है। जो कितने लाभार्थी होते हैं उनका प्रशिक्षण हम लोग आधुनिक इंस्टीट्यूट से देते हैं। मान लीजिए हमारा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पैकेजिंग हो गया और निफ्ट हो गया, जो कितने इंस्टीट्यूट है हमारा नेशनल लेवल का जो ग्रेडर इंस्टीट्यूट है उनके माध्यम से हम ट्रेनिंग देते हैं ताकि एक अच्छा मॉडर्न टेक्नोलॉजी समझ लें। दूसरा योजना हमारा विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना, उसका अंदर जो 25 ट्रेड हैं मालाकार से लेके मूर्तिकार से लेके बहुत सारे ट्रेडिशनल ट्रेड्स हैं उन लोगों को भी 10 दिन का हम रेजिडेंशियल ट्रेनिंग देते हैं, वो भी एक अच्छा इंस्टीट्यूट के साथ टाई अप कराते हुए देते हैं। ये 2 योजना तो हम करते हैं। उसके अलावा अनुसूचित जाति लोग का और पिछड़ा वर्ग जो लाभार्थी का अलग ट्रेनिंग 4 महीने का कोर्स हम कराते हैं। उसके साथ साथ हम लोग स्किल डेवलपमेंट के साथ भी टाई अप कराते हुए करते हैं और भारत सरकार का संस्था के माध्यम से भी टाई अप कराते हुए करते हैं। इसलिए स्किलिंग का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है। स्किलिंग में बहुत सारे चीज वो अपग्रेड कर देता है और स्किलिंग के बाद साथ साथ हम लोग RPL सर्टिफिकेट एक इश्यू कर यानी रेगनेशन ऑफ प्रेयर लर्निंग उनका सर्टिफिकेट मिल जाता है। मान लीजिए ट्रेडिशनल जो उसका कार्मिक होगा आर्टिसन होगा कारीगर होगा उनके हाथ में सर्टिफिकेट नहीं रहता है, उसके वजह लोन नहीं मिल पाता है, इंस्टीट्यूशनल इसलिए नहीं आ पाते हैं। हम लोग उनका RPL सर्टिफिकेट दिलाते हैं, उसी की वजह उनका आगे भी भविष्य के लिए एक अच्छा एक रास्ता खुल जाता है।
3: जिस तरह से आपने बताया कि बहुत सारा फोकस करके प्रशिक्षण दिया जा रहा है, तो जो युवा उद्यमी इस खिलौना निर्माण के बिजनेस में आना चाहते हैं या खिलौना निर्माण शुरू करना चाहते हैं उनके लिए सरकार की कौन कौन सी सुविधाएं हैं और खासकर प्रोत्साहन राशि के तौर पर जैसे आपने लोन का जिक्र किया ऐसे कौन कौन सी प्रोत्साहन दिए जा रहे हैं उसके बारे में?
4: उत्तर प्रदेश के MSME विभाग ऐसे विभाग है तकरीबन 7 योजना हमारा है तो आप लाभ ले सकते हैं। खासतौर पे स्टार्टअप कंपनी है और नया पीढ़ी किस पे आने चाहते हैं ताकि इस पे मोटा मोटा बता दूं, ये जो आपका जो खिलौना का जो बिजनेस है वो इसका इंडिया का जो बिजनेस है $1.9 बिलियन का मार्केट है अभी इस समय में वर्तमान समय। अभी आने वाले तो 3 साल में ये बढ़ने वाले $4.6 बिलियन का और इसका हर साल कम से कम 10% बढ़ोतरी के हिसाब से बढ़ रही है। यानी ये सेक्टर फ्यूचरिक सेक्टर है और एक इसका मुनाफा भी अच्छा खासा होने वाली है। और इस पे और एक अच्छाई भी है जो पहले बहुत सारे प्रोडक्ट चाइना से बाकी कंट्री से इंपोर्ट होता था वो अभी इंपोर्ट भी कम होने लगा ताकि लोकल में बहुत सारे मैन्युफैक्चरर्स उसका मार्केट के कैप्चर करना शुरू कर दिए। अभी फिलहाल हमारा डोमेस्टिक प्रोडक्शन जो इंपोर्ट के लिए मेरा $370 मिलियन पिछले साल था, इस साल घट के हमारा 230 हो गया, वो घट रही है। यानी जो लोकल का डोमेस्टिक प्रोडक्शन बढ़ रही है। इसे ध्यान रखते हुए कोई भी स्टार्टअप है कोई भी युवा शुरू करने चाहते हैं मैं सलाह देता हूँ, एक हमारा स्कीम है CM युवा योजना, उसका अंदर 5 लाख का लोन आपका बिना ब्याज का बिना गारंटी का मिल जाता है। कोई भी व्यक्ति 21 साल से 40 साल के बीच में कोई भी व्यक्ति और केवल कक्षा 8 पास हो वो एलिजिबल है, ऑनलाइन में आराम से अप्लाई कर सकते हैं। उस पे आपका कोई ब्याज नहीं लगता है, 4 साल का ब्याज 0 है और आपका कोई गारंटी भी नहीं लगेगा और ओवर एंड अबो 10% आपको सब्सिडी भी सरकार देती है। यानी आप लेते हैं हमसे 5 लाख रुपया, आप वापस करते हैं केवल 4.5 लाख रुपया 4 साल के अंदर इस किस्त में। ये तो 5 लाख तक का है, उससे ज्यादा किसको चाहिए? मान लीजिए 10 लाख का किसी का योजना चाहिए, विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना में 10 लाख तक का ब्याज मुक्त योजना है, उस पे भी ले सकते हैं, उस पे भी आपका 10% का अनुदान मिलेगा। और आप किसी का 25 लाख चाहिए, उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के अंदर 25 लाख तक का आप लाभ ले सकते हैं, और ज्यादा भी बड़े स्केल में करना है प्रधानमंत्री स्वरोजगार योजना उसमें 50 लाख तक का आप आराम से बिना गारंटी का कम सस्ते वाले ऋण का आप लोन ले सकते हैं। यदि आपको बड़े बिजनेस कराना है उसको 20 करोड़ तक का सिडबी के माध्यम से वेंचरिंग कैपिटल का लोन आपको दिला दे। इसलिए 5 लाख के लेके अब 20 करोड़ तक का अनेक योजना है, अब किसी भी लेवल पे एंट्री के हिसाब से आपका स्केल के हिसाब से आप उसको प्राप्त कर सकते।
3: महिला उद्यमियों और स्टार्टअप्स को इस क्षेत्र में आगे लाने की क्या कोई विशेष पहल की गई?
4: एमएसएमई में देखेंगे, एमएसएमई सेक्टर बेसिकली महिला ड्रिवन सेक्टर है उत्तर प्रदेश में, खासतौर पर 70-80% हमारा जो इंडस्ट्री है महिला से बैकअप है। खासतौर पर ODOP सेक्टर है, इसमें 80% महिला इन्वॉल्व है, एंड महिला जो नेचुरली वो आर्टिस्टिक रहते हैं उस पर, इसलिए तो बहुत सारे प्रोडक्ट हमारा टेक्सटाइल रिलेटेड प्रोडक्ट में उनका आधुनिक कॉन्ट्रीब्यूशन है, इसलिए नेचुरली हम महिला के इसको आगे करते हुए ले जा रहे हैं। उनको नेचुरल रुचि भी है तो साथ साथ बहुत अच्छा काम भी करती है, और साथ अकेले हमारे विभाग नहीं, उस पे और एक विभाग का जो है NURLM कहता है नेशनल लाइवलीहुड मिशन का एक स्कीम चलता है, लखपति दीदी का योजना एक चलता है, उसमें भी बहुत सारे महिला समूह इसी से जुड़े हुए समूह को भी हम लोग बनाने के लिए मदद किए। उन लोग महिला समूह बनने के बाद हम इंडस्ट्री विभाग मिलते हुए उनका प्रोडक्शन लाइन में आगे ले चलते हैं इसमें, इसलिए महिला का ड्रिवन और महिला बेस्ड सेक्टर ही है ये, इसलिए जो महिला का हमेशा आगे।
3: जी आपने जैसे कहा कि स्वयं सहायता समूह को भी जोड़ा जा रहा है और वो भी आगे रहे, तो एमएसएमई विभाग जीडा और इन्वेस्ट यूपी और अन्य विभागों के साथ मिलकर ये खिलौना उद्योग के इकोसिस्टम को कैसे विकसित करने में मदद कर रहा है?
4: देखिए एमएसएमई और सारे जो नोएडा गीड़ा में क्या है ना, ये जो भी सेक्टर डेवलप होता है क्लस्टर में डेवलप होता है। मान लीजिए हमारा जो वेस्टर्न यूपी का है क्लस्टर है, खासतौर पे मीरठ एंड अराउंड मीरठ, हमारा गाजियाबाद के आसपास अच्छा खासा एक स्पोर्ट्स का क्लस्टर बनी हुई है, स्पोर्ट्स के साथ साथ स्पोर्ट्स से रिलेटेड टाइस का भी वहां क्लस्टर बन गया है नेचुरली। और दूसरा क्लस्टर है हमारा वाराणसी मिर्जापुर से सटा हुआ इलाका में और चित्रकूट से सटा हुआ इलाका में, ये ट्रेडिशनल लकड़ी से बना हुआ क्लस्टर है, ये अच्छा से उभर के आ रही है वहां नेचुरली, वहां बहुत सारे लाखों संख्या में आर्टिजन इस पे शामिल है। और यहाँ बुंदेलखंड रीजन में झांसी और चित्रकूट और ललितपुर इसी सेक्टर में सॉफ्ट टाइस का बनते हुए जो खिलौना है वो सेक्टर बन रहा है। हम लोग जो मेनली क्या है ना, जो जगह जगह पे मान लीजिए वेस्टर्न यूपी में ग्रेटर नोएडा, नोएडा और ईडा, ये तीनों लोग का प्रेजेंस अच्छा खासा है, उन लोगों के इंडस्ट्रियल स्टेट भी है, और उन लोगों के पॉलिसी में हम रिक्वेस्ट भी किए हैं बहुत सारे पॉलिसी में इन लोगों का जो टाई मैन्युफैक्चरिंग का कुछ आरक्षण कराने के लिए और साथ साथ सब्सिडी देने के लिए भी हम प्रयास कर रहे हैं, और आगे भारत सरकार का पॉलिसी कब भी आएगा उसको अपनाएंगे, और राज्य सरकार भी जल्दी पॉलिसी बनने के स्थिति पे है, यदि हमारा टाई मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी बन जाएगा। अभी फिलहाल एमएसएमई पॉलिसी के हिसाब से हम आच्छादित कर रहे हैं उनको, जो भी लोग टाई मैन्युफैक्चरिंग में इन्वॉल्व है उनका जो जमीन खरीदने वाले में 100% स्टैंप का छूट मिलता है, और 25% हम कैपिटल सब्सिडी देते हैं, कितने भी उनका इक्विपमेंट्स लगा हो उसको कैपिटल सब्सिडी मिलता है, और यहां से कोई भी एक्सपोर्ट करता है एक्सपोर्ट का चार्ज 100% गवर्नमेंट रीइंबर्स करती है। ये फिलहाल जो भी एमएसएमई सेक्टर है इतने तो वो ले सकते हैं, और साथ साथ हम ईडा से, नोएडा से, ग्रेटर नोएडा से मदद लेते हैं इन लोग का अलाटमेंट में, जमीन अलाटमेंट, किसी को जमीन चाहिए उनका अलाट करने के लिए कोई दिक्कत है तो फिर उसको कोऑर्डिनेट कराते हैं, उनकी जमीन भी अलाट करवा।
3: आपने नोएडा का जिक्र किया तो वहां पे जेवर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भी शुरू हुआ है, तो बेहतर लॉजिस्टिक नेटवर्क बनाने में ये किस तरह से मदद कर रहा है?
4: देखिए जेवर तो एशिया का वन ऑफ द बिगेस्ट एयरपोर्ट के रूप से उभर के आ रहा है, और सबसे बड़ा ये कमर्शियल कार्गो टर्मिनल का भी प्लानिंग चल रहा था। आप जान ही रहे हैं वहां का जो नोएडा, ग्रेटर नोएडा के आसपास इलाका का एक वरदान है जेवर एयरपोर्ट, और साथ साथ हमारा टाई मैन्युफैक्चरिंग का एमएसएमई का भी वरदान है, ताकि हमारा एक्सपोर्ट में ज्यादातर क्या होता है लाजता कि हम लैंडलॉक्ड स्टेट है, ताकि हम तो चारों तरफ लैंड से बंधे हुए हैं, हमें एक्सपोर्ट करने के लिए दो ही माध्यम है, यदि तो हम फ्रीट कॉरिडोर माध्यम से मुंबई तक का हमारा पोर्ट तक पहुंचाना पड़ता है, नहीं तो लाइट वेट होता है हमारा हवाई अड्डा के माध्यम से भेज सकते थे। अब ये एयरपोर्ट का कार्गो फ्रीक्वेंसी बढ़ने की वजह हमारे एक्सपोर्ट का जो अपॉर्चुनिटी है बहुत गुना बढ़ गया है। अभी तो सॉफ्ट आइस है, स्टफ्ड आइस है, जो कितने लाइट वेट टाइस है, आराम से हम हाई वैल्यू आइटम के साथ साथ एक्सपोर्ट कर सकते हैं, ये एक तरफ वरदान है हम लोग का, इस पे अच्छा से लिवरेज करेंगे।
3: आपके अनुसार कौन से उत्तर प्रदेश के जिले हैं जो भविष्य में खिलौना निर्माण के बड़े केंद्र के रूप में उभरेंगे?
4: देखिये इस पे दो क्लस्टर में नेम कर सकता हूँ। ट्रेडिशनल रूप से वाराणसी एक नेचुरल क्लस्टर के रूप से उभर के आ रहा है, और वहां भी एक इंटरनेशनल एयर कार्गो बन रहा है, इसलिए वहां से एक्सपोर्ट करने की भी संभावना ज्यादा है। वाराणसी अपने आप अपने ट्रेडिशनल आर्ट एंड क्राफ्टशिप के लिए पहचान है, लाखों लोग पहले से जुड़ चुके हैं, इसलिए उसका अच्छा अपॉर्चुनिटी है। और नया जो आधुनिक टाइज जाने के लिए वो नोएडा एंड अराउंड का एक अच्छा अपॉर्चुनिटी हब बन रहा है मेरा, जो मीरठ के आसपास स्पोर्ट्स के भी कुछ आइटम्स वो इस पे खिलौना में कन्वर्ट हो रहा है, और साथ साथ हमारा अपैरल का भी अच्छा बड़ा क्लस्टर है, इसलिए जो अपैरल से जुड़े हुए चीज को भी हम इसके खिलौना में कन्वर्ट करने के लिए अच्छा अवसर, ये दो हमारा उभरते हुए क्लस्टर के रूप से आ रहा।
3: सर आपने बताया कि जिस तरह से बड़े क्लस्टर के रूप में ये निकल रहे हैं, तो युवाओं के रोजगार के रूप में आप देखते हैं ये पूरा क्षेत्र कितना है रोजगार आने वाले दिनों में जो है उत्तर प्रदेश में विकसित करेगा?
4: देखिए एमएसएमई का एक एवरेज एक रेशियो होता है, एक छोटी सी भी माइक्रो यूनिट के टाइनी यूनिट्स कहते हैं, वो भी तो 4 लोगों को रोजगार देता, और औसत हमारा एमएसएमई यूनिट का 7 लोगों का रोजगार देने के लिए। अब मान लीजिए हमारा इसी सेगमेंट में 1,00,000 भी यूनिट हमारा इस पे टाई मैन्युफैक्चर में खुल जाएगा, कम से कम 7,00,000 से लेकर 10,00,000 लोगों का आराम से 1 साल के अंदर उन लोगों को रोजगार मिल सकता है 1 साल में, और भविष्य में कम से कम मान के जा रहा हूं तो 50 से 60 लाख युवा के लिए रोजगार देने का अवसर इस पे है अवेलेबल।
3: निश्चित रूप से आपने जैसे बताया उत्तर प्रदेश खिलौना निर्माण के केंद्र के रूप में उभरेगा और बड़ी संख्या में रोजगार भी देगा। आकाशवाणी समाचार से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर।
4: बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।
2: सामयिक चर्चा में अभी आप सुन रहे थे भारत सरकार की खिलौनों के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना के तहत उत्तर प्रदेश में हो रहे कामों पर सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विभाग के निदेशक और आयुक्त KV पांडियन से खास बातचीत। वार्ताकार थे आकाशवाणी संवाददाता ओम अवस्थी।
1: आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से
0: मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलो हर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। लोक संगीत के कार्यक्रम धरती गाती है, इसमें आपको सुनवा रहे हैं बीना के गाए रुहेल खंडी लोकगीत।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे हैं बीना के गाए रुहेलखंडी लोकगीत कार्यक्रम धरती गाती है, मैं आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे हैं कार्यक्रम धरती गाती है के अंतर्गत बीना के गाए रुहेलखंडी लोकगीत आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम धरती गाती है, इसमें आपको सुनवा रहे थे बीना के गाए रुहेलखंडी लोकगीत। मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलो हर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। सवेरे के 10 बज रहे हैं। श्रोताओं, लीजिए पेश है पत्रों और व्हाट्सएप मैसेजेस पर आधारित फिल्मी गीतों का फरमाइशी कार्यक्रम गीत तुम्हारे। गीत तुम्हारे सुनने वाले सभी श्रोताओं को हमारा प्यार भरा नमस्कार। और कार्यक्रम में आज मैं हूं आपके साथ रिमझिम बलूनी, और
1: मैं रिमझिम बलूनी के साथ आपका रेडियो साथी मनोज वर्मा। तो रिमझिम आपको भी मेरा नमस्कार, और
0: नमस्कार।
1: मेरे सभी श्रोताओं को मेरा प्यार भरा नमस्कार। लीजिए एक बार फिर हाजिर हैं आज के इस अंक में आपके साथ। कार्यक्रम का नाम आप जानते ही हैं, गीत तुम्हारे, और ये कार्यक्रम व्हाट्सएप मैसेजेस पर है आपकी पसंद के गीतों को सुनवाने का। क्यों रिमझिम?
0: जी जी बिल्कुल।
1: तो इससे पहले कि कार्यक्रम को हम शुरू करें, जरा सा नंबर बता दीजिए आप।
0: जी, कार्यक्रम में मैसेज करने के लिए जो नंबर है वो है 9457078288। नंबर एक बार फिर से बता देते हैं, हमारे श्रोता नोट कर लेंगे, नंबर है 9457078288।
1: और अगर हिंदी में इसको बोलें तो 94-570-78-288 ये हमारा याद करने वाला नंबर है। और हमारे श्रोताओं को बिल्कुल ऐसी उम्मीद है कि हमें कि नंबर पूरी तरीके से याद होगा, लेकिन हाँ, ये हमारा फर्ज बनता है कि जो हमारे श्रोता आज नए जुड़ रहे हैं उनके लिए हम अपने नंबर को बता दें, ताकि वो हमसे हाथों हाथ जुड़ जाएं। और लगातार मैसेज का सिलसिला एकदम शुरू हो चुका है, तो रिमझिम शुरू कर दें।
0: जी बिल्कुल।
1: तो मैं सबसे पहले लेना चाह रहा हूं अपने श्रोताओं के मैसेजेस, और ये मैसेज मुझे मिला है सबसे पहले जो खुश नसीब हैं आज के इस कार्यक्रम के गीत तुम्हारे के, वो हैं शेरवानी स्कूल गंजुंडवारा से आफ्ताब अंसारी, रियाज अंसारी, मोहम्मद कैफ, अनवर मास्टर, लुबना अंसारी और आलिया अंसारी। इसके अलावा इस गीत को सुनने के ख्वाहिशमंद भाई आप भी हैं, और ये मैसेज बिल्कुल अभी मिला है हमें, और कह रहे हैं कि साहब आप हमें शामिल करिएगा। तो बिल्कुल शामिल करने के लिए तैयार हैं आप, और आपको हम शामिल कर रहे हैं, अपने सभी श्रोताओं को शामिल करेंगे बिल्कुल। खेल बाजार पानीपत के श्रोता हैं ये हमारे, नरेश मल्होत्रा, नीटू, लक्ष्य मल्होत्रा, लाडो कोयल मल्होत्रा, पापा जी नानक चंद मल्होत्रा, शिवाजी कॉलोनी रोहतक से पीयूष सिक्का, कोयल सिक्का, डुग्गू भाविका और इनका पूरा परिवार। इसके अलावा इस गीत को सुनने के ख्वाहिशमंद, देखिए ये हमारे श्रोता बिल्कुल अभी जुड़े हैं, ये हैं नाज पैलेस अजमेर शरीफ के श्रोता हैं हमारे, सैयद आलम हाशमी, गुलनाज सलमा हाशमी, असद अरहाम हाशमी और मोहम्मद आलम हाशमी। इसके अलावा इस गीत को सुनने के ख्वाहिशमंद बिल्कुल अभी हमारे साथ ये जुड़ रहे हैं, मोहल्ला धर्मदास नजीबाबाद के श्रोता हैं हमारे, गुलाम हसन, निशात मानो, मोहम्मद सलमान, मोहम्मद फरमान, साबरा खातून, शहजादी शराफत अली, अब्दुल रहमान और रानी बिटिया मदीहा भी इनके साथ जुड़ी हुई हैं। इसके अलावा देखिए लगातार मैसेज हमें मिल रहे हैं, ये मैसेज है हमारे पास में, अजीत कसाना, माया देवी, ऋतिक और आदित्य कसाना ग्राम और पोस्ट लदावली जिला मुरादाबाद के हैं। इसके अलावा इस गीत को सुनने के ख्वाहिशमंद देखिए ये भी हैं, और ये मैसेज मुझे मिल रहा है टैगोर गार्डन नई दिल्ली से, रविंद्र सिंह छाबड़ा, इंद्रजीत कौर छाबड़ा और स्वीटी छाबड़ा का। इसके अलावा इस गीत को सुनने के ख्वाहिशमंद देखिए हमारे श्रोता ये भी हैं, गांव फ्रांसी जिला हिसार के श्रोता हैं राजकुमार डूडी, प्रमोद कुमार डूडी और पुष्पेंद्र कुमार डूडी भी इनके साथ जुड़े हुए हैं। इसके अलावा इस गीत को सुनने के ख्वाहिशमंद देखिए ये हमारे श्रोता हैं बिल्कुल अभी जुड़े हैं हमसे, मोहम्मद वकार फरीदी, इकबाल फरीदी, सितारा बेगम, नसरीन परवीन, रोजी परवीन, बिट्टू भैया, साजदराने, हिना कौसर, मोहल्ला हलवाइयान, शेरकुट जिला बिजनौर के श्रोता हैं। इसके अलावा इस गीत को सुनने के ख्वाहिशमंद देखिए भाई आप भी हैं, कौन है, जेवरा हिसार से वीरेंद्र भयाण, सुरेंद्र शमशेर और मनोज भयाण के साथ में इनका पूरा परिवार। इसके अलावा इस गीत को सुनने के ख्वाहिशमंद देखिए भाई आप भी हैं, ये मैसेज मुझे मिल रहा है, जी हाँ यहां से लेते हैं इसको, आर्यनगर कोहका भिलाई से उत्तम सिंह जंघेल, मोरस अनिल, अजीत, आयुष, नंदिनी, धमधा ग्राम सुखरी कलां से अमित जंघेल, शकुन, आरुषि, ओशिका और अंजलि जंघेल। इसके अलावा इस गीत को सुनने का ख्वाहिशमंद भर देखिए आप भी हैं, कौन है भला, तो आप हैं चंडीगढ़ सिटी के श्रोता हैं, देखिए बिल्कुल अभी जुड़े हैं, सतीश अनेजा, विमला अनेजा और इनका पूरा परिवार, ये मैसेज मुझे मिल रहा है। कोटवा नारायणपुर बाबा पट्टी बलिया से ओम प्रकाश रॉय, श्रीमती उषा रॉय, अमित कुमार रॉय, हैप्पी रॉय, दुबिहा निवादा जिला गाजीपुर के प्रतीक रॉय, श्रीमती रोशनी रॉय और प्रांजल रॉय भी इनके साथ जुड़े हुए हैं। इसके अलावा ये मैसेज मैं ले रहा हूं और हाँ, ग्राम मीरमपुर बेगा पोस्ट मंडावली तहसील नजीबाबाद जिला बिजनौर के श्रोता हैं भाई, कासिम पेंटर, मोहम्मद ओवेस, मोहम्मद कैफ, मोहम्मद सैफ, मोहम्मद उबैद, अब्दुल हादी और डॉक्टर बीजे के अलावा उनके बहुत सारे साथी भी इनके साथ जुड़े हुए हैं और ये मैसेज मुझे मिला है। बिल्कुल देखिए, अभी स्वर्ण सिंह गांव दौलेवाला जिला मोगा पंजाब से भाई, और भी नाम लिखिएगा, दो चार तो लिखिएगा, परिवार के नाम एक नाम पढ़ा हमने आज ये। खैर कोई बात नहीं है, लगातार हमारे श्रोता जुड़े हुए हैं हमसे। और अब भाई बारी रिमझिम की है, रिमझिम के हाथों में कुछ खत हैं तो रिमझिम पढ़ने के लिए तैयार है
0: जी। ये पत्र हमें मिला है महादेव घाट अमलेश्वर से। पत्र भेजने वाले हैं डोमन ठाकुर, सुमन ठाकुर, मिथिलेश ठाकुर, तारनी ठाकुर, सूरज ठाकुर, सुजला ठाकुर, ज्योति ठाकुर और रेयांश ठाकुर। अगला पत्र जो हमें मिला है वो है जिला बुल्डाणा महाराष्ट्र से। भेजने वाले हैं नारायण भाऊ खड़से, रक्षा ताई खड़से, ललिता संजना खड़से, गणेश और कार्तिक, मालती चौधरी, स्वाति प्रयाग चौधरी। और ये फरमाइश हमें भेजी है पुराना शहर बरेली से अनोखे लाल मौर्य, सुंदर देवी मौर्य, प्रकाश मौर्य, रिंकी मौर्य, कपिल, वेदराम, कैलाश, सुनील, खुशबू, एरोही और स्वाति मौर्य ने। अगला पत्र जो हमारे हाथ में है वो भेज रहे हैं खमरिया बिलासपुर से साबित खान, सावित्री देवी, धर्मेंद्र प्रजापति, प्रतीक कुमार। और बहुत सारे मैसेजेस हमारे श्रोताओं के लगातार आ रहे हैं। और ये अगला पत्र जो हमें भेजा है आज़ाद नगर लक्सर हरिद्वार से, भेजने वाले हैं ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाब साबिर राही और महराज जहां। ये पत्र हमें भेजा है अनारकली बाजार जगराव से सुनील पाठक, कमल पाठक, दीपिका मल्होत्रा, आशीष मल्होत्रा, बेबी गाव्या और सुच्चा पाठक ने। आप भी सुनना चाहते हैं अपनी पसंद का गीत? दुबिहा नेवादा गाजीपुर से प्रतीक रॉय, रोशनी रॉय और प्रांजल रॉय।
1: बिल्कुल ठीक है। इसके अलावा देखिए भाई, ये मैसेज मुझे और मिल रहा है कुछ और मैसेज पढ़ने की भाई, हमारी इच्छा हो रही है, आज छुट्टी का दिन है और हमारे सभी श्रोता आज घर पर मौजूद होंगे, है ना, जो ऑफिस जाने वाले हैं, है ना, और वो दिल से सुन रहे हैं आकाशवाणी नजीबाबाद, लगातार मैसेज मिल रहे हैं, है ना, और अपनी बात भी लिख रहे हैं। तो भाई ये बात मैं कह दूं, बात तो आप लिखते ही हैं, हमें हमेशा लिखते हैं। और ये भी कहूंगा मैं इसके अंदर आज के इस कार्यक्रम में कि आपका पत्र मिला कार्यक्रम भी है भाई, उसमें भी लिखिए, हम ये चाहते हैं कि हमारे नए श्रोता कितने जुड़ रहे हैं, है ना, गीत तुम्हारे कार्यक्रम से डाइवर्ट करना चाहते हैं वहां भी हम। चलिए खैर, ये मैसेज मुझे मिल रहा है रविपाल राजपूत, रक्षु राजपूत, वंशल राजपूत, कुहू राजपूत, गांव बेर, थाना शिवाला, कलां, बिजनौर के श्रोता हैं ये हमारे। इसके अलावा देखिए भाई, एक मैसेज और लूंगा फिर मैं गीत सुनवाऊंगा आपको। परम सिंह जोड़ा, मंजीत गौरा जोड़ा, करणवीर करण, दविंदर वरिंदर, कुलदीप, सिमू, एकम, दमन और अभिजीत हमें लिख रहे हैं। करणवीर हाउस, भुचो, कैंचिया, बटिंडा, पंजाब के श्रोता हैं। सुनिएगा अपनी पसंद का ये गीत।

0: कार्यक्रम का पहला गीत हमने आपको सुनवाया, फिल्म का नाम था प्यार झुकता नहीं, आवाजें थीं लता मंगेशकर और शब्बीर कुमार की, और गीत तुम्हारे कार्यक्रम आप आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से सुन रहे हैं। अगले फरमाइश की तरफ हम बढ़ रहे हैं जो हमें एसएमएस के रूप में मिली है, लेकिन उससे पहले एक संदेश आपको सुनवाएंगे।
1: ये कस्टमर केयर कहाँ है? हाँ मैडम
2: जी,
1: ये केवाईसी अपडेट के लिए मुझे बार बार मैसेज क्यों आ रहा है?
2: क्योंकि बैंकिंग सेवाओं के लिए निर्धारित समय पर केवाईसी अपडेट करवाना चाहिए।
1: पर ये होगा कैसे?
2: अगर पहचान या पते में कोई बदलाव नहीं है तो अपने बैंक या एटीएम या बिजनेस करेस्पोंडेंट यानी बीसी के पास जाएं, या बैंक में रजिस्टर्ड ईमेल या मोबाइल नंबर या मोबाइल बैंकिंग ऐप या पत्र द्वारा उसका डिक्लेरेशन दें।
1: अच्छा, और अगर कोई बदलाव हो तो?
2: तो ऐसे में पहचान और पते का नवीनतम प्रमाण देकर केवाईसी अपडेट करवा सकते हैं।
1: बस
2: बस
1: समझ गया।
2: अपना केवाईसी अपडेट कराने के लिए अपने नजदीकी ग्राम पंचायत के कैंप या बैंक शाखा में जाएं।

0: RBI कहता है,
1: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
2: तैयार हैं हम अगला मैसेज पढ़ने के लिए। मैसेज जो हमें मिल रहा है, हमारे श्रोता रहे हैं ये रेलवे रोड गंज डुंडवारा से मोहम्मद कलीम, जख्मी इंजीनियर भुवन प्रकाश गौतम, डॉक्टर दबीरुल हसन, नजमा बेगम नाज, भाभी सरिता गौतम और बेगम शबनम अनवार। इसके अलावा ये मैसेज मुझे मिला है, देखिए भाई, संगीता टॉकीज शाहगंज आगरा के श्रोता हैं भाई, ये महफूज उर्फ पटेल अंसारी, फिरदौस काकू, अब्दुल अंसारी, हुमैरा अंसारी, हिफ्जा, जिक्रा, हबीबा, हलीमा और हसन चिट्टू भी इनके साथ जुड़े हुए हैं। कह रहे हैं कि साहब हम आपके अलावा हमारा कोई मैसेज पढ़ता नहीं है। नहीं भाई, ऐसा नहीं होगा, हो सकता है कि कहीं ना कहीं आप मिस कर जाते हो सुनने में, तो धन्यवाद आपका। और इसके अलावा भाई देखिए ये मैसेज मैं ले रहा हूँ, जी हाँ ये लेते हैं मैसेज। इसके अलावा ये मैसेज है सनावत के श्रोता हैं हमारे, शेख मूसा मोहसिन, अशोक वर्मा और राजकुमार बुड़ाना भी इनके साथ जुड़े हुए हैं। ये मैसेज लगातार मिल रहे हैं हमें। राजधानी रायपुर के श्रोता हैं हमारे नीलू, मेघ, नीलम, डॉक्टर वंदना कुमार, बिट्टू कुमार और अहले खाना भी इनके साथ जुड़े हुए हैं। इसके अलावा ये मैसेज मिला है हमें चकला बाजार समाना शहर पंजाब के श्रोता हैं हमारे पप्पू राजा, खुश दिल, संगीता रानी, पप्पू महक, सुनीता रानी, आरजू पप्पू, हसमुख लाल जिंदल, बुलबुल शक्ति, संजीव बंटी और पूरा ही खुश दिल परिवार इनके साथ जुड़ा हुआ है। ये मैसेज मुझे मिल रहा है उत्तम नगर दिल्ली के श्रोता हैं बोधराज खोरवाल, कमला रानी, भानु प्रकाश, गीतिका खोरवाल। के अलावा ये श्रोता हैं हमारे जिला मुरादाबाद ग्राम दूल्हापुर के श्रोता हैं ये हमारे मोहम्मद फरमान, मोहम्मद सलमान, मोहम्मद इरफान, मोहम्मद इसरार और नरगिस खातून। के अलावा इस गीत को सुनने के ख्वाहिशमंद देखिए आप भी हैं। और ये मैसेज मुझे मिल रहा है भाई, इन्होंने अपनी बात लिखी है, उसके अलावा कोई मैसेज में नाम नहीं लिखा है, तो भाई मैसेज में नाम लिखिएगा ताकि हम शामिल कर सकें। इसके अलावा इस गीत को सुनने के ख्वाहिशमंद भाई देखिए ये भी हैं, विलेज और पोस्ट राहू नंगली से आचार्य सत्यवीर सिंह, अलका चौहान, भूमिका चौहान, अक्षत चौहान, राघव चौहान और इनका पूरा ही परिवार। इसके अलावा इस गीत को सुनने के ख्वाहिशमंद देखिए हमारे श्रोता भाई लगातार दोबारा भी कर रहे हैं हमारे श्रोता, ये मेहरबानी भी करते रहते हैं वो, कि भाई हो सकता है कि पढ़ा जाए मैसेज। चलिए खैर भाई, थोड़े सा इतवार का दिन है यानी छुट्टी का दिन है, थोड़ी सी भी हमारे श्रोताओं के चेहरे पे अगर आ जाए खुशी, हल्की सी परत आ जाए मुस्कुराहट की, तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। देखिए अब तैयार हैं पढ़ने के लिए रिमझिम
3: जी। ये मैसेज हमें मिला है पर्क निजामाबाद तेलंगाना से, भेजने वाले हैं अजीज भाई, मतीन भाई, अब्दुल रहमान। और जो अगला मैसेज हम कार्यक्रम में शामिल कर रहे हैं वो हमें मिला है लाल माता सुदामा नगर अटलाई जिला झालवाड़ राजस्थान से, और इस गीत को सुनना चाहते हैं हर्षिता रामेश्वर, प्रेमशवर, मीनाक्षी कान्हा, श्रीमती मनोहर बाई बागरी और प्रभु लाल बागरी। अगला मैसेज जो कार्यक्रम में हम शामिल कर रहे हैं वो हमें भेज रहे हैं एसएम जावेद, शगुप्ता अंजुम और नजमुल होदा, गुंडा, झारखंड से। बहुत सारे मैसेजेस हमारे पास आ रहे हैं। ये मैसेज है तेलंगाना निजामाबाद से शेख अल्लाह बख्श, बेगम राबिया शेख, शेख रहीम मुन्ना और दानिश आसिफ शेख। इसी गीत को सुनना चाहते हैं मंसूरी रेडियो लिसनर्स क्लब बाजार रोड मुंगी सापुर से मोहम्मद जाकिर मंसूरी, कमरून निशा, शबिस्ता मोहम्मद, नसीब, पलक लुबना और यश मंसूरी।
2: इसके अलावा ये गीत हम जो आपको सुनवाएंगे, फिल्म का नाम है दिल ने फिर याद किया और बड़ा खूबसूरत गीत है ये, हमारे श्रोताओं ने इस गीत को पसंद किया है, तो अगली फरमाइश हम लेना चाह रहे हैं इसके लिए। मोटा आम नजीबाबाद के हमारे नियमित श्रोता हैं सादिक, विजयपाल, गुड्डू, मुजफ्फर और उनके बहुत सारे साथी। इसके अलावा इस गीत को सुनने के ख्वाहिशमंद भाई आप भी हैं। डोंडी लोहारा बालोद से कमलेश जयपुरिया, सनी चौक खंडवा से पिंकी मिंकी शिंकी और रिंकी, जेल रोड रायगढ़ से लालचंद मिश्रा, रमेश चंद और कुमकुम मिश्रा के अलावा देखिए ये और मैसेज में इनके साथ में जुड़ा हुआ है, कस्बा गुना और लोनी से नसीमुल इस्लाम गुनौरी और प्रकाश वीर राजपूत के अलावा, और ये मैसेज मुझे मिल रहा है जवाहरनगर उदयपुर से बाबू भाई और भारती देवी के अलावा, इस गीत को सुनने के ख्वाहिशमंद देखिए आप भी हैं। श्री गणेश अविका आर्ट श्री रामपुर से डी कुमार, डी अशोक कुमार, अविका जीविका सोनू कुमार के अलावा, इस गीत को सुनने के ख्वाहिशमंद आप भी हैं। जी ये मैसेज हम ले रहे हैं। मेहर नगर उमरखेड़ महाराष्ट्र के श्रोता है अभिजीत गवाणकर, राही श्रीमती सरिता प्रिंस एकांश बदलापुर मुंबई से, प्रणीता गवाणकर, सिद्धांत गवाणकर, अर्जुन गवाणकर, टुक टुक आकार हाइट्स बहादुरा नागपुर से, वैशाली शैलेश गवाणकर, सुमित गवाणकर, कुमारी ध्वनि गवाणकर, परी भी इनके साथ जुड़े हुए हैं। इसके अलावा इस गीत को सुनने के ख्वाहिशमंद भाई आप भी हैं। मोहल्ला कटरा मंडी धनौरा जिला अमरोहा से महफूज हसन, फिरदौस अंसारी, हुमा हिफ्जा, जिक्रा हबीबा और हसन चिट्टू भी इसी गीत को सुनने के ख्वाहिशमंद है। और जहाँ तक हमें याद आ रहा है कि ये मैसेज हम पढ़ भी चुके हैं, भले ही वो किसी और जगह से हो मुझे लग रहा है। चलिए खैर मैसेज लेते हैं हम। लक्षनपुर छत्तीसगढ़ से विश्वनाथ साहू, पंकज साहू, तिरुपति साहू और कुंती साहू, सुनिएगा आप सबकी पसंद पर फिल्म दिल ने फिर याद किया का ये खूबसूरत गीत।

0: प्रसार भारती, भारत का लोक सेवा प्रसारक।
1: संदेश से पहले हमने आपको सुनवाया था मोहम्मद रफी, सुमन कल्याणपुर और मुकेश की आवाजों में। फिल्म का नाम था दिल ने फिर याद किया, ये गीत इस फिल्म का गीत था, है ना। और गीत तुम्हारे कार्यक्रम आप आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से सुन ही रहे हैं। इसके अलावा मैं अपने श्रोताओं को याद दिलवा दूं कि भाई आज सवेरे अब से थोड़ी देर बाद यानी 10:55 पर एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम हम रिले करेंगे जिसका नाम है मन की बात। और ये कार्यक्रम माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा होता है और आज इसका 137वां संस्करण है। तो समय एक बार फिर याद रख लीजिएगा, 10:55 से सुनना ना भूलिएगा आज प्रधानमंत्री जी के उनकी मन की बात। फिलहाल आगे बढ़ेंगे और अगला मैसेज मैं लेना चाहूंगा रियासत हुसैन सिद्दीकी, नाजमा बेगम सिद्दीकी, रियाज, रिफाकत, मोहम्मद रिहान, समरीन परवीन और माहिरा नूर जसपुर उत्तराखंड के श्रोता हैं। इसके अलावा इसी गीत को सुनने के ख्वाहिशमंद, देखिए ये गीत हम आपको सुनवाएंगे। फिल्म का नाम है प्यार ही प्यार और इसमें जो आवाज़ है मोहम्मद रफ़ी साहब की आवाज़ है, बोल इसके बहुत खूबसूरत हैं, मैं कहीं कवि ना बन जाऊँ, है ना। और इस गीत को सुनने के ख्वाहिशमंद भाई देखिए हमारे श्रोता आप भी हैं, बांस मंडी निकट मछली बाजार नजीबाबाद के श्रोता हैं ये, शहबाज, शादाब, रिजवान, आलोक और उनके बहुत सारे साथी। इसके अलावा इस गीत को सुनने के ख्वाहिशमंद देखिए हमारे ये भी श्रोता हैं, जिला अमरोहा नई बस्ती पतई खालसा के श्रोता हैं, बहारुल हसन सिद्दीकी, मोहम्मद आलम सिद्दीकी, मोहम्मद सिफान, मोहम्मद यूसुफ, अनाबिया, बिटिया अलीशा, शकील, फहीम, अफ़ान और मोहम्मद यासीन अंसारी भी इनके साथ जुड़े हुए हैं। देखिए ये मैसेज हमें मिला है बिल्कुल अभी 10:27 पे। नगीना के श्रोता हैं अनिल विनोचा, शम्मी विनोचा, अक्षय विनोचा, कनिका अरोड़ा, सहज अरोड़ा, गीत अरोड़ा और इसके अलावा इस गीत को सुनने के ख्वाहिशमंद देखिए ये श्रोता भी हैं, हमारे नियमित श्रोता हैं, मारहारा दरवाजा एटा के श्रोता हैं नबी हसन अब्बासी, शहनाज अब्बासी, नवेद हसन अब्बासी, सुहेल हसन अब्बासी, अनम यशफ अब्बासी, रसीद वारसी। इसके अलावा इसी मैसेज में गदवाई नगर सिद्धपुरा टाउन से जुबैर अली खां और सबीहा अंजुमन खां भी जुड़े हुए हैं। ये मैसेज मैं ले रहा हूं यहाँ से जी, बहुत मैसेज हैं इस वक्त हमारे पास में और कोशिश हमारी रहेगी कि हम अधिक से अधिक पढ़ने की कोशिश करें, है ना। और ये आप जानते हैं कि चलना तो हमें समय के हिसाब से ही पड़ता है। व्हाइट फील्ड बेंगलुरु के श्रोता हैं भारत भूषण, अंजु श्रीवास्तव, दिव्यंदु भूषण, संस्कृति पौरश और रामगढ़ कैंट से, महेंद्र मोदी, कुलदीप कंवल के अलावा इसी गीत को सुनने के ख्वाहिशमंद भाई देखिए आप भी हैं। ये मैसेज मुझे मिल रहा है जलालाबाद वेस्ट से सुरेश गगनेजा, पूनम गगनेजा, विशाल, प्रिया, दिशानी और निमित आहूजा। इसके अलावा इस गीत को सुनने के ख्वाहिशमंद भाई देखिए आप भी हैं। जगमाल सिंह डागला, हैप्पी डागला, जेएस नायक, शोभा नायक और समस्त डागला परिवार। एक श्रोता कह रहे हैं कि साहब हमें दूसरा मैसेज करने की नौबत क्यों आ रही है, तो भाई हम आपको बता दें कि 311 मैसेज अनरीड हैं इस वक्त हमारे पास, इसलिए आपको आ रही है। नीचे पहुंच जाते हैं हमें मैसेज करने के लिए, कर्सर को अप डाउन करना पड़ता है ना, जो स्क्रॉल होता है।
2: जी, जी, एक चीज और कहूंगी कि अपने श्रोताओं को कि वो धैर्य बना के रखें, ऐसा होता है कि उनके मैसेजेस अगर अभी नहीं पढ़े गए हैं थोड़ी देर में पढ़े जाएंगे

0: वो नाराज हो जाते हैं कहीं ना कहीं कि हमारे
1: हाँ तो
0: मैसेजेस
1: भाई
0: नहीं पढ़े
1: ये
0: जा रहे
1: कोशिश
0: हैं।
1: आप ना करें, है ना। फिलहाल सुनते रहें आकाशवाणी का नजीबाबाद केंद्र, आपका पसंदीदा रेडियो चैनल है, इस बारे में हम बहुत अच्छी तरह जानते हैं। उत्तर प्रदेश जिला जौनपुर पोस्ट लपरी ग्राम बुड़ेला से कुमारी चंदा कुमारी, चांदनी आकाश कुमार, उनके मम्मी पापा, रोहिणी सेक्टर 17 से रामेश्वर दास, राजौरा सिंह राजौरा और पिंकी पल्लवी आकाश आरडी चंद्रा, और इनके साथ ही एक मैसेज और जुड़ा हुआ है, न्यू मुल्तान नगर दिल्ली के सुरेंद्र खुराना, सुरभि सुमित अनीता और राजू ढींगरा के अलावा। इसी गीत को सुनने के ख्वाहिशमंद, देखिए हमारे श्रोता ये भी हैं भाई, श्रोता हमारे लगातार मिल रहे हैं और वो थैंक्स भी अदा कर रहे हैं, तो भाई इस टाइम हम खोलते हैं तो थोड़ा सा तो हमारा वक्त हो ही जाता है। फिलहाल चलिए, खैर मोहब्बत आपकी, ये मैसेज हमें मिल रहा है आदर्श नगर मलोट से राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश शर्मा, निवान शर्मा, मैंडी शर्मा, सौरभ शर्मा और शाइना शर्मा के अलावा रिमझिम।
0: जी, ये मैसेज हमें मिला है विदर्भ श्रोता क्लब से, जलगांव जंक्शन से। दिनेश काले, वंदना काले, आदेश कुमार और प्रोफेसर वसुधा वज्रसेन का अगला मैसेज जो इसी गीत को सुनना चाहते हैं वो है धर्मेंद्र छिपा, कपिल छिपा, ईशान छिपा और पूजा परिहार भोपालगढ़ राजस्थान से। ये मैसेज भेज रहे हैं परी महल कासगंज से अबाक खान, नाबिल खान, आरफा खान और इल्मा खान। बहुत सुंदर मैसेज हमें लिख भेजा है जिला रामपुर से।
1: के पास ग्राम खंडिया गेट कॉलोनी से
0: जी जी
1: अमरजीत, शिवम,
0: शिवम,
1: सुखलाल, अमरपाल और ऋषिपाल, इन्होंने फोटो खींचकर
0: बहुत
1: हम तक पहुंचाया है। भाई
0: जी
1: देखिए आप दौर थोड़ा सा बदलिएगा अपने आपको, है ना, एसएमएस करिएगा। चलिए खैर, इसके बाद में ये मैसेज रिमझिम।
0: जी ये मैसेज है ग्राम जुझेला थाना शिवाला कला बिजनौर से। राशिद अंसारी, परवीन जहां, निशात, आयसा, शाइना महवेश, मोहम्मद अफ़ान और आदिना अदीना नूर का। इसी गीत को पसंद कर रहे हैं आप दत्रेंगी भाटापारा छत्तीसगढ़ से हीरा मणि वर्मा, पारस मणि वर्मा, पुष्पेंद्र मणि और नोखे लाल वर्मा। मैसेजेस लगातार हमारे श्रोता हम तक भेज रहे हैं और हमारी कोशिश की सभी मैसेजेस हम शामिल कर सकें। और अगला मैसेज जो हमें मिला है कस्बा अग्रवाल मंडी बागपत से आसिफ अली खान, मोमिना नाज, मुस्कान आसिफ, सारिक अली खान और सादिक अली खान का।
1: इसके अलावा कुछ मैसेज और हम लेना चाहते हैं, मदन गिरी ग्राम गधारोना पोस्ट लंढोरा रुड़की से हैं और इनका पूरा ही परिवार ये हमें मैसेज कर रहा है। और इसके अलावा इसी गीत को सुनने के ख्वाहिशमंद भाई, देखिए आप भी हैं ग्राम पीपर लोड सरगांव छत्तीसगढ़ से दीपेश वर्मा, पूनम वर्मा, ज्योति और शिवांश वर्मा के अलावा। इस गीत को सुनने के ख्वाहिशमंद आप भी हैं। कुमार हेड़ा सहारनपुर के, सैयद मसरूर, शाइना हसन, अक्सा अदीब, नाजिया आफिया और इब्राहिम सद्दाम भी इनके साथ जुड़े हुए हैं। सुनिएगा अपनी पसंद का ये गीत।

प्यार ही प्यार फिल्म का ये गीत था और मोहम्मद रफ़ी साहब की इसमें आवाज़ थी। कार्यक्रम के अगले गीत के लिए फरमाइश करने वाले हैं आप सब, और ये हमारे श्रोता हैं गांव गधारोना से, बिमला गिरी, बलराम गिरी, भरत गिरी, मधु गिरी, सोनिया गिरी, गोविंद गिरी, सिमरन गिरी, वंशिका गिरी, रमन गिरी, दिव्या गिरी और मदन गिरी साहब भी इनके साथ जुड़े हुए हैं। इसके अलावा इसी गीत को सुनने के ख्वाहिशमंद जिला मुरादाबाद ग्राम दूलापुर उत्तर प्रदेश के श्रोता हैं मोहम्मद फरमान, मोहम्मद सलमान, मोहम्मद इरफान, मोहम्मद इसरार और नरगिस खातून। ये मैसेज हमें मिल रहा है कुंडल वाडी महाराष्ट्र के श्रोता हैं गंगाधर सावनकर, विजय लक्ष्मी सावनकर के अलावा इनका पूरा परिवार। और हमारे श्रोता कह रहे हैं कि साहब हम भी आपके नियमित श्रोता हैं। बिल्कुल हैं साहब, सभी हमारे श्रोता नियमित हैं। महाराणा प्रताप कॉलोनी उदयपुर के श्रोता हैं भाई रामेश नाचानी, भारती, विनीत, मिथिला, गोपाल और तिलक तंबोली भी इनके साथ जुड़े हुए हैं। इसके अलावा इसी गीत को सुनने के ख्वाहिशमंद देखिए हमारे आप भी श्रोता हैं गंजुंडवारा से शमशुल कमर राही, शाहीन, फातिमा, अदनान खां, फैजान खां और अनु खां भी इनके साथ जुड़े हुए हैं। और ये मैसेज है

0: दिल्ली शहर मोरी गेट से कन्हैया लाल, रीता देवी, शिल्पा रानी, आकाश कुमार और इनका पूरा ही परिवार। गांव कैरो, जिला तरन तारण पंजाब के श्रोता हैं गुरदर्शन लाल चलोत्रा, सुनीता, शम्मी, रजनी, आकाशदीप, अनहद और उनका पोता गुरु शब्द। इसके अलावा इस गीत को सुनने के ख्वाहिशमंद देखिए आप भी हैं ये श्रोता। भाई हमने मैसेज खोला लेकिन वो हमारे श्रोता ने दोबारा कर दिया। खैर कोई बात नहीं है। गांव हांडी खेड़ा, जिला सिरसा के श्रोता हैं, हरियाणा से हैं ये राधेश्याम शर्मा, इंदिरा और सार्थक शर्मा भी इन्हीं के साथ जुड़े हुए हैं। इसके अलावा इस गीत को सुनने के ख्वाहिशमंद आप भी हैं। दादरी गेट भिवानी से कृष्ण मेहरा, कोमल मेहरा, किरण मेहरा, कपिल मेहरा, कुणाल मेहरा और इनका पूरा ही मेहरा परिवार। और रिमझिम तैयार है पढ़ने के लिए।
1: जी, तो ये मैसेज हमें मिला है सप्तरंग श्रोता परिवार, कुंभार गली, श्रीरामपुर से अशोक दले, सविता दले, अनिकेत दले, रोहिणी दले, ऋषिकेश दले और जीविका दले इसी गीत को सुनना चाहते हैं। और इनके साथ हैं पुनावले पुणे से अजय सोनवने, करिश्मा सोनवने, अविका सोनवने और विशाखा सोनवने। अगला मैसेज जो हम कार्यक्रम में शामिल कर रहे हैं वो हमें भेजा है पहाड़गंज मुल्तानी ढांडा से अनिल मोहन, उषा मोहन, टिल्लू नायक और मधु नायक ने, और इसी गीत को पसंद कर रहे हैं हमारे अगले श्रोता मुक्काम पोस्ट कालेगांव जाफराबाद से सुधाकर राजे जाधव देशमुख, प्रशांत राजे जाधव, जग्गुताई राजे जाधव, संचित देशमुख, प्रथमेश शरवद, हर्षिता सानवी और प्रणाली देशमुख।
0: लीजिए सुनिएगा अपनी पसंद का ये गीत।

0: ये गीत आप सुन रहे थे लता मंगेशकर की आवाज में। फिल्म का नाम था राम तेरी गंगा मैली। एक अंतिम गीत और है भाई हमारे पास में, सिर्फ और सिर्फ, जी हाँ, हमने कहा है अंतिम गीत, और मैसेज बहुत हैं हमारे पास इस वक्त अनरीड के लिए, है ना। तो जाहिर सी बात है कि वक्त हमारी इजाज़त जहाँ तक देगा वहीं तक हम काम करेंगे ना, गीत भी सुनवाना है। फिलहाल ये खत है हमारे हाथ में, मौला अफगानान शिरपुर बिजनौर के नदीम बाकी कलीम बाकी अलीम बाकी अजीम बाकी अदीम बाकी अब्दुल गनी अलमीर और जन्नत। जिला मुरादाबाद ग्राम दूलापुर के श्रोता हैं हमारे मुकेश कश्यप, शीतल कश्यप, सोनू, सुरेश, राजपाल, पंकज, काजल, सीमा, मानवी, तन्वी, लक्ष्य, सोनी और मोहिनी ऋतिक। ग्राम करेली पुरानी मस्जिद जिला बरेली के श्रोता हैं लाल मोहम्मद अंसारी, लालू मिस्त्री अंसारी, मोहम्मद तबरेज अंसारी, अब्रार हुसैन अंसारी, बबलू कैप्टन निसार और मस्तान बाबा। कस्बा मीरगंज बरेली के श्रोता हैं भाई कल्लू मिस्त्री और उनका पूरा परिवार। शाही मार्केट सिहोरा जिला बिजनौर के श्रोता हैं आसिफ चौधरी, अराफात चौधरी, आदिब चौधरी, कादिर चौधरी और इनका पूरा परिवार। कस्बा चिलकाने के श्रोता हैं मोहम्मद जरीफ अंसारी, नईम अंसारी, आमिर अंसारी। सहारनपुर दाऊद सराय के हमारे नियमित श्रोता हैं अनवर साबरी, शन्नो साबरी, इरम साबरी, अमन साबरी। दूलापुर मुरादाबाद के श्रोता हैं महबूब दुकानदार, साहिबा महबूब और इनके पूरा परिवार। ग्राम लोहेड़ी जिला महोबा के श्रोता हैं हमारे जयपाल यादव, इंद्रपाल यादव और इनका सभी साथी। ये हमारे नियमित श्रोता हैं जनपद मेरठ के नरेंद्र कुमार, मंजू शर्मा, एकता शर्मा और इनका पूरा ही शर्मा परिवार। जिला मुरादाबाद ग्राम महेशपुर खेम के श्रोता हैं तौफीक अहमद सिद्दीकी, अतीक अहमद सिद्दीकी, दानिश सिद्दीकी, राणा सिद्दीकी और ये मोहल्ला बकर कसाबान शेरकोट बिजनौर के श्रोता हैं रऊफ अहमद निजामुद्दीन और अरसलान के साथ में, हन्नान भी इनके साथ जुड़े हुए हैं। एक मैसेज मैं ले रहा हूँ, बहुत दूर दूर के मैसेज हमें मिल रहे हैं, बहुत खुशी हमें आज महसूस हो रही है कि भाई आज हमारे इस कार्यक्रम को हमारे नियमित श्रोता बहुत सुन रहे हैं और नए नए हमें SMS पढ़ने के लिए मौका मिल रहा है। देखिए पहली बार पढ़ रहे हैं इस मैसेज को हम, येलांदु काठ गोदाम डिस्ट्रिक्ट तेलंगाना के श्रोता हैं, बहुत दूर के हमारे श्रोता हैं राजेश खन्ना, चिन्ना पासी, अनिता राज खन्ना, सुनीता राज खन्ना, भानु राज खन्ना, अमित खन्ना और अमीन के साथ लिखा हुआ है। इसके अलावा इसी गीत को सुनने के ख्वाहिशमंद देखिए आप भी हैं। ये मैसेज हमें मिला है मोहल्ला बारादारी महमूद खान रामपुर से, भाई रफत साहब, सईद भाई मंसूरी, राशिद भाई मंसूरी, असद भाई बहन, फिरोजा मुस्कान और अफसर अली के साथ नगमा नाज मंसूरी भी जुड़े हुए हैं इनके साथ। इसके अलावा ये मैसेज है कस्बा गुन्नौर यूपी से फारूक अली खां, फैजी फराज, फरहीन फरहान, फारिया और ताहिरा ऊपरकोट बुलंदशहर से, मोहम्मद सईद अब्बासी, निगत परवीन, शाहनवाज सरफराज, फरदीन, सुहान, अरजान, अबान और पूरा ही अब्बासी परिवार। और हमारे श्रोता देखिए हमसे लगातार कह रहे हैं कि भाई हमें भी शामिल कर लिया है, पूरी कोशिश है भाई, बहुत देर से कह रहे हैं कि हमारा नाम नहीं आया, इंतजार कर रहे हैं। देखिए भाई घड़ियां खत्म हो रही हैं। ये प्रतिष्ठान रेडियो श्रोता संघ नेहरू चौक पैठण से डॉक्टर सुरेश जाधव, अनिता जाधव, आरती, पूजा, प्रसाद जाधव, सोनल जाधव, बेबी सिया जाधव, जालना शहर से सोमनाथ जाधव, गीता जाधव, ओम जाधव, सुभाष जाधव, चंदन जाधव, एकनाथ जाधव और संगीता जाधव के अलावा इसी गीत को सुनने के ख्वाहिशमंद देखिए हमारे ये श्रोता भी हैं जिनका नाम रिमझिम पड़ रहे हैं।
1: जी, ये मैसेज हमें मिला है फातिमा कॉलोनी श्रीरामपुर महाराष्ट्र से, नासिर शेख, नाजियान सीर और साजिद शाहिद, गोविंदपुरा अहमदनगर से जुनेद मुजावर इनके साथ हैं, साबिहा

साथ में पूरा ही परिवार। इसके अलावा इसी गीत को सुनने के ख्वाहिशमंद, देखिए भाई आप भी हैं। देखिए भाई ये मैसेज हम पढ़ चुके हैं और इन्होंने अब मैसेज में जो है ना वो बिल्कुल लिख के भेजा है, लेकिन हम ये नाम पढ़ चुके थे। फिलहाल अगला मैसेज हम ले रहे हैं। ये मैसेज भाई अपनी बात लिख रहे हैं श्रोता, और हम यही कहना चाहेंगे कि भाई आपका पत्र मिला कार्यक्रम भी तो होगा हमारे केंद्र से 12:05 पर, उसमें भी हम रहेंगे, वहाँ भी लिखिएगा है ना, और आपके खतों को शामिल करेंगे, लिखिएगा ज़रा। ये मैसेज हम पढ़ रहे हैं। गांव भोजपुर तगा चिलकाना सहारनपुर से मोहम्मद जावेद, मोहम्मद अदीब, अब्दुल हन्नान, जीनत जावेद, नाहिद रानी, आयत और सिकंदर अली के अलावा इसी गीत को सुनने के ख्वाहिशमंद, देखिए भाई आप भी हैं। मंसूरी कॉलोनी मुरादाबाद से इरशाद हुसैन अंसारी, सैयद शारिक अली, मेराज अंसारी, बाबू अंसारी के अलावा इनका पूरा ही परिवार। और ये मैसेज मैं ले रहा हूँ सत्यदीव राणा, इस्लाम नगर पबसरा जिला बदायूं के श्रोता हैं। सुनिएगा अपनी पसंद का ये गीत।

0: और ये गीत था फिल्म घरौंदा से, आवाज थी रूना लैला की। और इस गीत के साथ आज का गीत तुम्हारे कार्यक्रम संपन्न करने की मुझे यानी मनोज वर्मा और मेरे साथ,
1: रिमझिम बलूनी को दीजिए अनुमति।
0: नमस्कार।
1: नमस्कार।
0: आप सुन रहे थे कार्यक्रम गीत तुम्हारे, हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। थोड़ी ही देर में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा भारत की जनता को संबोधन का 137वां संस्करण हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले कर रहे हैं।

0: ये आकाशवाणी दिल्ली है, कृपया हमारे विशेष कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए। ये आकाशवाणी है।
1: श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया है, यदि व्यक्ति की बुद्धि शुद्ध हो तो अक्सर छोटे छोटे कर्मों की नैतिक योग्यता भी बड़े बड़े कर्म कर डालने में समर्थ होती है। बुद्धि तो एक तलवार के समान है। जीवन में जो कुछ भी इंसान के सामने आता है उसकी काट छांट करना ही बुद्धि का काम है। इसके विपरीत जब बुद्धि शुद्ध ना हो तब किसी कर्म की नैतिक योग्यता का ज्ञान मनुष्य को नहीं हो सकता। इस तरह बुद्धि के अभाव में अच्छा कार्य भी बुरा बन सकता है।
2: महात्मा गांधी का कहना है,
3: मैं भगवान को मानवता की सेवा द्वारा देखने का प्रयत्न करता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ भगवान न ऊपर आकाश में है और न नीचे पाताल में, वो तो सब

best of entertainment, information, education अब आपके एक उंगली के इशारे पर कहीं भी कभी भी रहे हरदम अपडेट आज ही डाउनलोड करें आकाशवाणी का न्यूज ऑन एयर ऐप।

0: घर घर तक पहुंचाएं आपका विज्ञापन। आकाशवाणी और दूरदर्शन के विभिन्न चैनल देश के किसी भी कोने में विज्ञापन देने के लिए प्रसार भारती के मार्केटिंग प्रभाग से संपर्क कीजिए।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
3: मन की शांति और शक्ति के लिए जुड़िए भक्ति से। आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मनपसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, महाकुंभ मेला हो या जगन्नाथ रथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए सूफी संगीत और शबद कीर्तन,
4: कोई बोले राम राम।
3: आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल, न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और YouTube पर भी उपलब्ध आराधना चैनल।

0: बेस्ट ऑफ एंटरटेनमेंट इंफॉर्मेशन एजुकेशन अब आपके एक उंगली के इशारे पर कहीं भी कभी भी रहे हरदम अपडेट आज ही डाउनलोड करें आकाशवाणी का न्यूज ऑन एयर ऐप।
1: बड़ी बहू
2: ये तुम्हारी ना
1: इतनी भी क्या जल्दी थी
2: अरे और छोटी ये तुम्हारे ना
1: और ये मेरी गुड़िया की ना
2: पर दादी
1: आपके नाम
3: सब कुछ मैंने बैंक लॉकर फिक्स डिपॉजिट सब में इन्हें तो नॉमिनी बनाया है कल जब मैं ना रहूं तब पैसे मिलने में इन्हें आसानी हो
2: चुप चुप बोलो क्या
3: आरबीआई कहता है
4: जानकार बनिए सतर्क रहिए
5: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा याद रखें समाधान आपके पास है टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है यहां आपकी बात सुनी जाती है समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है आप अकेले नहीं है मदद बस एक कॉल दूर है
6: मन की बात आकाशवाणी के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी अपने मन की बात साझा करेंगे तो आइए सुनते हैं प्रधानमंत्री जी से मन की बात।
7: मेरे प्यारे देशवासियों नमस्कार। मन की बात के इस नए एपिसोड में आप सभी का मैं एक बार फिर स्वागत करता हूं। आप सब जानते हैं कि एक ऐसा मंच है जहां हम नए प्रयासों को सामने लाते हैं, देशवासियों के इनोवेटिव आइडियाज पर चर्चा करते हैं। इनमें से कितने ही आइडियाज ऐसे होते हैं जिनके पीछे लोगों ने जीवन की अथक ऊर्जा लगाई होती है। साथियों, कुछ समय पहले सोशल मीडिया पर किसी ने लिखा था, आषाढ़ी एकादशी के पावन अवसर पर मुझे यह बताते हुए अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि इतिहास को रोचक बनाने के अपने प्रयास का शुभारंभ कर रहा हूं। उन्होंने आगे बताया, यह आइडिया बहुत ही सिंपल है। आप इस वेबसाइट पर जाएं और कोई भी एक वर्ष चुन लें। यहां आपको आसानी से पता चलेगा कि उस समय भारत के किस हिस्से पर किसका शासन था। मुझे भी यह काफी दिलचस्प लगा। मैंने सोचा कि इसके बारे में और अधिक जानकारी ली जाए। मुझे पता चला कि यह काम मुंबई में रहने वाले श्रीमान कृष्णा शेषाद्री जी ने किया है। मजे की बात यह है कि कृष्णा जी ने वेबसाइट का नाम भी बहुत सिंपल रखा है, www.bharatrajya.com। उन्होंने जो प्रयास किया है उसकी जानकारी आप लोगों तक भी जरूर पहुंचनी चाहिए। इसलिए मैंने सोचा कि क्यों न सीधे श्री कृष्णा जी से ही बात की जाए। साथियों, कृष्णा जी हमारे साथ फोन पर जुड़ रहे हैं। कृष्णा जी नमस्ते।
8: नमस्ते सर। नमस्ते
7: भाई। मुझे पता चला है न आप टेक की दुनिया से हो न आप हिस्ट्री टीचर हो, फिर भी आपने टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके हिस्ट्री की साइट बना डाली, तो मुझे बहुत उत्सुकता है ये सब कैसे हुआ।
8: धन्यवाद सर, आपसे बात करके बहुत मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है। तो सर, मेरे बारे में अगर मैं थोड़ा बताऊं तो सर, मैं एक इंजीनियर था, फिर मैंने एमबीए किया, फिर मैं मार्केटिंग फील्ड में चला गया। लेकिन ये सब जब भी करता था तब भी मेरे को बचपन से इतिहास में हिस्ट्री में बहुत इंटरेस्ट था। तो आई ऑलवेज वॉन्टेड टू डू समथिंग ऑन हिस्ट्री, हाउ टू मेक इट इंटरेस्टिंग। एंड मेरे को ये भी लगता था कि हम जैसे हिस्ट्री सिखाते हैं उसमें हम बहुत इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, उसमें हम बहुत बदलाव लेके आ सकते हैं, हिस्ट्री को एक कहानी बना के लोगों तक पहुंचा सकते हैं।
7: कृष्णा जी, भारतीय इतिहास का ऐसा कौन सा पहलू है जिसके बारे में आपको लगा इसका जानकारी ज्यादा से ज्यादा लोगों को होनी चाहिए।
8: सर, अगर आप भारतीय इतिहास जैसे हमारे स्कूलों या कॉलेजों में सिखाया जाता है, जैसे आप देखते हो, तो वो एक कोई एक एम्पायर या कोई एक किंगडम उसके दृष्टिकोण से उसके नजरिए से सिखाया जाता है और वो एम्पायर्स को डिस्प्रोपोर्शनेट अटेंशन भी मिलता है। इस चक्कर में बाकी के बहुत सारे जो हमारे साम्राज्य थे, जो महान साम्राज्य थे, जैसे चोलास थे, पल्लवास थे, करकोटा डायनेस्टी था कश्मीर में, अहोम्स थे, जिन्होंने कम से कम 600 साल आसाम में अपनी संस्कृति और अपने वैल्यू सिस्टम को बरकरार रखा, ये सब के बारे में हम नहीं जानते। तो मैंने सोचा कि ऐसा कोई एक साइट बनाए जो ऐसे महान साम्राज्य को भी लोगों से इनको इंट्रोड्यूस किया जाए।
7: कृष्णा जी, आप इतनी मेहनत करते हैं, मैं ऐसे ही आपको हाइपोथेटिकल सवाल पूछता हूँ। अगर आपको इंडियन हिस्ट्री के किसी भी तीन लोगों से बातचीत का अवसर मिले तो आप किन से बात करना चाहेंगे और क्यों?
8: हाँ सर, तो पहले मैं बात करूंगा राजराज चोड़ा या राजेंद्र चोड़ा सर से, जो चोला साम्राज्य के सबसे मोस्ट पावरफुल या सबसे इम्पोर्टेंट राजाओं में से थे। तो मैं उनसे ये जानना चाहूंगा कि पहले उनको ये विजन कैसे आया, जैसे उन्होंने बृहदीश्वर टेम्पल या गंगाईकोंडा चोलापुरम के जो बड़े बड़े मंदिर हैं, शिव जी के मंदिर हैं, वो एग्जीक्यूट करने के लिए उनको वो विजन कहाँ से आया, वो प्लानिंग कैसे की, उनको वो थॉट कैसे आया कि हम ऐसा कुछ बना के जाए जो अगले 1000 या 2000 साल तक दूसरे लोगों को प्रेरित कर सके, तो वो मुझे उनसे जानना है। और दूसरी जो पर्सनैलिटी है, ये एक्चुअली मेरे हिसाब से इंडियन हिस्ट्री में एक बहुत अंडररेटेड पर्सनैलिटी है सर, उनका नाम है हेमू। तो हम उनके बारे में ज्यादा से ज्यादा इंडियन इतिहास में 2 या 3 लाइन पढ़ते हैं। हमको ये नहीं पता है कि वो जो हेमू जो थे सर, वो एक कॉमन मैन थे, साधारण इंसान थे, वो एक व्यापारी थे। उधर से उन्होंने एक एम्पायर खड़ा किया, और वो नॉट ओनली वो एक एम्पायर बिल्डर थे, वो एक मिलिट्री थिंकर भी थे, मिलिट्री जीनियस थे, जिन्होंने अपने करियर में 23 लड़ाइयां लड़ी, उसमें से उन्होंने 22 लड़ाइयां जीती। तो उनका थॉट प्रोसेस कैसा था और कैसे वो एक आम आदमी से एक इतने बड़े राजा बने, वो उनका वो जर्नी मैं जानने की बहुत दिलचस्पी रखता हूँ सर। और तीसरी जो है, ये दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग पर्सनैलिटी, शी इज अ वुमन सर, त्रिभुवना महादेवी। तो ये जो है एक उड़ीसा में एक किंगडम है जिसका नाम था भौमाकारा डायनेस्टी। तो इनकी भी कहानी बहुत दिलचस्प है। इन्होंने जब 850 के आसपास जो साल में उनके जो नेबर पाला एम्पायर ने इनके एम्पायर पे धावा बोल दिया था सर, और इनके राजा जो इनके हस्बैंड थे वो उस लड़ाई में शहीद हो गए, और इसके वजह से वो एम्पायर बहुत छोटा हो गया और उसके जो सरदार थे, उसके जो लीडर्स थे, वो एम्पायर छोड़ के जाने लग गए थे। तो ये जो त्रिभुवन महादेवी जो लेडी थी, इन्होंने वो सरकार संभाली एंड शी बिकेम वन ऑफ द फर्स्ट इंडिपेंडेंट रूलर्स इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया। और उन्होंने सरकार को नॉट ओनली स्टेबिलाईज किया बट इतना उसको पावरफुल बना दिया कि वो अगले 100 साल तक कलिंगा और वो एरिया में राज करते रहे। तो दीज आर थ्री इंटरेस्टिंग पर्सनैलिटीज व्हिच हुम आई वुड लाइक टू मीट इन हिस्ट्री सर।
7: कृष्णा जी, आपको लगता है कि इतिहास को जी रहे हैं, आप पूरी तरह इतिहास में डूब चुके हैं। देखिए, मैंने भी बड़े उत्सुकता के साथ आपकी साइट देखी है, और मुझे सबसे इंटरेस्टिंग ये लगा कि आपकी साइट पर एक ऐसा टैब है जहां लोग करेक्शन और सजेशन भी दे सकते हैं। ऐसे कंस्ट्रक्टिव फीडबैक के लिए ओपन रहना ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। क्या आपको लोगों से सुझाव मिलना शुरू हुआ है क्या, और आप उन पर कैसे काम करते हैं?
8: हाँ सर, इन लोगों से बहुत सुझाव आते हैं सर। सुझाव दो प्रकार के आते हैं। एक सुझाव ऐसे आते हैं जो हमको करेक्शन सजेस्ट करते हैं कि इस प्रदेश में, इस टाइम में, इस राष्ट्र में ये राजा थे, या इस टाइम में ये युद्ध हुआ था, तो ऐसे कुछ सजेशन आते हैं। दूसरे सजेशन आते हैं कि आप इस वेबसाइट में ये फीचर भी डाल सकते हो या वो फीचर भी डाल सकते हो। तो हमको दोनों प्रकार के सजेशन आते हैं। तो जैसे अगर हमको ऐसा एक सजेशन आए कि इस प्रदेश में इस राजा ने इस टाइम पे राज किया था, तो हम वो सजेशन को लेते हैं। तो हमारे जो सोर्सेस है, जैसे हमको किसी ने सजेशन में दिया था कि हमने इंडिया को तो दिखा दिया, अगर प्रदेश के लेवल पे भी दिखा सकते हैं तो और अच्छा होगा, तो हमने वो फीचर इम्प्लीमेंट किया। और फिर हमने दूसरे एक फीचर आया था जिसमें हमने एक ट्रम्प कार्ड जैसा बनाया था, सारे एम्पायर के डेटा स्टेटिस्टिक्स देखे ताकि वो बच्चों तक पहुंच सके। तो किसी ने एक सजेशन दिया था कि उसको आप एक जगह पे लेके आइए ताकि हम सब डाउनलोड करके हम सब शेयर कर सके, तो वो हम फीचर इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। तो हमें जितना जानना इम्पोर्टेंट है कि हम गलती करेंगे, हम क्योंकि हम सर्वश्रेष्ठ नहीं है, और वो जान के ही हमने वो करेक्शन का टाइम लगाया ताकि ये हम सबकी साइट हो, और आगे जाके सारे कॉन्ट्रीब्यूशन के हिसाब से हम एक ऐसा साइट बनाए जो अगले कुछ साल तक इतिहास एक मजेदार सब्जेक्ट बनाए।
7: कृष्णा जी, आपने सचमुच में बहुत बड़ा काम किया है। अच्छा, हिस्ट्री के अलावा आपकी कई सारी हॉबीज होगी, और भी बहुत कुछ करते होंगे आप?
8: नहीं सर, हम थोड़े बोरिंग टाइप आदमी हैं सर। हम टेक्नोलॉजी में बहुत दिलचस्पी रखते हैं और इतिहास में रखते हैं, और जब हम टेक्नोलॉजी और इतिहास मिल गया, इसी में हम डूबे रहते हैं पूरा दिन।
7: चलिए कृष्णा जी, आपको मेरी बहुत बहुत शुभकामना है, आपने एक अच्छी शुरुआत की है। और आपका तरीका भी ऐसा है कि लोग जुड़ेंगे, मुझे पूरा विश्वास है। मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं है। साथियों, कृष्णा जी का ये प्रयास सिर्फ इतिहास के विद्यार्थियों को नहीं, ये हम सबको अपने अतीत को रोचक तरीके से जानने में मदद करेगा। आपके पास भी ऐसे प्रयासों के बारे में जानकारी हो तो उसे जरूर शेयर करें। मेरे प्यारे देशवासियों, नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत ये अभियान इस समय पूरे देश में तेजी से आगे बढ़ रहा है। इसका लक्ष्य बिल्कुल साफ है, नशा मुक्त युवा, ड्रग फ्री इंडिया। बहुत सारे लोग, विशेषकर हमारे युवा, बहुत बड़ी संख्या में इसका हिस्सा बन रहे हैं। आखिर यह भारत के युवाओं की हेल्थ, उनकी हैप्पीनेस और उज्जवल भविष्य के लिए ही हमारा सामूहिक संकल्प है। साथियों, नशे की लत सिर्फ एक व्यक्ति को अपने लपेटे में नहीं लेती, इसके दुष्परिणाम पूरे परिवार और समाज को भी झेलने पड़ते हैं। मैं उन लोगों की सराहना करूंगा जो ड्रग्स के खिलाफ दूसरों को जागरूक करते हैं और नशे की लत से जूझ रहे लोगों की मदद में आगे आते हैं। नशा मुक्त भारत के लिए क्या आप कोई पावरफुल स्लोगन बना सकते हैं, कि हमारे यंग म्यूजिशियंस ऐसे सॉन्ग्स बना सकते हैं जिनमें ड्रग फ्री लाइफ का मैसेज हो? क्या स्टूडेंट्स और थिएटर ग्रुप्स दिल को छू लेने वाले शॉर्ट प्ले लिख सकते हैं जिनमें ड्रग्स के खतरों के साथ साथ उनसे बाहर निकलने का रास्ता भी हो? हमारे देश में बेहतरीन कंटेंट क्रिएटर्स की कमी नहीं है। मेरा आग्रह है कि वे अलग अलग भाषाओं में ऐसा कंटेंट बनाएं जिससे इस दिशा में समाज को मदद मिले। आप अपने प्रयासों को हैशटैग के साथ सोशल मीडिया पर भी जरूर शेयर करें। कई बार क्रिएटिव एफर्ट फॉर्मल कैंपेन से ज्यादा असरदार होते हैं। आइए भारत के युवा को नशे से दूर रखने, नशे से मुक्त रखने, इस पवित्र कार्य में हम सब अपनी भूमिका निभाएं। आप अपने प्रयास को हैशटैग नशा मुक्त युवा के साथ सोशल मीडिया पर भी जरूर शेयर करें। मेरे प्यारे देशवासियों, अगस्त के महीने में हमें हर तरफ देशभक्ति के अनेक रंग देखने को मिलते हैं। इस समय हर व्यक्ति के मन में राष्ट्र प्रेम की भावना और प्रबल हो जाती है। नेशनल हैंडलूम डे और भारत छोड़ो आंदोलन की वर्षगांठ से लेकर विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस इसे खास बनाते हैं। स्वतंत्रता दिवस और नेशनल स्पेस डे, इसके अवसर तो हर देशवासी को गर्व से भर देते हैं। हर घर तिरंगा अभियान इस भावना को और मजबूत करता है। वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने से यह साल और भी विशेष बन गया है। इस बार 8 करोड़ से अधिक तिरंगा सेल्फी अपलोड की गई और तिरंगे का ये उत्सव केवल भारत तक ही सीमित नहीं रहा। इस साल सूर्य पर तिरंगा के जरिए हमारा तिरंगा दुनिया भर की एक अनोखी यात्रा पर निकला। फिजी के सुवा में सूरज की पहली किरण के साथ तिरंगा फहराया गया। इसके बाद एशिया, अफ्रीका, यूरोप और फिर अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को तक इंडियन मिशंस और पोस्ट पर तिरंगा लहराता गया। आप कल्पना कर सकते हैं ये दृश्य कितने अद्भुत रहे होंगे। जैसे जैसे दुनिया भर में सूरज आगे बढ़ता गया, वैसे वैसे भारतीय तिरंगा भी लहराता गया। ऐसे प्रयास समाज को एक सूत्र में पिरोते हैं। इनसे देश के साथ भी हमारा जुड़ाव और गहरा होता है। इन प्रयासों में शामिल सभी लोगों को मेरी बहुत बहुत बधाई। मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे शहरों और कस्बों की सड़कों पर रोज सुबह से शाम तक लाखों महिलाएं अपने अपने काम में जुटी रहती हैं। कोई सब्जी बेचती हैं, कोई फल, कोई चाय का ठेला लगाती है, तो कोई फूल, दिए और पूजा की सामग्री बेचती है। कई बार बस थोड़ी सी पूंजी की कमी इनके कारोबार को आगे बढ़ने से रोक देती है। लेकिन अब ऐसी लाखों माताओं बहनों को पीएम स्वनिधि योजना से नई ताकत मिल रही है। महिला सशक्तिकरण के इस पहलू की उतनी चर्चा नहीं होती जितनी होनी चाहिए। पीएम स्वनिधि योजना के लाभार्थियों में करीब 46% महिलाएं हैं, यानी देश भर में लगभग 35 लाख महिलाएं इस योजना से जुड़कर अपने कारोबार को आगे बढ़ा रही हैं। साथियों, गाजियाबाद की बबीता शर्मा जी इसका बहुत अच्छा उदाहरण है। बबीता जी पूजा की सामग्री का एक छोटा सा स्टॉल लगाती थी। फूल, दिए, अगरबत्ती, नारियल जैसी चीजें बेचकर वो अपने परिवार की आजीविका में हाथ बंटाती थी। मेहनत खूब थी, लेकिन कारोबार बढ़ाने के लिए पूंजी की जरूरत थी। पीएम स्वनिधि से उन्हें आर्थिक मदद मिली। उन्होंने अपने स्टॉल पर सामान बढ़ाया, कारोबार का विस्तार किया, ग्राहक बढ़े, आमदनी बढ़ी और धीरे धीरे सड़क किनारे का उनका छोटा सा स्टॉल एक दुकान में बदल गया। साथियों, बेंगलुरु की टीएस निंगम्मा जी की मिसाल भी बहुत प्रेरक है। निंगम्मा जी और उनके पति ने मिलकर इडली, डोसा और सांभार बेचने का छोटा सा काम शुरू किया। काम चल पड़ा, लेकिन इसे आगे बढ़ाने के लिए पूंजी की जरूरत थी। निंगम्मा जी को भी पीएम स्वनिधि से सहयोग मिला। उन्होंने अपनी कार्ट बेहतर की, सामान थोक में खरीदना शुरू किया और मेनू में भी कई नई चीजें जोड़ी। ग्राहक बढ़े, कमाई बढ़ी और परिवार की आर्थिक स्थिति बेहतर हुई। आज वो अपने 3 बच्चों को बेहतर एजुकेशन देने में सक्षम हुई है। साथियों, जब एक महिला का कारोबार बढ़ता है तो उसके साथ पूरे परिवार का भविष्य आगे बढ़ता है। बच्चों की एजुकेशन बेहतर होती है, घर की जरूरतें पूरी होती हैं और महिला के भीतर आत्मविश्वास और मजबूत होता है। यही तो है महिला सशक्तिकरण का एक जीवंत रूप। मैं रेहड़ी पटरी के काम से जुड़ी सभी बहनों को उनके उज्जवल भविष्य के लिए बहुत शुभकामनाएं देता हूं। मेरे प्यारे देशवासियों, स्वच्छता की एक बहुत बड़ी खूबी होती है। जब किसी जगह को स्वच्छ रखने का संकल्प वहां के लोगों का अपना संकल्प बन जाता है तो बदलाव केवल साफ सफाई तक सीमित नहीं रहता। इससे उस जगह की पूरी पहचान ही बदल जाती है। देश के अलग अलग हिस्सों में स्वच्छता के लिए ऐसे प्रयास हमें निरंतर प्रेरणा देते हैं। उत्तर प्रदेश के रामपुर में एक गांव है पटवाई। वहां आकाश और रोहन नाम के 2 दोस्तों ने देखा कि उनके आसपास का इलाका गंदगी से भर गया है। बस फिर क्या था, आकाश और रोहन ने कचरे के बैग उठाए और सफाई के लिए निकल पड़े। धीरे धीरे दूसरे युवा भी उनके साथ जुड़ने लगे। एक टीम भी बन गई जिसका नाम है क्लीनअप पटवाई। ये युवा अब तक 4 गंगा घाटों को साफ कर चुके हैं, 1 टन से अधिक प्लास्टिक कचरा हटा चुके हैं। इन्होंने कितने ही तालाबों और सार्वजनिक जगहों की सफाई की है। साथियों, इस बार श्री अमरनाथ जी की यात्रा में भी स्वच्छता और जनभागीदारी की ऐसी ही प्रेरक तस्वीर देखने को मिली। कठिन रास्तों पर हजारों स्वच्छता कर्मी दिन रात सेवा में जुटे रहे। इस वर्ष यात्रा के दौरान 400 मीट्रिक टन से ज्यादा कचरे को कलेक्ट और प्रोसेस किया गया। मुझे इस प्रयास की एक बात विशेष रूप से अच्छी लगी, स्वच्छता के इस अभियान में श्रद्धालु भी भागीदार बने। 16,000 से अधिक यात्रियों ने स्वच्छता का संकल्प लिया। 10,000 से अधिक यात्रियों को रिस्पॉन्सिबल यात्री सर्टिफिकेट भी दिया गया। यहाँ एक बहुत अनोखा प्रयोग भी हुआ। यात्रा में घोड़ों और खच्चरों के गोबर को बायोगैस में बदला गया और उसी क्लीन एनर्जी से स्वच्छ ज्योत प्रज्वलित की गई। यानी बाबा बर्फानी की इस पवित्र यात्रा में स्वच्छता भी सेवा और आस्था का एक रूप बन गई। साथियों, हमारे गांव हो या शहर, हमारी नदियां हो या तीर्थस्थल, इनकी पहचान हमारे व्यवहार से भी बनती है। और जब स्वच्छता इस व्यवहार में शामिल हो जाती है, उस स्थान की शोभा और बढ़ जाती है। मेरे प्यारे देशवासियों, कभी कभी हमारा एक छोटा सा शौक जीवन में एक बड़ी संभावना का रास्ता खोल देता है। नागालैंड के फेक जिले की वैशालु पुरोजी की यात्रा भी कुछ ऐसी ही है। वैशालु जी किसान परिवार में पली बढ़ी। बचपन से उन्होंने अपने माता पिता को खेती करते देखा था और उन्हें खुद फूलों से बहुत लगाव था। साल 2021 में उन्होंने इसी शौक के साथ छोटे स्तर पर फूल उगाने की शुरुआत की। धीरे धीरे उन्हें इसमें एक संभावना दिखाई देने लगी। उन्होंने देखा कि शादी विवाह हो या फिर अन्य त्योहार, फूलों की मांग हमेशा बनी रहती है। वैशालु जी ने अपने इस शौक को आगे बढ़ाने का फैसला किया। इस सफर में उन्हें स्थानीय कृषि विज्ञान केंद्र से फूलों की वैज्ञानिक खेती की ट्रेनिंग मिली। फिर उन्होंने केवल एक चौथाई एकड़ जमीन पर ग्लेडियोलस के हजारों पौधे लगाए। पहले ही प्रयास में 5,000 से ज्यादा फूल खिल उठे। साथियों, ये सफलता वैशालु जी के लिए एक नई शुरुआत बन गई। उन्होंने फूलों की खेती को और आगे बढ़ाया। जो फूल कभी स्थानीय बाजार में रह जाते थे, आज वो नागालैंड से निकलकर दिल्ली और मुंबई जैसे शहरों तक जा रहे हैं। वैशालु पुरोजी की यात्रा हमें बताती है कि शौक जब मेहनत और सही मार्गदर्शन से जुड़ जाता है तो वह नई संभावनाओं का रास्ता खोल सकता है। मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे आसपास ऐसे कई लोग हैं जो एक छोटा सा प्रयास शुरू करते हैं और देखते ही देखते उनका प्रयास बहुत से लोगों के जीवन में बदलाव का रास्ता बना देता है। ओडिशा के देवरीगढ़ में एक गांव है, धोडरो कुसुम। कुछ साल पहले तक इस गांव की मैथिली भुए जी लगभग हर दिन जंगल जाती थी, कभी जलावन की लकड़ी लेने, कभी महुआ और केंदू पत्ता चुनने, तो कभी बांस की कोंपले और दूसरी वनुपज लाने। उनके और वहां के अनेक परिवारों की बहुत सी जरूरतें इसी जंगल से पूरी होती थी। लेकिन फिर मैथिली जी देवरीगढ़ इको टूरिज्म से जुड़ी। यहां से जंगल के साथ उनका रिश्ता एक नई दिशा में बदल गया। अब जंगल का संरक्षण भी उनकी आजीविका का माध्यम बन गया। साथियों, मैथिली जी के जीवन में आए इस बदलाव ने दूसरी महिलाओं को भी प्रेरित किया। आज 60 से अधिक महिलाएं जंगल के संरक्षण में जुड़ चुकी हैं। कोई वन्य जीवों की सुरक्षा का दायित्व संभाल रही है, कोई घास के मैदानों के विकास से जुड़ी है, तो कुछ महिलाएं इको टूरिज्म एक्टिविटीज में योगदान दे रही हैं। साथियों, मैथिली जी और देवरीगढ़ की इन बहनों ने दिखाया है कि प्रकृति की रक्षा भी हो सकती है और जीवन में समृद्धि भी आ सकती है। इन सभी बहनों का प्रयास हम सभी के लिए बहुत बड़ी प्रेरणा है। साथियों, आज हमारी बेटियों के सपनों की उड़ान धरती से निकलकर अंतरिक्ष तक पहुंच रही है और आपको यह जानकर गर्व होगा कि भारत ऐसे सपने देखने वाली दुनिया की हजारों बेटियों को एक साथ जोड़ रहा है। इस प्रयास का नाम है मिशन शक्ति सेट। इसके माध्यम से 108 देशों की 12,000 छात्राओं को सैटेलाइट टेक्नोलॉजी सीखने और इनोवेशन के क्षेत्र में आगे बढ़ने का अवसर मिल रहा है। 23 अगस्त नेशनल स्पेस डे पर इस मिशन की एक सुंदर तस्वीर उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में देखने को मिली। गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय में मिशन शक्ति साइट के दूसरे चरण की शुरुआत हुई। इस अवसर पर दुनिया के अलग अलग देशों और भारत से आई करीब 100 छात्राएं एक साथ जुटी। भारत के दूर दराज क्षेत्रों से चुनी हुई छात्राएं भी इसमें हिस्सा ले रही हैं। इस पूरे प्रयास का लक्ष्य भी बहुत खास है। पूरी तरह छात्राओं की भागीदारी से तैयार एक सैटेलाइट को मून की ऑर्बिट में भेजने की तैयारी है। साथियों, मुझे विश्वास है कि इनमें से अनेक छात्राएं आने वाले समय में साइंस, टेक्नोलॉजी और इनोवेशन के क्षेत्र में अपनी नई पहचान बनाएगी। मेरे प्यारे देशवासियों, आजकल एवोकाडो फल की बड़ी धूम है। इस फल को पहले शायद ही कोई जानता था। इसकी वैल्यू और डिमांड दोनों कम थी, लेकिन आज इसे डाइनिंग टेबल पर खूब देखा जा रहा है। आज यह हेल्थ और प्रीमियम मार्केट की पसंद बन गया है। हमारे किसान भाई बहनों के लिए भी ये बहुत मददगार है। आंध्र प्रदेश में कड़पा के वरदराज जी का उदाहरण है। वे कई वर्षों से अपने खेत में टमाटर और केले की खेती कर रहे थे। एक दिन उन्होंने अपने दोस्तों के फार्म में एवोकाडो की फसल देखी। इसके बाद उन्होंने YouTube से इस पर जानकारी जुटाई। अब तक वे करीब 4 टन एवोकाडो का उत्पादन कर चुके हैं। आज वे सीधे स्थानीय दुकानों को इसकी सप्लाई कर रहे हैं। नई फसल, वैज्ञानिक सलाह और सीधी मार्केटिंग से उनके छोटे से फार्म की कमाई पूरी तरह बदल गई है। तमिलनाडु के कोडाईकनाल के किसान चंद्रशेखरन जी ने आधी हेक्टर जमीन पर एवोकाडो उगाना शुरू किया। उन्हें इसके अच्छे दाम मिल रहे हैं और कमाई भी बढ़ी है। कर्नाटका में चिकमंगलुरु के कुछ किसान भाई बहनों ने तो कॉफी प्लांटेशन के बीच एवोकाडो लगाया है। इससे उन्हें कॉफी और काली मिर्च के साथ अतिरिक्त कमाई भी हो रही है। साथियों, हम शहरों के रेस्टोरेंट में अक्सर एवोकाडो टोस्ट के बारे में सुनते हैं, लेकिन इसी एवोकाडो के जरिए हमारे इनोवेटिव किसानों ने कमाई की एक नई रेसिपी ढूंढ ली है। यानी अपने देश के एवोकाडो से आपके टोस्ट का स्वाद भी बढ़ा और किसानों की आमदनी भी बढ़ गई है। मेरे प्यारे देशवासियों, कुछ ही दिनों में 3 सितंबर को हम महानायक उत्तम कुमार जी की जन्म शताब्दी मनाएंगे। साथियों, उत्तम कुमार जी एक वर्सेटाइल एक्टर थे जो अपने अभिनय से लोगों के दिलों में रस बस गए। फिल्म लवर्स का मानना है कि श्रीमान सत्यजीत रे ने फिल्म नायक द हीरो की पूरी स्क्रिप्ट महानायक उत्तम कुमार जी को ध्यान में रखकर लिखी थी। श्रीमान सत्यजीत रे ने कहा था कि उनमें डिग्निटी के साथ साथ अद्भुत इमोशनल डेप्थ भी था। किरदार को वो जीवन बनाने के लिए बहुत मेहनत करते थे। उत्तम कुमार जी अपनी सहजता के साथ ही फिलेंथ्रोफी के लिए भी जाने जाते थे। उनके जीवन से कभी भी हार न मानने की एक और बड़ी सीख भी मिलती है। उनकी शुरुआती फिल्में बहुत नहीं चली, लेकिन उन्होंने अपने काम पर फोकस बनाए रखा। इसी का परिणाम था कि उन्होंने इतनी ऊंचाई हासिल की। साथियों, मुझे ध्यान है कि जब मैं कोलकाता में रोड शो कर रहा था तो मैं उत्तम कुमार जी के घर के सामने से भी गुजरा था। वहां मुझे एक व्यक्ति ने उनकी एक तस्वीर भी भेंट की थी। मैं एक बार फिर महानायक उत्तम कुमार जी को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। वे हमेशा हम सबके दिलों पर राज करते रहेंगे। महानायक उत्तम कुमार चिरोदिन मानुषे हृदय राज कोरबैन। मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे पर्व और त्योहार हमारी परंपराओं के साथ साथ हमें एक दूसरे से जुड़ने का भी अवसर देते हैं। आने वाले दिनों में हम और भी कई महत्वपूर्ण पर्व मनाने जा रहे हैं। 4 सितंबर को जन्माष्टमी का पावन पर्व है। सितंबर में ही हम विश्वकर्मा पूजा भी मनाएंगे। इस अवसर पर अपने आसपास के कारीगरों, शिल्पकारों और विश्वकर्मा साथियों का सम्मान करना चाहिए। कुछ महीनों बाद दीपावली भी आने वाली है, इसकी तैयारियां भी धीरे धीरे शुरू हो रही है। त्योहारों के इस मौसम में मैं एक बार फिर आपसे वोकल फॉर लोकल का आग्रह दोहराऊंगा। और वोकल फॉर लोकल का मतलब केवल मिट्टी के दिए खरीदना नहीं है, इसका विजन बहुत बड़ा है। हम अपने घर के लिए जो भी सामान खरीदते हैं उसे एक बार जरूर देख लें कि वो भारत में बना हो। भारत के आत्मनिर्भर बनने का मार्ग भारत में बनी चीजों पर गर्व करने से ही प्रशस्त होगा। इस संदेश को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाना भी हमारी जिम्मेदारी है। हमारे क्रिएटिव वर्ल्ड के साथियों, इन्फ्लुएंसर्स और सेलिब्रिटीज की भी इसमें बहुत बड़ी भूमिका है। मेरा आपसे आग्रह है कि स्वयं भी वोकल फॉर लोकल को अपनाएं और दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित कीजिए। साथियों, आपके आसपास भी ऐसे अनेक लोग होंगे जो अपने छोटे छोटे प्रयासों से समाज में बड़ा बदलाव ला रहे हैं। आप उनके बारे में मन की बात के लिए जरूर लिखिए। आपका भेजा हुआ अनुभव देश के किसी कोने में किसी के लिए नई प्रेरणा बन सकता है। मुझे आपके सुझावों और अनुभवों की प्रतीक्षा है। बहुत बहुत धन्यवाद।

हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलो हर्ट्ज पर। 12:10 हो रहे हैं। समय है साप्ताहिक कार्यक्रम आपका पत्र मिला का।

0: कार्यक्रम आपका पत्र मिला। सुनने वाले हमारे सभी सुधीर श्रोताओं को और प्यारे प्यारे श्रोताओं को मनोज वर्मा और मेरे साथ नमस्कार।
1: रिमझिम बलूनी की ओर से प्यार भरा नमस्कार।
0: लीजिए, आज के इस अंक में हम एक बार फिर हाजिर हैं आपकी सेवा में और आपके खतों को पढ़ने के लिए, आपके SMS जो हमें लगातार मिल रहे हैं उनको पढ़ने के लिए। बस यही रहेगा कि आज 20 मिनट का ये कार्यक्रम रहेगा बजाय 25 के, तो थोड़ा सा सामंजस्य बना कर रखें आप। और शुरुआत तो हम कर ही देते हैं कि वक्त बहुत कीमती होता है, तो पहला रिमझिम आप पढ़िएगा।
1: जी, ये मैसेज हमें मिला है नगीना से। ये मैसेज भेजने वाले हैं अनिल विनोचा जी, और ये लिख रहे हैं कि आज के प्रोग्राम की जिम्मेदारी को संभाले रहे हैं रिमझिम जी और मनोज जी। और ये सबसे पहले लिख रहे हैं सलाम, और आगे लिखते हैं कि आगे ये लिख रहे हैं हम एक दूजे की ताबेदारी निभा रहे हैं और हाजिर है, बहुत सारी शिकायतें, सुझाव और तारीफ। तो इन्होंने लिखा है कि ट्यूसडे को जो प्रसारित हुई परिचर्चा नारी शक्ति पर आधारित, वो इन्हें अच्छी लगी। मंडे के सभी प्रोग्राम अच्छे लगे, फरीना और जसवंत जी ने, अलका जी ने जो पेश किए, फरीना जी ने पेश किए, वो इन्हें पसंद आए। और ट्यूसडे को चरणजीत जी, रेणु कोटनाला जी ने जो प्रोग्राम किए वो भी बहुत अच्छे लगे। जिंदगी लाइव दोस्ती टॉपिक पर फैजुर रहमान जी ने बहुत ही लाजवाब प्रस्तुति अपनी दी, और सच में इनका दिल जीत लिया। और आज संडे को रिमझिम जी सुबह से कैप्टनशिप कर रही हैं, और गीत तुम्हारे से पूरी एनर्जी से मनोज जी मैसेज रीड कर रहे हैं। सच वो ज़्यादा से ज़्यादा मैसेज रीड करने की पूरी कोशिश में लगे हैं। इन्होंने ये लिखा हुआ है, और आगे ये लिख रहे हैं कि उनके इस प्रयास के लिए उन्हें मेरा नमन। राजवीर और हुमा जी ने भी अच्छे सॉन्ग प्ले किए। शिकायत तो वही पुरानी है, मतलब कोई शिकायत है ही नहीं।
0: क्या बात है।
1: और आप सभी बड़े मन से प्रोग्राम करते हैं, सच आपसे आपके समर्पण का कोई भी जवाब नहीं है। और यही कह रहे हैं कि श्रोता के
0: पसंदीदा
1: पसंदीदा
0: प्रोग्राम
1: प्रोग्राम
0: का
1: को
0: समय
1: समय बढ़ा दीजिए।
0: बढ़ाने
1: जी जी
0: बढ़ा दें बस,
1: जी
0: है ना।
1: बिल्कुल
0: चलिए, धन्यवाद। बहुत बहुत ही हमारे पहले श्रोता रहे हैं अनिल विनोचा साहब, और इनका पूरा परिवार नगीना से हैं। और आज के प्रोग्राम की बात लिखी कि भाई रिमझिम ने संभाली हुई है, तो बिल्कुल संभाली हुई है। सुबह सवेरे से ही रिमझिम थी, उसके बाद 10 बजे से रिमझिम के साथ हम जुड़े हैं। और कह रहे हैं कि साहब जो ट्यूसडे को परिचर्चा हुई थी नारी शक्ति पर, बहुत अच्छी लगी। बहुत अच्छी बात है कि आपको अच्छी लगी। और फरीना जी, जसवंत जी, अलका और चरणजीत, रेणु कोटनाला के प्रोग्राम अच्छे लगते हैं आपको, बहुत खुशी की बात है। आप इसी तरीके से सुनते रहिएगा। फैजुर रहमान भी को भी आपने पसंद किया है जिंदगी लाइव के जरिए। बिल्कुल, वो कल जिंदगी लाइव निभा रहे थे। बहुत खुशी की बात है कि आपने उस प्रोग्राम को सुना और उसमें हिस्सा भी लिया होगा, ऐसी हमें पूरी उम्मीद है। और बाकी जो लिखा है आपने कि राजवीर भी और हुमा ने भी कार्यक्रम अच्छा पेश किया, तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और हमारे बारे में जो भी आपने लिखा है वो हम तक पहुंच गई है, इसके लिए हम बस आपका दिल से आभार, दिल से धन्यवाद देना चाहेंगे। और ये कहेंगे कि बस इसी तरीके से आप कार्यक्रमों को हमारे सुनते रहिएगा, और इसी तरीके से हमें और हम सबका हौसला अफजाई करते रहिएगा। एक बार फिर आपको बहुत बहुत धन्यवाद रिमझिम। ये
1: जी
0: मैसेज देखिएगा।
1: जी ये मैसेज मिला है गांव जेवरा से वीरेंद्र भयान, सुरेंद्र भयान, शमशेर और मनोज भयान जी का। ये लिख रहे हैं कि सबसे पहले इन्होंने नमस्कार लिखा है, आगे ये लिखते हैं हम काफ़ी दिनों से आपके प्रोग्राम सुन रहे हैं जो बहुत इन्हें पसंद आ रहे हैं, खासकर आपके प्रोग्राम युवाणी गीत तुम्हारे, और व्हाट्सएप जो फरमाइश मैसेजेस के द्वारा भेजी जाती है। रात को 10:30 बजे प्रोग्राम आता है, और हेलो नजीबाबाद भी उसमें शामिल है। वो प्रोग्राम इन्हें ज़्यादा पसंद आते हैं। अगर आप इनके मैसेजेस उसमें शामिल नहीं करते, इन्हें थोड़ी शिकायत है
0: वो तो
1: हमसे,
0: होता ही है
1: है
0: खैर।
1: ना। आप कोई फरमाइशी ईमेल कार्यक्रम भी प्रस्तुत करते हैं, व्हाट्सएप पर भी आधारित है, अगर ईमेल आईडी हो तो बताएं, उस पर भी फरमाइश भेज देंगे। और हमें कुलदीप वर्मा की प्रस्तुति बहुत अच्छी लगती है जब वे बोलते हैं,
0: कि हमारे सुनने वाले ये श्रोता
1: श्रोता
0: भी
1: भी
0: हैं,
1: हैं,
0: अगले
1: अगले
0: सुनने
1: सुनने
0: वाले
1: वाले।
0: आप भी हैं। ये प्रस्तुति दिल को छू जाती है।
1: जी
0: कुलदीप वर्मा लिखा है भाई नाम इन्होंने, कहाँ गड़बड़ी
1: हाँ,
0: हुई है
1: कहीं
0: ना।
1: नाम लिखने
0: तो
1: में थोड़ा सा
0: ये
1: गड़बड़
0: है,
1: कर
0: ये
1: दिया है।
0: इन्होंने यहाँ पे इसको दुरुस्त
1: जी
0: किया
1: जी
0: है ना,
1: बिल्कुल,
0: ये
1: मनोज वर्मा वो कहना
0: हाँ
1: चाहते
0: ये
1: हैं।
0: हमें कहना चाह रहे हैं।
1: जी
0: चलिए
1: हाँ
0: खैर धन्यवाद बहुत बहुत। ये है हमारे गांव जेवरा से वीरेंद्र भयाण सुरेंद्र और इनका पूरा ही भयाण परिवार। और आपको ये सारे कार्यक्रम बहुत अच्छे लगते हैं। रही बात इसकी कि भाई ईमेल कार्यक्रम का भी एक होना चाहिए, तो युववाणी कार्यक्रम पर भी हमारे ईमेल पर आधारित कार्यक्रम होते हैं, उसको भी आप सुनिएगा। और इसमें भी हम कोशिश करेंगे कि ईमेल आपको दे दें। तो इसी तरीके से आप तारतम्य बनाए रखिएगा, सामंजस्य बनाए रखिएगा और हम सबकी हौसला अफजाई करते रहिएगा। हमारी बात आपको पसंद आती है, उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। और यही कहना चाहेंगे कि भाई इसी तरीके से आप सुनते रहिएगा और अपने व्यूज़ हमें देते रहिएगा। ये मैसेज आप फरीना फरीना सॉरी ये
1: जी
0: रिम
1: बिल्कुल।
0: झिम्बल जी।
1: अगला मैसेज हमें मिला है सब्जी मंडी नजीबाबाद से। विष्णु अग्रवाल, रानी अग्रवाल और निकित अग्रवाल हमें भेज रहे हैं।
0: जी
1: ये लिखते हैं कि 29 अगस्त को 12:05 पर जो फैजुल रहमान जी की प्रस्तुति थी, उन्होंने दोस्ती टॉपिक लिया था और श्रोताओं के विचार बहुत अच्छे लगे कार्यक्रम में उन्हें, और दीपांशु श्रोता के विचार सर्वश्रेष्ठ लगे जी। और इतने सफल प्रसारण के लिए शोभित शर्मा जी और अंकित सैनी और फैजुल रहमान तीनों को बधाइयाँ। और आगे लिख रहे हैं कि 3 अगस्त को 7:31 पर सूरज के साथ साथ कार्यक्रम रिमझिम बलूनी जी, प्रस्तुति में खुशियाँ रिश्वतें, और ये कुछ लिखने में थोड़ी सी गलती हुई
0: हाँ
1: है,
0: जी लघु
1: लघु
0: उद्योग
1: उद्योग
0: इनके बारे में
1: बन
0: जानकारी
1: जाते हैं
0: रोचक
1: रोचक
0: लगी।
1: लगे
0: 10 बजे गीत तुम्हारे कार्यक्रम में
1: जी
0: मनोज
1: जी
0: वर्मा और रिमझिम बलूनी, इन दोनों की प्रस्तुति में कार्यक्रम अच्छा लगा। मैसेज की संख्या 160 रही, क्या
1: इन्होंने
0: बात
1: मैसेज भी
0: है।
1: हमारे काउंट कर
0: आप
1: लेते
0: दोनों
1: हैं
0: को बहुत बहुत बधाई है, मनोज वर्मा और रिमझिम बलूनी जी को।
1: जी,
0: ये
1: इन्होंने हमारे
0: हमारे
1: मैसेजेस का पूरा हिसाब रखा
0: देखिएगा
1: हुआ
0: पूरा गणित इन्होंने बनाकर रखा है,
1: है
0: 160 मैसेज। बहुत
1: जी
0: अच्छी बात
1: जी
0: है। सब्जी मंडी नजीबाबाद के हमारे नियमित श्रोता हैं विष्णु अग्रवाल, रानी अग्रवाल, निकित अग्रवाल। और आपने 29 अगस्त को लिखा है कि भाई फैजुर रहमान साहब की आपको प्रस्तुति अच्छी लगी, तो इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इसके अलावा आपको विचार जो हमारे श्रोता फीडबैक देते हैं वो भी
1: वो
0: अच्छे
1: भी
0: लगे,
1: अच्छे
0: उनके
1: लगे
0: लिए भी आपका शुक्रिया। और आपने लिखा है शोभित शर्मा, अंकित सैनी और फैजुर रहमान साहब तीनों को बताइए, तो बिल्कुल वहां तक पहुंच रही हैं। और सूरज के साथ साथ की बात लिखी है इन्होंने आज की, तो आपके पास भी ये रिमझिम बधाई पहुंच रही है
1: जी जी
0: और हमारे बारे में भी जो भी लिखा है आपने तो वो हम तक पहुंच रहा है। एक बार फिर आपका धन्यवाद। इसी तरीके से आप कार्यक्रम को सुनते रहिएगा, अपने फीडबैक देते रहिएगा। रिमझिम
1: जी
0: अगला SMS पढ़िए।
1: जी ये मैसेज हमें मिला है मोहल्ला हलवायान शेरकोट बिजनौर से, मोहम्मद वकार फरीदी, इकबाल फरीदी, सितारा बेगम, नसरीन परवीन, रोजी खान, बिट्टू भैया और हिना कौसर इस मैसेज को भेज रहे हैं। आपको हमारा प्यार भरा सलाम और पूछ रहे हैं कि आप कैसे हैं।
0: बहुत अच्छे हैं,
1: हम सब आपके रेगुलर लिसनर्स हैं, सभी प्रोग्राम सुनते हैं, पसंद आते हैं हमें। 1 अगस्त का गीत तुम्हारे जो ताहिर महमूद जी और अलका जी ने पेश किया था वो काफ़ी पसंद आया, और जिंदगी लाइव भी इन्हें पसंद आया अलका जी ने जो पेश किया था। इसके अलावा 31 जुलाई का गीत तुम्हारे और राजवीर सिंह जी और अनुपम जी ने पेश किया था वो भी इन्हें अच्छा लगा। हेलो नजीबाबाद और रात के हम सफ़र जो लोकेंद्र जी ने पेश किया वो भी पसंद आया। 30 जुलाई का गीत तुम्हारे नमित जी ने किया, मनोज वर्मा जी ने किया था वो इन्हें पसंद आया जी। एक शिकायत है आपसे कि जब गीत तुम्हारे प्रोग्राम पेश किया जाता है या फिर आपका पत्र मिला पेश किया जाता है तो दोनों प्रोग्राम को आवाज़ों में दो आवाज़ों में होते हैं, एक ही आवाज़ सही आती है और दूसरे की बहुत कम आती है, इन्हें ऐसा लगा है। तो बिल्कुल पता नहीं चल पा रहा है, इन्हें नहीं चल पा रहा है, ये चाहते हैं कि एक एक की आवाज़ इन्हें कम लगती है और एक का लेवल ज़्यादा लगता है ना। और आगे लिखते हैं एक अनुसार खत पढ़े और दूसरे अनुसार मैसेज पढ़े।
0: अच्छा ये कहना
1: जी
0: चाह रहे हैं,
1: जी
0: तो अब देखिए ऊपर से लेते हैं हम, और वकार फरीदी के साथ में इनका पूरा परिवार है, मोहल्ला हलवाईयान शेरकोट बिजनौर के हमारे श्रोता हैं। और इन्होंने बहुत सारे हमारे जो साथी हैं उनके नाम लिखे हैं, ताहिर महमूद हो गए है ना, और साहब इसके लिए अनुपम हो गई है ना, और नमित राज हो गए, हम हो गए है ना, जितने भी नाम इन्होंने लिखे हैं उनके लिए बहुत बहुत शुक्रिया कि उन सभी के कार्यक्रम इनको
1: जी
0: पसंद आ रहे हैं, और ये वाली बात कहना चाह रहे हैं कि भाई अगर हम गीत तुम्हारे कार्यक्रम करें तो इसके अंदर मैसेज या खत पढ़े जाते हैं, तो गीत तुम्हारे प्रोग्राम में इसके अंदर हम एक व्यक्ति यानी एक हमारा साथी खत पढ़े और एक
1: एक
0: हमारा, तो
1: मैसेज
0: देखिए बात वही की वही है। और हमारे अधिकतर जो श्रोता है ना वो SMS से भी तो जुड़ गए हैं ना, तो इसके लिए यही हम कहेंगे, बस ये कहेंगे कि सुनते रहिएगा इसी तरीके से आप, और शुरू से ही आप सुनते आ रहे हैं। धन्यवाद एक बार फिर आपका। रिमझिम
1: जी, ये जो अगला मैसेज हमें मिला है वो लिखते हैं, अभी इनका ये लिखने वाले हैं। जी, ये जो खत हमें लिखा है ये भेज रहे हैं मोहल्ला धर्मदास से, मोहम्मद सलमान और सभी लोग। जी
0: ये यहां से कह रहे हैं अभी ये।
1: जी मैंने पत्र लिखने वालों का नाम
0: जी
1: पहले
0: जी
1: बता
0: बिल्कुल
1: दिया है
0: बिल्कुल
1: ना। आज आपका कार्यक्रम गीत तुम्हारे बहुत अच्छा रहा, आपने बहुत अच्छे से सुनाया है मनोज वर्मा जी का, बहुत बहुत धन्यवाद। जाएगा मैं मोहल्ला धर्मदास से, मोहम्मद सलमान और सभी लोग
0: काम सही
1: काम सही
0: करते
1: करते
0: हैं,
1: हैं,
0: लेकिन
1: लेकिन मनोज
0: वाकई
1: वर्मा जी आप बहुत अच्छे से अपना काम
0: को
1: करते हैं।
0: अंजाम देते
1: जी
0: हैं।
1: बिल्कुल
0: चलिए भाई ये पहली बार आज हम इस कार्यक्रम में SMS पढ़ रहे हैं, तो मोहल्ला धर्मदास के सलमान साहब
1: जी
0: हैं ये, तो
1: जी
0: बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने इतना कीमती वक्त निकाला और इस बात को लिखा। आपने जो भी लिखा है उसके लिए तहे दिल से शुक्रिया। बस यही कहेंगे कि हमेशा आपका भी मैसेज शामिल किया ही जाता है और कई बार हम सुनते भी हैं, तो इसी तरीके से आप कार्यक्रम सुनते रहिएगा। आपका बहुत बहुत एक बार धन्यवाद
1: जी
0: अदा करना चाहेंगे।
1: लगातार मैसेजेस हमारे पास आ रहे हैं, बहुत सारे लोग अपनी फरमाइश भी हम तक भेज रहे हैं, तो हम उनसे यही कहेंगे कि आप ये कार्यक्रम है आपका पत्र मिला।
0: बिल्कुल बस ये कह रहे हैं कि चौपान मुदस्सिर दार आरिफ जम्मू और कश्मीर बडगाम बीरवाह से हैं कि मैं हूँ,
1: जम्मू
0: और
1: कश्मीर से सुन रहा हूँ।
0: जी,
1: जी
0: तमाम
1: जी
0: प्रोग्राम सुनता हूँ, और शुक्रिया आपका बहुत बहुत। आप इसी तरीके से सुनते रहिएगा।
1: जी
0: रिमझिम
1: इस मैसेज में सबसे पहले लिखा हुआ है कि कार्यक्रम पेश करने वालों को ये आदाब लिखते हैं, नमस्कार लिखते हैं, और नजीबाबाद केंद्र से प्रसारित होने वाले कार्यक्रम इन्हें अच्छे लगते हैं। सुबह सवेरे कार्यक्रम इन्हें बहुत अच्छा लगता है और इस कार्यक्रम में बहुत अच्छी जानकारी इन्हें प्राप्त होती है। मनोज कुमार जी की प्रस्तुति भी हमें अच्छी लगती है, फिल्मी संडे का कार्यक्रम अच्छा लगता है, जिंदगी लाइव में जो दोस्ती पर जो बात की गई वो भी इन्हें अच्छी लगी, श्रोताओं के विचार भी इन्हें अच्छे लगे। और इस पत्र को भेजने वाले हैं ग्राम करेली पुरानी मस्जिद बरेली से लाल मोहम्मद अंसारी, लालू मिस्त्री अंसारी और मोहम्मद मुनाजिर अंसारी।
0: हमारे नियमित श्रोता हैं
1: जी
0: रिमझिम, ये ग्राम करेली पुरानी मस्जिद बरेली के श्रोता हैं लाल मोहम्मद अंसारी, लालू मिस्त्री अंसारी, मोहम्मद मुनाजिर अंसारी, और कह रहे हैं कि साहब हमें आकाशवाणी नजीबाबाद के सभी कार्यक्रम अच्छे लगते हैं और हमारा भी इन्होंने नाम लिखा है, तो धन्यवाद यही मैं आपसे कहूँगा। और फिल्मी संडे कार्यक्रम आपको अच्छा लगता है तो आज भी फिल्मी संडे कार्यक्रम का क्रम है, उसमें भी सुनिएगा, और आज की फिल्म रहेगी हम हैं राही प्यार के, इसको सुनिएगा, ये हमने ही तैयार किया है। अगला मैसेज
1: जी अगला मैसेज हमें मिला है जसपुर रोड दूलापुर जिला मुरादाबाद से, भेजने वाले हैं महबूब दुकानदार, साहिबा महबूब, मोहम्मद समीर अंसारी, वारिस अंसारी और अलशिफा अंसारी। ये इन्होंने बहुत अच्छी लाइनें यहाँ पे लिखी है, समय हमारे पास थोड़ा कम है।
0: बिल्कुल पढ़ दीजिए, लेकिन ये मैं पढ़ देता हूँ।
1: जी जी
0: महफिलों की
1: जी
0: चमक से अब दिल भर गया है, तन्हाई का अंधेरा भी मेरा घर बन गया है, शिकवा करें भी तो किससे करें, इस दुनिया में हर शख्स अपनी ही धुन में सफर कर रहा है। बिल्कुल
1: जी
0: साहब
1: जी
0: हर व्यक्ति अपनी
1: जी
0: ही धुन में है, अपने कामकाज करने की जल्दी में है, और भाई बहुत ही रफ्तार जिंदगी की तेज हो गई
1: जी
0: है।
1: इन्होंने लिखा है रेगुलर लिसनर हैं और आपके सभी प्रोग्राम ही सुनते हैं, जैसे हेलो नजीबाबाद, गपशप अड्डा, आपकी फरमाइश, रात के हम सफ़र, गीत आपके नाम, जो भी कार्यक्रम है इन्हें पसंद आते हैं, सूरज के साथ साथ इन्हें पसंद आता है, और नजीबाबाद की पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई दे रहे हैं ये, और मैसेज शामिल करने के लिए धन्यवाद।
0: बिल्कुल मैसेज आपका शामिल हो गया है साहब। महबूब दुकानदार, बेगम साहिबा महबूब और इनका पूरा परिवार जसपुर रोड दूल्हापुर जिला मुरादाबाद के श्रोता हैं, और आपने लिखा है कि भाई आपको सभी कार्यक्रम अच्छे लगते हैं, और भाई जहां नाम शामिल नहीं होता वो तो थोड़ा सा फर्क होता ही है ना, थोड़ा सा बुरा तो लगता ही है, लेकिन आप एक सामंजस्य बनाकर रखिए, शामिल तो आपका नाम होता ही है ना, ये बात तो हम अपने विश्वास से कह ही सकते हैं, है ना, हमें पूरा इसका विश्वास है। ये अगला मैसेज रिमझिम,
1: जी, ये अगला मैसेज हमें
0: ये कहाँ से है,
1: शेरवानी
0: यहाँ से,
1: शेरवानी स्कूल गंज डुंडवारा उत्तर प्रदेश से आफताब अहमद अंसारी हमें ये लेटर लिख रहे हैं जी,
0: जी
1: व्हाट्सएप मैसेज के थ्रू।
0: बिल्कुल, ये क्या
1: पूरे
0: कहना,
1: आकाशवाणी नजीबाबाद परिवार को इन्होंने नमस्कार लिखा है और ये भी यही लिखते हैं कि रेगुलर श्रोता हैं और जितने भी कार्यक्रम यहाँ से पेश किए जाते हैं वो इन्हें अच्छे लगते हैं। इन्होंने मनोज वर्मा जी की भी काफ़ी तारीफें लिखी हैं और हम आपका बहुत सम्मान करते हैं और हमें सारे कार्यक्रम पसंद आते हैं।
0: धन्यवाद
1: जी
0: हमारे नियमित श्रोता शेरवानी स्कूल गंज डुंडवारा उत्तर प्रदेश के आफताब अहमद अंसारी और इनका पूरा परिवार। आपको आकाशवाणी नजीबाबाद के सभी कार्यक्रम अच्छे लगते हैं, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस तरीके से आप कार्यक्रमों को सुनते रहिए, हम सबका हौसला अफजाई करते रहिए। एक बार फिर आपका शुक्रिया। रिमझिम, आपके हाथ में खत है कुछ?
1: जी ये पत्र हमें मिला है जनपद मेरठ उत्तर प्रदेश से, भेजने वाले हैं हमारे नियमित श्रोता नरेंद्र कुमार
0: जी,
1: जी। ये लिखते हैं कि जो 1 अगस्त को इन्होंने नजीबाबाद केंद्र से कार्यक्रम सुने हैं शुरुआत से, चाहे वो वंदना हो, चिंतन हो, स्वास्थ्य चर्चा हो, इसके बारे में इन्होंने लिखा है, इन्हें काफ़ी पसंद आए हैं। कार्यक्रम के प्रस्तुतिकरण में ताहिर महमूद जी और अलका सिंह जी का जो साथ रहा वो भी इन्हें पसंद आया है
0: जी,
1: और अलका जी ने जो कार्यक्रम सुनवाए एक ही फिल्म से कार्यक्रम वो इन्हें पसंद आया, जो भी गीत इसमें सुनवाए गए
0: जी
1: वो इन्हें पसंद आया है
0: जी
1: और जो भी कार्यक्रम थे सुगम संगीत हो चाहे रागिनी हो वो इन्हें काफ़ी अच्छे लगे। 2 अगस्त को सचिन शर्मा जी ने वंदना से लेकर सूरज के साथ साथ कार्यक्रम बहुत सुंदर प्रस्तुत किया और गीत तुम्हारे जो फरीना जी ने सचिन शर्मा जी ने साथ निभाया है वो भी इन्हें अच्छा लगा है और आगे ये लिख रहे हैं कि 3 अगस्त को भी इन्हें कार्यक्रम काफ़ी पसंद आया था और विश्वास वीर जी ने सूरज के साथ साथ दैनिक कार्यक्रम को बहुत सुंदर तरीके से प्रस्तुत किया। सुगम संगीत कार्यक्रम में जो कलाकार शाहरुख जी ने गजलें शाहरुख जी की गजलें इसमें प्रसारित की गई वो भी इन्हें पसंद आई हैं।
0: और वक्त तो इजाज़त नहीं दे रहा है, लेकिन इनके 5 खत हमारे हाथ में हैं, एक जीस्ट निकाल लेते हैं, और जुलाई से लेके अगस्त तक के खत हैं। इसके अलावा इनको सभी कार्यक्रम अच्छे लगे हैं हमारे केंद्र से, कृषि जगत कार्यक्रम रहे और श्वेता भट्ट जी का इनको कार्यक्रम पेश किया हुआ अच्छा लगा है। इसके अलावा ये दूसरे केंद्रों को भी सुनते हैं, और धर्मेंद्र जी का कार्यक्रम इनको अच्छा लगा है, चरणजीत सिंह का कार्यक्रम इनको अच्छा लगा है, ताहिर महमूद जी का इनको कार्यक्रम अच्छा लगा है, और बहुत सारी फिल्मों के गीत भी ये सुनना
1: जी जी
0: चाहते हैं, तो हमने नोट कर लिए हैं, आपको आने वाले वक्त में वो सुनने के लिए मिलेंगे। हमारा नाम भी इन्होंने लिखा है, तो धन्यवाद आपका बहुत बहुत। इसके अलावा अगर हम बात करें आगे की, तो निधि भारद्वाज और अलका सिंह जी का कार्यक्रम इन्होंने बहुत पसंद किया है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मन की बात को भी इन्होंने पसंद किया है। इसके अलावा इनका और एक खत है कि नेहा शर्मा जी का इनको कार्यक्रम पसंद आया, सचिन शर्मा जी के कार्यक्रम इनको पसंद आए हैं, और इन्होंने पूरा विस्तार से लिखा हुआ है, लेकिन हम खतों को शामिल कर रहे हैं सिर्फ। फैजुर रहमान जी का आपकी फरमाइश कार्यक्रम अच्छा लगा है, रिमझिम बलूनी का, वंदना, चिंतन वगैरह इनको सभी अच्छा लगा है। इसके अलावा युववाणी कार्यक्रम की जो हमारी करने वाली हैं सलोनी और वंशिका सोती, उन्होंने भी कार्यक्रम अच्छा किया है, और रेणु कोटनाला जी ने दिल ने फिर याद किया, कार्यक्रम अच्छा किया, तो ये बहुत खुशी की बात है कि आप इसी तरीके से सुन रहे हैं, और हमने ये पूरे कार्यक्रम में आपकी जो जीस्ट था जुलाई से लेके अगस्त तक का वो हमने शामिल किया, और राजवाई जी का प्रोग्राम भी आपको बहुत अच्छा लगा, धन्यवाद आपका बहुत बहुत, यही कहना चाहेंगे। इसी तरीके से आप कार्यक्रमों को आप सुनते रहिएगा और हौसला अफजाई करते रहिएगा। हम सब की वक्त हमें इजाज़त नहीं दे रहा है, क्योंकि कार्यक्रम हमें अगला भी आप तो सुनवाना है, तो आज का ये कार्यक्रम संपन्न करने की मुझे यानी मनोज वर्मा और मेरे साथ
1: रिमझिम बलूनी को दीजिए अनुमति।
0: नमस्कार।
1: नमस्कार।

आप सुन रहे थे कार्यक्रम आपका पत्र मिला। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है साप्ताहिक कार्यक्रम फिल्मी संडे।

0: فلمی سنڈے
1: فلمی سنڈے
0: فلمی سنڈے
1: فلمی سنڈے
2: कार्यक्रम फिल्मी संडे सुनने वाले हमारे सभी श्रोताओं को आपके रेडियो साथी मनोज वर्मा का नमस्कार। सभी श्रोताओं का स्वागत है आज के इस अंक में, जिसमें हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसी फिल्म जो हंसी मजाक के साथ साथ प्रेम कहानी पर आधारित है। जी हां, हम बात कर रहे हैं सन 1993 में महेश भट्ट द्वारा निर्देशित और ताहिर हुसैन द्वारा निर्मित हम है राही प्यार के इस फिल्म की, जिनकी प्रमुख भूमिकाओं में आमिर खान और जूही चावला हैं। इस फिल्म में जूही चावला ने फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री पुरस्कार और फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार पाया है। इसके साथ ही फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ अभिनेता नामांकन पुरस्कार आमिर खान के नाम है। फिल्म में आमिर खान, राहुल, जूही चावला वैजंती अय्यर, दिलीप ताहिल बिजलानी, नवनीत निशान माया, टिक्कू तलसानिया, वकील होमी वाडिया और मुश्ताक खां मिश्रा जी के रूप में काम कर रहे हैं। फिल्म के गीत समीर ने और उन्हें संगीतबद्ध किया है नदीम श्रवण ने। इस फिल्म की कहानी की बात करें तो फिल्म की शुरुआत राहुल मल्होत्रा और वकील साहब के वार्तालाप से।
3: तुम्हारे जीजा जी और तुम्हारी बहन ने ये वसीयतनामा बनवाया था जो मैं तुम्हें समझाना चाहता हूँ। तुम्हारे जीजा जी का एक घर और एक रेडीमेड गारमेंट की फैक्ट्री है जो उनके मरने के बाद उनके तीन बच्चों को बराबर के हिस्सों में मिलती है। अब क्योंकि बच्चे नाबालिग हैं, इस जायदाद की रखवाली तुम्हें करनी पड़ेगी। एंड नाउ जब तक ये बच्चे बालिग नहीं हो जाते, ये सारा कारोबार तुम्हें संभालना पड़ेगा।
2: उधर बच्चे मिलकर घर की नौकरानी और नौकर को परेशान करते हैं। वे दोनों नौकरी करने से मना करते हैं तो राहुल उन्हें समझाता है। बच्चे फिर भी घर की चीजों को इधर उधर करते रहते हैं। राहुल उन्हें समझाकर म्यूजिक स्टूडियो घुमाने ले जाता है, जहां वे शास्त्रीय नृत्य देखते हैं। बच्चे बोर होते हैं और एक एक कर उठकर कार में सोने चले जाते हैं। उनके मामा परेशान होते हैं, लेकिन बाद में बच्चे कार में मिल जाते हैं। उधर वैजंती के पिता नृत्य करने वाले नटराज अय्यर से बात कर रहे होते हैं और उनकी तारीफ करते हैं। फिर वे वहां वैजंती को नृत्य करने वाले से मिलवाते हैं। वैजयंती अपने पिता से उनसे मिलने को मना करती है। राहुल तीनों बच्चों को स्कूल छोड़ने जाता है, जहां उसकी मुलाकात माया से होती है। माया राहुल की स्कूल दोस्त है। वो उसका नंबर मांगती है। राहुल मना करता है, लेकिन बच्चे नंबर दे देते हैं। राहुल फैक्ट्री पहुंचते हैं, जहां उनकी मुलाकात मिश्रा जी से होती है। मिश्रा जी उन्हें फैक्ट्री में ले जाते हैं, जहां उनकी काम करने वाली महिलाएं उनको देखकर व्यंग्य करती हैं। फैक्ट्री में बिजलानी का फोन राहुल के लिए उसके तीन महीने पहले दिए ऑर्डर को पूरा करने के लिए आता है, जिस पर राहुल उनसे आने वाले कल मिलने को कहता है। उधर नटराजन एक पार्टी में वैजयंती से शादी के बाद हनीमून पर जाने की बात कहता है। वैजयंती चौंक जाती है। नटराजन शादी की बात उसके पापा की मर्जी से कहता है। वैजयंती अपने पापा से पूछती है कि शादी कैसे तय कर दी।
4: ये क्या है?
5: क्या है? What's that?
4: आपने मेरी शादी कैसे फिक्स कर दी?
5: तुम्हारा शादी का एज हो गया, इसलिए मैं तुम्हारा शादी फिक्स किया।
4: ठीक है, लेकिन मैं इस कार्टून से शादी नहीं करूंगी।
2: उधर बिजलानी राहुल से मिलने पर अपने लिए ऑर्डर के लिए कहता है। वैजयंती अपने घर से निकलकर मेले में चली जाती है, जहां उसकी मुलाकात तीनों बच्चों से होती है। वे साथ मिलकर मेले में खेल खेलते हैं और गाते हैं।

वैजयंती और तीनों बच्चे मेले से साथ साथ लौटकर बच्चों के घर आ जाते हैं। वे चारों राहुल के कमरे में छिप जाते हैं। राहुल बच्चों से तो मिल लेता है, लेकिन बच्चे वैजयंती को अपने मामा से छिपाकर। उधर राहुल मिश्रा जी से फैक्ट्री में 1,00,000 शर्ट्स के ऑर्डर के बारे में पूछता है, तो मिश्रा जी उनसे पैसे खत्म होने की बात कहते हैं। राहुल फैक्ट्री में अपने सभी काम करने वालों के साथ मिलकर स्वयं भी ऑर्डर पूरा करने को कहता है। वहां मौजूद महिला कर्मी उनसे मजाक करती हैं। गीत होता है।

0: तभी वैजयंती के पिता उसे ढूंढते हुए राहुल के घर आते हैं। उनके साथ पुलिस भी होती है, लेकिन वो लौट जाते हैं। जब राहुल घर आता है तो वो पुलिस के बारे में पूछता है। मिश्रा जी ना कहते हैं। राहुल के लिए माया का फोन आता है, वो उसे बुलाती है, न बुलाने पर घर आने के लिए कहती है। माया घर पहुंच जाती है और अपनी बात कहती है। उधर मिश्रा जी भी रात के अंधेरे में राहुल के घर अपनी बात को सही करने के लिए आते हैं कि उनके यहां एक लड़के समेत 4 बच्चे हैं। बच्चे और वैजयंती उन्हें चोर समझकर मारने लगते हैं, तभी राहुल भी वहां आ जाता है और बच्चों के साथ वैजयंती को देखकर चौंक जाता है।
1: ए, कौन हो तुम और यहां क्या कर रही हो?
2: मैं
1: और मेरे कपड़े, तुम मेरे कपड़े में क्या कर रही हो?
3: अरे हम तो कह रहा हूं यही है नंबर 4 जो सुबह से आपके घर में है।
1: सुबह से
2: जी नहीं, कल रात से।
1: तुम कल रात से मेरे घर में हो, मेरे कपड़ों में, और मुझे मालूम तक नहीं।
0: वो वैजयंती से पूछता है, वो बच्चों का नाम लेती है और कहती है कि उसने घर छोड़ दिया है और रोने लगती है। राहुल उसे घर में ही रहने के लिए कहता है, वो उसे बच्चों की मदद के लिए घर में पैसे देने के लिए भी कहता है। राहुल बच्चों और वैजयंती के साथ पिकनिक मनाने का

0: उधर बिजलानी राहुल को 15 दिन में ऑर्डर पूरा करने के लिए धमकी देता है। फैक्ट्री से निकलते समय राहुल की मुलाकात माया से होती है, जो बिजलानी की बेटी है। ये बात राहुल नहीं जानता। माया उसे कहती है कि वो सब ठीक कर देगी। वो अपने पिता बिजलानी से मिलती है और कहती है,
1: वही तो जो अभी अभी यहाँ से गया है, राहुल नाम है उसका, मुझे बहुत अच्छा लगता है। पापा आप उसे परेशान मत कीजिए।
2: अरे ये तो छोटी सी बात है, समझो तुम्हारा काम हो गया। वो तो मेरे एहसान तले तबाह हुआ है, मैं जो भी कहूँगा उसको करना पड़ेगा, वरना मैं उसकी फैक्ट्री खा जाऊंगा, उसे फुटपाथ पे ले आऊंगा।
1: नहीं ऐसा मत कीजिएगा, उसे और परेशान मत कीजिए।
0: माया के पिता उसे 15 लाख का नया चेक देते हैं और शर्त पर साइन कराते हैं कि घर फैक्ट्री उनको मिल जाएगी। बच्चों की शरारतों पर राहुल नाराज होता है। वैजयंती उसे समझाती है। दोनों एक दूसरे की आंखों में देखते हैं। बच्चे और राहुल मिलकर पतंग उड़ाते हैं। वैजयंती गीत गाती है, राहुल भी साथ देता है।

इधर बिजलानी ऑफिस में माया के साथ राहुल की शादी की बात करता है तो राहुल उसे देखता है। घर आकर राहुल अपनी और बच्चों की खुशी के लिए माया से शादी करने को सोचता है। तभी वैजयंती वहां आती है और पूछती है। माया और राहुल मिलते हैं, वे शादी करने की बात करते हैं, लेकिन उसमें शर्त होती है कि माया बच्चों की भी देखभाल करेगी। माया हाँ करती है, लेकिन माया को बच्चे शरारती लगते हैं। वे अपने पापा से बच्चों को नापसंद करने की बात कहती है, पापा उसे समझाते हैं। वैजयंती इस बात से नाराज है कि राहुल ने उसे माया के बारे में नहीं बताया। राहुल भी एहसास करता है। गीत होता है।

राहुल वैजयंती से अपनी मंगनी की बात माया से करने की कहता है और चला जाता है। वैजयंती रोती है तो बच्चे पूछते हैं, वो उन्हें राहुल की शादी की बात बताती है। माया और राहुल की मंगनी हो रही है, अंगूठी पहनाई जा रही है, लेकिन तभी वैजयंती बच्चों के साथ आती है। पूछने पर बच्चे उसे अपनी माँ बताते हैं, सब चौंक जाते हैं। घर पर राहुल सबसे पूछता है कि ये नाटक क्यों किया, तो वैजयंती बताती है कि वो उससे प्यार कर। माया अपने पिता के साथ राहुल के घर जाती है तो राहुल कहता है कि वो भी वैजयंती से प्यार करता है और उससे शादी करना चाहता है। माया और पिता चौंक जाते हैं। राहुल, बच्चे और वैजयंती मिलकर माया और पिता पर अंडे टमाटर फेंकते हैं और उन्हें घर से बाहर कर देते हैं। सब खुश होते हैं, गीत होता है।

0: उधर बिजलानी का शर्ट का ऑर्डर पूरा करने के लिए रुपयों की जरूरत है, क्योंकि बिजलानी ने 15 दिन के अंदर शर्ट्स नहीं मिलने की वजह से राहुल का घर और फैक्ट्री लेने की शर्त साइन कराई थी। राहुल और मिश्रा जी परेशान हैं, तभी वैजयंती रुपए अपने पापा से लेने की बात कहती है। वो उसे अपने पापा से मिलाती है, उसके पापा उसे 10 लाख का चेक देते हैं और कहते हैं कि राहुल वैजयंती से शादी नहीं करेगा। वे दोनों वहां से आ जाते हैं। मिश्रा जी राहुल से तनख्वाह और सामान के लिए कहते हैं। राहुल अपने काम करने वालों से पगार देने के लिए मना करता है कि पैसे नहीं है, और वो उन सब की मदद मांगता है। उसके सभी काम करने वाले 16 से 20 घंटे काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तैयार शर्ट्स टेम्पो में बिजलानी के यहाँ भेजी जा रही है, लेकिन कुछ गुंडे पुलिस की वर्दी में स्मगलिंग का सामान होने की बात कह के टेम्पो से भाग जाते हैं। मिश्रा वहीं रह जाते हैं। उधर शर्ट्स न पहुंचने की स्थिति में बिजलानी राहुल के घर को नीलामी के लिए कहता है। राहुल कहता है कि ये तुम्हारी चाल है। राहुल पुलिस स्टेशन में जाता है और गाड़ी को ढूंढने के लिए कहता है। पुलिस उनकी कोई नहीं सुनती, लेकिन पुलिस स्टेशन में एक व्यक्ति छोटिया उनकी मदद करता है और उन्हें अपने साथ उस जगह तक ले जाता है जहां टेम्पो खड़ा था। राहुल और उस जगह मौजूद व्यक्तियों की बात होती है, लेकिन वे टेम्पो देने से मना करते हैं। राहुल टेम्पो लेके जाने की बात कहता है, लेकिन वे सब मना करते हैं। फिर लड़ाई होती है, राहुल सबको मारता है। राहुल टेम्पो लेकर चलता है। उधर उसके मकान की बोली लगनी शुरू होती है।
1: 43 लाख तो मारी, 43 लाख।
0: राहुल की टेम्पो का पहिया निकल जाता है। वे शर्ट्स को बस से लेकर चल देते हैं और तुरंत पहुंच जाते हैं। राहुल बिजलानी के आदमी को भी लाता है, जो कहता है कि बिजलानी ने ही उन्हें काम करने के लिए पैसे दिए थे। बिजलानी को वहां से बच्चे और सभी अंडे मारकर भगा देते हैं। फिर राहुल और उसके साथी मिलकर वैजयंती के पापा से शादी के लिए कहते हैं। वे मान जाते हैं।
1: ये शादी हमारा साउथ इंडियन स्टाइल में होगी, चलेगा।

राहुल और वैजंती की शादी हो जाती है, यही फिल्म समाप्त होती है। फिल्मी संडे में अभी आप हम है राही प्यार के फिल्म की कहानी और डायलॉग सुन रहे थे। अगले हफ्ते फिर किसी और फिल्म के साथ आपसे पुनः भेंट होगी। तब तक के लिए मनोज वर्मा को दीजिए अनुमति। नमस्कार, सुनते रहिएगा आकाशवाणी का नजीबाबाद केंद्र।

आप सुन रहे थे साप्ताहिक कार्यक्रम फिल्मी संडे। हम अपने सभी श्रोताओं से कहना चाहते हैं कि आज के इस अंक में क्या आपको अच्छा लगा और कहाँ आपको कमी नजर आई, इस बारे में भी आप हमें जरूर लिखें। और हमारा पता है कार्यक्रम आपका पत्र मिला द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी नजीबाबाद, पिन कोड 246763, जिला बिजनौर, उत्तर प्रदेश। ये हमारा नंबर है और भाई पता है ना, और नंबर तो वही होता है 94-570-78-288। इस पर आप हमें SMS कर सकते हैं, अपनी बात लिख सकते हैं। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं, दिन के 1 बजने को हैं। थोड़ी ही देर में आप समाचार सुनेंगे, पहले हिंदी में, फिर अंग्रेजी में, और उसके बाद इलाकाई खबरें हम अपने लखनऊ केंद्र से रिले करेंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत अभियान पूरे देश में तेजी से आगे बढ़ रहा है। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में आज श्री मोदी ने कहा कि बहुत सारे लोग और विशेष रूप से युवा बड़ी संख्या में नशा मुक्त युवा और नशा मुक्त भारत अभियान का हिस्सा बन रहे हैं। प्रधानमंत्री ने लोगों से नशा मुक्त भारत के लिए प्रभावशाली नारा तैयार करने और युवा संगीतकारों से ऐसे गीत बनाने को कहा जो नशा मुक्त जीवन का संदेश दें। उन्होंने कहा कि देश में उत्कृष्ट कंटेंट क्रिएटर्स की कोई कमी नहीं है। श्री मोदी ने उनसे इस प्रयास में विभिन्न भाषाओं में कंटेंट तैयार करने का आग्रह किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि पीएम स्वनिधि योजना के माध्यम से लाखों महिलाओं को नई शक्ति प्राप्त हो रही है। श्री मोदी ने कहा कि लगभग 46% महिलाएं पीएम स्वनिधि योजना की लाभार्थी हैं। उन्होंने कहा कि देश भर की लगभग 35 लाख महिलाएं इस योजना से जुड़कर अपना कारोबार आगे बढ़ा रही हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि जब किसी जगह को स्वच्छ रखने का संकल्प लोगों का अपना संकल्प बन जाता है तो उससे उस जगह की पहचान पूरी तरह बदल जाती है। श्री मोदी ने उत्तर प्रदेश के पटवाई के आकाश और रोहन का उल्लेख किया।
1: उत्तर प्रदेश के रामपुर में एक गांव है पटवाई, वहाँ आकाश और रोहन नाम के दो दोस्तों ने देखा कि उनके आसपास का इलाका गंदगी से भर गया है। बस फिर क्या था, आकाश और रोहन ने कचरे के बैग उठाए और सफाई के लिए निकल पड़े। धीरे धीरे दूसरे युवा भी उनके साथ जुड़ने लगे। एक टीम भी बन गई जिसका नाम है क्लीनअप पटवाई। ये युवा अब तक 4 गंगा घाटों को साफ कर चुके हैं।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि उड़ीसा के देवरीगढ़ क्षेत्र के धोड़रो कुसुम के मैथिली भुए ने ये दिखा दिया है कि जीवन में समृद्धि प्राप्त करने के साथ साथ प्रकृति की रक्षा करना भी संभव है। श्री मोदी ने कहा कि आज देश की बेटियों के सपनों की उड़ान धरती से निकलकर अंतरिक्ष तक पहुंच रही है।
1: आज हमारी बेटियों के सपनों की उड़ान धरती से निकलकर अंतरिक्ष तक पहुंच रही है और आपको यह जानकर गर्व होगा कि भारत ऐसे सपने देखने वाली दुनिया की हजारों बेटियों को एक साथ जोड़ रहा है। इस प्रयास का नाम है मिशन शक्ति सेट। इसके माध्यम से 108 देशों की 12,000 छात्राओं को सैटेलाइट टेक्नोलॉजी सीखने और इनोवेशन के क्षेत्र में आगे बढ़ने का अवसर मिल रहा है।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने आंध्र प्रदेश में कडप्पा के वरदराज और तमिलनाडु में कोडाई कनाल के चंद्रशेखरन के उल्लेख किया जो एवोकाडो की खेती के जरिए अतिरिक्त कमाई कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शफकत मिर्जियोयेव के बीच ताशकंद में द्विपक्षीय वार्ता जारी है। राष्ट्रपति भवन में दोनों नेता व्यापार और निवेश, रक्षा, डिजिटल संपर्क, ऊर्जा, शिक्षा और लोगों के बीच संबंधों के क्षेत्रों में सहयोग की समीक्षा कर रहे हैं। वार्ता के बाद कई समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर होने की संभावना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज उज्बेकिस्तान योग महासंघ के योग कार्यक्रम में भाग लिया। बाद में उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शफकत मिर्जियोयेव ने अपने आवास पर श्री मोदी का औपचारिक स्वागत किया। नेपाल बाढ़ में मृतकों की संख्या 734 हो गई है। लगभग 2,500 लोग लापता हैं। आपदा के पांचवें दिन भी बचाव कर्मी लापता लोगों की तलाश और फंसे हुए लोगों को बचाने में जुटे हैं। बचाव दल ने अब तक 8,186 लोगों को सुरक्षित निकाल लिया है। इनमें 227 विदेशी नागरिक हैं। नेपाल सरकार ने भोटे कोशी नदी में बाढ़ का अलर्ट जारी किया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि अब तक 108 भारतीय नागरिकों को बचा लिया गया है। भारत से अब तक 11 टन राहत सामग्री लेकर चौथा विमान काठमांडू पहुंच चुका है। इससे पहले भारत ने 3 विमानों में 57 टन से अधिक राहत सामग्री भेजी। उड़ीसा के उत्तरी क्षेत्रों में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। बालेश्वर में लगातार वर्षा के कारण सुवर्णरेखा नदी का जलस्तर बढ़ रहा है। उत्तर पश्चिमी बंगाल की खाड़ी और उससे सटे पश्चिमी बंगाल और उत्तरी उड़ीसा तटों पर बने निम्न दबाव के क्षेत्र के कारण ये बारिश तेज हो रही है। मौसम विभाग ने कहा है कि निम्न दबाव का क्षेत्र और अधिक तीव्र होकर पश्चिम उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ सकता है। मौसम विभाग ने आज और कल उड़ीसा में अत्यधिक वर्षा की चेतावनी दी है। एशिया कप महिला T20 क्रिकेट में आज भारत का सामना थाईलैंड से होगा। दुबई में यह मैच भारतीय समय के अनुसार रात 8:30 बजे से खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: जय हिंद प्यारे बच्चों, आपसे कुछ मीठी कुछ चटपटी बातें करने के लिए आज के इस अंक बाल वाटिका में आपके साथ हैं आपकी दीदी अर्चना। हाँ तो सभी प्यारे प्यारे नन्हे मुन्ने दोस्तों को दीदी का ढेर सारा प्यार और शुभाशीष। प्यारे बच्चों, आप अच्छे बच्चे तभी कहलाओगे जब आप अच्छे से पढ़ाई करेंगे, अपने बड़ों का आदर सम्मान करेंगे और तो और राष्ट्र हित में अपना पूरा सहयोग देंगे। हाँ तो बच्चों, इसके लिए आपकी सोच सकारात्मक हो, वहीं रचनात्मक यानी क्रिएटिविटी वाली सोच भी आपकी होनी चाहिए। इससे आपके व्यक्तित्व में निखार तो आता ही है, साथ ही बच्चों आप बनते हैं भीड़ में खास हम खास। जानते हैं बच्चों, आप अपने इस टैलेंट के बल पर न केवल अपनी प्रतिभा में निखार ला सकते हैं, वहीं आत्मनिर्भर भारत की संकल्पना को साकार करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकते हैं। वास्तव में बच्चों, आज का युग आत्मनिर्भरता और स्वदेशी सोच का युग है, यानी लोकल से वोकल की ओर बढ़ते आपके नन्हे कदम देश को समृद्ध व सशक्त बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं। आपकी जानकारी के लिए बताते हैं कि लोकल से वोकल का तात्पर्य अपने आसपास बनने वाली वस्तुओं, स्थानीय कारीगरों और छोटे व्यापारियों को प्रोत्साहित करना और उनके उत्पादों के बारे में लोगों को बताना है। इससे हमारे देश की अर्थव्यवस्था बच्चों मजबूत होती है और स्थानीय लोगों को रोजगार के अवसर मिलते हैं। हाँ तो आप भी महत्वपूर्ण योगदान इसमें दे सकते हैं, जैसे अपने विद्यालय में स्थानीय उत्पादों की प्रदर्शनी लगाकर पोस्टर और चित्र बना सकते हैं और तो और स्थानीय खरीदे देश को मजबूत बनाएं जैसे संदेश लोगों तक पहुँचा सकते हैं। त्योहारों पर स्थानीय कारीगरों द्वारा बनाई गई वस्तुओं को प्राथमिकता देना भी एक बहुत अच्छा प्रयास है बच्चों। हाँ तो बच्चों, भारत के गांवों और कस्बों में अनेक कारीगर सुंदर मिट्टी के बर्तन, खिलौने, कपड़े, हस्तशिल्प और अन्य उपयोगी वस्तुएं बनाते हैं। यदि हम सभी इन वस्तुओं को खरीदें और दूसरों को भी इसके बारे में बताएं तो भी स्थानीय व्यवसायों को बढ़ावा मिलता है। यही लोकल से वोकल बनने की दिशा में हमारा छोटा सा कदम है। हाँ तो बच्चों, हम सबको दैनिक जीवन की आवश्यकताओं में जहाँ संभव हो स्थानीय उत्पादों को अपनाना चाहिए और उनके बारे में दूसरों को भी जागरूक करना चाहिए। हम सबके छोटे छोटे प्रयास मिलकर भारत को आत्मनिर्भर और सशक्त बना सकते हैं। हाँ तो प्यारे बच्चों, लोकल अपनाएं, वोकल बने और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में दें योगदान, तभी हम भारत के सच्चे हितैषी व शुभचिंतक कहलाएंगे। प्यारे बच्चों, बात जब टैलेंट व क्रिएटिविटी की चल ही पड़ी है तो आज के बालमुख कार्यक्रम के अंतर्गत रूबरू होते हैं आपके दोस्तों के विचारों से, मन के उद्गारों से। यूं ही हंसते खिलखिलाते प्यारे प्यारे नन्हे मुन्ने बच्चों के बीच ढेर सारी मीठी चटपटी बातें करने के लिए आ पहुंची हैं आपकी अपनी दीदी अर्चना। हाँ तो सभी बच्चों को दीदी का ढेर सारा प्यार। हाँ तो नन्हे मुन्ने दोस्तों से रूबरू होने से पहले लेते हैं उनका परिचय। बच्चों, आज हमारे सामने बैठी है एक बहुत प्यारी छोटी सी गुड़िया सी और उन्होंने पिंक कलर का फ्रॉक भी पहना हुआ है, तो उनसे जानते हैं उनका नाम। आपका क्या नाम है बेटा?
1: ईशानवी पाल।
0: ईशानवी, बहुत सुंदर नाम है। अच्छा बेटा, आज आप हमें बताओ कि आप बहुत अच्छे से जो तैयार हुई हो, किसने तैयार किया है आपको?
1: मम्मा
0: करती है तैयार?
1: हाँ।
0: अच्छा, आप स्कूल जाते हो बेटा?
1: हाँ।
0: कि वहाँ पर दोस्त भी होंगे बहुत सारे?
1: हाँ।
0: तो बेटा, आपके कौन कौन से दोस्त हैं, क्या क्या नाम है उनके?
1: मिस्टर दीदी विराट भाई, आरुषि।
0: आरुषि, अच्छा आपका सबसे पक्का दोस्त कौन सा है?
1: सबसे मिस्टी दीदी।
0: मिस्टी दीदी है वो, आपसे बड़ी है वो? अच्छा अच्छा, वहाँ पर टीचर और सर भी होंगे, आपको पढ़ाते होंगे हैं?
1: सर नहीं है।
0: सर नहीं है, टीचर दीदी है। अच्छा, आपकी फेवरेट टीचर कौन है वहाँ पर?
1: सोनिया मैम।
0: सोनिया मैम, अच्छा सोनिया मैम आपको क्यों अच्छी लगती हैं?
1: प्यार करती हैं।
0: प्यार करती हैं और
2: आपको कहानी भी सुनाती हैं, है ना, कविताएं भी सुनाती हैं, पोयम भी सिखाती हैं आपको। अच्छा ईशान भी आज हमें क्या सुनाएंगी?
1: यदि मैं बादल बन जाऊं।
2: यदि मैं बादल बन जाऊं? चलिए सुनाइए, अपने सभी दोस्तों को सुनाइए, आपके और दोस्त भी आपका प्रोग्राम सुन रहे हैं ना।
1: कितना अच्छा हो यदि मैं बादल बन जाऊं, नीले नीले आसमान इधर उधर मैं मंडे रहूं, जब भी देखूं सूखी धरती झटपट पिघल मैं जाऊं, गर्मी से तंग लोगों को ठंडक में पहुंचाऊं।
2: बहुत बढ़िया ईशान भी ने ये कविता सुनाई, और भी याद है बेटा आपको?
1: हाँ, माटू कितनी अच्छी है, मेरा हर काम तू करती है, भूख मुझे जब लगती है खाना तू मुझे खिलाती है, जब मैं गंदा हो जाता हूँ छटपट मुझे निलाती है, माँ मेरे अपना सपनों में सबसे पहले तू आती है।
2: बहुत बढ़िया। अच्छा इसमें नहाने की बात हुई है, तो आप भी डेली नहाती हैं?
1: यस।
2: हाँ अच्छी बात है ना नहाना। अच्छा अब आप माँ हमें ये भी बताएं कि आप जब सुबह को स्कूल जाते हैं तो सबको विश करते हैं, वहाँ पर कैसे करके विश करती हैं? टीचर दीदी को कैसे विश करते हो?
1: गुड मॉर्निंग।
2: शाबाश, है ना, तभी तो अच्छे बच्चे कहलाते हैं, जब अच्छे मैनर्स होंगे आप में, सब प्यार करेंगे आपको, है ना। अच्छा और ईशान भी हमें क्या सुनाएंगी, कोई कहानी याद है?
1: हाँ।
2: तो कहानी भी सुनाएं ईशान भी।
1: एक गड्ढे

0: जोर से चिल्लाने लगा, बचाओ बचाओ शेर आ गया। उसकी आवाज सुन के गांव वाले उसकी सहायता के दौड़े आए। सहायता के गांव वालों को बाका देखकर हंसने लगा। तो 3 दिन उसने ऐसे ही शरारत कर, एक दिन सच में ही शेर आ गया, वो उसके भेड़ों को खा गया। गद्दिया अपनी सहायता के गांव वालों को बहुत चिल्लाया, पर गांव वालों को लगा कि वो उल्लू बना रहा है, फिर कोई भी उसकी सहायता के नहीं आया। शेर उसके भेड़ों को भी उसको भी खा गया। शिक्षा, हमको कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए।
1: हाँ, तो बहुत अच्छी कहानी सुनाई शानवी ने कि हमको कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। तो उसका क्या परिणाम हुआ बेटा? भेड़ों को शेर खा गया। तो हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए। तो बहुत अच्छी अच्छी पोयम सुनाई। एक तो आपने सुनाई कि हमें रोज नहाना चाहिए, साफ रहना चाहिए और झूठ नहीं बोलना चाहिए। तो आप अपने दोस्तों को अब क्या बताना चाहेंगी, क्या मैसेज देंगी?
0: झूठ नहीं बोलना चाहिए, किसी को तंग नहीं करना चाहिए, अपने बड़ों का कहना मानना चाहिए।
1: हाँ, तो बहुत अच्छा मैसेज हमारे शानवी ने दिया। बच्चों, अब मिलते हैं आपके एक और साथी से जो हमें बहुत कुछ सुनाने के लिए बेताब नजर आ रहे हैं। हाँ, तो क्या नाम है आपका बेटा?
2: आर्यन विकास शर्मा।
1: आर्यांश
2: विकास शर्मा।
1: विकास शर्मा, अच्छा बेटा आप भी बताएं। जैसे ईशानवी ने भी बताया कि गुड मैनर्स कौन कौन से होते हैं, अच्छी बातें कौन कौन सी होती हैं, आप भी बताओ थोड़ा सा उसके बारे में।
2: मम्मी का वेस करते हैं और बाय बाय करते हैं।
1: बाय बाय भी करते हैं, अच्छा। और स्कूल में किस किस को विश करते हैं?
2: मैम को।
1: मैम को भी करते हैं, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, आपके फ्रेंड्स कौन कौन से? पहले तो आप अपने फ्रेंड्स के बारे में बताओ।
2: विष्णु, युवराज, उमर, मुसीद।
1: अच्छा, बहुत सारे दोस्त हैं।
2: वेद, तानिया, चीकू।
1: अच्छा, चीकू भी है आपके दोस्त। अच्छा, सबसे पक्का दोस्त आपका, बेस्ट फ्रेंड कौन सा है?
2: चीकू।
1: चीकू, चीकू के साथ आप खेलते हैं? है? अच्छा, चीकू के साथ तो आप खेलते हैं। अच्छा, घर पे आप किसके साथ ज्यादा खेलते हैं?
2: पापा के साथ।
1: और पापा के साथ क्या क्या करते हैं? खेलते हैं और
2: बस रजाई उड़ाते हैं।
1: हाँ, और रजाई भी उड़ाते हैं पापा, फिर उसमें खेलते हैं रजाई के अंदर है।
2: और बेड बनाते हैं।
1: बेड बनाते हैं
2: और मैं पापा के साथ योगा करता हूँ, वॉक भी जाता हूँ।
1: अच्छा, मॉर्निंग वॉक को भी जाते हैं। अच्छा, कौन कौन से योगा आप पापा के साथ करते हैं?
2: चक्रासन, सिमुद आसन, सूर्य नमस्कार।
1: अच्छा, आप इतने छोटे से दिखाई दे रहे हैं और आप इतने कठिन कठिन आसन कर लेते हैं?
2: यस दीदी, मैं संडे को पापा के साथ आर्य समाज आता हूँ, वहाँ पर पूजा करता हूँ।
1: अच्छा, यज्ञ करते हैं, हवन करते हैं, है न बेटा?
2: यस।
1: अच्छा, आपको कौन कौन से मंत्र याद हैं? आपने बताया कि हम यज्ञ करते हैं, तो कौन कौन से मंत्र आपको याद हैं?
2: हिरण्यगर्भ समबद्ध ताग्रे भूत सुजाता पति रेक आशिक सदाधार पृथ्वीं दामु देव कस्मै देवा विसाविधेम ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो न प्रचोदयात्।
1: बहुत बढ़िया आपने मंत्र सुनाए ये, और बहुत अच्छी बात है कि हमारी भारतीय संस्कृति में यज्ञ जो है करना एक तम बताया गया है, जो वातावरण को भी शुद्ध करता है। तो बहुत अच्छे संस्कार आपके माता पिता आपको दे रहे हैं। अच्छा बेटा, अब आप बताएं, जैसे अभी शानवी ने यहाँ पर हमें बहुत सारी कविताएं सुनाई, तो आप हमें आज क्या सुनाएंगे?
2: बच्चों, खाओ कच्ची गाजर, नींबू, खीरा और टमाटर, लाल लाल तुम बन जाओगे, सुंदर बच्चे खेलाओगे।
1: बहुत अच्छी पोयम आपने सुनाई। अच्छा आर्यांश, ये बताओ कि हमें जो है गाजर है, खीरा है, नींबू, ये खाना चाहिए ना?
2: यस दीदी।
1: ये खाने से क्या होता है?
2: स्ट्रांग बनते हैं।
1: स्ट्रांग बनते हैं, और आपको तो स्ट्रांग बनना है, आप बहुत पत्ते दुबले नजर आ रहे हैं, है ना?
2: हमें स्वस्थ रहने के लिए योगा करना चाहिए और स्ट्रांग रहने के लिए नींबू गाजर खाना चाहिए।
1: बहुत अच्छा संदेश दिया आर्यांश ने। आप दोनों का, ईशानवी का भी और आर्यांश का भी धन्यवाद। अब मिलते हैं बच्चों आपके एक और साथी से।
3: क्या नाम है आपका?
4: दीदी, मेरा नाम आकाश कुमार है।
3: आकाश, आप हमें क्या सुनाने वाले हैं?
4: दीदी, आज मैं आपको एक प्रेरक प्रसंग सुनाना चाहता हूँ जिसमें देश प्रेम की बात कही गई है।
3: देखिए, प्रेरक प्रसंग बहुत ध्यान से सुनिए, इसमें देश प्रेम की बात कही है। तो अब आकाश हमें देश प्रेम वाला ये प्रेरक प्रसंग सुना रहे हैं। तो सभी बच्चे ध्यान से सुने।
4: एक बार की बात है, स्वामी रामतीर्थ जापान गए। जब वे रेल में यात्रा कर रहे थे, एक दिन ऐसा हुआ उन्हें खाने को फल नहीं मिले। उन दिनों फल ही उनका भोजन था। गाड़ी एक स्टेशन पर ठहरी, उन्होंने वहां भी फलों की खोज की। उनके मुंह से निकला, शायद जापान में अच्छे फल नहीं मिलते। एक जापानी युवक प्लेटफार्म पर खड़ा था, उसने यह सब सुन लिया। वह भागा और कहीं से एक टोकरी ताजे फल की ले आया। उसने वह फल स्वामी रामतीर्थ को भेंट किए और कहा, ये लीजिए, आपको फलों की जरूरत थी। स्वामी रामतीर्थ ने समझा यह कोई फल बेचने वाला है। उन्होंने उससे फलों के दाम पूछे, लेकिन उसने दाम लेने से इनकार कर दिया। आप मुझे इन फलों का दाम देना ही चाहते हैं तो अपने देश में जाकर किसी से यह मत कहिएगा कि जापान में अच्छे फल नहीं मिलते।
3: जो वो युवक था उनके लिए फल लेके आया था, जब उन्होंने ये बात कही कि शायद जापान में अच्छे फल नहीं मिलते, वो बच्चा कहाँ का था? जापान का था। तो उसे ये अपने देश की तौहीन लगी, मेरे देश की बुराई होगी। तो उसने क्या कहा कि आप यदि मुझे फलों की कीमत देना चाहते हैं तो आप अपने देश भारत में जाकर ये ना कहना कि जापान में अच्छे फल नहीं मिलते। तो बच्चों, हमारे में भी देश प्रेम की भावना होनी चाहिए।
1: आपका नाम?
0: वानी।
1: वानी, अच्छा वानी, आज आप बहुत सुंदर लग रही हो। क्या क्या खाया आपने?
0: मन्ना।
1: हाँ।
0: चाय पी। रोटी खाई।
1: रोटी भी खाई और चाय भी पी, है ना? अच्छा दीदी ने तुम्हें कौन कौन सी पोयम सिखा रखी हैं? क्या सुनाओगी आज हमें?
0: मैं वो पेंटिंग करता था।

0: शेयर कराते।
1: आपको और कविता भी याद है?
0: याद है।
1: याद है?
0: एक एक एक नाक हमारे एक, दो दो दो कान हमारे दो, तीन तीन तीन रिक्शा के पहिए तीन, चार चार चार कमरे के कोने चार, पाँच पाँच पाँच हमारा उंगली पाँच।
1: अच्छा बेटे एक बात तो बताओ, ये जो अभी आपने कविता सुनाई तो इसमें किसके बारे में बता रहे हैं? गिनतियों के बारे में है ना? नाक हमारी कितनी है?
0: एक।
1: और कान हमारे कितने हैं?
0: दो।
1: और आँख कितनी है हमारी?
0: दो।
1: हाँ, और रिक्शा के पहिए कितने हैं बेटा?
0: तीन।
1: और चार क्या है?
0: कमरे के कोने।
1: अच्छा पांच क्या बताया आपने?
0: उंगली
1: हमारे हाथ की, हमारे
0: पाँच।
1: हाँ हमारे हाथ की उंगली पांच। तो बहुत अच्छी पोयम सुनाई आज हमें वाणी ने। बच्चों अब एक और साथी हमारे साथ हैं आपके, आपका क्या नाम है?
2: प्रणव।
1: अच्छा प्रणव आज हमें क्या सुनाएंगे?
2: पसीली जल की नानी।
1: सुनाओ फिर।
2: पसीली जल की नानी है, जीवन का पानी है, हाथ लगाओ डर जाएगी, हाथ निकालो मर जाएगी।
1: अच्छा मछली देखी है आपने? कहाँ रहती है मछली?
2: पानी में।
1: पानी में रहती है। अच्छा पानी से निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगा प्रणव मछली का?
2: मछली मर जाएगी।
1: मर जाएगी। बहुत बढ़िया बच्चा। हाँ तो हमारे सभी नन्हे मुन्ने दोस्तों ने बहुत अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी बातें हमसे आज साझा की, बहुत अच्छी अच्छी कहानी कविताएं हमें सुनाई।
3: तो बच्चों हम यही कामना करते हैं कि आप अपने इस टैलेंट को और आगे बढ़ाएं, नित प्रगति के पथ पर आगे बढ़ें और देश में अपना नाम रोशन करें।
1: तो सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।
4: प्यारे बच्चों अभी आप बालमुख कार्यक्रम के अंतर्गत अपने दोस्तों के विचारों से, मन के उद्गारों से रूबरू हो रहे थे। हाँ तो प्यारे बच्चों बात जब लोकल से वोकल और आत्मनिर्भर भारत की भावना को बढ़ावा देने की चल ही पड़ी है तो इसी क्रम में बात करते हैं 30 अगस्त को मनाए जाने वाले यानी कि आज राष्ट्रीय लघु उद्योग दिवस की, जिसका उद्देश्य लघु और छोटे उद्योगों के महत्व को समझाना, उनके विकास को बढ़ावा देना और रोजगार सृजन में उनके योगदान के प्रति जागरूकता फैलाना।

करना है। बच्चों, इस दिवस का महत्व इसलिए भी है जिससे लघु उद्योग देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करें, साथ ही ये बड़ी संख्या में रोजगार के अवसर प्रदान करें और स्थानीय कारीगरों, उद्यमियों और छोटे व्यवसायों को आगे बढ़ने का अवसर मिल सके। वास्तव में राष्ट्रीय लघु उद्योग दिवस छोटे उद्योगों, कुटीर उद्योगों, स्थानीय कारीगरों और उद्यमियों के योगदान को सम्मान देने का अवसर है। हाँ तो प्यारे बच्चों, इसी संदेश के साथ स्थानीय उद्योगों को दें सम्मान, छोटे उद्योगों से बड़े देश का मान। इस दिवस को पूरे धूमधाम व हर्षोल्लास के साथ मनाएं। और प्यारे बच्चों, ज्ञानवर्धक जानकारियों के इसी क्रम में सुनते हैं कुछ जरूरी संदेश।

0: चंदन का एहसास।
1: प्रसार भारती के पास है भारतीय संस्कृति की अनमोल धरोहर। इसमें शामिल हैं शास्त्रीय संगीत, नृत्य, साहित्य, नाट्य विधाएं, धारावाहिक, वृत्त चित्र और अन्य दुर्लभ रिकॉर्डिंग। और अब आप आकाशवाणी और दूरदर्शन के खजाने की डीवीडीज और सीडीज हासिल कर सकते हैं भारत में अपने संग्रह के लिए। प्रसार भारती के कार्यक्रमों का खजाना अगर है आपको पाना, तो लॉग ऑन कीजिए www.prasarbhartiarchives.co.in। याद रहे www.prasarbhartiarchives.co.in।
2: प्यारे बच्चों, महत्वपूर्ण जानकारियों की इसी श्रृंखला में अब बात करते हैं आज के महान विभूति क्रम में महान गणितज्ञ ब्रह्मगुप्त जी के विषय में। ये भारत के महान गणितज्ञ और खगोल शास्त्री थे। उनका जन्म लगभग 598 ईस्वी में राजस्थान के भीनसाल में माना जाता है। बच्चों, इन्होंने गणित और खगोल विज्ञान के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। जानते हैं बच्चों, ब्रह्मगुप्त ने शून्य को एक संख्या के रूप में समझने और उसके साथ गणितीय क्रियाओं के नियम बताने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। साथ ही धनात्मक और ऋणात्मक संख्याओं के साथ जोड़, घटाव आदि के नियम भी इन्होंने स्पष्ट किए। और तो और, बीज गणितीय समीकरणों को हल करने की विधियों पर उन्होंने महत्वपूर्ण कार्य किए। ग्रहों की गति और खगोलीय गणनाओं के अध्ययन में भी उनका सराहनीय योगदान रहा है। बच्चों, ब्रह्म स्फुट सिद्धांत इनकी प्रसिद्ध रचना है। वास्तव में ब्रह्मगुप्त ने भारतीय गणित को विश्व स्तर पर समृद्ध बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। विशेष रूप से शून्य और संख्याओं से संबंधित उनके कार्य ने आगे चलकर गणित के विकास की महत्वपूर्ण नींव रखी। इसलिए उन्हें भारत के महान गणितज्ञों में सम्मान पूर्वक याद किया जाता है। हाँ तो प्यारे बच्चों, आप भी इनसे प्रेरणा लें और इनके आदर्शों पर चलें। अब महत्वपूर्ण जानकारियों के इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए बात हो जाए रोचक अजब गजब बातों की। हाँ तो बच्चों, क्या आप जानते हैं कि ट्रेन के सबसे आखिरी डिब्बे यानी कोच पर बने क्रॉस के बड़े निशान का क्या मतलब है? हाँ तो बच्चों, इसका मतलब है रेलवे अधिकारियों और स्टेशन कर्मचारियों को ये पुष्टि कराना कि पूरी ट्रेन सुरक्षित रूप से निकल चुकी है और कोई भी डिब्बा पीछे छूटकर अलग नहीं हुआ है। पीले या सफेद रंग का ये स्पष्ट निशान एक सुरक्षा संकेतक का काम करता है। यदि किसी स्टेशन या क्रॉसिंग से गुजरते समय ट्रेन के अंतिम डिब्बे पर क्रॉस का निशान नहीं दिखता, तो रेलवे कर्मचारियों को तुरंत

समझ में आ जाता है कि ट्रेन के कुछ डिब्बे रास्ते में छूट गए हैं या कोई दुर्घटना हुई है, जिसके बाद वे तुरंत आपातकालीन कदम उठाकर अगली ट्रेन को रोक देते हैं। हाँ तो बच्चों, ये थी कुछ महत्वपूर्ण व रोचक जानकारियाँ। अब आपको ले चलते हैं रोचक किस्से कहानियों की दुनिया में, जिसका हमारे बाल श्रोताओं को बेसब्री से इंतजार रहता है। हाँ तो जो कहानी हम आपको सुनाने जा रहे हैं उसका शीर्षक है बंदर की समझदारी और जादुई आम का पेड़। बच्चों, एक बार की बात है, हरे भरे पहाड़ों के बीच एक सुंदर जंगल था। उस जंगल का नाम था बच्चों मस्तमौला वन। उसी जंगल में हिरण, हाथी, खरगोश, तोता, मोर, भालू और बंदर सभी मिलजुल कर रहते थे। उसी जंगल में एक नटखट बंदर रहता था, उसका नाम था चीकू। चीकू बच्चों बहुत शरारती था। जंगल के सभी जानवर उससे परेशान भी रहते और उसकी मजेदार हरकतों पर हंसते भी थे। एक दिन बच्चों, जब चीकू जंगल में घूम रहा था तो अचानक उसे एक बहुत पुराने पेड़ पर चमकदार आम लगा हुआ दिखाई पड़ा। अब क्या था, चीकू की आंखें बच्चों चमक उठी। वाह, इतना बड़ा आम मैंने आज तक नहीं देखा। वो जैसे ही आम को तोड़ने के लिए आगे बढ़ा तो पेड़ से आवाज आई, रुको। चीकू को आश्चर्य हुआ कि पेड़ भी बोलता है। पेड़ बोला, पहले मेरे प्रश्नों के सही जवाब दो, तभी आम ले जा सकते हो। चीकू बोला, पूछो वृक्ष दादा। पेड़ ने पहला सवाल पूछा, ऐसी कौन सी चीज है जो खुद गीली होती है लेकिन दूसरों को सुखाती है। चीकू ने अब सिर खुजलाया, तभी तपाक से बोला, तौलिया। बिल्कुल सही, अब चीकू खुश हो गया। अब दूसरा सवाल, ऐसी कौन सी चीज है जिसे जितना बांटो उतना ही बढ़ती है। फिर चीकू मुस्कुराते हुए तपाक से बोला, ज्ञान। शाबाश चीकू, तुमने तो प्रश्नों के सही जवाब दिए, तुम ये सुनहरा एक आम का फल जो है ले जा सकते हो। चीकू ने आम उठाकर सोचा कि मैं इसे अकेला ही खाऊंगा, लेकिन तभी बच्चों उसे अपने दोस्तों की याद आई। अब चीकू ने जैसे ही आम दोस्तों के सामने रखा, तभी जानवर कहने लगे, इतना छोटा आम, हम इतने सारे। लेकिन बच्चों, जैसे ही चीकू ने आम काटा, उस जादुई आम में बहुत सारे आम निकल पड़े। अब सभी ने छक कर आम खाए। हाँ तो बच्चों, जाना जब हमारी नीयत अच्छी होती है तो किसी भी कार्य का परिणाम कैसा होता है, सुखद होता है। इसलिए मिलजुल कर रहने व बांट कर खाने से खुशियाँ बढ़ती हैं। इसलिए आप भी मिलजुल कर रहो, खुश रहो। बच्चों, यही सीख लिए हुए सुनते हैं ये प्यारा सा सॉन्ग।

इसी गीत के साथ प्यारे बच्चों, हमारा आज का ये कार्यक्रम यहीं पर संपन्न होता है। तो फिर मिलते हैं आपसे नई उम्मीद, विश्वास और नई ऊर्जा के साथ आपके अपने कार्यक्रम बाल वाटिका में। तो चलते चलते आप सभी को आपकी दीदी अर्चना का जय हिंद।

आप सुन रहे थे साप्ताहिक कार्यक्रम बाल वाटिका। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। दिन के 1:45 हो रहे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम लोकधारा। तो श्रोताओं, इस कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवाएंगे भानु राम सुगोटी के गाए कुछ कुमाऊनी लोकगीत। पहले सुनते हैं इनकी आवाज में ये कुमाऊनी लोकगीत।

लोकधारा कार्यक्रम आप आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से सुन रहे हैं। इस कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवा रहे हैं भानु राम सुकोटी के गाए कुछ कुमाऊनी लोकगीत। पेश है इनकी आवाज में ये कुमाऊनी लोकगीत।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज ताशकंद में उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शफकत मिर्जियोयेव से वार्ता की। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी ने पीएम स्वनिधि योजना के माध्यम से महिला सशक्तिकरण का उल्लेख किया। कहा, इस योजना से 35 लाख महिलाओं को लाभ मिला। प्रधानमंत्री ने मिशन शक्ति सेट को 108 देशों की 12,000 छात्राओं के लिए उपग्रह प्रौद्योगिकी सीखने और नवाचार को बढ़ावा देने का मंच बताया। प्रधानमंत्री मोदी ने युवाओं, संगीतकारों और कंटेंट क्रिएटर से नशा मुक्त भारत अभियान के लिए जिंगल्स, स्लोगन और सामग्री तैयार करने की अपील की। कहा, अभियान पूरे देश में गति पकड़ रहा है। नेपाल बाढ़ में मृतकों की संख्या 734 हुई, लगभग 2,500 लोग अब भी लापता। भारत का चौथा विमान 11 टन सहायता सामग्री लेकर काठमांडू पहुंचा। उड़ीसा में आज मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी और बेल्जियम में पुरुष हॉकी विश्व कप के फाइनल में आज मौजूदा चैंपियन जर्मनी का मुकाबला स्पेन से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत और उज्बेकिस्तान व्यापक रणनीतिक साझेदारी के ढांचे के अंतर्गत ठोस लक्ष्य निर्धारित करके आगे बढ़ेंगे। राष्ट्रपति शफकत मिर्जियोयेव के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता के दौरान श्री मोदी ने कहा कि दोनों देश अपने संबंधों को व्यापक रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक ले जा रहे हैं। वार्ता के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने बताया कि दोनों देशों के बीच सहयोग के सभी स्तरों की समीक्षा के लिए विदेश मंत्रियों की समन्वय समिति का गठन किया जाएगा।
1: हम विदेश मंत्रियों के स्तर पर कोऑर्डिनेशन काउंसिल का गठन करेंगे, जो सहयोग के सभी पहलुओं को करीबी समन्वय से दिशा देगी। हम हमारे ज्वाइंट कमीशन के स्तर को सेक्रेटरी लेवल से बढ़ाते हुए मिनिस्टर लेवल पर लेकर जाएंगे। दोनों पक्ष मिलकर एक बिजनेस समिट का आयोजन करेंगे। यूरेनियम की सप्लाई के लिए दोनों पक्ष लॉन्ग टर्म व्यवस्था बनाएंगे।
0: ताशकंद में प्रधानमंत्री ने रणनीतिक साझेदारी की 15वीं वर्षगांठ और उज्बेकिस्तान के स्वतंत्रता दिवस की 35वीं वर्षगांठ के सहयोग पर भी खुशी व्यक्त की। श्री मोदी ने कहा कि दोनों देश इस वर्ष सामरिक भागीदारी की 15वीं वर्षगांठ मना रहे हैं।
1: सुखद संयोग से हम इस वर्ष अपने स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की 15th एनिवर्सरी भी मना रहे हैं। मुझे खुशी है, इस विशेष अवसर पर हम अपने संबंधों को कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का दर्जा देने जा रहे हैं। हम इसके अंतर्गत ठोस लक्ष्य निर्धारित करते हुए आगे बढ़ेंगे।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि विकसित भारत के लिए नशा मुक्त युवा अभियान पूरे देश में तेजी से आगे बढ़ रहा है। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में आज श्री मोदी ने कहा कि बहुत सारे लोग और विशेष रूप से युवा बड़ी संख्या में नशा मुक्त युवा और नशा मुक्त भारत अभियान का हिस्सा बन रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि पीएम स्वनिधि योजना के माध्यम से लाखों महिलाओं को नई शक्ति प्राप्त हो रही है।
1: पीएम स्वनिधि योजना के लाभार्थियों में करीब 46% महिलाएं हैं, यानी देश भर में लगभग 35 लाख महिलाएं इस योजना से जुड़कर अपने कारोबार को आगे बढ़ा रही हैं। गाजियाबाद की बबीता शर्मा जी पूजा की सामग्री का एक छोटा सा स्टॉल लगाती थी। मेहनत खूब थी, लेकिन कारोबार बढ़ाने के लिए पूंजी की जरूरत थी। पीएम स्वनिधि से उन्हें आर्थिक मदद मिली, कारोबार का विस्तार किया, ग्राहक बढ़े और धीरे धीरे सड़क किनारे का उनका छोटा सा स्टॉल एक दुकान में बदल गया।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आज देश की बेटियों के सपनों की उड़ान अंतरिक्ष तक पहुंच रही है।
1: आज हमारी बेटियों के सपनों की उड़ान धरती से निकलकर अंतरिक्ष तक पहुंच रही है और आपको यह जानकर गर्व होगा कि भारत ऐसे सपने देखने वाली दुनिया की हजारों बेटियों को एक साथ जोड़ रहा है। इस प्रयास का नाम है मिशन शक्ति सेट। इसके माध्यम से 108 देशों की 12,000 छात्राओं को सैटेलाइट टेक्नोलॉजी सीखने और इनोवेशन के क्षेत्र में आगे बढ़ने का अवसर मिल रहा है।
0: प्रधानमंत्री ने लोगों से नशा मुक्त भारत के लिए प्रभावशाली नारा तैयार करने और युवा संगीतकारों से ऐसे गीत बनाने को कहा जो नशा मुक्त जीवन का संदेश दें।
1: नशा मुक्त भारत के लिए क्या आप कोई पावरफुल स्लोगन बना सकते हैं, कि हमारे यंग म्यूजिशियंस ऐसे सॉन्ग्स बना सकते हैं जिनमें ड्रग फ्री लाइफ का मैसेज हो? क्या स्टूडेंट्स और थिएटर ग्रुप्स दिल को छू लेने वाले शॉर्ट प्लेज लिख सकते हैं? जिनमें ड्रग्स के खतरों के साथ साथ उनसे बाहर निकलने का रास्ता भी हो। हमारे देश में बेहतरीन कंटेंट क्रिएटर्स की कमी नहीं है। मेरा आग्रह है कि वे अलग अलग भाषाओं में ऐसा कंटेंट बनाएं जिससे इस दिशा में समाज को मदद मिले।
0: श्री मोदी ने कहा कि जब किसी जगह को स्वच्छ रखने का संकल्प लोगों का अपना संकल्प बन जाता है तो उससे उस जगह की पहचान पूरी तरह बदल जाती है। श्री मोदी ने उत्तर प्रदेश के पटवाई के आकाश और रोहन का उल्लेख किया।
1: उनके आसपास का इलाका गंदगी से भर गया है, बस फिर क्या था। आकाश और रोहन ने कचरे के बैग उठाए और सफाई के लिए निकल पड़े। धीरे धीरे दूसरे युवा भी उनके साथ जुड़ने लगे। एक टीम भी बन गई जिसका नाम है क्लीनअप पटवाई। ये युवा अब तक 4 गंगा घाटों को साफ कर चुके हैं।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि अगस्त का महीना अपने साथ देशभक्ति के कई रंग लेकर आया है। उन्होंने कहा कि हर घर तिरंगा अभियान ने देशभक्ति की भावना को और मजबूत किया है।
1: वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने से यह साल और भी विशेष बन गया है। इस बार 8 करोड़ से अधिक तिरंगा सेल्फी अपलोड की गई। इस साल सूर्यपथ तिरंगा के जरिए हमारा तिरंगा दुनिया भर की एक अनोखी यात्रा पर निकला। फिजी के सुवा में सूरज की पहली किरण के साथ तिरंगा फहराया गया। इसके बाद एशिया, अफ्रीका, यूरोप और फिर अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को तक तिरंगा लहराता गया। ऐसे प्रयास समाज को एक सूत्र में पिरोते हैं।
0: श्री मोदी ने आंध्र प्रदेश में एवोकाडो की खेती करने वाले कडप्पा के वरदराज का उल्लेख किया।
1: आजकल एवोकाडो फल की बड़ी धूम है। इस फल को पहले शायद ही कोई जानता था। आंध्र प्रदेश में कडप्पा के वरदराज जी का उदाहरण है। वे कई वर्षों से अपने खेत में टमाटर और केले की खेती कर रहे थे। एक दिन उन्होंने अपने दोस्तों के फार्म में एवोकाडो की फसल देखी। इसके बाद उन्होंने यूट्यूब से इस पर जानकारी जुटाई। अब तक वे करीब 4 टन एवोकाडो का उत्पादन कर चुके हैं। आज वे सीधे स्थानीय दुकानों को इसकी सप्लाई कर रहे हैं।
0: प्रधानमंत्री ने लोगों से त्योहारों के मौसम में वोकल फॉर लोकल का समर्थन करने का आग्रह किया।
1: त्योहारों के इस मौसम में मैं एक बार फिर आपसे वोकल फॉर लोकल का आग्रह दोहराऊंगा। और वोकल फॉर लोकल का मतलब केवल मिट्टी के दिए खरीदना नहीं है, इसका विजन बहुत बड़ा है। हम अपने घर के लिए जो भी सामान खरीदते हैं उसे एक बार जरूर देख लें कि वो भारत में बना हो। भारत के आत्मनिर्भर बनने का मार्ग भारत में बनी चीजों पर गर्व करने से ही प्रशस्त होगा।
0: ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं।
2: चलते फिरते खबरों से जुड़े रहिए। एक्सपर्ट @AIR न्यूज हिंदी को फॉलो करें और PB शब्द पर आकाशवाणी समाचार
0: सुने। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। नेपाल बाढ़ में मृतकों की संख्या 734 हो गई है। लगभग 2500 लोग अब भी लापता हैं। आपदा के पांचवें दिन भी बचावकर्मी लापता लोगों की तलाश और फंसे हुए लोगों को बचाने में जुटे हैं। विदेश मंत्रालय ने बताया कि 11 टन राहत सामग्री लेकर चौथा विमान आज नेपाल पहुंचा। एक रिपोर्ट।
3: बचाव दल ने अब तक 8,186 लोगों को सुरक्षित निकाल लिया है। इनमें 227 विदेशी नागरिक हैं। नेपाल सरकार ने भोटेकाशी नदी में बाढ़ का अलर्ट जारी किया है। भोटेकाशी नदी के आसपास रहने वाले लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि अब तक 108 भारतीय नागरिकों को बचाया जा चुका है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि 275 भारतीय और अन्य देशों के भारतीय मूल के 128 लोग भी लापता हैं। वहीं चीन में 900 भारतीय नागरिक सुरक्षित हैं और पेइचिंग में भारतीय दूतावास के संपर्क में है। मंत्रालय ने कहा कि भारत सरकार प्रभावित लोगों के शीघ्र बचाव और राहत कार्यों के लिए नेपाल और चीन के अधिकारियों के साथ मिलकर काम कर रही है। भारत से 11 टन राहत सामग्री लेकर चौथा विमान काठमांडू पहुंच चुका है। इससे पहले भारत ने 3 विमानों में 57 टन से अधिक राहत सामग्री भेजी थी। समाचार कक्ष से अंजुम आलम।
0: उड़ीसा के उत्तरी क्षेत्रों में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। उत्तर पश्चिमी बंगाल की खाड़ी और उससे सटे पश्चिम बंगाल तथा उत्तरी उड़ीसा तटों पर बने निम्न दबाव के क्षेत्र के कारण ये वर्षा तेज हो रही है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि मौसम विभाग ने आज और कल उड़ीसा में अत्यधिक वर्षा की चेतावनी दी है।
4: बालेश्वर जिले में बाढ़ का नया खतरा पैदा हो रहा है क्योंकि लगातार बारिश के बीच सुवर्णरेखा नदी का जलस्तर बढ़ रहा है। ताजा जानकारी के अनुसार राजघाट पर नदी का जलस्तर 8.84 मीटर था जबकि इसका खतरे का निशान 10.36 मीटर है। झारखंड में गुलडीही बैरेज के 6 गेट खोल दिए गए हैं जिससे नदी का जलस्तर और बढ़ने की चिंता बढ़ गई है। जलेश्वर, भोगराई और बालियापाल के निचले इलाकों में फिर से बाढ़ आ सकती है। IMD का कहना है कि अगले 48 घंटों के दौरान इस सिस्टम के और मजबूत होने और पश्चिम उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ने की संभावना है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं।
5: लगातार खबरों से जुड़े रहने के लिए @AIR News Hindi को फॉलो करें और हमारे व्हाट्सएप चैनल आकाशवाणी समाचार से जुड़े।
0: ये आकाशवाणी है। बेल्जियम में पुरुष हॉकी विश्व कप के फाइनल में आज मौजूदा चैंपियन जर्मनी का सामना स्पेन से होगा। मैच भारतीय समय के अनुसार रात 8 बजे शुरू होगा। जर्मनी की टीम 2023 में जीती अपनी ट्रॉफी को बरकरार रखते हुए चौथा खिताब अपने नाम करना चाहेगी। वहीं स्पेन अपना पहला हॉकी विश्व कप खिताब जीतने की कोशिश करेगा। एशिया कप महिला T20 क्रिकेट में आज भारत का सामना थाईलैंड से होगा। दुबई में यह मैच भारतीय समय के अनुसार रात 8:30 बजे से खेला जाएगा। कप्तान हरमनप्रीत कौर की अगुवाई में भारत प्रतियोगिता में अपने अभियान की शुरुआत करेगा। स्मृति मानधना उपकप्तान होंगी। प्रतियोगिता में 8 टीम है। भारत ग्रुप ए में थाईलैंड, हांगकांग और पाकिस्तान के साथ है। केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने आज नई दिल्ली में फिट इंडिया संडेज ऑन साइकिल के 88वें संस्करण में भाग लिया। जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में डॉक्टर मांडविया ने कहा कि साइकिल चलाना नागरिकों के बीच लोकप्रिय हो गया है। उन्होंने युवाओं से स्वस्थ और तंदुरुस्त रहने के लिए प्रतिदिन कम से कम 1 घंटा खेल और शारीरिक गतिविधियों के लिए समर्पित करने का आग्रह किया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने आज लोकसभा के पूर्व अध्यक्ष सरदार हुकुम सिंह की जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की। श्री बिरला ने कहा कि सरदार हुकुम सिंह एक कुशल राजनीतिज्ञ, कानूनी विशेषज्ञ और उत्कृष्ट वक्ता थे। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने कहा है कि विश्वसनीयता पत्रकारिता का मुख्य नैतिक मूल्य है। उन्होंने आज केरलम के अलप्पुरा में दैनिक केरल कौमुदी की 115वीं वर्षगांठ समारोह का उद्घाटन किया। उपराष्ट्रपति ने नैतिकता का उल्लंघन किए बिना एक सदी से अधिक समय तक पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवा करने के लिए केरल कौमुदी को बधाई भी दी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल नई दिल्ली में राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान के दीक्षांत समारोह में भाग लेंगी। देश भर के 18 परिसरों के स्नातक छात्र इसमें शामिल होंगे। केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह भी इस अवसर पर उपस्थित रहेंगे। उपभोक्ता कार्य विभाग ने कानूनी मापन भारतीय मानक समय नियम 2026 को अधिसूचित कर दिया है। इन नियमों के अनुसार भारतीय मानक समय को देश में कानूनी, प्रशासनिक, वाणिज्यिक और अन्य आधिकारिक कार्यों के लिए एक समान समय संदर्भ के रूप में उपयोग किया जाएगा। ये नियम राजपत्र में प्रकाशित की तिथि से 180 दिन में लागू होंगे। सरकार ने प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत बहुत कम ब्याज दर पर ऋण देने वाले दावे का खंडन किया है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य इकाई ने बताया कि यह पत्र फर्जी है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज ताशकंद में उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शफकत मिर्जियोयेव से वार्ता की। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी ने PM स्वनिधि योजना के माध्यम से महिला सशक्तिकरण का उल्लेख किया। कहा, इस योजना से 35 लाख महिलाओं को लाभ मिला। प्रधानमंत्री ने मिशन शक्ति सेट को 108 देशों की 12,000 छात्राओं के लिए उपग्रह प्रौद्योगिकी सीखने और नवाचार को बढ़ावा देने का मंच बताया। प्रधानमंत्री मोदी ने युवाओं, संगीतकारों और कंटेंट क्यूरेटर्स से नशा मुक्त भारत अभियान के लिए जिंगल्स, स्लोगन और सामग्री तैयार करने की अपील की। कहा, अभियान पूरे देश में गति पकड़ रहा है। नेपाल बाढ़ में मृतकों की संख्या 734 हुई, लगभग 2,500 लोग अब भी लापता। भारत का चौथा विमान 11 टन सहायता सामग्री लेकर काठमांडू पहुंचा। और बेल्जियम में पुरुष हॉकी विश्व कप के फाइनल में आज मौजूदा चैंपियन जर्मनी का मुकाबला स्पेन से। इसके साथ ही दोपहर समाचार का यंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
6: ये नजीब आबाद केंद्र से बोल रहे हैं। 2:30 हो रहे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम एक और अनेक। एक और अनेक कार्यक्रम सुनने वाले हमारे सभी श्रोताओं को आपके रेडियो साथी मनोज वर्मा का नमस्कार। लीजिए एक बार फिर हाजिर हैं आपकी सेवा में आज के कार्यक्रम का आज का अंक लेकर, जिसमें हम आपसे बात करेंगे एक ऐसी अभिनेत्री की जो अपनी सुंदरता के साथ साथ फैशन के लिए भी जानी जाती थी। उनके फैशन में सबसे कामयाब अगर रहा है तो वो उनके बालों का कट, जिसके नाम से वे फिल्मी दुनिया के साथ साथ बाहर की दुनिया में भी जानी गईं। महिलाएं उस दौर में उनके बालों के कट के तरीके से अपने बाल कटाना पसंद करती थीं और उनका नाम लेकर उस कट को बताती थीं। जी हां, हमें लगता है कि हमारे कुछ श्रोताओं ने उस भारतीय अभिनेत्री का नाम पहचान लिया होगा, और अगर नहीं तो अब हम आपको बता देते हैं कि उस अभिनेत्री का नाम था साधना, यानी पूरा नाम अगर हम लें तो साधना शिवदासानी। हम आपको बता दें कि इस अभिनेत्री का जन्म 2 सितंबर 1941 को ब्रिटिश भारत के कराची यानी सिंध प्रांत में हुआ था। विभाजन के बाद उनका परिवार भारत के तत्कालीन बंबई में आ गया। सन 1955 में फिल्म श्री 420 में एक छोटी सी भूमिका निभाई। यह फिल्म राज कपूर की थी। इस फिल्म के एक गीत में उन्होंने कोरस गर्ल की भूमिका निभाई थी। इस फिल्म में उन्होंने नरगिस नादिरा के साथ काम किया और यह फिल्म एक कॉमेडी ड्रामा थी। उस गीत को आपको सुनवाते हैं जिसमें उन्होंने कोरस गर्ल की भूमिका निभाई थी।

0: उसके बाद की अगर हम बात करें तो भारत की पहली सिंधी फिल्म अबाना में काम करने का उन्हें मौका दिया गया। यहीं से उनकी मुलाकात प्रमुख निर्माता सशाधर मुखर्जी से हुई। उन्होंने साधना को अपने बेटे जॉय मुखर्जी के साथ फिल्म लव इन शिमला में काम करने का मौका दिया। इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर खूब नाम कमाया। इस फिल्म में साधना ने निर्देशक आर के नैयर के कहने मुताबिक बेहतरीन रोल अदा किया। यहीं से साधना स्टार बन गई। ये फिल्म प्रेम त्रिकोण पर बनी थी। इस फिल्म के सभी गीतों को राजेंद्र कृष्ण ने लिखा था और संगीत तैयार किया था इकबाल कुरैशी ने। इसके बाद इसी सीरीज में साधना ने जॉय मुखर्जी के साथ एक फिल्म और बनाई। नाम था एक मुसाफिर एक हसीना। पहले सुनवाएंगे आपको ये संदेश, उसके बाद आपको गीत सुनवाएंगे।
1: शास्त्रीय संगीत का अमृत कलश रागम भारतीय शास्त्रीय संगीत को समर्पित आकाशवाणी का बेहतरीन चैनल रागम डीटीएच पर लाइव स्ट्रीमिंग के जरिए इंटरनेट और आपके मोबाइल ऐप पर भी रागम आनंद की अटूट रसधार।
0: एक मुसाफिर एक हसीना फिल्म की हमने बात की थी। गीत आपको उसी का सुनवाएंगे हम, आशा भोसले और मोहम्मद रफी साहब की आवाज में। इस गीत को लिखा था राजा मेहदी अली खान ने, जिसको बेहतरीन तरीके से साधना ने अंजाम दिया, और ओपी नैयर साहब की इसमें धुन थी।

कार्यक्रम एक और अनेक आज आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से। और इस कार्यक्रम में आज हम बात कर रहे हैं साधना और उनके सहयोगियों की। सन 1960 की शीर्ष 10 फिल्मों में शामिल होने के बाद निर्देशक बिमल रॉय ने भारतीय लोकतंत्र पर बनी फिल्म परख के लिए उन्हें चुना। इस फिल्म ने अनेक पुरस्कार जीते थे। इस फिल्म ने में साधना ने मोतीलाल, नाजिर हुसैन, दुर्गा खोटे के साथ काम किया। इस फिल्म में साधना ने सीमा नाम का किरदार निभाया था। इस फिल्म का एक गीत ओ सजना बरखा बहार आई लता मंगेशकर ने गाया था, बोल शैलेंद्र के थे और संगीत सलील चौधरी का था।

0: अपने व्यापार को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाना चाहते हैं?
1: तो इंतजार किस बात का,
0: अभी बुक कराइए अपना विज्ञापन आकाशवाणी नजीबाबाद के संग।
1: विज्ञापन बुकिंग कराने के लिए आज ही संपर्क करें।
0: हमारा मोबाइल नंबर है 8865845809।
1: नंबर एक बार फिर सुन लीजिए 8865845809।
0: और हमारा ईमेल आईडी है
1: akashvaninajibabad@gmail.com।
0: तो देर किस बात की, उठाइए अपना फोन और बुक कराइए अपना विज्ञापन
1: आकाशवाणी नजीबाबाद के संग।
2: इस फिल्म के बाद यानी परख फिल्म के बाद साधना ने सन 1961 में एक और हिट फिल्म हम दोनों में सदाबहार अभिनेता देवानंद के साथ उनकी प्रेमिका के भूमिका निभाई। हम यहां आपको बता दें कि इस ब्लैक एंड व्हाइट फिल्म को सन 2011 में रंगीन बनाकर दोबारा रिलीज किया गया था। इस फिल्म में साधना ने नंदा और लीला चिटनिस जैसी अभिनेत्रियों के साथ काम किया था। यह फिल्म विजय आनंद ने लिखी थी। फिल्म के गीतों को जयदेव ने संगीतबद्ध किया था। साहिर लुधियानवी ने अपनी कलम से इस फिल्म के गीतों को लिखा था। गीतों को लता मंगेशकर, मोहम्मद रफी, आशा भोसले ने गाया था। एक गीत आपको सुनवाते हैं इसी फिल्म का, मोहम्मद रफी और आशा भोसले की आवाज में।

सन 1964 में साधना ने सस्पेंस थ्रिलर फिल्म वो कौन थी में डबल रोल अदा किया। इस फिल्म में इन्होंने अभिनेता मनोज कुमार के साथ सफेद साड़ी में अभिनय किया। इस फिल्म ने उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के रूप में पहला फिल्म फेयर नामांकन दिलाया था। यह फिल्म में साधना के साथ प्रेम चोपड़ा, हेलेन और केएन सिंह जैसे कलाकार रहे। इस फिल्म के गीतों को राजा मेहदी अली खान ने लिखा था और उन गीतों को मदन मोहन ने संगीतबद्ध किया था, जिनको बहुत ही खूबसूरती से साधना पर फिल्माया गया था। एक गीत आपको सुनवाते हैं जो बहुत ही खूबसूरत गीत है।

श्रोताओं, साधना लगातार अपने अभिनय से दर्शकों का मन मोहती रहीं। सन 1966 और 67 में राज खोसला के साथ उनकी फिल्म मेरा साया और अनीता में काम किया। इन फिल्मों की वजह से वे रहस्यमयी लड़की के रूप में जानी गईं। मेरा साया में उन्होंने सुनील दत्त के साथ दोहरी भूमिका अदा की। इस फिल्म में उन्होंने सरोज खान द्वारा कोरियोग्राफ किए गए नृत्य किया था। ये गीत था झुमका गिरा रे। हम आपको यह भी जानकारी दे दें कि उस समय यह गीत रेडियो पर सबसे ज्यादा सुने जाने वाला गीत था। इसके अलावा साधना ने इंतकाम, एक फूल दो माली, आप आए बहार आई, इश्क पर जोन नहीं, दिल दुनिया दौलत, अमानत, महफिल, गीता, मेरा नाम जैसी फिल्मों में अनेक अभिनेताओं के साथ काम किया, जिसे बहुत सराहा गया। गीता मेरा नाम कोरियोग्राफर सरोज खान

श्रोताओं, कला की धनी इस साधना का निधन 25 दिसंबर सन 2015 को मुंबई में हुआ। आने वाले 2 सितंबर को हम उनकी जयंती मनाएंगे। इस कार्यक्रम के जरिए उन्हें सादर नमन और श्रद्धांजलि। आप सुन रहे थे कार्यक्रम एक और अनेक। आज ये कार्यक्रम समर्पित था अभिनेत्री साधना और उनके साथियों के नाम। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलोहर्ट्ज पर 3 बज रहे हैं। अब हमारी सभा के प्रसारण यहीं पर संपन्न हो रहे हैं। अपनी सांध्यकालीन सभा में शाम 5 बजे आपसे पुनः भेंट होगी। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए।

मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलोहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 5 बजे हैं। अब हमारे सांध्यकालीन सभा के प्रसारण आरंभ होते हैं। सभा के आरंभ में लीजिए सुनिए कार्यक्रम मेरा सपना उन्नत भारत। मेरा सपना उन्नत भारत कार्यक्रम के सभी श्रोताओं को हमारा प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, जैसा कि आप जानते ही हैं, इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपसे चर्चाएं करते हैं भारत सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं के विषय में। तो आज इसी क्रम में हम आपसे चर्चा करने जा रहे हैं भूजल प्रबंधन में सुधार के लिए अटल भूजल योजना और जल क्रांति अभियान के विषय में। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं अटल भूजल योजना के विषय में। अटल भूजल योजना गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और उत्तर प्रदेश सहित 7 राज्यों के 80 जिलों की 8,562 ग्राम पंचायतों में लागू की जा रही है। इसका उद्देश्य विभिन्न चल रही केंद्रीय और राज्य योजनाओं के समन्वय के माध्यम से समुदाय आधारित सतत भूजल प्रबंधन में सुधार करना है। साथ ही जागरूकता कार्यक्रमों और क्षमता निर्माण के माध्यम से सतत भूजल प्रबंधन को बढ़ावा देने के लिए सामुदायिक स्तर पर व्यवहारिक परिवर्तन लाना भी इसका लक्ष्य है। इस योजना में भागीदार राज्यों के समुदायों और पंचायतों की विभिन्न गतिविधियों में सक्रिय भागीदारी की परिकल्पना की गई है, जैसे जल उपयोगकर्ता संघों का गठन, सशक्तिकरण, भूजल आंकड़ों की निगरानी और प्रसार, जल बजट निर्धारण और ग्राम पंचायत वार जल सुरक्षा योजनाओं का निर्माण और उनका कार्यान्वयन। ग्राम पंचायत स्तर के जल उपयोगकर्ता संघों में जल बजट निर्धारण और जल सुरक्षा योजना बनाने की प्रक्रियाओं में महिलाओं की भागीदारी कम से कम 33% रखी गई है। प्रत्येक ग्राम पंचायत में मौजूदा ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति का विस्तार किया गया है और उसे इस कार्य में लगाया गया है। अटल भूजल योजना का एक प्रमुख उद्देश्य जमीनी स्तर पर लोगों के व्यवहार में बदलाव लाना है। इसके लिए जल बजट और जल सुरक्षा योजनाओं को तैयार करते समय जल उपलब्धता और उपयोग जैसे जल संबंधी आंकड़ों का उपयोग किया गया है। ये योजनाएं सामुदायिक भागीदारी से तैयार की जा रही हैं और इनमें उपयोग किए गए आंकड़ों को पूरे समुदाय तक पहुंचाया जा रहा है। इसके अलावा जल संबंधी आंकड़ों में सुधार के लिए सभी अटल जल राज्यों में डिजिटल जल स्तर रिकॉर्ड, जल स्तर मापक, वर्षा मापी और जल प्रवाह मीटर जैसे विभिन्न उपकरण स्थापित किए जा रहे हैं। साथ ही भारत सरकार राष्ट्रीय जल विज्ञान परियोजना के तहत देश भर में सतही और भूजल दोनों के लिए विभिन्न वास्तविक समय डेटा अधिग्रहण प्रणाली स्थापित कर रही है। तो ये तो बात हुई अटल भूजल योजना के विषय में, और अब आपसे बात करते हैं जल क्रांति अभियान के विषय में। भारत के जल संसाधन, नदी विकास और गंगा पुनर्जीवन मंत्रालय ने पूरे भारत के गांवों में पानी की उपलब्धता में सुधार लाने के लिए जल क्रांति अभियान नामक एक नया कार्यक्रम शुरू किया। इसका मुख्य उद्देश्य जमीनी स्तर पर भागीदारी को मजबूत करना और जल संसाधन संरक्षण के लिए पारंपरिक और आधुनिक ज्ञान और प्रथाओं को ग्राम स्तर पर बढ़ावा देना है। भारत सरकार ने इस मुद्दे पर जागरूकता बढ़ाने के लिए गैर सरकारी संगठनों, शैक्षणिक संस्थानों, नीति निर्माताओं और नागरिकों को इस पहल में शामिल किया है। उन्होंने प्रत्येक राज्य के अधिकांश जिलों में सबसे अधिक जल संकट वाले 2 गांवों या जल ग्रामों का चयन करके अपने प्रायोगिक कार्यक्रम शुरू किए। ये कार्यक्रम मुख्य रूप से क्षमता निर्माण पर केंद्रित हैं, जिनमें कार्यशालाओं और सेमिनारों के माध्यम से समुदायों को शिक्षित किया जाता है। साथ ही विभिन्न प्रकार के मुद्रित, पारंपरिक और डिजिटल मीडिया का उपयोग किया जाता है। जलग्राम कार्यक्रम के तहत प्रत्येक जलग्राम में 2 जल विशेषज्ञों, 1 महिला और 1 पुरुष का चयन और प्रशिक्षण भी किया जाता है, ताकि वे अन्य गांवों के साथ साथ अपने समुदायों के सदस्यों के साथ भी अपना ज्ञान साझा कर सकें। इस प्रशिक्षण में वर्षा जल संचयन संरचनाओं जैसे जोड़ा और जल कुंड का निर्माण, बांस और साइकिल पंपों से निर्मित ड्रिप सिंचाई प्रणालियों का प्रशिक्षण शामिल है, सूक्ष्म सिंचाई, जल स्रोतों का पुनर्जीवन और अपशिष्ट जल पुनर्चक्रण का भी इसमें उल्लेख किया गया है।
भारत सरकार का उद्देश्य छोटे स्तर पर शुरुआत करना है, इस उम्मीद के साथ कि ये एक जन आंदोलन में तब्दील हो जाए। जैसा कि जल संसाधन मंत्रालय के एसके शर्मा ने भारत जल सप्ताह के एक सत्र में बताया था, जल संसाधन मंत्रालय की ही अमिता प्रसाद ने बताया कि वे सहभागी अनुसंधान करने के लिए प्रत्येक जलग्राम के लिए लगभग 14 लाख रुपए की राशि उपलब्ध कराएंगे ताकि ये गांव अग्रणी बन सकें। लेकिन ये धनराशि प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम और त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम, राष्ट्रीय और राज्य सरकारों की मौजूदा योजनाओं से आएगी। अब सवाल ये उठता है कि क्या इस तरह के क्षमता निर्माण कार्यक्रम आने वाले वर्षों में सफल हो पाएंगे? जलवायु परिवर्तन के कारण सूखे की बढ़ती आवृत्ति को देखते हुए क्या जल क्रांति अभियान जल सुरक्षा की दिशा में नागरिकों द्वारा शुरू किए गए जन आंदोलन में तब्दील हो पाएगा जैसा कि हमारी सरकार चाहती है? तो क्यों नहीं, हो सकता है जब सारे नागरिक जल क्रांति के लिए एक साथ कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ेंगे। और अब चलते चलते आइए सुनते हैं ये प्यारा सा गीत।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम मेरा सपना उन्नत भारत। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलो हर्ट्ज पर। शाम के 5:10 हुए हैं। प्रस्तुत है जानकारी आज की सभा के शेष और कल के कुछ प्रमुख कार्यक्रमों के विषय में। पहले जानकारी आज की सभा के शेष कार्यक्रमों के विषय में।

आज रात्रि 9 बजे कार्यक्रम अनुगूंज और अखिल भारतीय रविवासरीय संगीत सभा आज रात्रि 10 बजे, ये दोनों ही कार्यक्रम हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। युवा श्रोताओं का दैनिक कार्यक्रम युववाणी सुनिएगा आज शाम 5:15 पर। आज शाम 6:05 पर किसान भाइयों के दैनिक कार्यक्रम कृषि जगत में सहायक प्रोफेसर अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय अलीगढ़ से जितेंद्र कुमार की श्री डॉक्टर मोहम्मद अवैस से जितेंद्र कुमार की बातचीत का विषय होगा कृषि में ड्रोन और आधुनिक तकनीक का उपयोग। विविधा क्रम में आज शाम 6:45 पर डॉक्टर वीरेंद्र पुष्पक की वार्ता का विषय होगा पर्यावरण चेतावनी आने वाला कल। छाया गीत आप सुनिएगा आज शाम 6:55 पर।

सुगम संगीत में आज शाम 7:32 पर विविध कलाकारों के गाए गीत सुनवाए जाएंगे। अदबी दुनिया कार्यक्रम में आज शाम 7:50 पर कला में शायर प्रस्तुत करेंगे श्री शाहनवाज आलम। गीत संध्या कार्यक्रम सुनिएगा आज रात्रि 8 बजे और आज रात्रि 8:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम एक ही फिल्म से। ये थी जानकारी हमारे आज की सभा के शेष कार्यक्रमों के विषय में। और अब एक नज़र कल के कुछ प्रमुख कार्यक्रमों पर।

कार्यक्रम पब्लिक स्पीक कल रात्रि 9:30 पर हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। कल सवेरे 6:05 पर सुनिएगा भक्ति संगीत का दैनिक कार्यक्रम वंदना। श्री रामचरित मानस गान की संगीतमय प्रस्तुति सुनिएगा कल सवेरे 6:30 पर। काव्यधारा क्रम में कल सवेरे 6:45 पर श्री अनिल बाजपेयी का काव्य पाठ सुनवाया जाएगा। सूरज के साथ साथ कार्यक्रम आप सुन सकते हैं कल सवेरे 7:31 पर। धरती गाती है कार्यक्रम में कल सवेरे 9:25 पर दिशा सक्सेना और मृदुला निगम के गाय रोहिलखंडी लोकगीत सुनवाए जाएंगे। गोल्डन हिट्स आप सुनेंगे कल सवेरे 8:45 पर। कल सवेरे 10 बजे हम आपको सुनवाएंगे कार्यक्रम गीत तुम्हारे।

एनसीईआरटी द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग सुनिएगा कल दिन में 11:30 पर। शास्त्रीय संगीत में कल दोपहर 12:05 पर पंडित रविशंकर का सितार वादन सुनवाया जाएगा। मिड डे मेलोडी आप सुनेंगे कल दोपहर 12:30 पर। कार्यक्रम परिवार जगत आप सुन सकते हैं कल दोपहर 1:15 पर। लोकधारा कार्यक्रम में कल दोपहर 1:45 पर गुरदास मान के गाए पंजाबी लोकगीत सुनवाए जाएंगे। नई फिल्मों से ये कार्यक्रम आप सुनेंगे कल दोपहर 2:30 पर। कल शाम 5 बजे हम आपको सुनवाएंगे कार्यक्रम मेरा सपना उन्नत भारत। कल शाम 6:05 पर किसान भाइयों के दैनिक कार्यक्रम कृषि जगत में कृषि विज्ञान केंद्र बदायूं से कृषि वैज्ञानिक श्री सौरभ दुबे से अंकित कुमार की बातचीत का विषय होगा रासायनिक उर्वरकों के दुष्प्रभाव। विविधा क्रम में कल शाम 6:45 पर डॉक्टर शुभा माहेश्वरी की वार्ता का विषय होगा नई पीढ़ी और साहित्य दूरी

या संवाद। सुगम संगीत में कल शाम 7:32 पर प्रतिभा सिंह के गाए भजन सुनवाए जाएंगे। अभी आप सुन रहे थे आज की सभा के शेष और कल के कुछ प्रमुख कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलो हर्ट्ज पर। शाम के 5:15 हुए हैं। प्रस्तुत है युवा श्रोताओं का दैनिक कार्यक्रम युववाणी।

0: कुछ रिश्ते मुलाकातों से बनते हैं और कुछ बातों से बनते हैं, और एक रिश्ता ऐसा भी है दोस्तों जो सिर्फ आवाज से बन जाता है।
1: जी हाँ, चेहरे से पहचान नहीं, बस आवाज से एक रिश्ता है, और शायद यही तो रेडियो की सबसे खूबसूरत बात है।
0: नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने फेवरेट प्रोग्राम युववाणी में। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आपके चेहरे पर मुस्कान होगी और कानों में हमारे प्रोग्राम की आवाज होगी। और आज आपके साथ प्रोग्राम से जुड़ गई हूँ मैं, आपकी अपनी साथी शिवानी।
1: हेलो दोस्तों, शिवानी और आप सभी के साथ हाजिर हूँ मैं, आपकी अपनी दोस्त और होस्ट सना। और दोस्तों, आज के इस खूबसूरत सफर में हम आपके लिए लेकर आए हैं प्रोग्राम में बहुत कुछ खास।
0: जी हाँ, अगले कुछ पल हम आपके साथ हैं आपके हर पल को और खास बनाने के लिए।
1: और दोस्तों, आपने सुना ही होगा, जब साथ अपनों का मिलता है तो वो सफर छोटा हो या बड़ा, यादगार बन ही जाता है।
0: बिल्कुल, तो सना क्यों ना इस सफर की शुरुआत की जाए खूबसूरत से गीत के साथ।
1: बिल्कुल शिवानी, तो दोस्तों इस पल को और खास बनाते हैं एक खास म्यूजिक के साथ, और ब्रेक के उस पार भी है आपके लिए बहुत कुछ खास। तो जुड़े रहिए प्रोग्राम से, और अब एंजॉय करते हैं साथ में ये खूबसूरत सा गीत।

0: मेहमान आएंगे, हो सकता है इंडिया मैच जीतेगा, ये भी पॉसिबल है, क्योंकि अनुमान सही या गलत हो सकते हैं, लेकिन एचआईवी का अनुमान नहीं लगाया जा सकता है।
1: एचआईवी को लेकर अनुमान ना लगाएं, सेल्फ रिस्क असेसमेंट करें। सेल्फ रिस्क असेसमेंट के बाद अगर जरूरत हो तो पास के आईसीटीसी केंद्र पर एचआईवी टेस्ट कराएं। आई स्कैन, अनुमान छोड़िए, स्कैन कीजिए। अधिक जानकारी के लिए breakfreeindia.org पर लॉगिन करें या 1097 पर कॉल करें।
2: वेलकम बैक दोस्तों, आप सुन रहे हैं प्रोग्राम युववाणी और अब वक्त है हमारे पहले सेगमेंट कुछ खास है आज का, जिसमें आज हम बात करेंगे उन लोगों की जो शायद अपनी शुरुआत बहुत छोटी जगह से करते हैं।
3: लेकिन दोस्तों, शुरुआत भले ही छोटी हो लेकिन उनके सपने बिल्कुल छोटे नहीं होते। आपके शहर की वो छोटी सी दुकान, घर से चलने वाला कोई बिजनेस, या कोई हैंडीक्राफ्ट बनाने वाला कारीगर, या फिर कोई युवा जिसने नौकरी करने के बजाय अपना काम शुरू करने का फैसला किया हो।
2: जी हाँ, इन सब की कहानी एक दूसरे से अलग हो सकती है, लेकिन इन सब में एक चीज कॉमन है दोस्तों, और वो है अपने पैरों पर खड़े होने का जज्बा। और इन्हीं छोटे बिजनेस की अहमियत को पहचान देने के लिए भारत में मनाया जाता है राष्ट्रीय लघु उद्योग दिवस।
3: जी हाँ, 30 अगस्त यानी आज के दिन मनाया जाता है नेशनल स्मॉल इंडस्ट्री डे, और इस दिन को मनाने का मकसद है उन छोटे फाउंडर्स को पहचान देना जो देश की इकोनॉमी में सबसे बड़ा योगदान देते हैं।
2: जी हाँ, इस दिन का मकसद है युवाओं को ये समझाना कि रोजगार पाने वाला बनना ही एक रास्ता नहीं है, बल्कि रोजगार देने वाला बनना भी एक रास्ता

0: रास्ता है। और सबसे जरूरी दोस्तों, छोटे बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए जरूरी सपोर्ट, अपॉर्चुनिटीज और मार्केट उपलब्ध कराने की सोच को मजबूत करना।
1: बिल्कुल, लोगों की एंटरप्रेन्योरशिप के लिए इनकरेज करना। और दोस्तों, जब आप किसी लोकल बिजनेस से कुछ खरीदते हैं ना, तो सिर्फ वहां से सामान नहीं खरीदते, बल्कि आप किसी के हुनर को मौका देते हैं, किसी की मेहनत की कदर करते हैं।
0: और दोस्तों, इसी के साथ किसी के सपने को थोड़ा और आगे बढ़ाने का मौका भी देते हैं। तो दोस्तों, अगर आज आपके आसपास कोई छोटा बिजनेस कर रहा है, तो उसे एक बार अप्रिशिएट जरूर कीजिएगा। और अगर आपके मन में भी कोई बिजनेस आइडिया घूम रहा है, तो उसे सिर्फ कभी करेंगे की लिस्ट में मत रखिएगा, क्योंकि हर बड़ा बिजनेस कभी ना कभी एक छोटा सा आइडिया ही था।
1: जी हाँ, आज आपने आसपास किसी छोटे फाउंडर्स से जरूर कहिए कि आपकी शुरुआत छोटी हो सकती है, लेकिन आपका सपना बहुत बड़ा हो सकता है। और अब इसी पॉजिटिव थॉट के साथ लेते हैं एक छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक।

नए जमाने की नई तस्वीर। अब छत पर लगे टीवी एंटेना को कहो गुड बाय सदा के लिए। समय के साथ बदलें, आगे बढ़ें, ले आएं आज ही

0: दूरदर्शन का डीडी फ्री डिश। इसमें है आपके पसंदीदा 100 से ज्यादा टीवी चैनल्स। इसके अलावा 51 एजुकेशनल यानी पढ़ाई लिखाई वाले चैनल्स और 48 रेडियो चैनल्स। और तो और, सेट टॉप बॉक्स लगवाने के बाद कोई खर्चा नहीं, बिल्कुल नहीं। डिजिटल क्रांति की ओर एक कदम और आपका डीडी फ्री डिश।
1: हम हंसाएंगे, आप मुस्कुराएंगे,
2: हो जाओगे एहसास कर लोट पोट,
1: क्योंकि ये है लाफ्टर का सॉलिड डोज।
3: और डोज में क्या है?
2: डोज में है मजा।
1: जी हाँ, मजा आ गया।
4: बाबा जी प्रणाम।
3: प्रणाम बच्चे, प्रणाम। बताओ कैसे आए हो?
4: बाबा मेरी एक प्रॉब्लम है बाबा, उसे सॉल्व कर दो बाबा।
3: हाँ हाँ बच्चे बताओ, क्या बात है?
4: बाबा मुझे ना एक लड़की पसंद है, बताओ मैं उसे कैसे इम्प्रेस करूं जिससे वो मेरी हो जाए।
3: अच्छा बच्चा, पहले देख उसे क्या पसंद है और फिर उसे वो ला कर दे दे, वो खुश हो जाएगी और तेरी हो जाएगी।
4: लेकिन बाबा उसे तो दूसरा लड़का पसंद है।
1: जी हाँ, मजा आ गया।
3: कुछ राज ऐसे होते हैं जो समय की परतों में दब तो जाते हैं मगर कभी खत्म नहीं होते। कुछ सवाल ऐसे होते हैं जिनके जवाब तलाशते तलाशते इंसान खुद एक नए रहस्य का हिस्सा बन जाता है। हर कहानी के पीछे छुपी होती है एक अनकही दास्तां। हर खामोशी में दबा होता है कोई सच और हर सच तक पहुंचने की शुरुआत होती है एक तलाश। तो आइए कदम बढ़ाइए रहस्य की उस दुनिया में जहां हर मोड़ पर एक नया सवाल आपका इंतजार कर रहा है। इसी के साथ दोस्तों, आज आप सुनेंगे रहस्य सीरीज एपिसोड नंबर 5 सीजन 2।
5: हाय, मेरा नाम आदिल है, आदिल सैफी, और आप सभी लिसनर्स का स्वागत है हमारे रहस्य सीरीज के सीजन 2 में। इस कहानी का नाम है तलाश और यह है रहस्य सीरीज की 5वीं कड़ी यानी एपिसोड नंबर 5।

और आइए अब जान लेते हैं अब तक की कहानी। कहानी शुरू होती है 23 नवंबर 2011 में। पुणे के पास मुशली नाम के इलाके में क्रिकेट खेलते बच्चों को झाड़ियों में इन्वेस्टिगेटर कबीर का खून से लथपथ शरीर मिलता है। भीड़ कबीर को मुर्दा मान लेती है, लेकिन उंगलियों में हरकत होने पर कबीर को तुरंत अस्पताल ले जाया जाता है। ऑपरेशन के दौरान कबीर को सिंडिकेट के जानलेवा हमले के खौफनाक फ्लैशबैक्स आते हैं। होश में आते ही कबीर बाहर पुलिस को इंतजार करता हुआ पाता है। सिंडिकेट से अपनी जान बचाने के लिए कबीर खुफिया सामान लेकर खिड़की से भाग निकलता है। कबीर जंगलों में मौजूद अपने सीक्रेट बेस पर पहुंचता है। चुराया गया डेटा तो सुरक्षित था, लेकिन सिंडिकेट ने कबीर के बेस की लोकेशन ट्रेस कर ली थी। कबीर तुरंत डेटा बैकअप करके बेस को तबाह करने का कमांड दे देता है और नई लोकेशन की ओर निकल पड़ता है। सीक्रेट बेस को तबाह करने के बाद कबीर के पास सिर्फ एक ही रास्ता बचता है। कबीर ने तय किया कि वो सीधे सिंडिकेट के उसी पुराने ठिकाने पर जाएगा जहां उस पर पहली बार हमला हुआ था। कबीर को पूरा यकीन था कि उस जगह पर कोई ना कोई ऐसा सुराग जरूर छूटा होगा जो सिंडिकेट के असली सरगना और उनके अगले कदम तक पहुंचा सके। कबीर ने अपनी बंदूक को लोड किया, अपनी स्मार्ट वॉच को सेट किया और रात के घने अंधेरे में उस बंद पड़े पुराने गोदाम की तरफ निकल पड़ा। गोदाम के बाहर का नजारा बेहद खौफनाक था। आसपास एक अजीब सा सन्नाटा पसरा हुआ था। वहां सिर्फ झिंगरों की आवाज गूंज रही थी और ठंडी हवा चेहरे को छूकर जा रही थी। हवा में सीलन और जंग लगे लोहे और पुरानी लकड़ियों की बदबू मौजूद थी। कबीर ने बहुत ही सावधानी से गोदाम का भारी लोहे का दरवाजा खोला। दरवाजे के कब्जों से एक भयानक चरमराहट की आवाज निकली जिसने खामोशी को पूरी तरह से खत्म कर दिया। कबीर दबे पांव गोदाम के अंदर दाखिल तो हो गया, लेकिन अंदर का नजारा देखकर कबीर के होश पूरी तरह से उड़ चुके थे। कबीर को उम्मीद थी कि अंदर सिंडिकेट के खतरनाक गुंडे, गैर कानूनी मशीनें या कोई स्मगलिंग का माल मिलेगा, लेकिन अंदर का पूरा गोदाम बिल्कुल खाली और वीरान पड़ा था। वहां कोई मशीन नहीं थी, कोई माल नहीं था और किसी भी इंसान का नामो निशान तक नहीं था। जमीन पर पड़ी धूल और टायरों के ताजा निशानों को देखकर साफ पता चल रहा था कि सिंडिकेट

ने कबीर का ध्यान खींचा। कबीर के बिल्कुल ठीक पीछे किसी के भारी जूतों के कदमों की आवाज गूंजी। कोई बहुत ही खामोशी से कबीर के बिल्कुल करीब आ चुका था। कबीर के दिमाग ने तुरंत खतरे को भांप लिया, लेकिन जब तक कबीर पलटकर अपनी बंदूक तान पाता, अंधेरे में छुपे हुए उस अनजान व्यक्ति ने कबीर पर एक बेहद जोरदार और जानलेवा हमला कर दिया। वार इतना भयानक और तेज था कि कबीर हवा में उछलकर दूर जमीन पर जा गिरा। जमीन की सख्त कंक्रीट पर गिरते ही कबीर के शरीर का सारा दर्द एक साथ वापस लौट आया। अस्पताल में कबीर के सिर और पीठ पर जो गहरे टाके लगे थे वो इस भयानक झटके से टूट गए। उन टूटे हुए टाकों से खून बहकर कबीर की गर्दन और जैकेट तक पर बहने लग गया था। कबीर की आंखों के आगे मौत का काला अंधेरा छाने लगा था। फिर भी कबीर ने हिम्मत नहीं हारी। कबीर ने अपने कांपते हुए और खून से सने हाथों को जमीन पर टिकाया और अपनी दूर गिरी हुई बंदूक को उठाने के लिए अपनी पूरी ताकत लगाकर उठने की कोशिश की, लेकिन दुश्मन कबीर को संभलने का मौका भी नहीं देना चाहते थे। कबीर अभी कांपते हुए घुटनों के बल उठ ही पाया था, तभी पीछे खड़े उस अनजान व्यक्ति ने लोहे की एक बेहद भारी रॉड हवा में पूरी ताकत से घुमाई। लोहे की उस रॉड से कबीर पर दोबारा हमला किया गया। कबीर इस हमले को झेल नहीं सका और कबीर के कानों में एक तेज सीटी बजने लगी। आंखों के सामने खून का लाल रंग छा चुका था और अगले ही पल कबीर का शरीर पूरी तरह बेजान होकर जमीन पर गिर पड़ा। कबीर एक बार फिर मौत के उसी गहरे और खौफनाक अंधेरे में डूब चुका था जहां से कबीर कुछ ही घंटों पहले मौत को मात देकर वापस लौट कर आया था। आपके मन में कई सारे सवाल आ रहे होंगे कि कबीर को आखिर किसने मारा? क्या कबीर फिर से मौत के मुंह से निकलकर वापस आ पाएगा? और क्या उस सिंडिकेट का पर्दाफाश हो पाएगा? आपके मन में भी ऐसे कई सारे सवाल आ रहे होंगे। दिमाग के अंदर सवालों का एक जाल बन चुका होगा। इन्हीं सभी सवालों के जवाब आपको मिलेंगे कल यानी रहस्य सीरीज के आखिरी एपिसोड में। सो हमारे युवाणी प्रोग्राम को सुनना ना भूलें।

0: हम हंसाएंगे, आप मुस्कुराएंगे,
1: हो जाओगे हंस-हंस कर लोट-पोट,
0: क्योंकि यह है लाफ्टर का सॉलिड डोज।
2: और डोज में क्या है?
1: डोज में है मजा।
0: जी हाँ, मजा आ गया।
3: अरे सुन रही हो?
2: हाँ हाँ बोलो।
3: आज तुम्हारा बर्थडे है ना?
2: तुम्हें याद है?
3: हाँ हाँ बिल्कुल। और पता है तुम्हारे लिए मैं गिफ्ट भी लेकर आया हूँ।
2: सच में? जल्दी से बताओ ना क्या लेकर आए हो।
3: अरे वो गिफ्ट बिल्कुल तुम्हारी तरह है।
2: ऐसा क्या लेकर आए हो?
3: ये लो गुलाब का फूल।
2: अरे यार कुछ सोने की चीज दो ना।
3: ले मेरी माँ तकिया ले और जाके सो जा।
0: जी हाँ मजा आ गया।
3: दोस्तों कहानियाँ सिर्फ मनोरंजन नहीं कराती बल्कि कभी कभी जिंदगी की वो सच्चाइयाँ भी दिखा जाती है जिन्हें हम अक्सर नज़रअंदाज कर देते हैं। ऐसे ही भावनाओं संघर्षों और जीवन के अनकहे पहलुओं को समेटे हुए हमारे आज के स्पेशल सेगमेंट झलकी में तो आज आप सुनेंगे एक दिल को छू लेने वाली प्यारी सी झलकी जिसका नाम है घर की छोटी बेटी और जिसे लिखा है हमारी साथी सना ने और इसमें प्रतिभागी हैं सलोनी यूसुफ अजैदी तौहीद और मैं आपकी अपनी साथी शिवानी। प्रस्तुति है शोभित शर्मा। तो आइए दोस्तों सुनते हैं।
4: झलकी दिखला जा, झलकी दिखला जा,
5: झलकी दिखला जा।
3: अगर घर में दो बेटियां हों तो अक्सर बड़ी बेटी के समझदारी की तारीफ होती है और छोटी बेटी की शरारतों के किस्से सुनाए जाते हैं। पीहू भी ऐसी ही एक बच्ची थी। बचपन से बहुत शरारती, चंचल और पढ़ाई से बहुत दूर। और उसकी बड़ी बहन माही बिल्कुल अलग, शांत, समझदार और पढ़ाई में सबसे आगे।
6: पीहू पीहू, ये लड़की पता नहीं कहाँ चली गई, फिर किताब छोड़कर खेलने भाग गई। इस लड़की का तो मुझे एक मिनट का समझ नहीं आता।

0: मम्मी बस 5 मिनट फिर पढ़ूंगी।
1: ये तेरे 5 मिनट कभी खत्म नहीं होते। देख जरा अपनी बहन को कितनी देर से पढ़ रही है।
2: मम्मी आपको पता नहीं है क्या, कल मेरा टेस्ट है।
0: दीदी तुम हमेशा पढ़ती ही रहती हो, कभी खेलती नहीं।
2: और तुम कभी पढ़ती नहीं।
0: पढ़ती हूँ ना।
1: अच्छा इधर आ, जो पढ़ाया मैंने आज जरा सुना।
0: वो तो मुझे आता है, बस अभी याद नहीं आ रहा।
2: देखा माँ।
0: दीदी आप मेरी शिकायत मत किया करो।
1: चलो चलो बहुत हुआ, अब लड़ो मत। पीहू तुम थोड़ा पढ़ाई पर ध्यान दिया करो बेटा, तुम्हारे काम आएगी आगे।
0: जी ठीक है मम्मी।
3: समय गुजरा, एग्जाम आए और माही हमेशा की तरह इस बार भी फर्स्ट आई और पीहू हमेशा की तरह बस पास हो गई, और वो भी मुश्किल से।
4: वाह माही, फिर से पूरे स्कूल में टॉप किया है।
1: हमें तो पता ही था हमारी बेटी बहुत होशियार है, बहुत आगे जाएगी हमारी बेटी।
2: थैंक यू सो मच मम्मी, थैंक यू सो मच पापा।
4: ओए पीहू तेरे कितने नंबर आए हैं?
0: पापा मैं भी बस पास हो गई।
4: बस पास?
0: अगली बार अच्छे आएंगे पापा।
2: ये तो हर बार यही कहती है।
4: पीहू बेटा पढ़ा करो, हमें तुमसे बहुत उम्मीद है।
0: जी पापा।
3: पीहू को घर में हर चीज में थोड़ा समझौता करना पड़ता था। दीदी के पुराने कपड़े उसके लिए नए बन जाते थे और दीदी की पुरानी किताबें उसकी नई किताबें।
1: पीहू कहाँ गई बेटा? इधर आ बेटा, ये देख माही के कपड़े हैं, उसे छोटे हो गए हैं, देख बस अभी ने तू पहन लेना, बहुत जचेंगे तेरे पर।
0: ठीक है मम्मी।
1: और ये बुक्स भी रख ले बेटा, अगले साल तेरे काम आएंगी, नई नई खरीदनी पड़ेंगी, देख पैसे बच जाएंगे ना हमारे।
0: लेकिन मम्मी मुझे भी नई किताबें चाहिए।
1: पीहू मेरा समझदार बच्चा, इस बार रख ले, अगली बार पक्का नहीं दिला दूंगी।
0: ठीक है।
4: पीहू माही इधर आओ, तुम लोगों के लिए गुड न्यूज है।
0: जी पापा।
2: जी पापा।
4: माही बेटा मैंने तुम्हारा एडमिशन यहाँ के सबसे अच्छे इंग्लिश मीडियम स्कूल में करा दिया है।
2: वाह थैंक यू सो मच पापा।
0: पापा मेरा भी अगले साल एडमिशन वही होगा ना?
4: नहीं बेटा।
0: क्यों?
4: बेटा तुम्हारे लिए मैंने पास के हिंदी मीडियम स्कूल में बात कर ली है।
0: लेकिन पापा मैं भी दीदी के साथ ही पढ़ूंगी।
4: बेटा वो स्कूल इंग्लिश मीडियम है, तुम्हारी पढ़ाई पहले से ही कमजोर है, इसीलिए तो कहते थे पढ़ लिया करो, वहाँ की पढ़ाई तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल होगी।
0: लेकिन पापा।
4: लेकिन कुछ नहीं, बात कर ली है मैंने और तुम्हारा एडमिशन वही होगा।
0: ठीक है।
3: पीहू को उस वक्त समझ नहीं थी कि उसके इस एक फैसले का असर उसके जिंदगी पर कितना गहरा होने वाला है। वक्त बीतता गया, दीदी इंग्लिश में बातें करती, इंग्लिश में किताबें पढ़ती और स्कूल की बातें इंग्लिश में ही सुनाती। पीहू सब सुनती लेकिन समझती कम और चुप ज्यादा रहती थी। कभी कभी उसे लगता
0: काश मैं भी दीदी की तरह इंग्लिश में बात कर पाती।
3: धीरे धीरे पीहू को अपनी कमी महसूस होने लगी। एक दिन पीहू ने हिम्मत करके दीदी से कहा,
0: दीदी दीदी मुझे भी इंग्लिश बोलना सिखा दो।
2: तू रहने दे पीहू, तू और इंग्लिश तेरे बस की बात है? ये तुमसे ना हो पाएगा।
0: मुझसे क्यों नहीं होगा?
2: क्योंकि तूने पढ़ाई को कभी सीरियसली लिया ही नहीं, तो तू कुछ भी नहीं कर सकती।
3: पीहू ने पहली बार अपनी किताब खुद उठाई, उसने पढ़ना शुरू किया, धीरे धीरे पढ़ाई में मन लगाने लगी। जिस इंग्लिश से उसे डर लगता था लिख लिख कर याद करने लगी। उसने अपनी बहन माही से मुकाबला करने के लिए नहीं बल्कि खुद को साबित करने के लिए पढ़ाई की।
1: पीहू अरे मेरा बेटा, आजकल ये सूरज कहाँ से निकल रहा है? मैं देख रही हूँ तुम देर रात तक पढ़ती हो, खेलने भी नहीं जाती, ऐसा क्या हुआ बेटा?
0: मम्मी मुझे बहुत कुछ सीखना है।
4: क्या बात है, ये हुई ना बात, बस ऐसे ही मेहनत करती रहो पीहू।
0: पापा मैं एक दिन इंग्लिश भी सीख जाऊंगी और बहुत अच्छी पढ़ाई भी करूंगी।
4: बिल्कुल सही कहा, हमें तुम पर पूरा भरोसा है बेटा।
3: सालों तक पीहू ने मेहनत की। जिस लड़की का किताब खोलने का भी मन नहीं करता था अब वही किताबों में घंटों डूबी रहती थी। उसने अपनी कमजोरियों को स्वीकार किया लेकिन उन्हें अपनी पहचान नहीं बनने दिया। और फिर एक दिन पीहू उसी बड़े इंग्लिश मीडियम स्कूल के गेट के सामने खड़ी थी जहाँ कभी उसके पापा ने उसका एडमिशन ये कहकर नहीं कराया था कि वो वहाँ पढ़ नहीं पाएगी, लेकिन आज वो उस स्कूल की स्टूडेंट बनकर नहीं साइंस टीचर बनकर यहाँ आई थी।
1: पीहू, आज तुम्हें उस स्कूल की टीचर बने देखकर मुझे सच में बहुत गर्व हो रहा है। शाबाश बेटा, शाबाश।
4: सच कहूँ बेटा, मुझे आज अपनी सोच पर अफसोस है। मुझे आज भी वो दिन याद है जब मैंने कहा था कि इंग्लिश मीडियम की पढ़ाई तुमसे ना हो पाएगी। मुझे लगता था कि तुम्हारी भलाई के लिए ही ये फैसला कर रहा हूँ, लेकिन आज तुमने साबित कर दिया कि बच्चे की काबिलियत उसकी शुरुआत से तय नहीं होती।
2: पीहू, मैंने तुम्हें हमेशा खुद से कम समझा, लेकिन आज मुझे तुम पर सबसे ज्यादा प्राउड है।
0: आप लोगों का भरोसा और मेरा हौसला शायद यही मेरी सबसे बड़ी ताकत थी।
3: जिसे कभी कहा गया था कि तू कुछ नहीं कर सकती, आज उसके सामने सैकड़ों बच्चे अपना भविष्य बनाने के सपने देख रहे थे। किसी बच्चे को उसके आज के नंबरों से मता किए, किसी की शरारतों को देखकर ये मत तय कीजिए कि वो जिंदगी में कुछ नहीं कर पाएगा। हर बच्चा अलग होता है। जी हाँ, हर बच्चा अलग होता है। किसी को जल्दी कामयाबी मिल जाती है तो किसी को थोड़ा वक्त लगता है। और सबसे जरूरी बात, कभी किसी बच्चे से ये मत कहिए कि तू कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि हो सकता है आपकी कही हुई एक छोटी सी बात उसके दिल में बहुत बड़ी चोट बन जाए। उसे तुलना नहीं भरोसा दीजिए, उसे ताना नहीं एक मौका दीजिए, क्योंकि कभी कभी जिस बच्चे को हम सबसे कम आंकते हैं वही एक दिन वहां खड़ा होता है जहां पहुंचने का सपना देखने की भी हमने उसे इजाजत नहीं दी थी। तो दोस्तों, ये तो थी हमारी प्यारी सी आज की झलकी घर की छोटी बेटी। दोस्तों, हर बेटी अपने घर का एक अनमोल हिस्सा होती है। उसे भी अपने सपने देखने और पूरा करने का पूरा अधिकार है। जरूरत है तो बस उसके हौसले को और बढ़ाने की और उस पर विश्वास करने की। एक और मौका उसे जरूर देना चाहिए। तो दोस्तों, इसी के साथ सुनते हैं ये प्यारा सा गीत।

0: तो दोस्तों ये तो था हमारा आज का प्रोग्राम. आपको कैसा लगा आप हमें ज़रूर बताइएगा अपने खत के जरिए. और खत लिखने के लिए हमारा पता है कार्यक्रम युववाणी अनुभाग द्वारा के निदेशक आकाशवाणी नजीबाबाद पिन कोड 2467.
1: दोस्तों आप हमारे सोशल मीडिया चैनल पर भी एक्टिव रह सकते हैं. हमारा फेसबुक अकाउंट है आकाशवाणी नजीबाबाद, हमारी इंस्टाग्राम आईडी है आकाशवाणी नजीबाबाद. साथ ही हमारे पुराने प्ले कहानियां और आने वाले प्रोग्राम आप सुन सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल आकाशवाणी नजीबाबाद पर. आप सभी लाइक शेयर कमेंट फॉलो सब्सक्राइब जरूर कीजिए. और इसी के साथ अपनी साथी सना
0: और शिवानी को दीजिए कार्यक्रम संपन्न करने की अनुमति. नमस्कार.

0: युवा श्रोता सुन रहे थे अपना दैनिक कार्यक्रम युववाणी। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलो हर्ट्ज पर। शाम के 6 बजने को है। थोड़ी देर में आप समाचार सुनेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। भारत और उज्बेकिस्तान ने आज खनन, आयुर्वेद, पर्यटन, आर्थिक और वित्तीय संवाद, व्यापक रणनीतिक साझेदारी, उच्च शिक्षा और पर्यावरण सहित विभिन्न क्षेत्रों में कई समझौतों पर हस्ताक्षर किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उज्बेकिस्तान का सर्वोच्च सम्मान।

0: ओली दराजली दोस्तलिक ऑर्डर भी प्रदान किया गया। ये विदेशी नेताओं को प्रदान किया जाने वाला उज्बेकिस्तान का सर्वोच्च सम्मान है। राष्ट्रपति शफकत मिर्जियोयेव के साथ द्विपक्षीय बैठक के दौरान श्री मोदी ने आपसी संबंधों के समूचे आयाम की समीक्षा की। प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देश आतंकवाद और अलगाववाद कतई बर्दाश्त न करने की नीति पर अमल करते हैं।
1: दोनों देशों के बीच करीबी रक्षा और सुरक्षा सहयोग हमारे गहरे आपसी विश्वास को दर्शाता है। आने वाले समय में हम दोनों देशों की डिफेंस इंडस्ट्रीज के बीच डायरेक्ट लिंकेज, को प्रोडक्शन और को डेवलपमेंट को बढ़ावा देंगे। हमारा मानना है कि टेररिज्म, एक्सट्रीमिज्म और सेपरेटिज्म पूरे क्षेत्र के लिए गंभीर चुनौती है। इनके विरुद्ध जीरो टॉलरेंस हमारा साझा संकल्प रहा है और आगे भी रहेगा।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देशों ने आपसी संबंधों को व्यापक रणनीतिक साझेदारी तक बढ़ाने का फैसला किया।
1: इस वर्ष हमारी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के 15 साल हो रहे हैं। इस विशेष अवसर पर हमने संबंधों को कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का दर्जा देने का निर्णय लिया है। आज हमने हमारी साझेदारी के इस नए स्वरूप में तेज गति और ठोस परिणामों के साथ आगे बढ़ने का एम्बिशियस एजेंडा तैयार किया है। हमारा द्विपक्षीय व्यापार $1 बिलियन पार कर चुका है। अब हमने 2030 तक $5 बिलियन व्यापार का लक्ष्य रखा है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देश खेलों और हिंदी को प्रोत्साहन देने के क्षेत्र में सहयोग के लिए मिलकर काम करेंगे। इसके लिए स्कॉलरशिप की भी घोषणा की गई है। इसके बाद श्री मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री अब से कुछ देर बाद ताशकंद से किर्गिस्तान की 2 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। श्री मोदी बिश्केक में शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत अभियान पूरे देश में तेजी से आगे बढ़ रहा है। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में आज श्री मोदी ने कहा कि बहुत सारे लोग और विशेषकर युवा बड़ी संख्या में नशा मुक्त युवा और नशा मुक्त भारत अभियान का हिस्सा बन रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि पीएम स्वनिधि योजना के माध्यम से देश भर की लगभग 35 लाख महिलाएं अपने कारोबार को आगे बढ़ा रही है। नेपाल में अचानक आई बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 768 हो गई है। आपदा के 5वें दिन भी 2500 से अधिक लोग लापता हैं। बचाव दल लापता लोगों की तलाश और फंसे हुए लोगों को निकालने में जुटे हैं। विदेश मंत्रालय ने बताया कि बाढ़ के बाद नेपाल में अब तक 108 भारतीय नागरिकों को बचाया गया है। पहले लापता करीब 50 भारतीय नागरिकों से फिर संपर्क हो गया है। 275 भारतीय नागरिक अब भी लापता है। वहीं 28 भारतीय मूल के लोग भी लापता हैं। पिछले 2 दिनों में 598 भारतीय नागरिक चीन से नेपाल पहुंचे। 900 भारतीय नागरिक चीन में सुरक्षित हैं। पेइचिंग में भारतीय दूतावास उनसे सीधे और स्थानीय प्रशासन के माध्यम से संपर्क में है। भारत से आज 11 टन राहत सामग्री लेकर चौथी उड़ान काठमांडू पहुंच गई है। इससे पहले भारत 57 टन से अधिक आपातकालीन राहत सामग्री नेपाल भेज चुका है। मौसम विभाग ने आज उड़ीसा में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, पूर्वी मध्य प्रदेश, झारखंड, पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर क्षेत्र के कुछ हिस्सों में कल तक तेज वर्षा का अनुमान है। एशिया कप महिला T20 क्रिकेट में आज रात 8:30 बजे भारत का सामना थाईलैंड से होगा। भारत ग्रुप ए में थाईलैंड, हांगकांग और पाकिस्तान के साथ है। बेल्जियम में पुरुष हॉकी विश्व कप के फाइनल में आज रात 8 बजे वर्तमान चैंपियन जर्मनी का सामना स्पेन से होगा। जर्मनी की टीम चौथा खिताब अपने नाम करना चाहेगी, वहीं स्पेन पहला खिताब जीतने की कोशिश करेगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलो हर्ट्ज पर शाम के 6:05 हुए हैं। प्रस्तुत है किसान भाइयों का दैनिक कार्यक्रम कृषि जगत।

कृषिगत कार्यक्रम सुनने वाले सभी किसान बहन भाइयों को आपके भैया जितेंद्र कुमार की राम राम। और भाई सब राज्य खुशी? देखो भाई सब ठीक ठाक होंगे और हमारे भाइयों की खेती किसानी भी ठीक ठाक चल रही होगी। भैया देखो अब जा खेती किसानी से जब बात होती है तो भाई हमारी खेती किसानी हम आधुनिक तो हो गए लेकिन भाई फिर भी जो है बरसात पर आधारित होती है। बरसात भाई ज़्यादा हो जा तो भैया हमारी फसलों को भैया कभी कभी नुकसान भी हो जा है और भैया बरसात कुछ हल्की हो जा तो भैया पानी की कमी पड़ जा है। तो भाई देखो कोई भी काम हो भैया समय के अनुसार ठीक होता है। और भैया देखो बारिश भी अच्छी हो रही है हमारे किसान भाइयों के लिए, फसलों में समय समय पर बारिश हो रही है और भैया हमारी फसलें जो हैं वो अच्छी बढ़वार कर रही हैं। चाहे भैया फसल इस समय हमारी धान की हो या भैया गन्ने की हो। और भाई जैसा कि बात कर रहे हैं उड़द मूंग यानी दलहनी फसलों की, तो भाई देखो उन्हें पानी की कुछ कम आवश्यकता हो है तो भाई उनको जो है अगर खेत में जल भराव हो रहा हो तो भैया आप जल भराव की वजह से निकासी की व्यवस्था पूरी तरह से कर दें और अपनी जो फसलें हैं उसमें भैया खरपतवार नियंत्रण और फसलों की देखभाल करते रहें कि कहीं फसल पीली तो नहीं हो रही। भाई आजकल हम देखते हैं कि हमारी गन्ने की फसल जो है अधिक पानी के कारण या अन्य किसी रोग के कारण पीली सी होने लगे हैं पत्ते। तो भाई यदि फसल पीली हो रही है तो भाई सबसे पहले तो हमें यो देखना है कि भाई फसल किस कारण से पीली हो रही, कि भाई कहीं खेत में जल भराव तो नहीं है। यदि पानी ज़्यादा भर गया हो चाहे गन्ने की हो चाहे अन्य फसल हो तो भैया उसका पानी की जल की निकासी करें। साथ ही साथ यदि भैया पीली फिर भी हो रही, पत्ते हमारे लाल से हो रहे हैं तो भैया आप जो है यदि गन्ने की फसल की बात करें तो भैया गन्ने का नीचे से तोड़ कर देख लें मैं कि भैया उसमें रूट बोरर तो नहीं है। और यदि तीसरी चौथी पत्ती है तो हो सकता है उसमें रेड रोट भी हो सकता है। तो भाई देखो ये तो गन्ने को देखकर ही पता लगेगा कि भाई किस कारण से आपकी फसल पीली हो रही है। यदि फसल पीली हो रही है तो भाई आप अपनी फसल की निगरानी समय के अनुसार करते रहें। किसान भाइयों भैया आज देखो आधुनिक युग है और ऐसे ऐसे कृषि अनुसंधान हो गए हैं भैया, ऐसे ऐसे कृषि यंत्र बन गए हैं जिनसे भैया हमारी खेती आसान हो गई है। तो भैया देखो आज हम कुछ बातचीत अपने किसान भाइयों से करेंगे आधुनिक खेती के लाभ के संबंध में। तो भाई देखो आधुनिक खेती है क्या, इस संबंध में थोड़ी सी बातचीत अपने किसान भाइयों से करो ले हैं क्योंकि आज भाई देखो खेती किसानी तो हम कर ही रहे हैं और भाई हमारा उद्देश्य भी होता है कि भाई हमें अपनी फसलों से अच्छा उत्पादन मिले जिससे हमें अच्छी आमदनी हो। तो भैया आज बढ़ती जनसंख्या और छोटी होती जोत की भूमि को देखते हुए भैया हमें अपनी खेती करने के तरीके में बदलाव करना चाहिए। हमें आधुनिक तरीके से खेती करनी होगी क्योंकि भैया आज जो है ऐसा समय आ गया कि भैया जो खाद्यान्न है भोजन की प्रतिपूर्ति हमें इस जनसंख्या की करनी है तो भाई आधुनिक तरीके से खेती करनी पड़ेगी। तो भाई आधुनिक खेती है क्या, सबसे पहले तो हमें यह जानना पड़ेगा कि आधुनिक खेती है क्या। भाई विज्ञान और तकनीक का एक ऐसा संगम है आधुनिक खेती जिससे भैया पारंपरिक खेती का बिल्कुल उसने जो है चेहरा बदल कर रख दिया। और भाई जनसंख्या की तीव्र वृद्धि के कारण भोजन की लगातार मांग बढ़ रही है, इस मांग को पूरा करने के लिए भैया हम जो है खेती की पारंपरिक तरीकों के स्थान पर आधुनिक तरीकों को अपनाना होगा। भाई देखो जब आधुनिक तरीकों की बात आती है तो भाई हमारे किसान भाइयों के पास आधुनिक खेती में ट्रैक्टर हार्वेस्टर सिंचाई की आधुनिक तकनीक आजकल उन्नत तकनीक हो गई भाई, ड्रिप इरिगेशन है, स्प्रिंकलर सिंचाई है, दूसरे भाई उन्नत बीज का यदि हमारे किसान भाई प्रयोग करें साथ ही साथ जैविक खाद का प्रयोग करें तो भाई इस तरह से हमारे किसान भाई कृषि यंत्रीकरण की खेती करें तो भाई उनका देखो लागत तो बचेगी साथ ही साथ समय भी बचेगा और भाई हमारे किसान भाइयों का जो है उत्पादन अच्छा होगा। तो भाई देखो आधुनिक खेती के प्रमुख पहलू जैसे कि भैया हमारे किसान भाइयों को अच्छी पैदावार का बीज बोना है यानी कि उन्नत किस्म का बीज बोना है भाई, चाहे वो हाइब्रिड हो या उच्च उपज देने वाली जो प्रजातियां होती हैं उन बीजों का ही चयन करके हम भैया जो है अपने खेत में बोना है जिससे भैया हमारी प्रति बीघा प्रति एकड़ प्रति हेक्टेयर उपज बढ़ सके। साथ ही भाई मशीनीकरण के साथ साथ ट्रैक्टर हार्वेस्टर कंबाइन और भाई आजकल देखो जब गन्ना बड़ा हो जा है या फसल में हमारे किसान भाई बढ़ते हो थोड़ा सा खेत में घबरा में है तो भाई स्प्रे करना मान लो खेत में किसी भी हमें फंजीसाइड का या भैया किसी खाद का, तो भाई आजकल देखो सबसे बढ़िया काम है ड्रोन का। भाई ड्रोन से हमारे किसान भाई

0: जो है आसानी से स्प्रे कर सके हैं, तो ड्रोन से काम होता है। और भाई सिंचाई की बात हमने करी आपसे, ड्रिप इरिगेशन की, तो भाई इस तरह से, और डिजिटल तकनीक यानी कि मिट्टी की जांच कराना, मौसम का पूर्वानुमान आपको पता होना चाहिए। भैया आजकल सभी के पास फोन भी हैं बड़े, तो हमारे किसान भाई पता भी रखते हैं कि भाई आजकल मौसम कब खराब होने वाला है, कब बारिश है, कब सूखा है, तो भाई उसी हिसाब से हमारे किसान भाई आजकल अपनी खेती किसानी के काम भी कर रहे हैं। तो भाई देखो, आधुनिक खेती बहुत ही कारगर है और हमारे किसान भाइयों के लिए बहुत ही लाभदायक है। भाई आधुनिक खेती से देखो पैदावार बढ़ती है, जब हम भैया कम जमीन पर वैज्ञानिक तरीकों से खेती करेंगे तो भाई हमारी पैदावार बढ़ेगी, साथ ही साथ भाई श्रम और भैया समय की बचत होती है। भाई देखो पहले हम जो है शारीरिक श्रम यानी कि जी तोड़ मेहनत कर रहे थे अपने खेत में, अब भाई ट्रैक्टर से भैया हम जो है 10 बीघे का खेत 1 घंटे में जोत दें या 1.5 घंटे में जोत देंगे उसको। और भैया पहले क्या था, हल बैल के पीछे, भैया हल बैल लेकर भैया पूरे दिन हम जो है मुश्किल से 5 बीघे 7 बीघे जमीन जोते कर रहे थे, और वो ही भैया थक जाते, पूरी तरह से शरीर टूट जाता। तो भैया अब ट्रैक्टर से वही काम हमारा 10 घंटे में होने वाला, भैया अब 2 घंटे में हो जा। तो देखो समय बच जाए हमारे किसान भाइयों का, साथ ही देखो फसल की सुरक्षा। आजकल भैया ऐसे ऐसे कीटनाशक हैं जिनसे भैया हमारे किसान भाई अपनी फसलों की समय के अनुसार भैया उन कीटनाशकों का स्प्रे करके भैया अपनी फसल की सुरक्षा कर सकें, भाई ड्रोन के माध्यम से हो या भैया जो हमारी कमर पर लादने वाली मशीन आई करे, नैपसैक स्प्रेयर आई करे, या भैया आजकल स्प्रेयर आ रहे हैं ट्रैक्टर वाले भी, तो हमारे किसान भाइयों के लिए तो वो भी भैया स्प्रे का काम बहुत आसान हो गया, जिससे हमारे किसान भाइयों को काफी सुविधा होगी खेती करने की। तो भाई इस तरह से आप जो है आधुनिक खेती से भैया शारीरिक श्रम से बच जाएंगे, आपको अच्छा लाभ होगा उन्नत किस्म के बीज बोकर, और भैया उन्नत कृषि यंत्रों का प्रयोग करके भैया आप अपनी खेती किसानी से अच्छा लाभ प्राप्त कर सकें। साथ ही भाई आप भैया पर्यावरण का भी ध्यान रखें इसमें। देखो भाई जिस चीज के ज्यादा फायदे होते हैं ना कहीं थोड़ा बहुत भैया उसका दुष्प्रभाव भी होता है, तो भैया आप जो है पर्यावरण का ध्यान रखते हुए अपने और मानव स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए अपनी खेती किसानी से अच्छा लाभ प्राप्त करें। तो भाई देखो बातचीत तो हम किसान भाइयों से और भी करेंगे, लेकिन भाई इस समय कार्यक्रम में लेते हैं एक छोटा सा विराम और सुनते हैं कुछ जरूरी संदेश।
1: ये कस्टमर केयर कहाँ है? हाँ मैडम
2: जी,
1: ये केवाईसी अपडेट के लिए मुझे बार बार मैसेज क्यों आ रहा है?
2: क्योंकि बैंकिंग सेवाओं के लिए निर्धारित समय पर केवाईसी अपडेट करवाना चाहिए।
1: पर ये होगा कैसे?
2: अगर पहचान या पते में कोई बदलाव नहीं है तो अपने बैंक या एटीएम या बिजनेस करेस्पोंडेंट यानी बीसी के पास जाएं, या बैंक में रजिस्टर्ड ईमेल या मोबाइल नंबर या मोबाइल बैंकिंग ऐप या पत्र द्वारा उसका डिक्लेरेशन दें।
1: अच्छा, और अगर कोई बदलाव हो तो?
2: तो ऐसे में पहचान और पते का नवीनतम प्रमाण देकर केवाईसी अपडेट करवा सकते हैं।
1: बस
2: बस
1: समझ गया।
2: अपना केवाईसी अपडेट कराने के लिए अपने नजदीकी ग्राम पंचायत के कैंप या बैंक शाखा में जाएं।
3: आरबीआई कहता है,
4: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
5: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
6: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
5: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
6: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
5: डायल कीजिए 8700014242।
6: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
0: तो भैया संदेश के बाद एक बार फिर हमारे सभी किसान बहन भाइयों का स्वागत है कार्यक्रम में। और भाई हम देखो आधुनिक खेती की बात कर रहे थे अपने किसान भाइयों से, तो भाई देखो आधुनिक खेती के साथ साथ हम भैया अपनी जो हमारा खेत है उसकी भैया उर्वरा शक्ति का भी ध्यान रखना है कि भैया उर्वरा क्षमता हमारे खेत की कैसी है, तो वो भाई हमें मिट्टी की जांच करा कर पता लगेगी। साथ ही साथ भैया हमारे किसान भाई खेती के साथ साथ पशुपालन कर रहे हैं, तो भाई हम जो है पशुओं का जो गोबर की सड़ी खाद होती है वो अपने खेत में आवश्यक रूप से डालनी चाहिए फसल बोने से पहले, क्योंकि भाई हम आजकल देखते हैं कि भैया हमारे किसान भाई रासायनिक उर्वरकों पर भैया आश्रित हो गए और भाई देसी खाद को कुछ नहीं समझ रहे हैं, भाई देसी खाद से फसल नहीं होती।

0: फसल तो भैया रासायनिक उर्वरकों से होवा है, भाई ऐसा नहीं है भैया। अगर हम गोबर की सड़ी खाद डाल लेंगे या वर्मी कंपोस्ट अपने खेत में डाल लेंगे या भैया जैविक खाद डाल लेंगे या अन्य कोई कंपोस्ट अपने खेत में बनाकर भैया डाल लेंगे, तो भाई उससे जो है हमारे खेत की जान बढ़ती है। जैसे भैया हमारे किसान भाई हैं दूध पीवा हैं, भाई खाना तो खा ही रहे हैं लेकिन भाई अगर दूध पियेंगे हम तो भैया दूध एक पूरा आहार होता है, पूरा पोषक तत्व दूध में होते हैं, तो भाई दूध पीना भी हमें आवश्यक है। इसीलिए भैया हमारी मिट्टी को भी भैया देसी खाद, गोबर की सड़ी खाद यानी या कंपोस्ट या वर्मी कंपोस्ट भी बहुत ही आवश्यक है। जिस तरह से भैया मानव स्वास्थ्य के लिए दूध जरूरी है, इसी तरह से भैया मिट्टी के लिए देसी खाद जरूरी है। तो भाई हम जो है पशु भी पाल लें, भाई पशुओं से देखो दो तरह से हमारे किसान भाइयों को लाभ हो जा। एक तो भैया आप जो है दूध उनका अपने खर्चे लायक तो घर रख लो, अब बाकी भैया डेयरियों पर अन्य भैया अपना जो है अपने खर्चे लायक अपना काम करते रहो, जिससे अपना घर का खर्च भी चलता रहेगा। दूसरे भाई हमारे खेतों के लिए भैया गोबर की सड़ी खाद मिल जा। तो भाई देखो पशु भी हम रखने हैं, साथ ही साथ अपने खेतों की भैया मिट्टी की उर्वरा क्षमता बनाकर रखनी है, ताकि भैया हमारे खेत में ह्यूमस की मात्रा बनी रहे। और भाई देखो आजकल हम अभी थोड़ी देर पहले बात भी कर रहे थे किसान भाइयों से कि भाई आजकल हमारे किसान भाई ड्रोन का उपयोग बहुत कर रहे हैं खेती में, और आधुनिक तकनीकों से हमारे किसान भाई खेती कर रहे हैं, जिससे भाई खेती से हमारे किसान भाई अच्छा उत्पादन ले रहे हैं। भैया पहला क्या काम होता परंपरागत खेती से, भाई हमारे किसान भाई क्या काम कर रहे थे कि भैया धान की फसल अपने खेत में धान की फसल लगानी, तो भैया वो धान ऐसी बखेरियां आते सीधे, तो भाई मुश्किल से 5 बीघे में या 2 बीघे में हो गए तो 2 कुंटल या 3 कुंटल या 4 कुंटल। अब भाई हमारे किसान भाइयों को 1 बीघा जमीन से ही 5 कुंटल तक 4 कुंटल तक जो है पैदावार मिलती है धान की। तो भैया देखो तकनीक का जहां तक बात है तो हमारे किसान भाई समझ गए होंगे कि भाई आज उत्पादन इतना है कि भाई यदि हम गांव की बात करें तो भाई आज एक किसान के पास, छोटे किसान के पास इतना उत्पादन है जितना भैया पहले जो है पूरे गांव का हो था। देखो भाई ये बात तो तकनीक से हमारे किसान भाई भी समझ गए होंगे कि भैया आजकल चाहे गेहूं का ले लो, चाहे भैया धान का लो, चाहे भैया गन्ने का ले लो या अन्य किसी फसल का भी लो, भाई जो फसल भी हम लगाते हैं हमारा उत्पादन आधुनिक तकनीकों से इतना अच्छा हो रहा जिससे हमारे किसान भाइयों को खेती किसानी से भी अच्छा लाभ हो रहा है। तो भाई आज एक ऐसी जानकारी हम अपने किसान भाइयों के लिए लेकर आए हैं, भाई जानकारी का विषय है कृषि में ड्रोन एवं आधुनिक तकनीक का उपयोग। भाई जानकारी दे रहे हैं मोहम्मद अवैस जो कि सहायक प्रोफेसर हैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी अलीगढ़ में। तो आइए सुनते हैं ये बातचीत। किसान भाइयों नमस्कार। किसान भाइयों आज हमारे कार्यक्रम के बीच में हैं डॉक्टर मोहम्मद अवैस जो कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी अलीगढ़ में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं कृषि विज्ञान संकाय में, और डॉक्टर साहब से जानकारी का विषय है कृषि में ड्रोन एवं आधुनिक तकनीक का उपयोग। तो डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में।
1: जी बहुत बहुत धन्यवाद
0: डॉक्टर साहब। जैसा कि आज हमारा विषय ही है कृषि में ड्रोन एवं आधुनिक तकनीक का उपयोग, तो डॉक्टर साहब सबसे पहले तो हमारे किसान भाइयों को आप इसी क्रम में जानकारी दीजिए कि ये जो कृषि में ड्रोन है ये ड्रोन
1: जी
0: क्या है।
1: देखिए किसान भाइयों के लिए बहुत आसान शब्दों में बताएं हम ड्रोन क्या है। ड्रोन एक समझिए आप मानव रहित हवाई जहाज है क्या, जो किसी बिना पायलट के रिमोट कंट्रोल के जरिए या ऑटोमेटिक तरीके से चलाया जा सकता है।
0: जी जी
1: हाँ ये एक ड्रोन है।
0: बिल्कुल बिल्कुल
1: हाँ
0: बिल्कुल सर। अच्छा सर, जैसा ड्रोन के बारे में बताया आपने तो ये ड्रोन क्या है, इस संबंध में आपने हमारे किसान भाइयों को जानकारी दी कि ये बिना पायलट का होता है। अच्छा डॉक्टर साहब,
1: जी
0: ये ड्रोन कितने प्रकार के होते हैं।
1: हाँ ड्रोन को जो है मुख्यतः जो हमारे पास जो हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं 4 किस्म के हमारे पास ड्रोन हम लोग इस्तेमाल करते हैं अभी,
0: जी जी
1: जिसमें सिंगल रोटर है, मल्टी रोटर है, स्विफ्ट स्पिन वाला है और हाइब्रिड ड्रोन है हमारे पास। इसलिए हमारी जो हमारी कृषि की आवश्यकताएं हैं हम इन 4 किस्म के जो ड्रोन है उनका इस्तेमाल हम अपनी आवश्यकता अनुसार कर सकते हैं।
0: अच्छा सर, जैसा कि ड्रोन के आपने प्रकार बताए और किस तरह से प्रयोग भी अपने खेतों में कर सकते हैं और किस तरह से वो अपनी खेती किसानी से लाभ कमा सकते हैं। अच्छा सर, क्या भारत ने भी कोई स्वदेशी ड्रोन बनाया कभी।
1: जी जी हमारा सबसे पहले बना है भारत में, हमारा बना था ड्रोन निशान के नाम से बना था 1995 में
0: अच्छा।
1: जी, जिसको हमारे रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन जिसको हम DRDO बोलते हैं उसने उसको बनाया था और उसका सफल परीक्षण 1995 में किया गया था।
0: अच्छा
1: जी
0: सर, 1995 में स्वदेशी ड्रोन का जो है सफल परीक्षण भी किया गया था। अच्छा सर,
1: हाँ
0: जैसा आज हमारा विषय

0: यह आधुनिक तकनीक का उपयोग कृषि में तो और ड्रोन की बात चल रही है, तो सर ड्रोन खेती में किस किस काम आ सकते हैं, या हम बात करें कि ड्रोन का कृषि में क्या उपयोग है, तो इस संबंध
1: जी
0: में हमारे किसान भाइयों को थोड़ा आप जागरूक कीजिए।
1: हाँ बिल्कुल सही। देखिए पहला तो ड्रोन को आप समझ लीजिए किसान भाई, क्योंकि आप हमारे यहाँ देखते होंगे अक्सर,
0: जी
1: ड्रोन से परिचित तो है ही सभी लोग इस समय में, क्योंकि वीडियो के जरिए और आप यूट्यूब के जरिए देख रहे हैं, और शादी के अंदर भी आप लोग देख रहे हैं कि फोटोग्राफी भी ड्रोन के जरिए हो रही है।
0: जी
1: बस ये है कि वो अलग अलग किस्म के हैं। तो कृषि में जो ड्रोन का उपयोग है वो हम लोग फसल की निगरानी के लिए कर रहे हैं।
0: अच्छा सर
1: हाँ फसल को हमें देखना है, कैमरे लगा हुआ है ड्रोन के अंदर, तो आप ऊपर अपने खेत के ऊपर अपना ड्रोन लगा हुआ पूरा देख लीजिए, कीटों का प्रकोप कहाँ पर है, ठीक है। इसके साथ साथ उर्वरकों का छिड़काव हमें करना है, तो कैपेसिटी के हिसाब से हम लोग जो है ड्रोन के जरिए, जिस खेतों में जाना संभव नहीं है बरसात के दिन है या गन्ने की खेतों में, तो आप ऊपर से जो है उर्वरकों का और कीटनाशकों का छिड़काव भी कर सकते हैं। सिंचाई के साथ साथ में जल निकास की समस्या भी है, तो
0: जी
1: वो हमें पहले से आकलन कर लेते हैं कि भाई यहाँ पे हमें परेशानी है, पानी हमारा जो है पूरा नहीं जा रहा है, तो हम ड्रोन के जरिए देख सकते हैं। इससे हमारे समय की बचत और लागत की बचत दोनों हो रही है।
0: अच्छा सर
1: हाँ इसके बाद में फिर हम उपज का आकलन भी कर सकते हैं ड्रोन के जरिए, कि भाई हमारा एक मानचित्रीकरण कर लेंगे, फोटोग्राफी हमने कर ली कि हमारी जो फसल यहाँ से स्वस्थ है, यहाँ पे स्वस्थ नहीं है, तो हमें डेफिशिएंसी की किसी कमी आ रही है, उसका आकलन भी हम ऊपर से ड्रोन के चित्र मानचित्रीकरण के जरिए कर सकते हैं।
0: जी सर
1: हाँ और इसके बाद में खेतों का सर्वेक्षण सबसे बड़ा आसान काम है इस समय में, कि खेतों का सर्वेक्षण जो हमारे यूपी गवर्नमेंट की जो तमाम स्कीमें चल रही है, तो खेतों का सर्वेक्षण भी उसी के तहत ड्रोन के जरिए कराया जा रहा है।
0: अच्छा
1: और फिर आगे अगर बढ़ते हैं थोड़ा सा, तो पशुधन प्रबंधन के लिए जो हमारे जानवर हैं, पशुपालन हम लोग कर रहे हैं घरों के अंदर, उसी में भी हम ड्रोन के जरिए अपने पशुओं की जो सुरक्षा कर सकते हैं।
0: जी सर
1: हाँ
0: बिल्कुल
1: सबसे एक अहम चीज हम बिजनौर जिले के संबंध में कहना चाहेंगे कि जो वन्य जीव जो हमारे यहाँ हिंसक हो रहे हैं इस समय बहुत, यानी कि गुलदार तेंदुए का बहुत ज्यादा आतंक मचा हुआ है, आए
0: बिल्कुल
1: दिन
0: सर
1: हम लोग अखबारों में देखते रहते हैं, रोजाना ही कोई दिन ऐसा जाता हो जहाँ पे कोई मानव पे हमला और या फिर किसी पशुधन पे हमला ना हो रहा हो।
0: जी
1: इसके लिए ड्रोन का इस्तेमाल करने से हम लोग पता चल जाएगा कि भाई किसान को खेत पे जाना है नहीं जाना है, ग्रामीणों को कैसे करना है, तो हम लोग उस तरीके को प्रबंध कर सकते हैं कि भाई हमें नहीं निकलना है।
0: जी
1: तो ड्रोन के जरिए हम फोटोग्राफी देख लेंगे, पता चल जाएगा भाई वहां पे गुलदार बैठा हुआ है या नहीं है, तो हम उसी हिसाब से अपनी रणनीति बना के खेत पर काम करने के लिए जाए।
0: जी सर
1: ये है हाँ
0: बिल्कुल सर
1: ये
0: बिल्कुल, ड्रोन के उपयोग से हमारे किसान भाई काफी लाभान्वित हो सकते हैं, किस तरह से वो
1: जी
0: अपने जीवन की भी रक्षा कर सकते हैं, साथ ही साथ
1: बिल्कुल
0: अपनी
1: सही
0: फसलों को तो बचा ही सकते हैं, अपनी फसलों से लाभान्वित हो सकते हैं। आपने बड़ी अच्छी
1: बिल्कुल सही
0: जानकारी हमारे किसान
1: जी
0: भाइयों को ड्रोन का खेती में उपयोग के संबंध में दी। और बिल्कुल डॉक्टर साहब, जैसे कि हम देखते भी हैं और सुनते भी हैं आज अखबारों के माध्यम से या सोशल मीडिया के माध्यम से,
1: जी
0: कि
1: जी जी
0: वहां गुलदार पकड़ा गया, वहां खेत में गुलदार
1: जी
0: था,
1: जी
0: तो बिल्कुल ड्रोन के
1: हाँ
0: माध्यम से हमारे किसान भाई इस चीज का सर्वे भी करा सकते हैं कि कितने गुलदार या कितने वन्य जीव हमारे क्षेत्र में उपस्थित हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसा कि हम ड्रोन के संबंध में बात कर रहे हैं, तो ड्रोन के उपयोग में किसानों को कौन कौन सी कठिनाई आती है, इस संबंध में
1: हाँ
0: भी थोड़ा सा
1: देख
0: हमारे किसान
1: हाँ
0: भाइयों को जागरूक
1: बिल्कुल
0: कीजिए, क्योंकि
1: जी
0: कहीं ना कहीं जब किसी चीज का लाभ होता है तो उसके प्रयोग में हमारे किसान भाइयों को कठिनाई भी आती है, तो इस संबंध में
1: जी
0: थोड़ा सा किसान भाइयों को और जागरूक
1: हाँ
0: कीजिए।
1: हमारे किसान भाइयों के सामने कुछ कठिनाइयां परेशानियां समस्याएं भी हैं इसके इस्तेमाल करने में,
0: जी
1: तो सबसे ज्यादा तो ये कीमत का, छोटे किसान के लिए जो है ये कीमती हो सकता है जी, तो वो एक समस्या है कि इसका कीमती होना। दूसरी बात प्रशिक्षण की आवश्यकता है, जो किसान को हमें ट्रेंड होना बहुत जरूरी है, इसको चलाने के लिए एक बहुत अच्छे प्रशिक्षण की जरूरत है। उसके बाद में तकनीकी जानकारी की हमारे पास कमी, तो उसके लिए भी हमें जाहिर बात है उसके लिए हमें पढ़ना भी पड़ेगा और प्रशिक्षण भी लेना पड़ेगा।
0: जी
1: अच्छा उसके बाद में फिर थोड़ा और एक समस्या पर नजर डालें, तो बैटरी की समस्या, ये बैटरी चलित होते हैं तो वो लंबे समय तक जैसे करें हमारा काम ज्यादा है, तो वो बैटरी की भी परेशानी हमारे सामने है कि हम ऐसे ड्यूरेबल बैटरी बनाए ताकि वो मतलब परेशानी हमारी कम हो, गए ड्रोन की एफिशिएंसी काम कर सके।
0: जी सर
1: उसके बाद में मरम्मत और रख रखाव की भी समस्या है, और सबसे बात मौसम का जो प्रभाव इसके ऊपर पड़ सकता है, तेज हवा चल गई तब परेशानी है, बारिश के दिनों में ड्रोन का उपयोग जो है मुश्किल हो जाता है।
0: बिल्कुल
1: उसके बाद में कुछ कानूनी नियम भी हैं जिसके लिए इसके लिए लाइसेंस की और आवश्यकता पड़ती है, और निर्धारित नियम बने हुए हैं सरकार की तरफ से, तो उनका अनुपालन करना भी एक ये है कि फिर आप उस स्टेप से आगे निकलेंगे तभी आपको ये जो है परमिशन मिलेगी इसको चलाने के लिए।
0: जी
1: फिर जो आप मॉडर्न टाइप के ड्रोन लेना चाह रहे हैं जो आधुनिक है, तो वो इंटरनेट से कनेक्टेड है, तो उसके लिए आपको इंटरनेट की समस्या आ सकती है, क्योंकि उसके लिए हाई स्पीड वाला आपको इंटरनेट कनेक्टिविटी चाहिए।
0: बिल्कुल सर।
1: और जो डेटा आप इकट्ठा कर रहे हैं उससे उसको समझने के लिए भी आपको तकनीकी आदमी की जरूरत है
0: जी।
1: तो किसान को इन सब चीज को चलाने के लिए इन सब चीजों को उससे उभरना पड़ेगा, तब वो इसको सही तरीके से सुचारू रूप से चला सकता है।
0: बिल्कुल डॉक्टर साहब, बिल्कुल आपने बड़ी अच्छी जानकारी, हमारे किसान भाइयों के सामने क्या क्या कठिनाई ड्रोन के प्रयोग में आती हैं, उनको अच्छा प्रशिक्षक कोई यदि मिल जाता है या प्रशिक्षण देने वाला, क्योंकि प्रशिक्षण बहुत ही जरूरी है किसी भी कार्य के लिए। यदि हमें फसलोत्पादन भी करना है तो हमें फसल की पूरी जानकारी होनी चाहिए, प्रजातियों की जानकारी होनी चाहिए, किस तरह की जलवायु में हमारी फसल जो है अच्छी ग्रोथ करती है, ये सभी जानकारी होनी चाहिए। इसी प्रकार ड्रोन के उपयोग में भी हमारे किसान भाइयों को पूरी जानकारी होनी चाहिए। अच्छा डॉक्टर साहब, इसी बीच में आपने थोड़ा सा ये बताया कि जो लाइसेंस की प्रक्रिया होती है या सरकारी कुछ ऐसी नियमावली बनी हुई होती है, उस संबंध में थोड़ा सा ये जागरूक कीजिए कि हमारे किसान भाई सरकारी जो नियमावली है उसके तहत ड्रोन को किस प्रकार खरीद सकते हैं।
1: हाँ, इसके लिए देखिए यूपी गवर्नमेंट की तरफ से
0: जी,
1: हमारे जो उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से जो एक मिशन है, एक मिशन एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन स्कीम है, हाँ उसके अंदर ड्रोन भी है और उसके अलावा काफी जो है मशीनें जैसे कंबाइन हार्वेस्टर है
0: जी,
1: आपका शेलर्स हैं, पंपिंग सेट हैं, ये सब चीजें जो है हमारी यूपी गवर्नमेंट की तरफ से किसानों को दी जा रही है
0: जी।
1: हाँ, वहीं पर इसके साथ में किसानों को सब्सिडी भी दी जा रही है जिससे किसान इसको खरीद सकते हैं आसानी से। और इसके साथ साथ जो किसान के लिए पात्रता रखी गई है, हाँ कम से कम किसान का या ग्रामीण उद्यमी इसको कम से कम 10वीं पास होना चाहिए और अंग्रेजी का ज्ञान आवश्यक है।
0: अच्छा सर।
1: हाँ, उसके बाद में लाइसेंस की प्रक्रिया के लिए हमें आवेदन करना पड़ेगा इन्हीं जो माध्यम है, हमारे पोर्टल्स हैं सरकारी, उन्हीं के तहत। हाँ, वहाँ से हम, और इसकी जानकारी हमें हमारे जिला कृषि अधिकारी के यहाँ से मिल जाएगी, और इसके लिए केवी के हैं, कृषि विज्ञान के आपके विश्वविद्यालय हैं, ये सब आपको जो किसानों के बारे में मार्गदर्शन देंगे कि आपको लाइसेंस की प्रक्रिया कैसे करनी।
0: बिल्कुल सर, बिल्कुल आपने बड़ी अच्छी जानकारी हमारे श्रोताओं को, किस प्रकार वो इसका लाइसेंस ले सकते हैं, कितना पढ़ा लिखा होना आवश्यक होता है ड्रोन का लाइसेंस लेने के लिए, और क्या क्या जानकारी होनी चाहिए हमारे किसान भाइयों को। तो इस तरह से यदि हमारे किसान भाई आज या हमारे जो नौजवान साथी हैं वो आज आपकी बात सुन रहे हैं, तो वो भी ड्रोन खरीदने के लिए अपनी जानकारी का और आपके द्वारा दी गई जानकारी का हमें लाभ उठाएंगे। अच्छा सर, जैसा कि आज हमारा विषय ही है ड्रोन और आधुनिक तकनीक, तो सर वर्तमान समय में कृषि में आधुनिक तकनीक क्या है सर, इस संबंध में और थोड़ा सा हमारे किसान भाइयों को जागरूक।
1: अब इसके अलावा देखिए, ड्रोन एक समझ लिए आधुनिक तकनीकों का एक कंपोनेंट है, एक भाग था। इसके अलावा और बहुत तकनीकें हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं
0: जी जी।
1: तो ड्रोन के संबंध में एक चीज और बताना चाहूंगा मैं थोड़ी सी, कि ड्रोन के लिए ड्रोन एज ए सर्विस, ये एक नई अवधारणा विकसित हुई है। इसमें क्या कर सकते हैं, जो हमारे ग्रामीण युवा हैं वो अपना ड्रोन लेके और प्रशिक्षित हैं, अपना ड्रोन का सर्विस सेंटर बना सकते हैं, जिससे कि जो छोटे किसान है जो खरीद नहीं सकते, हाँ और जिनको लाइसेंस की आवश्यकता है, वो कठिनाई से बचना चाहते हैं, तो किराए पे लेकर उनकी सेवाओं का लाभ ले सकते हैं। तो ये व्यवसायिक तौर पे इसको अपना सकते हैं, जिसको ड्रोन एज ए सर्विस के नाम से जो है चलाया जा रहा है। इसके लिए बड़े बड़े शहरों में, गाँव में इस तरीके की सर्विसेज दी जा रही है ताकि किसान उनसे लाभान्वित हो जाए और किराए पे अपने काम करवा ले। हाँ, अब मैं वहीं पर आता हूँ विषय पर अपने, कि जो ड्रोन के अलावा जो दूसरी और तकनीकें हमारी क्या क्या इस्तेमाल हो रही हैं, तो इसमें देखिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता जो है वो हमारे इस समय बहुत अच्छा इस्तेमाल इसका कृषि में हो रहा है, जिसके अंदर हम जो एक सटीक कृषि जिसको हम परिशुद्ध कृषि के नाम से भी जानते हैं, ये प्रणाली हमारी बहुत अच्छी चल रही है इस समय और इसका इस्तेमाल हो रहा है, जिसके अंदर आप जो है कृषि का सही तरीके से कहाँ पे कौन सी फसल कब उगानी है उसका आकलन करके ही आप अपनी कृषि को आगे बढ़ा सकते हैं।
0: जी जी।
1: तो पहला तो परिशुद्ध कृषि हुई, उसके बाद में रोग पता लगाने के लिए भी, कीट प्रबंधन में भी एआई का इस्तेमाल हो रहा है, और आपका मौसम का पूर्वानुमान भी आपको करना है उसके लिए भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, और उसके बाद में आपका सॉइल हेल्थ के लिए, सॉइल हेल्थ के लिए भी बहुत जो है कारगर हो रही है स्कीमें
0: जी,
1: तो जिसका हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कृत्रिम बुद्धिमत्ता के जरिए जो है उसका इस्तेमाल करके बागवानी के क्षेत्र में भी हम लोग जो है इसका इस्तेमाल करके कृत्रिम बुद्धिमत्ता का कीटों का, रोगों का और फसलों के पकने का सही आकलन और अनुमान लगा सकते हैं।
0: बिल्कुल सर, बिल्कुल जी, बिल्कुल सर, आपने बड़ी अच्छी जानकारी हमारे किसान भाइयों को वर्तमान समय में कृषि में आधुनिक तकनीक के संबंध में दी। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने इसी बीच में इसी क्रम में एक बात की, एआई हम गांव में हमारे किसान भाई और हम भी काफी सुनते हैं, तो एआई के संबंध में थोड़ा सा और हमारे किसान भाइयों को आप जानकारी दीजिए कि एआई है क्या और किस तरह से ये हमारे खेती किसानी में लाभदायक है।
1: देखिए एआई जो है कृत्रिम बुद्धिमत्ता
0: जी,
1: ये एक कंप्यूटर विज्ञान में कृत्रिम बुद्धिमत्ता जो है ये अभी स्टार्ट हुआ है, मगर ये समझ लीजिए कि इसका आगमन तो अभी हुआ है, मगर ये जो अवधारणा बहुत पुरानी है।
0: जी,
1: इसका मतलब ये है कि जो हमने अब सोचा है वो हमने कर दिया, ये समझ लीजिए। तो इसका उत्पादन में जो हमारी जो कृषि के अंदर बड़ा अच्छा इसका रोल है इस समय, और हम लोग जो है एआई के जरिए जो मैंने बताई सारी चीजें आपको कि मृदा स्वास्थ्य की तरफ और आपका मैकेनाइजेशन के मशीन में दक्षता में सुधार के लिए एआई का इस्तेमाल कर रहे हैं, साथ में मानचित्रीकरण में इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, सिंचाई सुविधाओं का भी को सुचारू रूप से चलाने के लिए भी हम इसका इस्तेमाल बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हैं।
0: जी, बिल्कुल सर, आपने बड़ी अच्छी जानकारी एआई के संबंध में दी, और हम देखते भी हैं आजकल सभी किसान बहन भाइयों के पास स्मार्टफोन है, तो स्मार्टफोन में भी जो हमारे किसान भाई देखते हैं वीडियो, तो वो गांव में आमतौर पर भाषा यूज करते हैं कि भाई ये वीडियो एआई के माध्यम से बनी हुई है।
1: हाँ,
0: तो बिल्कुल हमारे किसान भाई आज समझ गए होंगे कि एआई है क्या और किस तरह से हमारी खेती किसानी में भी उसका प्रयोग किया जा सकता है। भारत में कृषि में ड्रोन एवं तकनीकों का उपयोग का भविष्य क्या है, इस संबंध में और थोड़ा सा हमारे किसान भाइयों को जागरूक कीजिए, क्योंकि कभी काफी सवाल हमारे किसान भाइयों के जहन में आते हैं यदि हम ड्रोन और आधुनिक तकनीक की बात करते हैं, तो क्या भविष्य है इसका?
1: देखिए, भविष्य इसका बहुत उज्जवल है
0: जी,
1: और भारत में कृषि में जो हम ड्रोन का और आधुनिक तकनीक जैसे कृत्रिम बुद्धिमत्ता और सेंसर का इस्तेमाल हम कर रहे हैं, तो उनका भविष्य बहुत उज्जवल है। ये तकनीक पारंपरिक खेती को स्मार्ट और खेती में बदल रही है, जिससे आपका कीटनाशकों का छिड़काव, फसल स्वास्थ्य की निगरानी, पैदावार में 15-20% वृद्धि जो है दर्ज कर रहे हैं, जो अभी शोध हो रहे हैं फिलहाल में। तो उनसे इन तकनीक इस्तेमाल करने के बाद में पता लगा कि हमारे जो हमारा ट्रेडिशनल पैटर्न है उससे अगर हम हटके आधुनिक तकनीक को इस्तेमाल कर रहे हैं तो हमारा 15-20% जो हमारा उत्पादन में वृद्धि हो रही है। हाँ, ये सरकार की तरफ से बड़े अच्छे प्रयास चल रहे हैं इसके लिए। 2026 में अभी 15-20 फरवरी को लिए सरकार ने आपने दिया आई इम्पैक्ट के नाम से सबमिट की थी जो नई दिल्ली में हुई थी, तो उसका मेन उद्देश्य ये था कि भारत में एआई के साथ साथ जो आपका पूरा डोमेन में काम करना है, मगर उसका जो है पूरा जोर जो है कृषि के ऊपर है।
0: जी सर,
1: जी
0: बिल्कुल सर, आपने बड़ी अच्छी जानकारी हमारे श्रोताओं को, हमारे नौजवान साथियों को दी, और जो भी हमारे किसान भाई आज आपकी बात सुन रहे हैं, चाहे वो खेती किसानी से जुड़ना चाहते हो या खेती किसानी कर रहे हो, तो वो भी कहीं ना कहीं आपकी बताई बातों का अपनी खेती किसानी में प्रयोग करेंगे और अपनी खेती किसानी से अच्छा लाभ प्राप्त करेंगे। अच्छा सर, चलते चलते और क्या कोई संदेश यदि हमारे किसान भाइयों को आप देना चाहते हैं, या कोई बात ड्रोन या आधुनिक तकनीक के संबंध में बताना चाहते हैं जो रह गई हो, तो क्या संदेश देना चाहते हैं?
1: जी, तो मेरा यही कहना है किसान बहनों और भाइयों से कि आज का जमाना तकनीक का है
0: जी।
1: अगर हम पुराने तरीकों के साथ साथ नई तकनीकों को भी अपनाएं, इससे हमारी मेहनत का परिणाम दुगना हो सकता है।
0: बिल्कुल सर,
1: बस यही कहना चाहूंगा, जय जवान जय किसान।
0: आपने इतने व्यस्त कार्यक्रम से हमें समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।
2: अभी हमारे किसान भाइयों ने ये जानकारी सुनी, कृषि में ड्रोन एवं आधुनिक तकनीक का उपयोग, जानकारी दे रहे थे डॉक्टर मोहम्मद अवैस भैया। ये हमने डॉक्टर साहब से फोन पर की गई बातचीत थी, और भाई देखो कितनी अच्छी जानकारी डॉक्टर साहब ने ड्रोन के संबंध में दी कि भाई हमारा जो है स्वदेशी ड्रोन भी हमारे यहाँ 1995 में बना था। साथ ही साथ डॉक्टर साहब ने बताया कि भाई आजकल जो है भाई बरसात का मौसम है, और भाई बरसात में जो जंगली जानवर होते हैं भाई उनका आतंक भी हम देखने को हमें मिलता है, तो भैया आप ड्रोन के माध्यम से ये भी भैया पता कर सकते हैं कि कितने जंगली जानवर हमारे यहाँ हैं, चाहे गुलदार हो चाहे भैया अन्य कोई जानवर हो, और साथ ही साथ भाई अपनी फसलों में ड्रोन का उपयोग कर सकते हैं भाई, चाहे स्प्रे करना हो या भैया किसी तरह की मैपिंग करनी हो जीपीएस के माध्यम से। तो भाई देखो कितनी अच्छी जानकारी डॉक्टर साहब ने कृषि में ड्रोन के उपयोग और साथ ही साथ आधुनिक तकनीक के संबंध में दी, और साथ ही डॉक्टर साहब ने बताया कि भाई एआई जो भैया कृत्रिम बुद्धिमत्ता के संबंध में बताया भाई, उससे जो है हमारे किसान भाई भी या अन्य भी भैया आजकल जो है काफ़ी चल रही है भाई, काफ़ी लाभ हमारी खेती किसानी में उसका आने वाले समय में होने वाला है। तो भाई देखो हमारे किसान भाई इन तकनीकों का अपनी खेती किसानी में लाभ लेंगे और अच्छा उत्पादन अपनी खेती किसानी से प्राप्त करेंगे। तो भाई देखो जब बात अच्छे उत्पादन की होती है, लाभ की होती है, तो भाई लाभ एक और चीज़ से होता है, वो है भैया गीत संगीत। तो भाई किसान भाइयों को लिए चलते हैं गीत संगीत की ओर और सुनते हैं महाभारत के किस्से से यो प्यारी सी रागनी।

भले आदमी ना होते घर में तकरार करन वाले। अभी भाइयों ने सेठ पाल आर्य व साथियों से यो प्यारी सी रागनी सुनी। भाई उम्मीद करते हैं किसान भाइयों की दिन भर की थकान उतर गई होगी और किसान भाइयों का हमारे भरपूर मनोरंजन हुआ होगा। और भाई देखो, अब घड़ी भी हमें इस ओर इशारा कर रही है और बातचीत की इजाजत बिल्कुल नहीं दे रही। लेकिन भैया आपके सभी के पास देखो स्मार्टफोन है, तो भैया आप जो है मौसम से अपडेटेड रहिए, मौसम की सूचना अपने मोबाइल पर रखिए, ताकि भैया आपको समय से पहले पता लगे कि आज मौसम खराब है, बरसात है। यदि आपको कोई खेती का काम करना है या भैया अन्य कोई कार्य करना है, चाहे बाहर ही जाना है, तो भैया आप मौसम को देखते हुए यदि चलेंगे तो आप सुरक्षित रहेंगे। और साथ ही भाई जो हमारे किसान भाई सब्जियों का उत्पादन करते हैं, भैया वो सब्जियों की फसल से भैया पानी की निकासी करते रहें। और भाई अब आप हमें चिट्ठी पत्र लिखने में थोड़ी सी कंजूसी कर रहे हैं, लेकिन भैया आप चिट्ठी पत्र लिखते रहें हमें, क्योंकि भाई आपके चिट्ठी पत्रों के अनुसार ही हम कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार करते हैं। तो भाई चिट्ठी लिखने के लिए हमारा पता है कार्यक्रम कृषि जगत, द्वारा केंद्र निदेशक, आकाशवाणी नजीबाबाद, पिन कोड है 246763। भाई एक हमारा मोबाइल नंबर है जिस पर आप हमें व्हाट्सएप संदेश भेज सकते हैं, 9457072888, 9457072888। इस नंबर पर आप हमें व्हाट्सएप संदेश भेज सकते हैं और लिख सकते हैं उसमें कार्यक्रम कृषि जगत और जो भी आपका सुझाव है या हमारे कार्यक्रम में आपको सुनना चाहते हैं, तो भाई आप हमें अवश्य लिखें। और भैया अब कार्यक्रम संपन्न करने की अपने भैया जितेंद्र कुमार को दीजिए अनुमति। किसान भाइयों राम राम।

0: किसान भाई सुन रहे थे अपना दैनिक कार्यक्रम कृषि जगत। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलो हर्ट्ज पर। शाम के 6:45 हुए हैं। विविधा क्रम में लीजिए सुनिए डॉक्टर वीरेंद्र पुष्पक की लिखी कहानी पर्यावरण चेतावनी आने वाला कल।
1: एक कहानी मैं कहूं, शीर्षक है पर्यावरण चेतावनी और आने वाला कल। मैं कोई काल्पनिक जीव नहीं हूं, मैं इंसान ही हूं, या कम से कम 25 वर्ष पहले तक मुझे जाता था। अगर आप आज मुझे देख ले तो शायद चीख पड़ेंगे या मुझे किसी दूसरे ग्रह का डरावना एलियन समझ बैठेंगे। मेरी चमड़ी धूप और तेजाबी हवाओं के लगातार थपेड़ों से सूखकर छिपकली जैसी सलेटी और सख्त हो चुकी है। मेरी आंखों पर प्राकृतिक पलकों की जगह अब एक पारदर्शी कृत्रिम झिल्ली है जो जहरीले कोहरे के बीच भी मुझे देखने में मदद करती है। मेरी पीठ से धातु की पट्टियों के सहारे एक माइक्रो ऑक्सीजन सिलेंडर बंधा है जिसकी दो नालियां सीधे मेरी गर्दन की नस से जुड़ी हैं और फेफड़ों तक कुदरती हवा के से ऑक्सीजन खींचने के काबिल नहीं रहने पर वे सुकड़कर आधे हो गए हैं और आधा काम यह मशीन करती है। मेरी उंगलियां पतली और लंबी हो चुकी हैं जिनसे मैं दिन रात अपने केबिन के डिजिटल बोर्ड के बटन दबाता रहता हूं। वर्ष 2051 की इस दुनिया में जिसे अब हम पृथ्वी नहीं बल्कि सेक्टर्ड हब 9 कहते हैं, मेरे जैसे हर जीव का यही खौफनाक ढर्रा है। इसी ढर्रे पर वह जी रहा है। यहाँ की सुबह सूरज की किरणों से नहीं बल्कि जहरीले भूरे धुएं के गाढ़े गुबार से शुरू होती है। यहाँ का तापमान 50 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे उतरने का नाम ही नहीं लेता। जब भी मुझे सांस लेने की तकलीफ होती है मेरी पीठ पर बंधा मशीन लाल बत्ती जलाकर चेतावनी देती है। मैं अपनी धातु के बक्से में से एक पुरानी जर्जर हो चुकी पीली डायरी निकाल लेता हूँ। यह डायरी मेरे परदादा की है जो वर्ष 2020 में एक जाने माने डॉक्टर साहित्यकार पत्रकार हुआ करते थे। उनकी हस्तलिपि में लिखे मेरे लिए ये शब्द दूसरी दुनिया की किसी परी कथा जैसे लगते हैं। वे लिखते हैं कि उनके समय में नदियां होती थीं जिनमें शीतल जल स्वच्छ जल बहता था और लोग बिना पैसे दिए अंजलि में भरकर उसे पी लेते थे। आज मेरे लिए पानी का मतलब केवल प्लास्टिक के छोटे से कैप्सूल में बंद एक बेस्वाद रासायनिक घोल है जिसे पाने के लिए हम हर महीने अपनी कड़ी मेहनत से बायो क्रेडिट चुकाने के लिए मजबूर होते हैं। मेरे परदादा अपनी डायरी में जून की भीषण गर्मी का जिक्र करते हुए लिखते हैं कि जब वे थक जाते थे तो नीम के किसी विशाल वृक्ष के नीचे घनी छांव में बैठकर बिना किसी मास्क के ठंडी हवा का आनंद लेते थे। आज इस पूरी कंक्रीट की दुनिया में पेड़ के नाम पर सिर्फ लोहे और सेंसर से बने ऊंचे ऊंचे कृत्रिम खंभे खड़े हैं जो हवा से कार्बन डाइऑक्साइड सोखने का नाटक करते हैं। जब मैं डायरी के उन पन्नों को पढ़ता हूँ जहाँ उन्होंने हरे भरे जंगल और पशुओं की चहचहाट का जिक्र किया है तो मेरी इन मशीन जैसी आंखों के कोनों में सूखापन ही रह जाता है। आज जंगल खत्म हो चुके हैं, ये कंक्रीट के विशाल ढेरों में तब्दील हो गए हैं। पानी और भोजन की तलाश में भटकते हुए भूखे प्यासे जंगली जानवर अब हमारी इंसानी बस्तियों के लोहे की बाड़ों पर हमला करते हैं। कल ही मैंने अपने केबिन की खिड़की से देखा कि एक कंकाल बन चुकी तेंदुए की मादा अपने छोटे से बच्चे के साथ नाले के लोहे के पाइप को चाट रही थी। लेकिन इंसानों की इस नई और बेरहम दुनिया में उनके लिए कोई दया नहीं था। अगले ही पल सुरक्षा में लगी रोबोटिक लेजर मशीन गन ने उन्हें राख के ढेर में बदल दिया। हम इतने स्वार्थी और मशीनी हो गए हैं कि अब किसी की मौत

0: मृत डरावने और मशीनी वजूद के साथ इस मृत्यपाय धरती पर यानी सेक्टर हब 9 पर केवल अपनी अंतिम सांसों की उल्टी गिनती गिन रहा हूँ। आने वाली नस्लें, अगर मेरी यह पुकार तुम तक पहुँच रही है तो सुनो, प्रकृति कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे हम अपनी सनक लालच के लिए नष्ट करते जाएं, और सोचो कि तुम बच जाओगे अगर आज तुमने अभी भी अपनी जमीन, अपने खेत, अपने पेड़ों, अपनी नदियों, अपनी हवा की रक्षा नहीं की, तो आने वाले समय में मशीनों का गुलाम बनकर प्रकृति तुमसे रूठ जाएगी और फिर तुम प्रकृति को देखते ही रह जाओगे। याद रखना कि आने वाला कल तुम्हारा चेहरा भी इंसान का नहीं रहेगा, तुम अपनी ही बनाई इस लोहे की और जहर की भट्टी में सड़ने के लिए मजबूर हो जाओगे, जहाँ न रोने के लिए आंखों में आंसू बचेंगे और न ही पछतावा करने के लिए सांस।
1: विविधाक्रम में अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर वीरेंद्र पुष्पक की लिखी कहानी पर्यावरण चेतावनी, आने वाला कल। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलो हर्ट्ज पर। प्रस्तुत है जानकारी कल प्रसारित होने वाले कुछ प्रमुख कार्यक्रमों के विषय में।

कल रात्रि 9:30 पर कार्यक्रम पब्लिक स्पीक हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। भक्ति संगीत का दैनिक कार्यक्रम वंदना सुनिएगा कल सवेरे 6:05 पर। कल सवेरे 6:30 पर सुनिएगा श्री रामचरित मानस गान की संगीतमय प्रस्तुति। काव्यधारा क्रम में कल सवेरे 6:45 पर श्री अनिल वाजपेयी का काव्य पाठ सुनवाया जाएगा। सूरज के साथ साथ कार्यक्रम आप सुन सकते हैं कल सवेरे 7:31 पर।

लोकधारा कार्यक्रम में कल दोपहर 1:45 पर गुरदास मान के गाए पंजाबी लोकगीत सुनवाए जाएंगे। मेरा सपना उन्नत भारत, ये कार्यक्रम सुनिएगा कल शाम 5 बजे। किसान भाइयों के दैनिक कार्यक्रम कृषि जगत में कल शाम 6:05 पर कृषि विज्ञान केंद्र बदायूं से श्री सौरभ दुबे, जो कि कृषि वैज्ञानिक हैं, इनसे अंकित कुमार की बातचीत का विषय होगा रासायनिक उर्वरकों के दुष्प्रभाव। विविधा क्रम में कल शाम 6:45 पर डॉक्टर सुभा माहेश्वरी की वार्ता का विषय होगा नई पीढ़ी और साहित्य, दूरी या संवाद। अभी आप सुन रहे थे कल प्रसारित होने वाले कुछ प्रमुख कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलो हर्ट्ज पर। शाम के 6:55 हुए हैं। प्रस्तुत हैं छाया गीत। कार्यक्रम का पहला गीत है मोहम्मद रफी की आवाज में गबन फिल्म से। गीत के बोल लिखे हैं हसरत जयपुरी ने और इसे संगीत से सजाया है।

कार्यक्रम का अगला गीत है आशा भोसले और किशोर कुमार की युगल आवाजों में, मेहंदी रंग लाएगी फिल्म से। गीतकार अनजान और संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

दो बदन फिल्म में मोहम्मद रफ़ी के गाए इस गीत के साथ ही छाया गीत अब समाप्त होते हैं। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलो हर्ट्ज़ पर। शाम के 7:10 हुए हैं। प्रस्तुत है देशगान।

अभी आप सुन रहे थे देशकान। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलो हर्ट्ज़ पर। शाम के 7:15 हुए हैं। प्रस्तुत है जानकारी कल प्रसारित होने वाले कुछ प्रमुख कार्यक्रमों के विषय में।

गोल्डन हिट्स सुनिएगा कल सवेरे 8:45 पर और कल सवेरे 10 बजे आप सुनेंगे कार्यक्रम गीत तुम्हारे। NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग सुनिएगा कल दिन में 11:30 पर। शास्त्रीय संगीत में कल दोपहर 12:05 पर पंडित रविशंकर का सितार वादन सुनवाया जाएगा। मिड डे मेलोडी आप सुन सकते हैं कल दोपहर 12:30 पर। कल दोपहर 1:15 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम परिवार जगत। लोकधारा कार्यक्रम में कल दोपहर 1:45 पर गुरदास मान के गाए पंजाबी लोकगीत सुनवाए जाएंगे। नई फिल्मों से ये कार्यक्रम सुनिएगा कल दोपहर 2:30 पर। मेरा सपना उन्नत भारत ये कार्यक्रम आप सुनेंगे कल शाम 5 बजे। कल शाम 5:15 पर होगा युवा श्रोताओं का दैनिक कार्यक्रम युववाणी। किसान भाइयों के दैनिक कार्यक्रम कृषि जगत में कल शाम 6:05 पर कृषि विज्ञान केंद्र बदायूं से कृषि वैज्ञानिक श्री सौरभ दुबे से अंकित कुमार की बातचीत का विषय होगा रासायनिक उर्वरकों के दुष्प्रभाव। विविधा क्रम में कल शाम 6:45 पर डॉक्टर शुभा माहेश्वरी की वार्ता का विषय होगा नई पीढ़ी और साहित्य दूरी या संवाद। अभी आप सुन रहे थे कल प्रसारित होने वाले कुछ प्रमुख कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 7:18 हुए हैं। थोड़ी देर में प्रादेशिक समाचार हम अपने लखनऊ केंद्र से रिले करेंगे। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: हर बैंक के अलग अलग केवाईसी पेपर्स। काश एक चाबी होती।
1: एक चाबी है CKYC ID।
0: CKYC मतलब?
1: बैंक आपके KYC रिकॉर्ड CKYC रजिस्ट्री में अपलोड करता है, जिससे आपको मिलेगा एक यूनिक 14-डिजिट CKYC ID। ये सारे बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में वैलिड है, यानी एक जगह KYC अपडेट तो सब जगह अपडेट।
0: वाह, RBI कहता है
1: KYC सुरक्षित बैंकिंग की ओर पहला कदम।

0: डिजिटल पेमेंट हो रहा भारत में।
1: स्ट्रीट वेंडर से लेकर आपकी गाड़ी के शोरूम तक आपकी सारी पेमेंट सिर्फ एक QR कोड स्कैन करके हो जाती है।
0: UPI के 10 साल डिजिटल, आत्मनिर्भर, बेफिक्र।
2: आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में पीएम स्वनिधि योजना को बताया महिला सशक्तिकरण का माध्यम। गाजियाबाद की बबीता शर्मा की प्रेरक यात्रा का किया उल्लेख। प्रधानमंत्री ने ग्रेटर नोएडा के गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय में मिशन शक्ति सेट को छात्राओं के लिए उपग्रह प्रौद्योगिकी सीखने और नवाचार को बढ़ावा देने का बताया मंच। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लखनऊ छावनी में लगभग 101 करोड़ की विभिन्न विकास परियोजनाओं की रखी आधारशिला। मुख्यमंत्री ने कहा, उत्तर प्रदेश ने 9 वर्ष में सुरक्षा सुशासन की तय की है नई यात्रा। रक्षा मंत्री ने पीएम सेतु उद्योग सम्मेलन को किया संबोधित। कहा, भारत रक्षा क्षेत्र में तेजी से बढ़ रहा है आत्मनिर्भरता की ओर। और प्रदेश में गंगा यमुना सहित कई नदियों के जलस्तर में बढ़ोतरी, प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव कार्य युद्ध स्तर पर जारी। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं शैलेंद्र, और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि विकसित भारत के लिए नशा मुक्त युवा अभियान पूरे देश में तेजी से आगे बढ़ रहा है। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में आज प्रधानमंत्री ने कहा कि बहुत सारे लोग और विशेषकर युवा बड़ी संख्या में नशा मुक्त युवा और नशा मुक्त भारत अभियान का हिस्सा बन रहे हैं। उन्होंने लोगों से नशा मुक्त भारत के लिए प्रभावशाली नारा तैयार करने और युवा संगीतकारों से ऐसे गीत बनाने को कहा जो नशा मुक्त जीवन का संदेश दें।
1: नशा मुक्त भारत के लिए क्या आप कोई पावरफुल स्लोगन बना सकते हैं, क्या हमारे यंग म्यूजिशियंस ऐसे सॉन्ग्स बना सकते हैं जिनमें ड्रग फ्री लाइफ का मैसेज हो, क्या स्टूडेंट्स और थिएटर ग्रुप्स दिल को छू लेने वाले शॉर्ट प्लेज लिख सकते हैं जिनमें ड्रग्स के खतरों के साथ साथ उनसे बाहर निकलने का रास्ता भी हो। हमारे देश में बेहतरीन कंटेंट क्रिएटर्स की कमी नहीं है। मेरा आग्रह है कि वे अलग अलग भाषाओं में ऐसा कंटेंट बनाएं जिससे इस दिशा में समाज को मदद मिले।
2: प्रधानमंत्री ने कहा कि पीएम स्वनिधि योजना के माध्यम से लाखों महिलाओं को नई शक्ति प्राप्त हो रही है।
1: पीएम स्वनिधि योजना के लाभार्थियों में करीब 46% महिलाएं हैं, यानी देश भर में लगभग 35 लाख महिलाएं इस योजना से जुड़कर अपने कारोबार को आगे बढ़ा रही हैं। गाजियाबाद की बबीता शर्मा जी पूजा की सामग्री का एक छोटा सा स्टॉल लगाती थी। मेहनत खूब थी लेकिन कारोबार बढ़ाने के लिए पूंजी की जरूरत थी। पीएम स्वनिधि से उन्हें आर्थिक मदद मिली, कारोबार का विस्तार किया, ग्राहक बढ़े और धीरे धीरे सड़क किनारे का उनका छोटा सा स्टॉल एक दुकान में बदल गया।
2: गाजियाबाद की बबीता शर्मा ने प्रधानमंत्री द्वारा मन की बात कार्यक्रम में उनकी प्रेरक यात्रा का जिक्र करने पर खुशी व्यक्त की है। प्रधानमंत्री ने ग्रेटर नोएडा के गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय से शुरू हुए मिशन शक्ति सेट के दूसरे चरण की सराहना करते हुए कहा कि आज देश की बेटियों के सपनों की उड़ान अंतरिक्ष तक पहुंच रही है।
1: आज हमारी बेटियों के सपनों की उड़ान धरती से निकलकर अंतरिक्ष तक पहुंच रही है और आपको यह जानकर गर्व होगा कि भारत ऐसे सपने देखने वाली दुनिया की हजारों बेटियों को एक साथ जोड़ रहा है। इस प्रयास का नाम है मिशन शक्ति सेट। इसके माध्यम से 108 देशों की 12,000 छात्राओं को सैटेलाइट टेक्नोलॉजी सीखने और इनोवेशन के क्षेत्र में आगे बढ़ने का अवसर मिल रहा है।
2: प्रधानमंत्री ने कहा कि जब किसी जगह को स्वच्छ रखने का संकल्प लोगों का अपना संकल्प बन जाता है तो उससे उस जगह की पहचान पूरी तरह बदल जाती है। उन्होंने प्रदेश के रामपुर जिले के पटवाई गांव के आकाश और रोहन के स्वच्छता प्रयासों का उल्लेख भी किया।
1: उनके आसपास का इलाका गंदगी से भर गया है। बस फिर क्या था, आकाश और रोहन ने कचरे के बैग उठाए और सफाई के लिए निकल पड़े। धीरे धीरे दूसरे युवा भी उनके साथ जुड़ने लगे। एक टीम भी बन गई जिसका नाम है क्लीन अप पटवाई। ये युवा अब तक 4 गंगा घाटों को साफ कर चुके हैं।

0: क्लीन अप पटवाई अभियान की मुहिम चलाने वाले आकाश यादव और उनकी टीम ने प्रधानमंत्री का आभार जताया है और अपनी मुहिम की जानकारी देते हुए लोगों से सहयोग की अपील की है।
1: जगह जगह सार्वजनिक स्थानों पर जाकर साफ सफाई का कार्य हम अपनी टीम के साथ करते हैं। उद्देश्य जो है वो लोगों की मानसिकता बदलना, लोगों को जागरूक करना, प्लास्टिक वेस्ट जो हमारे घर से निकलता है या हम अपना कहीं बाहर जाते हैं ट्रेवल करते हैं तो जो भी चीज हमारे प्लास्टिक वेस्ट निकलता है उसको हम डस्टबिन में ही डालें।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि अगस्त का महीना अपने साथ देशभक्ति के कई रंग लेकर आया है। उन्होंने कहा कि हर घर तिरंगा अभियान ने देशभक्ति की भावना को और मजबूत किया है। ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज लखनऊ छावनी में लगभग 101 करोड़ की लागत की 12 विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखी। इन परियोजनाओं का उद्देश्य लखनऊ छावनी को मॉडल छावनी के रूप में विकसित करना है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री के मार्गदर्शन में प्रदेश ने 9 वर्ष में सुरक्षा सुशासन की नई यात्रा तय की है। आज राजधानी लखनऊ ने पुरानी विरासत के साथ आधुनिक स्मार्ट सिटी के रूप में नई पहचान बनाई है।
2: अब उत्तर प्रदेश भारत की इकोनॉमी का ग्रोथ इंजन के रूप में अपनी भूमिका का निर्वहन कर रहा है। भारत आत्मनिर्भरता में रक्षा सेना के क्षेत्र में भी प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से रक्षा मंत्री जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में 6 डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कॉरिडोर भी उत्तर प्रदेश के अंदर स्थापित हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश आज अपने इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए भी जाना जा रहा है।
0: कार्यक्रम को संबोधित करते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि उत्तर प्रदेश विकास और सुशासन के नए मानदंड स्थापित करता रहेगा। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में विकसित भारत के संकल्प के साथ तेजी से आगे बढ़ रहा है।
3: विकसित भारत का अर्थ है कि जब बच्चों के लिए अच्छी शिक्षा मिले, जब किसी परिवार के घर में साफ पानी पहुंचे, जब किसी नौजवान को खेलने और अपनी प्रतिभा को दिखाने का अवसर मिले और जब किसी दिव्यांग बच्चे को यह महसूस न हो कि वह समाज के पीछे है, तो मैं मानता हूं कि यही सच्चा विकास है। और मेरा मानना है कि विकसित भारत की यात्रा बड़े शहरों से शुरू होकर हर मोहल्ले, हर बस्ती और हर परिवार तक पहुँचनी चाहिए।
0: इस दौरान मुख्यमंत्री और रक्षा मंत्री ने प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम को भी सुना और उसे प्रेरणादायक बताया। मुख्यमंत्री और रक्षा मंत्री ने आज लखनऊ में वीरांगना रानी अवंतीबाई लोधी की भव्य प्रतिमा का अनावरण किया। इस अवसर पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि महान विभूतियों की विरासत को नई पीढ़ी तक पहुँचाना सरकार का संकल्प है। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान महिला पायलटों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ये नए युग की महिलाएं हैं, सरकार उन्हें अवसर और सुरक्षा प्रदान कर रही है। लखनऊ की अपनी 3 दिवसीय यात्रा के तीसरे और अंतिम दिन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पीएम सेतु उद्योग सम्मेलन को भी संबोधित किया। उन्होंने कहा कि बदलते समय के साथ भारत रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है।
3: आज हम डिफेंस सेक्टर में पूर्ण आत्मनिर्भरता की ओर तेजी से बढ़ रहे हैं। हमारा डिफेंस प्रोडक्शन लगातार बढ़ रहा है। आपको जानकर खुशी होगी अब हम लोग 1,80,000 करोड़ के आसपास, हमारा एक्सपोर्ट 600 करोड़ था और आज देश अपने डिफेंस इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम में एक फंडामेंटल ट्रांसफॉर्मेशन इस समय देख रहा है। हम इंडिजिनस डिजाइन को भी प्रोत्साहन दे रहे हैं।
0: केंद्रीय राज्य मंत्री जयंत चौधरी ने आज लखनऊ में कहा कि प्रदेश में रक्षा निर्माण के क्षेत्र में अपार संभावनाएं हैं जिसका लाभ युवाओं को रोजगार के क्षेत्र में मिलेगा। उन्होंने कहा कि देश और प्रदेश के विकास में जाति धर्म और मतभेद को भुलाकर एकता के साथ आगे बढ़ने की जरूरत है। मथुरा में 38वीं क्षेत्रीय हॉकी और फुटबॉल प्रतियोगिता के दूसरे दिन आज हॉकी के अंडर 14 बालक वर्ग में नोएडा और पूरनपुर पीलीभीत की टीमों के बीच हुए मुकाबले में नोएडा ने 2-0 से जीत दर्ज की। वहीं फुटबॉल में अंडर 14 बालक वर्ग में मथुरा और नोएडा की टीमों के बीच हुए मैच में मथुरा ने 4-0 से जीत दर्ज की। 4 दिवसीय यह प्रतियोगिता 1 सितम्बर तक चलेगी। राजधानी लखनऊ सहित प्रदेश के विभिन्न जिलों में आज भी रुक रुक कर बारिश का सिलसिला जारी है। वहीं बारिश और बैराजों से पानी छोड़े जाने के कारण नदियों के जलस्तर में बढ़ोतरी हो रही है। बलिया में गंगा नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। चित्रकूट में मंदाकिनी नदी का जलस्तर बढ़ने के बाद राहत और बचाव कार्य युद्ध स्तर पर जारी हैं। वाराणसी में गंगा और वर्णा नदी के जलस्तर में संभावित वृद्धि को देखते हुए जिला प्रशासन ने 61 बाढ़ राहत शिविर, 21 बाढ़ चौकियां और 198 नावों की व्यवस्था की है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में पीएम स्वनिधि योजना को बताया महिला सशक्तिकरण का माध्यम, गाजियाबाद की बबीता शर्मा की प्रेरक यात्रा का किया उल्लेख। प्रधानमंत्री ने ग्रेटर नोएडा के गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय में मिशन शक्ति सेट को छात्राओं के लिए उपग्रह प्रौद्योगिकी सीखने और नवाचार को बढ़ावा देने का बताया मंच। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लखनऊ छावनी में लगभग 101 करोड़ की विभिन्न विकास परियोजनाओं की रखी आधारशिला। मुख्यमंत्री ने कहा उत्तर प्रदेश ने 9 वर्ष में सुरक्षा सुशासन की तय की है नई यात्रा। रक्षा मंत्री ने पीएम सेतु उद्योग सम्मेलन को किया संबोधित, कहा भारत रक्षा क्षेत्र में तेजी से बढ़ रहा है आत्मनिर्भरता की ओर। और प्रदेश में गंगा यमुना सहित कई नदियों के जलस्तर में बढ़ोतरी, प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव कार्य युद्ध स्तर पर जारी। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
4: आपकी चाय।
5: EMI किराया कैसे मैनेज करूं?
4: एक जुगाड़ है,
5: अच्छा पैसा मिलेगा।
4: कैसे?
5: अपना बैंक डिटेल्स दो, कुछ लोग पैसे भेजेंगे, उनके बताए अकाउंट में ट्रांसफर कर दो, कमीशन मिलेगा।
4: इतना इजी?
5: काहे का इजी, ये तो मनी म्यूल है।
4: इल्लीगल पैसा घुमाते हैं दूसरे के अकाउंट से, अपराध है, जेल हो सकती है।
5: ना भाई ना।
6: अपने बैंक अकाउंट को सेफ रखें, किसी को यूज ना करने दें। RBI कहता है
7: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
8: मेरी बैंक हमेशा मेरे साथ चलती है। सुबह उठती हूँ तो पैसे जमा कर आती है, कस्टमर ज्यादा हो जाते हैं तो पूरा गल्ला संभाल लेती है, आधी रात को भी उठा के बताती है कि मैडम लक्ष्मी फल भंडार का पेमेंट आ गया है, जनधन बैंक खाता क्या मिला, मुझे तो उंगलियों के छोर पर बीमा, पेंशन, DBT सारी बैंकिंग सुविधाएं मिल गई हैं।
9: 12 साल में 59 करोड़ जनधन खाते खुले, जिसमें 56% खाते तो सिर्फ महिलाओं के हैं। PM जनधन योजना के 12 साल, ज्यादा बचत, ज्यादा काम।
10: हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलो हर्ट्ज़ पर। शाम के 7:32 हुए हैं। सुगम संगीत में लीजिए सुनिए विविध कलाकारों के गाए गीत।

0: तुझे कॉलेज का टाइम याद है?
1: अरे कॉलेज की यादें छोड़िए, अब कितनी बातें भूल गया हूँ। सबका बैंक अकाउंट भी याद नहीं है।
2: बैंक अकाउंट पुराना हो तो पता चल सकता है।
1: कहाँ से पता चलेगा?
2: उद्गम से,
0: RBI के उद्गम पोर्टल पे रजिस्टर करके लॉगिन करें और अपने डिटेल्स डालकर 10 साल या उससे पुराने निष्क्रिय खातों को सर्च करें। बैंक से संपर्क करके खाता सक्रिय बनाओ।
3: आज ही सर्च करूंगा।
2: तो आज की चाय तेरी तरफ से।
4: RBI कहता है
5: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

0: सुगम संगीत में अभी आप सुन रहे थे विविध कलाकारों के गाए गीत। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलो हर्ट्ज पर। शाम के 7:50 हुए हैं। अदबी दुनिया कार्यक्रम में कलाम शायर प्रस्तुत कर रहे हैं श्री शाहनवाज आलम।
1: सामयिक निक्रम एक मतला चंद अशार से इब्तदा करता हूं, समाप्त कीजिएगा। कहता हूं कि जंतर मंतर जादू टोना करती हैं, जंतर मंतर जादू टोना करती हैं, उसकी आंखें जाने क्या क्या करती हैं। जंतर मंतर जादू टोना करती हैं, उसकी आंखें जाने क्या क्या करती हैं, जो उसको सुन लेता है खो जाता है, जो उसको सुन लेता है खो जाता है, उसकी बातें आशिक पैदा करती हैं, जो उसको सुन लेता है खो जाता है, उसकी बातें आशिक पैदा करती हैं, ऐसा जिससे आधी रात भी शर्माए, ऐसा जिससे आधी रात भी शर्माए, यार वो जुल्फें खूब अंधेरा करती हैं, ऐसा जिससे आधी रात भी शर्माए, यार वो जुल्फें खूब अंधेरा करती हैं, फूल उसे देखें तो आहें भरते हैं, फूल उसे देखें तो आहें भरते हैं, खुशियां उसके साए का पीछा करती हैं। तुम क्या जानो उसके हुस्न के जलबों को, तुम क्या जानो, तुम क्या जानो, तुम क्या जानो उसके हुस्न के जलबों को, उसके आगे कलियां सजदा करती हैं। तुम क्या जानो उसके हुस्न के जलबों को, उसके आगे कलियां सजदा करती हैं। मैं ये कैसे कह दूं कि मैं तन्हा हूं, मैं ये कैसे कह दूं कि मैं तन्हा हूं, उसकी यादें अब तक पीछा करती हैं। मैं ये कैसे कह दूं कि मैं तन्हा हूं, उसकी यादें अब तक पीछा करती हैं। जंतर मंतर जादू टोना करती हैं, उसकी आंखें जाने क्या क्या करती हैं। आइए सामाईन हजरात, एक मतला चंद अशार तरन्नुम के साथ पेश करता हूं, समाप्त कीजिएगा।

अदबी दुनिया कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे श्री शाहनवाज आलम का कलाम शायर। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलो हर्ट्ज पर रात्रि के 8 बजे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम गीत संध्या। कार्यक्रम का पहला गीत है अनुराधा पौडवाल और सुरेश वाडेकर की युगल आवाजों में, जिसे हमने लिया है मेहरबान फिल्म से। गीतकार माया गोविंद और संगीत दिया है दिलीप सेन समीर सेन ने।

0: कॉलेज का टाइम याद है?
1: अरे कॉलेज की यादें छोड़िए, कितनी बातें भूल गया हूँ। तब का बैंक अकाउंट भी याद नहीं है।
0: बैंक अकाउंट पुराना हो तो पता चल सकता है?
1: कहाँ से पता चलेगा?
0: उद्गम से, RBI के उद्गम पोर्टल पे रजिस्टर करके लॉग इन करें और अपने डिटेल्स डालकर 10 साल या उससे पुराने निष्क्रिय खातों को सर्च करें। बैंक से संपर्क करके खाता सक्रिय बनाओ।
2: आज ही सर्च करूंगा।
0: तो आज की चाय तेरी तरफ से।
3: RBI कहता है,
4: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
5: कार्यक्रम का अगला गीत मोहम्मद रफी और आशा भोसले की युगल आवाजों में हम किसी से कम नहीं फिल्म से। गीतकार मजरूह सुल्तानपुरी और संगीत दिया है RD बर्मन ने।

0: अपने व्यापार को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाना चाहते हैं?
1: तो इंतजार किस बात का,
0: अभी बुक कराइए अपना विज्ञापन आकाशवाणी नजीबाबाद के संग।
1: विज्ञापन बुकिंग कराने के लिए आज ही संपर्क करें।
0: हमारा मोबाइल नंबर है 8865845809।
1: नंबर एक बार फिर सुन लीजिए 8865845809।
0: और हमारा ईमेल आईडी है
1: akashwaninajibabad@gmail.com।
0: तो देर किस बात की, उठाइए अपना फोन और बुक कराइए अपना विज्ञापन
1: आकाशवाणी नजीबाबाद के संग।
2: कार्यक्रम का अगला गीत है आशा भोसले और महेंद्र कपूर की युगल आवाजों में, जिसे हमने लिया है बगावत फिल्म से। गीत के बोल लिखे हैं आनंद बख्शी ने और इसे संगीत से सजाया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

हमराज फिल्म में अभी आपने महेंद्र कपूर को सुना। गीत के बोल लिखे थे राजेंद्र कृष्णा ने और संगीत दिया था कल्याण जी आनंद जी ने। क्षमा कीजिए, गीत के बोल लिखे थे साहिर लुधियानवी ने और संगीत दिया था रवि ने। कार्यक्रम का अंतिम गीत महेंद्र कपूर और साथियों की आवाजों में गोपी फिल्म से। गीतकार राजेंद्र कृष्णा और संगीत दिया है कल्याण जी आनंद जी ने।

गोपी फिल्म में महेंद्र कपूर और साथियों के गाए इस गीत के साथ ही कार्यक्रम गीत संध्या अब समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलोहर्ट्ज़ पर रात्रि के 8:30 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम एक ही फिल्म से। एक ही फिल्म से कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे चितचोर फिल्म से कुछ गीत। कार्यक्रम का पहला गीत है येसुदास की आवाज में।

एक ही फिल्म से कार्यक्रम में आप सुन रहे हैं चितचोर फिल्म से कुछ गीत। कार्यक्रम का अगला गीत है येसुदास और हेमलता की युगल आवाजों में।

0: एक ही फिल्म से कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे चितचोर फिल्म से कुछ गीत। गायक कलाकार थे येसुदास और हेमलता। गीतकार और संगीतकार थे रविंद्र जैन। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलो हर्ट्ज पर। रात्रि के 8:45 होने को है। थोड़ी देर में आप समाचार सुनेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं सर फिरोजी। भारत और उज्बेकिस्तान ने द्विपक्षीय संबंधों को व्यापक रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाया। यूरेनियम आपूर्ति के लिए दीर्घकालिक समझौते पर सहमति जताई और 2030 तक $5 अरब के व्यापार का लक्ष्य निर्धारित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उज्बेकिस्तान का सर्वोच्च राजकीय सम्मान प्रदान किया गया। श्री मोदी 26वें शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए किर्गिस्तान के बिश्केक पहुंचे। प्रधानमंत्री ने मन की बात कार्यक्रम में मादक पदार्थों के सेवन के खतरों के प्रति आगाह किया। महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण, अंतरिक्ष उद्योग में लड़कियों की भागीदारी और कृषि नवाचार को सराहा। नेपाल ने भोटे कोशी नदी के किनारे बाढ़ की नई चेतावनी जारी की। मृतकों की संख्या 780 से अधिक हुई। अब तक 149 भारतीयों को बचाया गया। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने $1.5 लाख की आपातकालीन सहायता जारी की। और पुरुष हॉकी विश्व कप फाइनल में जर्मनी और स्पेन आमने सामने। अब समाचार विस्तार से। भारत और उज्बेकिस्तान ने आपसी संबंधों को व्यापक रणनीतिक साझेदारी तक बढ़ाने का फैसला किया है। उज्बेकिस्तान भारत को यूरेनियम की दीर्घकालिक आपूर्ति के लिए रूपरेखा तय करने और दुर्लभ खनिजों के खनन स्थलों पर चर्चा करने के लिए भी सहमत हुआ है। दोनों देशों ने आज खनन, आयुर्वेद, पर्यटन, आर्थिक और वित्तीय संवाद, व्यापक रणनीतिक साझेदारी, उच्च शिक्षा और पर्यावरण सहित विभिन्न क्षेत्रों में कई समझौते किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति शफकत मिर्जियोयेव के बीच द्विपक्षीय वार्ता के दौरान उज्बेकिस्तान में पढ़ाई के लिए जाने वाले भारतीय युवाओं के हित में और सांस्कृतिक आदान प्रदान कार्यक्रमों के लिए कई उपायों पर चर्चा हुई। ताशकंद विश्वविद्यालय में संस्कृत की चेयर स्थापित करने के साथ हिंदी के लिए लाल बहादुर शास्त्री के नाम से 100 छात्र वृत्तियों की घोषणा की गई। भारत ने अराल सागर क्षेत्र में वनीकरण के लिए $10 लाख का अनुदान देने का फैसला किया है। उज्बेकिस्तान में UPI के इस्तेमाल के लिए भी समझौता किया गया। प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देश आतंकवाद और अलगाववाद कतई बर्दाश्त न करने की नीति पर अमल करते हैं।
2: दोनों देशों के बीच करीबी रक्षा और सुरक्षा सहयोग हमारे गहरे आपसी विश्वास को दर्शाता है। आने वाले समय में हम दोनों देशों की डिफेंस इंडस्ट्रीज के बीच डायरेक्ट लिंकेज, को प्रोडक्शन और को डेवलपमेंट को बढ़ावा देंगे। हमारा मानना है कि टेररिज्म, एक्सट्रीमिज्म और सेपरेटिज्म पूरे क्षेत्र के लिए गंभीर चुनौती है। इनके विरुद्ध जीरो टॉलरेंस हमारा साझा संकल्प रहा है और आगे भी रहेगा।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देशों ने आपसी संबंधों को व्यापक रणनीतिक साझेदारी तक बढ़ाने का फैसला किया है।
2: इस वर्ष हमारी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के 15 साल हो रहे हैं। इस विशेष अवसर पर हमने संबंधों को कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का दर्जा देने का निर्णय लिया है। आज हमने हमारी साझेदारी के इस नए स्वरूप में तेज गति और ठोस परिणामों के साथ आगे बढ़ने का एम्बिशियस एजेंडा तैयार किया है। हमारा द्विपक्षीय व्यापार $1 बिलियन पार कर चुका है। अब हमने 2030 तक $5 बिलियन व्यापार का लक्ष्य रखा है।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देश खेलों और हिंदी को प्रोत्साहन देने के क्षेत्र में सहयोग के लिए मिलकर काम करेंगे।
2: दोनों देशों के युवाओं, विशेषकर स्टूडेंट्स और प्रोफेशनल्स के बीच एक्सचेंज को बढ़ावा देना हमारी उच्च प्राथमिकता है। दोनों देशों के बीच टूरिज्म बढ़ाने के लिए आज प्रोग्राम ऑफ कोऑपरेशन पर सहमति बनी है। मुझे खुशी है कि उज्बेकिस्तान में हिंदी भाषा को प्रमोट करने के लिए आज हम स्कॉलरशिप की घोषणा करने जा रहे हैं।
1: प्रधानमंत्री मोदी को उज्बेकिस्तान का सर्वोच्च सम्मान ओली दराजली दोस्तलिक ऑर्डर भी प्रदान किया गया। ये विदेशी नेताओं को प्रदान किया जाने वाला उज्बेकिस्तान का सर्वोच्च सम्मान है। श्री मोदी ने इस सम्मान को सभी भारतीयों को समर्पित किया और कहा कि ये दोनों सभ्यताओं के बीच चिरस्थायी मैत्री का प्रतीक है। इसके बाद श्री मोदी ने ताशकंद में पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री ने ताशकंद स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ ओरिएंटल स्टडीज में महात्मा गांधी सेंटर का दौरा किया। श्री मोदी ने भारतीय विशेषज्ञों और छात्रों से बातचीत भी की। उज्बेकिस्तान की सफल यात्रा के बाद श्री मोदी किर्गिस्तान की 2 दिन की यात्रा के लिए बिश्केक पहुंच गए हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री शंघाई सहयोग संगठन के शिखर सम्मेलन में शामिल होने के अलावा कई सदस्य देशों के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें करेंगे।
3: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिश्केक में शंघाई सहयोग संगठन के 26वें शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। यह सम्मेलन शंघाई सहयोग संगठन की स्थापना की 25वीं वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित किया जा रहा है। भारत वर्ष 2017 से SCO का पूर्ण सदस्य है। प्रधानमंत्री शिखर सम्मेलन को संबोधित करेंगे। वे संगठन के मंच पर सुरक्षा, संपर्क और अवसर के क्षेत्र में भारत की प्राथमिकताओं को रेखांकित करेंगे। प्रधानमंत्री शिखर सम्मेलन से इतर SCO के सदस्य देशों के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें भी करेंगे। अपनी बिश्केक यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री श्री मोदी 6वें विश्व नॉमेड खेलों के उद्घाटन समारोह में भी शामिल होंगे। यह आयोजन मध्य एशिया की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और परंपराओं का उत्सव है। विकल्प शुक्ला, आकाशवाणी समाचार, बिश्केक।
1: कई केंद्रीय मंत्रियों ने उज्बेकिस्तान का सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान मिलने पर प्रधानमंत्री मोदी को बधाई दी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि ये प्रतिष्ठित सम्मान प्रधानमंत्री के दूरदर्शी नेतृत्व और भारत तथा उज्बेकिस्तान के बीच चिरस्थायी मैत्री को प्रगाढ़ करने के सतत प्रयासों का प्रमाण है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि श्री मोदी के कूटनीतिक सिद्धांतों से नए मार्ग खुल रहे हैं और वे ग्लोबल साउथ की आवाज बन रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा कि श्री मोदी का ये 36वां वैश्विक सम्मान है। इससे पता चलता है कि उनके नेतृत्व को दुनिया भर में सराहना मिल रही है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
4: आपको हर खबर से रखे अपडेट expert@AIRNewsHindi और पब्लिक पर @AIRNewsAlerts को फॉलो करें।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि विकसित भारत के लिए नशा मुक्त युवा अभियान पूरे देश में तेजी से आगे बढ़ रहा है। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में आज श्री मोदी ने कहा कि बड़ी संख्या में युवा इस अभियान में शामिल हो रहे हैं। प्रधानमंत्री ने लोगों से नशा मुक्त भारत के लिए प्रभावशाली नारा, गीत और संदेश तैयार करने की अपील की।
2: नशा मुक्त भारत के लिए क्या आप कोई पावरफुल स्लोगन बना सकते हैं? क्या हमारे यंग म्यूजिशियंस ऐसे सॉन्ग्स बना सकते हैं जिनमें ड्रग फ्री लाइफ का मैसेज हो? क्या स्टूडेंट्स और थिएटर ग्रुप्स दिल को छू लेने वाले शॉर्ट प्लेज लिख सकते हैं जिनमें ड्रग्स के खतरों के साथ साथ उनसे बाहर निकलने का रास्ता भी हो? हमारे देश में बेहतरीन कंटेंट क्रिएटर्स की कमी नहीं है। मेरा आग्रह है कि वे अलग अलग भाषाओं में ऐसा कंटेंट बनाएं जिससे इस दिशा में समाज को मदद मिले।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि पीएम स्वनिधि योजना के माध्यम से 35 लाख महिलाओं को नई शक्ति प्राप्त हो रही है।
2: पीएम स्वनिधि योजना की लाभार्थियों में करीब 46% महिलाएं हैं, यानी देश भर में लगभग 35 लाख महिलाएं इस योजना से जुड़कर अपने कारोबार को आगे बढ़ा रही हैं। गाजियाबाद की बबीता शर्मा जी पूजा की सामग्री का एक छोटा सा स्टॉल लगाती थी। मेहनत खूब थी लेकिन कारोबार बढ़ाने के लिए पूंजी की जरूरत थी। पीएम स्वनिधि से उन्हें आर्थिक मदद मिली, कारोबार का विस्तार किया, ग्राहक बढ़े और धीरे धीरे सड़क किनारे का उनका छोटा सा स्टॉल एक दुकान में बदल गया।
1: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आज मिशन शक्ति सेट के माध्यम से हजारों देश की बेटियां अंतरिक्ष तक पहुंच रही हैं।
2: आज हमारी बेटियों के सपनों की उड़ान धरती से निकलकर अंतरिक्ष तक पहुंच रही है और आपको यह जानकर गर्व होगा कि भारत ऐसे सपने देखने वाली दुनिया की हजारों बेटियों को एक साथ जोड़ रहा है। इस प्रयास का नाम है मिशन शक्ति सेट। इसके माध्यम से 108 देशों की 12,000 छात्राओं को सैटेलाइट टेक्नोलॉजी सीखने और इनोवेशन के क्षेत्र में आगे बढ़ने का अवसर मिल रहा है।
1: श्री मोदी ने आंध्र प्रदेश में एवोकाडो की खेती करने वाले कडप्पा के वरदराज का उल्लेख किया। प्रधानमंत्री ने लोगों से त्योहारों के इस मौसम में वोकल फॉर लोकल का समर्थन करने का आग्रह किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता हासिल करने के लिए तेजी से आगे बढ़ रहा है। लखनऊ में पीएम सेतु इंडस्ट्री कॉन्क्लेव में उन्होंने कहा कि देश अपनी रक्षा औद्योगिक पारिस्थितिकी में बुनियादी कायाकल्प का साक्षी बन रहा है।
5: आज हम डिफेंस सेक्टर में पूर्ण आत्मनिर्भरता की ओर तेजी से बढ़ रहे हैं। हमारा डिफेंस प्रोडक्शन लगातार बढ़ रहा है। जब मैं मिनिस्टर बना था डिफेंस प्रोडक्शन अप्रोक्सीमेटली 46,000 करोड़ था। आपको जानकर खुशी होगी अब हम लोग 1,80,000 करोड़ के आसपास। हमारा एक्सपोर्ट 600 करोड़ था। आज हमारा एक्सपोर्ट अप्रोक्सीमेटली 40,000 करोड़ तक पहुंच गया है। हम इंडिजिनस डिजाइन को भी प्रोत्साहन दे रहे हैं, डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को मजबूत कर रहे हैं और प्राइवेट सेक्टर तथा एमएसएमई की भागीदारी बढ़ा रहे हैं।
1: वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने देश की सॉफ्ट पावर, वैश्विक समझ और द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ावा देने वाली दुर्जय शक्ति के रूप में प्रवासी भारतीय समुदाय की भूमिका की सराहना की है। अमेरिका के शिकागो में वाइब्रेंट भारतीय समुदाय कार्यक्रम में वित्त मंत्री ने प्रमुख बाजार के रूप में भारत की क्षमता पर बल देते हुए कहा कि देश स्वायत्त रक्षा प्रणालियों के विकास, परीक्षण और विनिर्माण का वैश्विक केंद्र है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं।
4: चलते फिरते खबरों से जुड़े रहिए। expert@airnewshindi को फॉलो करें और पीबी शब्द पर आकाशवाणी समाचार सुने।
1: ये आकाशवाणी है। नेपाल में अचानक आई बाढ़ से मरने

0: पहुंचे हैं। 900 भारतीय नागरिक चीन में सुरक्षित है। पेकिंग में भारतीय दूतावास उनसे संपर्क में है। भारत से आज 11 टन राहत सामग्री लेकर चौथी उड़ान काठमांडू पहुंची। इससे पहले भारत 57 टन से अधिक आपातकालीन राहत सामग्री नेपाल भेज चुका है। इस बीच भारत से भेजी गई विशेष सुरंग बचाव टीम ने आज नेपाली सेना की टीम के साथ मिलकर चिलिमे और लांगटांग क्षेत्र की जल विद्युत सुरंगों में खोज और बचाव अभियान चलाया। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने नेपाल में आई भीषण बाढ़ से प्रभावित लोगों को तत्काल स्वास्थ्य सेवाएं और जरूरी राहत पहुंचाने के लिए दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्रीय स्वास्थ्य आपात कोष से 150,000 अमरीकी डॉलर की वित्तीय सहायता प्रदान की है। मणिपुर के मुख्यमंत्री युमनाम खेमचंद सिंह ने राज्य में समाज के सभी वर्गों से बंद या ब्लॉकेड नहीं करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि अपनी मांगे मनवाने के लिए इस तरह की गतिविधियों से कभी कभी अवांछित हिंसक घटनाएं हो जाती हैं। बेल्जियम में पुरुष हॉकी विश्व कप का फाइनल मुकाबला वर्तमान चैंपियन जर्मनी और स्पेन के बीच जारी है। दो क्वार्टर की समाप्ति तक मुकाबला गोल रहित बराबरी पर है। इससे पहले आज तीसरे स्थान के लिए मैच में अर्जेंटीना ने नीदरलैंड्स को 2-1 से हरा दिया। और एशिया कप महिला T20 क्रिकेट में भारत और थाईलैंड के बीच दुबई में मुकाबला जारी है। भारत ने ताजा समाचार मिलने तक 14वें ओवर में 5 विकेट पर 116 रन बना लिए हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत और उज्बेकिस्तान ने द्विपक्षीय संबंधों को व्यापक रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाया। यूरेनियम आपूर्ति के लिए दीर्घकालिक समझौते पर सहमति जताई और 2030 तक 5 अरब डॉलर के व्यापार का लक्ष्य निर्धारित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उज्बेकिस्तान का सर्वोच्च राजकीय सम्मान प्रदान किया गया। श्री मोदी 26वें शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए किर्गिस्तान के बिश्केक पहुंचे। प्रधानमंत्री ने मन की बात कार्यक्रम में मादक पदार्थों के सेवन के खतरों के प्रति आगाह किया। महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण, अंतरिक्ष उद्योग में लड़कियों की भागीदारी और कृषि नवाचार को सराहा। और पुरुष हॉकी विश्व कप फाइनल में जर्मनी और स्पेन आमने सामने। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम निशित कुमार विद द न्यूज एट 9. The headlines. India and Uzbekistan elevate bilateral ties to comprehensive strategic partnership, seal long-term uranium supply pact and set $5 billion trade target by 2030. Prime Minister Narendra Modi conferred Uzbekistan's highest state honor, reaches Kyrgyz Republic to take part in 26th SCO summit at Bishkek. Prime Minister Modi warns of perils of drug abuse in Mann Ki Baat program, celebrates women's economic empowerment, girls entering space industry and agricultural innovation. Nepal issues fresh flood alert along Bhote Koshi River. 149 Indians rescued so far as death toll crosses 780. WHO releases $150,000 emergency aid. And in men's hockey, Germany and Spain locking horns for coveted World Cup title in Belgium. And now the news in detail. India and Uzbekistan today decided to elevate their bilateral relationship to comprehensive strategic partnership. The two countries have also agreed to establish a long-term arrangement for the supply of uranium from Uzbekistan to India. Both sides have also set a target of increasing annual bilateral trade to $5 billion by 2030. The decisions were taken following delegation-level talks between Prime Minister Narendra Modi and Uzbekistan President Shavkat Mirziyoyev in Tashkent. The two leaders witnessed the exchange of 11 memoranda of understandings aimed at expanding bilateral cooperation across key sectors, including mining, culture, education, tourism, economic and financial dialogue, and Ayurveda. In its remarks during the talks, Prime Minister Modi said a stronger India-Uzbekistan partnership would be a powerful force for peace, progress, and prosperity in Central Asia.
2: इस वर्ष हमारी strategic partnership के 15 साल हो रहे हैं। इस विशेष अवसर पर हमने संबंधों को कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का दर्जा देने का निर्णय

0: दिया है। आज हमने हमारी साझेदारी के इस नए स्वरूप में तेज गति और ठोस परिणामों के साथ आगे बढ़ने का एम्बिशियस एजेंडा तैयार किया है। हमारा द्विपक्षीय व्यापार $1 बिलियन पार कर चुका है। अब हमने 2030 तक $5 बिलियन व्यापार का लक्ष्य रखा है। इसके लिए हम मार्केट एक्सेस, कनेक्टिविटी, बैंकिंग और पेमेंट जैसे जुड़े विषयों पर व्यवस्थागत रूप से आगे बढ़ेंगे।
1: Later, at a joint press conference with the Uzbekistan president following the talks, Prime Minister Modi said, maintaining a zero-tolerance policy towards terrorism, extremism and separatism will remain their shared resolve.
0: दोनों देशों के बीच करीबी रक्षा और सुरक्षा सहयोग हमारे गहरे आपसी विश्वास को दर्शाता है। आने वाले समय में हम दोनों देशों की डिफेंस इंडस्ट्री के बीच डायरेक्ट लिंकेज, को प्रोडक्शन और को डेवलपमेंट को बढ़ावा देंगे। हमारा मानना है कि टेररिज्म, एक्सट्रीमिज्म और सेपरेटिज्म पूरे क्षेत्र के लिए गंभीर चुनौती हैं। इनके विरुद्ध जीरो टॉलरेंस हमारा साझा संकल्प रहा है और आगे भी रहेगा।
1: Mr. Modi said India and Uzbekistan will jointly organize a business summit involving business leaders from both the countries.
0: दोनों पक्ष मिलकर एक बिजनेस समिट का आयोजन करेंगे जिसमें दोनों देशों के बिजनेस लीडर्स शामिल हो। यूरेनियम की सप्लाई के लिए दोनों पक्ष लॉन्ग टर्म व्यवस्था बनाएंगे। आज हम 3 सिस्टर सिटी और सिस्टर स्टेट अरेंजमेंट कर रहे हैं। हमें इनका पूरा पोटेंशियल रियलाइज करने के लिए रोडमैप बनाना चाहिए।
1: प्राइम मिनिस्टर मोदी सेड द टू कंट्रीज विल आल्सो सेट अप कोऑपरेशन इन द फील्ड ऑफ स्पोर्ट्स।
0: स्पोर्ट्स भी हमारे सहयोग के महत्वपूर्ण आयाम के रूप में उभर रहा है। पिछले वर्ष गोवा में 20 वर्षीय उज्बेक ग्रैंड मास्टर सिंदारोव ने वर्ल्ड कप जीता। अब नवंबर में उनका मुकाबला भारत के 20 वर्षीय चेस चैंपियन गुकेश के साथ होने वाला है। एक बिसात पर जब ये दो युवा सितारे आमने सामने होंगे तो जाहिर है इस मुकाबले पर पूरी दुनिया की नजर होगी।
1: Mr. Modi announced 100 Lal Bahadur Shastri scholarships for Uzbek students to promote the Hindi language in the Central Asian country, along with the establishment of a Sanskrit chair at Tashkent State University of Oriental Studies. India has pledged $1 million for afforestation in the Aral Sea region. The two sides also agreed on an arrangement allowing Indian UPI apps to scan Uzbekistan's national UZQR codes for merchant payments. A letter of intent was also signed for the restoration and conservation of the Buddhist sites of Fayaz Tepa and Kara Tepa in Uzbekistan. On the occasion, Prime Minister Modi was

0: आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं कौनैन हैदर। भारत और उज्बेकिस्तान अपने बाहमी ताल्लुकात को जामे स्ट्रेटेजिक साझेदारी तक लेकर गए। दोनों मुल्कों ने तवील मुद्दती यूरेनियम सप्लाई मुआहदे पर दस्तखत किए और 2030 तक $5 अरब की दो तरफा तिजारत का हदफ मुकर्रर किया। वजीर आजम नरेंद्र मोदी को उज्बेकिस्तान के आला तरीन सरकारी एजाज से नवाजा गया है। जनाब मोदी बिश्केक में शंघाई तआवुन तंजीम SCO के 26वें सरबराह इजलास में शिरकत के लिए जमहूरिया किर्गिज पहुंच गए हैं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने मन की बात प्रोग्राम में मुनशिया की लानत से खबरदार किया। उन्होंने खवातीन की मुआशी खुद मुख्तारी, खलाई सनत में लड़कियों की शमूलियत और जरिए शोबे में जिद्दत तराजी को सराहा। नेपाल ने भोटेकोशी दरिया से मुत्तसिल इलाकों में सैलाब का ताजा अलर्ट जारी किया है। अब तक 149 भारतीयों को बचाया जा चुका है। हलाकतों की तादाद बढ़कर 781 हो गई है। आलमी इदारे सेहत WHO ने $150,000 की हंगामी इमदाद जारी की है। और मर्दों की हॉकी में बेल्जियम में वर्ल्ड कप का फाइनल दिफाई चैंपियन जर्मनी और स्पेन के दरमियान खेला जा रहा है। अब खबरें तफसील से। भारत और उज्बेकिस्तान ने आज अपने ताल्लुकात को जामे कलीदी शराकत दारी की सतह पर ले जाने का ऐलान किया है। दोनों मुल्कों ने सिविल न्यूक्लियाई तवानाई के शोबे में बाहमी तआवुन के हिस्से के तौर पर उज्बेकिस्तान से भारत को यूरेनियम की सप्लाई के लिए एक तवील मुद्दती इंतजाम के बारे में भी इत्तफाक किया है।
1: दोनों पक्ष मिलकर एक बिजनेस समिट का आयोजन करेंगे जिसमें दोनों देशों के बिजनेस लीडर्स शामिल।

0: यूरेनियम की सप्लाई के लिए दोनों पक्ष लॉन्ग टर्म व्यवस्था बनाएंगे। आज हम तीन सिस्टर सिटी और सिस्टर स्टेट अरेंजमेंट कर रहे हैं। हमें इनका पूरा पोटेंशियल रियलाइज करने के लिए रोड मैप बनाना चाहिए।
1: नायाब मादनियात की कानकनी के लिए मुमकिन मकामात के बारे में भी तबादले ख्याल किया गया। दोनों मुल्कों ने साल 2030 तक दो तरफा तिजारत को $5 अरब तक बढ़ाने पर इत्तफाक किया है। वजीरे आजम नरेंद्र मोदी और उज्बेकिस्तान के सदर शौकत मिर्ज़ियोयेव के दरमियान वफ्त की सतह की बातचीत के बाद ये फैसले किए गए हैं। दोनों रहनुमाओं ने 11 मुफाहमत नामों का तबादला किया, जिनका मकसद कानकनी, आयुर्वेद, सियाहत, सकाफत, इक्तसादी और मालियाती मुज़ाकरात और तालीम समेत अहम शोबों में दो तरफा तआवुन को बढ़ाना है। मुज़ाकरात के दौरान अपने बयान में जनाब मोदी ने कहा कि भारत उज्बेकिस्तान मजबूत शराकत दारी वस्ती एशिया में अमन, तरक्की और खुशहाली के लिए एक ताकतवर मुहर्रिक होगी।
0: इस वर्ष हमारी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के 15 साल हो रहे हैं। इस विशेष अवसर पर हमने संबंधों को कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का दर्जा देने का निर्णय लिया है। आज हमने हमारी साझेदारी के इस नए स्वरूप में तेज गति और ठोस परिणामों के साथ आगे बढ़ने का एम्बिशियस एजेंडा तैयार किया है। हमारा द्विपक्षीय व्यापार $1 बिलियन पार कर चुका है। अब हमने 2030 तक $5 बिलियन व्यापार का लक्ष्य रखा है। इसके लिए हम मार्केट एक्सेस, कनेक्टिविटी, बैंकिंग और पेमेंट जैसे जुड़े विषयों पर व्यवस्थागत रूप से आगे बढ़ेंगे।
1: मुज़ाकरात के बाद उज़्बेकिस्तान के सदर के साथ एक मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में जनाब मोदी ने कहा कि दहशतगर्दी, इंतहा पसंदी और अलहदगी पसंदी खिदे को दरपेश संगीन चैलेंजेस हैं। उन्होंने ये भी कहा कि इन खतरात को कतई बर्दाश्त न करने की पॉलिसी एक मुश्तरका अज़्म होगी।
0: दोनों देशों के बीच करीबी रक्षा और सुरक्षा सहयोग हमारे गहरे आपसी विश्वास को दर्शाता है। आने वाले समय में हम दोनों देशों की डिफेंस इंडस्ट्रीज के बीच डायरेक्ट लिंकेज, को प्रोडक्शन और को डेवलपमेंट को बढ़ावा देंगे। हमारा मानना है कि टेररिज्म, एक्सट्रीमिज्म और सेपरेटिज्म पूरे क्षेत्र के लिए गंभीर चुनौती है। इनके विरुद्ध जीरो टॉलरेंस हमारा साझा संकल्प रहा है और आगे भी रहेगा।
1: वजीर आजम मोदी ने कहा कि भारत और उज्बेकिस्तान दोनों मुल्कों के कारोबारी रहनुमाओं की एक कारोबारी समिट का मुश्तरका तौर पर इनेकाद करेंगे। वजीर आजम मोदी ने कहा कि दोनों ममालिक खेलों से मुतालिक तआवुन को भी मजीद बढ़ाएंगे।
0: स्पोर्ट भी हमारे सहयोग के महत्वपूर्ण आयाम के रूप में उभर रहा है। पिछले वर्ष गोवा में 20 वर्षीय उज्बेक ग्रैंड मास्टर सिंदारोव ने वर्ल्ड कप जीता। अब नवंबर में उनका मुकाबला भारत के 20 वर्षीय चेस चैंपियन गुकेश के साथ होने वाला है। एक बिसात पर जब ये दो युवा सितारे आमने सामने होंगे तो जाहिर है इस मुकाबले पर पूरी दुनिया की नजर होगी।
1: जनाब मोदी ने उज्बेकिस्तान के तलबा के लिए 100 लाल बहादुर शास्त्री स्कॉलरशिप का ऐलान किया ताकि इस वस्ती एशियाई मुल्क में हिंदी जबान को फरोग दिया जा सके। उन्होंने ताशकंद स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ ओरिएंटल स्टडीज में संस्कृत चेयर कायम करने का भी ऐलान किया। इस मौके पर जनाब मोदी को सदर शौकत मिर्ज़ियोयेव ने उज्बेकिस्तान के आला तरीन सरकारी एजाज ऑर्डर ऑफ ओली दर्जली दोस्त लीग से सरफराज किया गया। वजीर दिफा राजनाथ सिंह, वजीर दाखिला अमित शाह, वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर और वजीर खजाना निर्मला सीतारमन समेत कई मरकजी वजीरों ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी को उज्बेकिस्तान के आला तरीन सरकारी एजाज से सरफराज किए जाने पर मुबारकबाद दी है। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने कहा कि ये बावकार एजाज वजीर आजम नरेंद्र मोदी की दूरअंदेश क्यादत और भारत और उज्बेकिस्तान के दरमियान देरीना दोस्ती को मजीद मुस्तहकम करने के लिए उनकी मुस्तकिल कोशिशों का एतराफ है। वजीर दाखिला अमित शाह ने इसे हर भारतीय के लिए फख्र का अजीम लम्हा करार देते हुए कहा कि मोदी हुकूमत की सिफारती पॉलिसी नई सरहदें तय कर रही है, आलमी खित्ते जुनूब की आवाज को मजबूत बना रही है और अक्वामे आलम के दरमियान ताल्लुकात मुस्तहकम करके इंसानियत की फलाह बहबूद के भारत के तहजीबी मकासद को आगे बढ़ा रही है। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि ये एजाज वजीर आजम नरेंद्र मोदी की दोनों ममालिक के दरमियान दोस्ती को गहरा करने की मुस्तकिल कोशिशों का एतराफ है। वजीर खजाना निर्मला सीतारमन ने कहा कि यह एजाज वजीर आजम नरेंद्र मोदी की दोनों ममालिक के ताल्लुकात को मजबूत बनाने की कोशिशों और भारत के बढ़ते हुए आलमी रुतबे की अक्कासी करता है। सेहत और खानदानी बहबूद के मरकजी वजीर जगत प्रकाश नड्डा ने कहा कि 140 करोड़ भारतीयों के लिए फख्र का लम्हा है और भारत और उज्बेकिस्तान के दरमियान पायदार दोस्ती की एक रोशन मिसाल है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी अब से कुछ देर पहले किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक पहुंच गए हैं। बिश्केक के अपने दो रोजा दौरे के दौरान वजीर आजम शंघाई तआवुन तंजीम SCO के रुकन ममालिक के रहनुमाओं के साथ दो तरफा मीटिंगें करेंगे। वो यकम सितंबर को SCO के 26वें सरबराह इजलास में भी शिरकत करेंगे। मजीद तफसील हमारे नामा निगार से।
2: वजीर आजम नरेंद्र मोदी बिश्केक में शंघाई तआवुन तंजीम के 26वें सरबराह इजलास में शिरकत करेंगे। ये इजलास शंघाई तआवुन तंजीम की 25वीं सालगिरह के मौके पर हो रही है। भारत 2017 से इस तंजीम का रुकन है। वजीर आजम इस इजलास से खिताब करेंगे। इस दौरान वो सिक्योरिटी, कनेक्टिविटी और मौके के सिलसिले में भारत की तरजीहात को उजागर करेंगे। वजीर आजम इजलास के मौके पर SCO रहनुमाओं के साथ दो तरफा मीटिंगें भी करेंगे। अपने दौरे के दौरान वजीर आजम छठे वर्ल्ड नॉम्ड गेम्स की इफ्तिताही तकरीब में भी शिरकत करेंगे, जो वस्ती एशिया के मालामाल सकाफती विरसे का जश्न मनाने के लिए मुनक्कद किए जा रहे हैं। बिश्केक से विकल्प शुक्ला की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं मोहम्मद इमरान।
1: ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आज मन की बात प्रोग्राम में लोगों से अपने ख्यालात का इजहार किया। अपने खिताब में उन्होंने मुनशियात के इस्तेमाल के समाजी नुकसानात के खिलाफ सख्त इंतबाह दिया और विकसित भारत के लिए नशा मुक्त युवा मुहिम को उजागर किया। उन्होंने पीएम स्वनिधि स्कीम के जरिए खवातीन की क्यादत में माशी खुदमुख्तारी पर जोर दिया और खलाई सनत जैसे जदीद शोबों में खवातीन के लिए बढ़ते हुए मौके की तारीफ की। वजीर आजम ने ज़राअत और डिजिटल टेक्नोलॉजी में अवामी सतह पर होने वाली अहम इख्तराअत की भी तारीफ की। उन्होंने कहा कि विकसित भारत के लिए नशा मुक्त युवा मुहिम मुल्क भर में रफ्तार पकड़ रही है और मुनशियात से पाक नौजवान और मुनशियात से पाक भारत का मकसद महज एक रस्मी बात नहीं है, बल्कि इस मुहिम से बड़ी तादाद में नौजवान जुड़ रहे हैं।
3: नशा मुक्त भारत के लिए क्या आप कोई पावरफुल स्लोगन बना सकते हैं? क्या हमारे यंग म्यूजिशियंस ऐसे सॉन्ग्स बना सकते हैं जिनमें ड्रग फ्री लाइफ का मैसेज हो? क्या स्टूडेंट्स और थिएटर ग्रुप्स दिल को छू लेने वाले शॉर्ट प्लेज लिख सकते हैं जिनमें ड्रग्स के खतरों के साथ साथ उनसे बाहर निकलने का रास्ता भी हो? हमारे देश में बेहतरीन कंटेंट क्रिएटर्स की कमी नहीं है। मेरा आग्रह है कि वे अलग अलग भाषाओं में ऐसा कंटेंट बनाएं जिससे इस दिशा में समाज को मदद मिले।
1: जनाब मोदी ने कहा कि मनुष्यात की लत सिर्फ एक फर्द को नहीं बल्कि पूरे खानदान और मुआशरे को मुतासिर करती है। उन्होंने मनुष्यात के खिलाफ बेदारी पैदा करने और नशे की लत में मुब्तला अफराद की मदद करने वाले लोगों की तारीफ की। वजीर आजम ने खवातीन को बाइख्तियार बनाने में पीएम स्वनिधि योजना के रोल को भी उजागर किया। उन्होंने कहा कि खवातीन को बाइख्तियार बनाने की इस पहल पर मजीद तवज्जो दी जानी चाहिए। उन्होंने बताया कि पीएम स्वनिधि योजना के तकरीबन 46% मुस्तफिदीन खवातीन हैं और मुल्क भर में तकरीबन 35 लाख खवातीन अपने कारोबार को वसत देने के लिए इस स्कीम से फायदा उठा रही हैं।
3: पीएम स्वनिधि योजना के लाभार्थियों में करीब 46% महिलाएं हैं, यानी देश भर में लगभग 35 लाख महिलाएं इस योजना से जुड़कर अपने कारोबार को आगे बढ़ा रही हैं। गाजियाबाद की बबीता शर्मा जी पूजा की सामग्री का एक छोटा सा स्टॉल लगाती थी। मेहनत खूब थी लेकिन कारोबार बढ़ाने के लिए पूंजी की जरूरत थी। पीएम स्वनिधि से उन्हें आर्थिक मदद मिली, कारोबार का विस्तार किया, ग्राहक बढ़े और धीरे धीरे सड़क किनारे का उनका छोटा सा स्टॉल एक दुकान में बदल गया।
1: सफाई सुथराई के बारे में जनाब मोदी ने कहा कि जब किसी इलाके को साफ रखने का अज़्म अवाम की इज्तिमाई वाबस्तगी बन जाता है तो ये अमल इस मकाम की शिनाख्त को मुकम्मल तौर पर बदल सकता है। उन्होंने कहा कि मुल्क भर में सफाई सुथराई से मुतालिक ऐसी कोशिशें दूसरों के लिए मुसलसल तहरीक का बायस बन रही हैं। वजीर आजम ने मिशन शक्ति सेट का भी जिक्र किया जो हजारों लड़कियों को सैटेलाइट टेक्नोलॉजी सीखने और खलाई शोबे में इख्तराअत के मौके फराहम कर रहा है। नेपाल में अचानक सैलाब आने से मरने वालों की तादाद 781 तक पहुंच गई है। वहां मजीद लाशें मिली हैं। तकरीबन 2500 अफराद अब भी लापता हैं। नेपाल की कुदरती आफात से पैदा होने वाले खतरात की रोकथाम और बंदोबस्त से मुतालिक अथॉरिटी NDRRMA ने बताया कि मुतासिर जिलों से 8186 अफराद को बहिफाजत निकाला गया है, जिनमें 227 غیر ملکی افراد شامل ہیں. نیپال حکومت نے بھوٹے کوشی دریا میں سیلاب کا تازہ الرٹ جاری کیا ہے. حکومت نے رسوا، نوا کوٹ اور دھارڈنگ ضلعوں میں دریا کے کنارے آباد لوگوں سے محتاط رہنے کے لیے کہا ہے. اتھارٹی نے دریا میں سیلاب کا دباؤ بڑھنے کی اطلاع دی ہے. وزارت خارجہ کے ترجمان رندھیر جیسوال نے بتایا کہ نیپال میں اچانک سیلاب آنے کے بعد سے اب تک 149 بھارتی شہریوں کو بچایا گیا ہے. ایک سوشل میڈیا پوسٹ پر جناب جیسوال نے کہا کہ تقریباً 50 بھارتی شہریوں کے ساتھ رابطہ قائم ہو گیا ہے جن سے اس سے پہلے رابطہ قائم نہیں ہو پا رہا تھا. وزارت خارجہ نے کہا ہے کہ 275 بھارتی شہریوں کے لاپتہ ہونے کی خبر ہے، جبکہ بھارت نجات تقریباً 128 افراد اب بھی لاپتہ ہیں جن کے پاس دیگر ملکوں کی شہریت ہے. بھارت سیلاب سے متاثرہ نیپال میں بچاؤ اور راحت کے کام میں لگاتار مدد کر رہا ہے. بھارت نے سیلاب سے متاثرہ نیپال کے لیے 68.5 ٹن امدادی سامان بھیجا ہے اور تلاش و بچاؤ کی کارروائیوں میں مدد کے لیے تکنیکی ٹیمیں، فورنسک ماہرین اور ضروری اشیاء بھی روانہ کی ہیں. اس دوران عالمی صحت تنظیم WHO نے نیپال میں سیلاب سے متاثرہ لوگوں کی مدد کے لیے جنوب مشرقی ایشیائی خطے کے صحت کے ایمرجنسی فنڈ سے 150,000 امریکی ڈالر جاری کیے ہیں. WHO کے جنوب مشرقی ایشیائی خطے کے دفتر کے آفیسر انچارج ڈاکٹر نیلیش بدھا نے کہا کہ اس ایمرجنسی فنڈ سے فوری ضروریات کی تکمیل میں مدد ملے گی. بیلجیم کے واورے میں بیلفیس ہاکی ایرینا میں FIH ہاکی ورلڈ کپ 2026 کا فائنل دفاعی چیمپئن جرمنی اور اسپین کے درمیان کھیلا جا رہا ہے. جرمنی 2023 میں جیتا ہوا اپنا خطاب برقرار رکھنے کے ساتھ ساتھ چوتھا ورلڈ کپ جیتنے کی کوشش کر رہا ہے، جبکہ اسپین ہاکی ورلڈ کپ کا اپنا پہلا خطاب حاصل کرنے کے لیے کھیل رہا ہے. اب سے کچھ دیر پہلے تک جرمنی 1-0 سے آگے تھا. آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر. بھارت اور ازبیکستان اپنے باہمی تعلقات کو جامع اسٹریٹجک شراکت داری تک لے گئے. دونوں ملکوں نے طویل مدتی یورینیم سپلائی معاہدے پر دستخط کیے اور 2030 تک $5 ارب کی دو طرفہ تجارت کا ہدف مقرر کیا. وزیر اعظم نریندر مودی کو ازبیکستان کے اعلیٰ ترین سرکاری اعزاز سے نوازا گیا ہے. جناب مودی بشکیک میں شنگھائی تعاون تنظیم SCO کے 26th سربراہ اجلاس میں شرکت کے لیے جمہوریہ کرغز پہنچ گئے ہیں. وزیر اعظم مودی نے من کی بات پروگرام میں منشیات کی لانت سے خبردار کیا. انہوں نے خواتین کی معاشی خود مختاری، خلائی صنعت میں لڑکیوں کی شمولیت اور زرعی شعبے میں جدت ترازی کو سراہا. نیپال نے بھوٹے کوشی دریا سے متصل علاقوں میں سیلاب کا تازہ الرٹ جاری کیا ہے. اب تک 149 بھارتیوں کو بچایا جا چکا ہے. ہلاکتوں کی تعداد بڑھ کر 781 ہو گئی ہے. اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم.
4: یہ آکاش وانی ہے. پرستوت ہے آکاش وانی ابھیلیکھاگار دوارا نرمت کاریکرم انو گونج. ہر

कुछ आवाजें ऐसी होती हैं जो समय बीत जाने के बाद भी हमारे बीच रहती हैं। वे इतिहास के पन्नों से निकलकर आज भी हमसे बातें करती हैं, कभी कविता के जरिए, कभी खेल के मैदानों की यादों के जरिए और कभी अपने जीवन के अनुभवों के जरिए। इन आवाजों में एक पूरा इतिहास सांस लेता है और जब बरसों बाद ये आवाजें फिर सुनाई देती हैं तो लगता है जैसे बीता हुआ कल आज से कुछ कह रहा हो। शायद इसलिए आवाज हमारी पहचान होती है।

0: फिराक गोरखपुरी, मेजर ध्यानचंद और अमृता प्रीतम, आज ये तीनों महान हस्तियां हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उनकी आवाजें हमारे साथ हैं। आकाशवाणी के अभिलेखों में सुरक्षित इन आवाजों के माध्यम से आज हम उन्हें फिर याद करेंगे, उनकी बातें सुनेंगे, उनके जीवन को समझेंगे और जानेंगे कि इतने वर्षों के बाद भी उनकी आवाजें हमें क्यों प्रेरित करती हैं। आइए समय की इस दूरी को कुछ देर के लिए मिटाते हैं और सुनते हैं उनकी आवाज। इन तीनों की दुनिया अलग थी। एक शायर थे, एक महान खिलाड़ी और एक प्रसिद्ध लेखिका। लेकिन इन तीनों में एक बात समान थी, इन्होंने अपने अपने क्षेत्र में अपनी अलग पहचान बनाई और अपने पीछे ऐसी विरासत छोड़ी जिससे आने वाली पीढ़ियां आज भी प्रेरणा लेती हैं। सितारों से उलझता जा रहा हूं, शबे फुरकत बहुत घबरा रहा हूं, तेरे गम को भी कुछ बहला रहा हूं, जहां को भी समझता जा रहा हूं। अब सुनते हैं एक ऐसी आवाज जिसने उर्दू शायरी को अलग पहचान दी।
1: शायरी से हसास तरीके तो कोई बात कह देने का नाम नहीं। शायरी महज इजहार नहीं, शायरी रूहानी लिहाज से एक तामीर, तकरीब की फोटोग्राफी।
0: 8 अगस्त 1896 को गोरखपुर में

0: देने का नाम नहीं।
1: शायरी महज इजहार नहीं, शायरी रूहानी लिहाज से एक तामीर, तकरीब की फोटोग्राफी।
2: 8 अगस्त 1896 को गोरखपुर में जन्म

0: आदि जो जानते हैं असीरी है एक पंथ
1: या
2: फिराक की आवाज में भी वही अपनापन महसूस होता है जो उनकी शायरी में दिखाई देता है। भारत की खूबसूरती भी यही है, यहाँ भाषाएं अलग हैं, बोलने का अंदाज अलग है, लेकिन भावनाएं एक जैसी हैं।
3: मैं ये नगमे गाते गाते कितनी दूर निकल आया, कायनात की हर सरहद नजरों से छुपती जाती है। अलविदा ऐ जन्म साथियों,

अलग हो सकते हैं, लेकिन जब बात दिल से निकलती है तो वो हर दिल तक पहुंचती है। शायद यही फिराक की सबसे बड़ी ताकत थी। उन्होंने भाषा की सीमाओं के पार जाकर इंसान को इंसान से जोड़ दिया। बहुत पहले से उन कदमों की आहट जान लेते हैं तुझे ऐ जिंदगी, हम दूर से पहचान लेते हैं। मेरी नजरें भी ऐसे कातिलों का जानो ईमान है, निगाहें मिलते ही जो जान और ईमान लेते हैं।

0: the final of the Olympic hockey. The wonderful Indian team in the white shorts, who so far have scored 30 goals to naught in the tournament, are playing Germany. India scored. The final result was India 8, Germany 1.
1: भारतीय हॉकी की कहानी उस दौर की कहानी है जब भारत की प्रतिभा और खेल कौशल ने दुनिया को अपना मुरीद बना लिया था और इस गौरवशाली यात्रा के सबसे उज्जवल अध्यायों में एक नाम था मेजर ध्यानचंद। उनके लिए हॉकी महज एक साधना थी। गेंद पर अद्भुत नियंत्रण, खेल की गहरी समझ और गोल करने की असाधारण कला ने उन्हें दुनिया के महानतम खिलाड़ियों की पंक्ति में ला खड़ा किया। लेकिन ध्यानचंद की असली महानता उस खेल संस्कृति और विरासत में थी जो वे आने वाली पीढ़ियों के लिए छोड़ गए। 29 अगस्त उनकी जयंती को हम राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाते हैं। ये दिन उन असंख्य खिलाड़ियों के परिश्रम, अनुशासन और समर्पण को सम्मान देने का दिन भी है जो अपने खेल के माध्यम से देश का गौरव बढ़ाते हैं। ध्यानचंद से जुड़ी अनगिनत कहानियां आज भी हमारे बीच जीवित है। तस्वीरों में दर्ज उनका व्यक्तित्व, मैदान से जुड़े किस्से और उनकी उपलब्धियां हमें उस स्वर्णिम दौर की याद दिलाते हैं। लेकिन जब इतिहास के पन्नों से निकलकर उनकी आवाज हमारे सामने आती है तो वो दौर और भी जीवंत हो उठता है। आइए सुनते हैं मेजर ध्यानचंद की अपनी आवाज आकाशवाणी के अभिलेखों से।
2: जो फॉरेन कंट्री जो हॉकी सूची है उसमें शक नहीं है कि हिंदुस्तान के जरिए सूची है। मैंने देखा है वहाँ कि हॉलैंड के अंदर और जर्मन के अंदर जिस वक्त हम लोग प्रैक्टिस करने के लिए जाते थे ग्राउंडों पर, तो उनके टेलीविजन वगैरह, फोटोग्राफ्स वगैरह ये स्लो मोशन और फास्ट मोशन लेने के लिए हमारे पीछे पीछे लग जाते थे। लेकिन हम लोग खिलाड़ी थे, हमको इन बातों में भी जरा सा भी ख्याल नहीं होता था कि क्या है। एक फ़ोटो मांग लेते थे, बाकी वो अपना सीक्रेट हर एक चीज़ लड़कों को खिलाने के लिए फेंक लेते थे और वो फोटोज स्क्रीन के ऊपर अपने बच्चों को, ये मैंने 63 में देखा, जब मैं 63 में बर्लिन में गया फिर ये देखा, बच्चों को वो स्क्रीन के ऊपर उसको उनको शो करते थे और उनको उसी वक्त साथ में बोलते भी जाते थे कि देखो ये हाथ इधर रखना है, ये पैर इधर है और ये सिर इधर है, बाल को जब ड्रिबल करना है तो उसका हेड किधर होना है, फलान। ऐसा करने के बाद उन लोगों ने इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस कर ली कि हम अब हिंदुस्तान का मुकाबला करने लगे। मैंने देखा है रिसेंटली यूरोप कंट्री के खेलों को कि वो हमारे मुकाबले में थोड़ा थोड़ा ड्रिबलिंग करने लगे हैं बजाय हिट मारने के, अब ड्रिबलिंग भी शुरू कर दिया उन लोगों ने। तो इसमें शक नहीं है कि सीखा हम लोगों से है और इसमें हमारे लोगों की, हमारे हिंदुस्तान की अभी तक वो कंट्री तारीफ करती है कि हाँ हिंदुस्तान जो खेलती है हॉकी वो हिंदुस्तान के सिवा और कोई नहीं खेल सकता।
3: बादलों के महल में मेरा सूरज सोया हुआ है और उस महल का कोई दरवाजा नहीं, कोई खिड़की नहीं, कोई सीढ़ी नहीं, और सदियों के हाथों ने जो पगडंडी बनाई है वो मेरे चिंतन के पैरों के लिए बहुत संकरी है। मैं अपने सूरज के पास कैसे पहुंचूं जो बादलों के महल में सोया हुआ है।
1: अभी आपने सुनी अमृता प्रीतम की आवाज। उनकी बातों में एक सादगी है और इसी सादगी में उनके अनुभवों की गहराई भी दिखती है। अमृता प्रीतम ने ऐसे समय में लिखा जब समाज में महिलाओं के लिए अपनी बात खुलकर कहना आसान नहीं था। उन्होंने प्रेम के बारे में लिखा, उन्होंने बंटवारे का दर्द लिखा, उन्होंने औरत के मन की बात लिखी और सबसे बढ़कर उन्होंने अपने तरीके से जीने और लिखने की हिम्मत दिखाई। 31 अगस्त 1919 को जन्मी अमृता प्रीतम भारतीय साहित्य की ऐसी आवाज थी जिन्होंने प्रेम, रिश्तों, अकेलेपन और अपने समय की पीड़ा को बहुत सहज शब्दों में लिखा। उनकी लेखनी में एक खास बात थी, वे दिल की बात कहने से कभी पीछे नहीं हटी।
3: हमारे देश के 7 पवित्र स्थान 7 पुरियां कहे जाते हैं, अयोध्या, मथुरा, माया, कांची, काशी, अवंती और द्वारापुरी। इनमें से द्वारापुरी सागर के किनारे थी, जो कृष्ण के देह त्यागने के सातवें दिन सागर में अलोप हो गई थी। बाद में वो द्वारका के नाम से दूसरे स्थान पर बस गई, पर अपने मूल स्थान से वो लोप हो चुकी है। मैं सोचती हूँ कि सागर में लोप हो चुकी द्वारावती हर इंसान के मैं का वो टुकड़ा है, जिसकी तलाश हर इंसान के मैं को करनी होती है और उसका इतिहास खोजना होता है। इसी मैं की तलाश में मैंने जाना कि मेरे में और एक ब्राह्मण में क्या फर्क है। यही कि मैं ब्राह्मण नहीं हूँ। मेरे में और एक क्षत्रिय में भी यही फर्क है कि मैं क्षत्रिय नहीं हूँ। मेरे में और एक वैश्य में भी यही फर्क है कि मैं वैश्य नहीं हूँ। इसी तरह मेरे में और एक शूद्र में भी यही फर्क है कि मैं शूद्र नहीं हूँ। और जाना कि मेरे में और एक हिंदू, सिख, मुसलमान या ईसाई में भी यही फर्क है कि मैं हिंदू, सिख, मुसलमान या ईसाई नहीं हूँ।

और जाना कि मेरे में और एक हिंदू सिख मुसलमान या ईसाई में भी यही फर्क है कि मैं हिंदू सिख मुसलमान या ईसाई नहीं हूँ। यही फर्क है कि मैं हिंदू सिख मुसलमान या ईसाई नहीं हूँ।

0: धर्म खो गया तो प्रतिकर्म में से मजहब पैदा हुआ, आत्मा खो गई तो शरीर एक वस्तु बन गया।
1: आकाशवाणी की पंजाबी सेवा में काम किया था और 1961 तक जुड़ी रही, यानी

यात्रा अक्षर से अर्थ तक की यात्रा और महदूद से लामहदूद तक की यात्रा यानी सीमित से असीम होने तक की यात्रा।

0: ये आकाशवाणी है। आज की रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा में लीजिए प्रस्तुत है जी राघवेंद्र प्रसाद का वायलिन वादन। जी राघवेंद्र प्रसाद कर्नाटक वायलिन वादक हैं और ये आकाशवाणी और दूरदर्शन के ए ग्रेड कलाकार हैं। दिल्ली में जन्मे जी राघवेंद्र प्रसाद ने कर्नाटक वायलिन वादन की बारीकियां अपने गुरु कलैमा मणि श्री वी एस के चक्रपाणी जी के मार्गदर्शन में सीखी हैं। आपने दिल्ली विश्वविद्यालय से कर्नाटक संगीत में स्नातकोत्तर की उपाधि प्राप्त की है, जहां आप रजत पदक विजेता रहे हैं। राघवेंद्र प्रसाद एकल वादन के साथ साथ एक सिद्धहस्त संगतकार के रूप में भी संगीत जगत में अपनी अलग पहचान बना चुके हैं। भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय द्वारा वर्ष 2019-20 के लिए आपको युवा कलाकार छात्रवृत्ति से सम्मानित किया जा चुका है। इसके अतिरिक्त आपको सन 2010 में CCRT छात्रवृत्ति, 2019 में युवा पुरस्कार और युवा उभरते कलाकार का खिताब, 2022 में नाद लय शिखामणि तथा 2023 में संस्कृति मंत्रालय एवं आर्ट ऑफ लिविंग द्वारा संयुक्त रूप से गंधर्व विज्ञ सम्मान से नवाजा गया है। देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी अपनी कला का परचम लहराते हुए आपने रूस में आयोजित फेस्टिवल ऑफ इंडिया में भाग लिया और स्विट्जरलैंड के रीटबर्ग संग्रहालय में प्रस्तुतियां दी। देश के प्रतिष्ठित मंचों जैसे इंडिया इंटरनेशनल सेंटर, जालंधर का प्रसिद्ध हरिवल्लभ संगीत सम्मेलन, राष्ट्रपति भवन, TTD, नाद नीराजनम, वाराणसी का श्री संकट मोचन मंदिर, स्पिकमैके तथा तिरुवैयारू में त्यागराज आराधना महोत्सव में भी इनकी प्रस्तुतियां सराहनीय रही हैं। एक कुशल संगीतकार के रूप में राघवेंद्र ने पद्म भूषण श्री TN शेष गोपालन, मल्लाडी ब्रदर्स, नेवेली श्री संथान गोपालन, श्री OS अरुण, मामबलम सिस्टर्स तथा डॉक्टर के वागीश जैसे संगीत जगत के शीर्ष दिग्गजों के साथ सफलतापूर्वक वायलिन संगत की है। आइए सुनते हैं जी राघवेंद्र प्रसाद का कर्नाटक वायलिन वादन। आपके साथ मृदंगम पर यशवंत हम्पी होली और घटम पर श्री वरुण राजशेखरन संगत कर रहे हैं। जी राघवेंद्र प्रसाद अपने कार्यक्रम का आरंभ राग मणिरंगू से कर रहे हैं। रचना के बोल हैं जय जय पद्मनाभानुजेशा। इसके रचनाकार हैं महाराजा स्वाति तिरुनाल। ये रचना आदिताल में निबद्ध है।
1: दिस इज आकाशवाणी। टुनाइट इन रविवासरी अखिल भारतीय संगीत सभा वी ब्रिंग यू अ वायलिन रिसाइटल बाय जी राघवेंद्र प्रसाद। जी राघवेंद्र प्रसाद is an A-grade violin Carnatic artist of Akashvani and

0: ये था जी राघवेंद्र प्रसाद का वायलिन पर बजाया गया राग मणिरंगू। कार्यक्रम को जारी रखते हुए जी राघवेंद्र प्रसाद अब प्रस्तुत करेंगे राग वराली। रचना के बोल हैं शेषाचल नायकम। इसके रचनाकार हैं मुत्तुस्वामी दीक्षितर। ये रचना रूपकम ताल में निबद्ध है।
1: That was राग मणिरंगू। Continuing his recital, G. Raghavendra Prasad now presents another composition based on Rag Varali. Composition is Shesha Chalanayakam, composed by Muthuswami Dikshitar and is set to Rupakam Talam.

0: अभी आप सुन रहे थे जी राघवेंद्र प्रसाद का वायलिन पर बजाया गया राग वराली। अपने कार्यक्रम का समापन जी राघवेंद्र प्रसाद राग बिलहरी इसे कर रहे हैं। रचना के बोल हैं श्री चामुंडेश्वरी पालय माम। इसके रचनाकार हैं मैसूर वासुदेवाचार। ये रचना आदिताल में निबद्ध है।
1: जी राघवेंद्र प्रसाद कंक्लूड्स हिज वायलिन रिसाइटल विद रागम बिलहरी। कंपोजिशन श्री चामुंडेश्वरी पालय माम, कंपोज्ड बाय मैसूर वासुदेवाचार एंड इज सेट टू आदितालम।

0: आज के कार्यक्रम में आपके साथ मृदंगम पर यशवंत हम्पी होली और घटम पर वरुण राजशेखरन संगत कर रहे थे। इसी के साथ आज की रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा अब यहीं संपन्न होती है। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र के स्टूडियो में रिकॉर्ड किया गया और आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से ही प्रसारित किया गया।
1: He was accompanied on Ridangam by Yashwant Hampi Holi and on Ghatam by Varun Rajashekharan. With that, we conclude tonight's Ravivasriya Akhil Bhartiya Sangeet Sabha. This program was earlier recorded in the studios of Akashvani Delhi and was broadcast from the Delhi station of Akashvani.

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं किरण शर्मा। भारत और उज्बेकिस्तान ने आपसी संबंधों को व्यापक रणनीतिक साझेदारी तक बढ़ाने का फैसला किया है। उज्बेकिस्तान भारत को यूरेनियम की दीर्घकालिक आपूर्ति के लिए रूपरेखा तय करने और दुर्लभ खनिजों के खनन स्थलों पर चर्चा करने के लिए भी सहमत हुआ है। दोनों देशों ने आज खनन, आयुर्वेद, पर्यटन, आर्थिक और वित्तीय संवाद, व्यापक और रणनीतिक साझेदारी, उच्च शिक्षा और पर्यावरण सहित विभिन्न क्षेत्रों में कई समझौते किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति शफकत मिर्जियोयेव के बीच द्विपक्षीय वार्ता के दौरान उज्बेकिस्तान में पढ़ाई के लिए जाने वाले भारतीय युवाओं के हित में और सांस्कृतिक आदान प्रदान कार्यक्रमों के लिए कई उपायों पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देश आतंकवाद और अलगाववाद कतई बर्दाश्त न करने की नीति पर अमल करते हैं।
1: दोनों देशों के बीच करीबी रक्षा और सुरक्षा सहयोग हमारे गहरे आपसी विश्वास को दर्शाता है। आने वाले समय में हम दोनों देशों की डिफेंस इंडस्ट्री के बीच डायरेक्ट लिंकेज, को प्रोडक्शन और को डेवलपमेंट को बढ़ावा देंगे। हमारा मानना है कि टेररिज्म, एक्सट्रीमिज्म और सेपरेटिज्म पूरे क्षेत्र के लिए गंभीर चुनौती है। इनके विरुद्ध जीरो टॉलरेंस हमारा साझा संकल्प रहा है और आगे भी रहेगा।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देशों ने आपसी संबंधों को व्यापक रणनीतिक साझेदारी तक बढ़ाने का फैसला किया। प्रधानमंत्री मोदी को उज्बेकिस्तान का सर्वोच्च सम्मान ओली दराजली दुस्तलेक ऑर्डर भी प्रदान किया गया। ये विदेशी नेताओं को प्रदान किया जाने वाला उज्बेकिस्तान का सर्वोच्च सम्मान है। श्री मोदी ने इस सम्मान को सभी भारतीयों को समर्पित किया और कहा कि ये दोनों सभ्यताओं के बीच चिरस्थायी मैत्री का प्रतीक है। इसके बाद श्री मोदी ने ताशकंद में पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री ने ताशकंद स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ ओरिएंटल स्टडीज में महात्मा गांधी सेंटर का दौरा किया। श्री मोदी ने भारतीय विशेषज्ञों और छात्रों से बातचीत भी की। उज्बेकिस्तान की सफल यात्रा के बाद श्री मोदी किर्गिस्तान की दो दिन की यात्रा के लिए बिश्केक पहुंच गए हैं। प्रधानमंत्री शंघाई सहयोग संगठन के शिखर सम्मेलन में शामिल होने के अलावा कई सदस्य देशों के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि विकसित भारत के लिए नशा मुक्त युवा अभियान पूरे देश में तेजी से आगे बढ़ रहा है और बड़ी संख्या में युवा इस अभियान में शामिल हो रहे हैं।
1: नशा मुक्त भारत के लिए क्या आप कोई पावरफुल स्लोगन बना सकते हैं? क्या हमारे यंग म्यूजिशियंस ऐसे सॉन्ग्स बना सकते हैं जिनमें ड्रग फ्री लाइफ का मैसेज हो? क्या स्टूडेंट्स और थिएटर ग्रुप्स दिल को छू लेने वाले शॉर्ट प्लेज लिख सकते हैं जिनमें ड्रग्स के खतरों के साथ साथ उनसे बाहर निकलने का रास्ता भी हो? हमारे देश में बेहतरीन कंटेंट

0: क्रिएटर्स की कमी नहीं है। मेरा आग्रह है कि वे अलग अलग भाषाओं में ऐसा कंटेंट बनाएं जिससे इस दिशा में समाज को मदद मिले।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि पीएम स्वनिधि योजना के माध्यम से 35 लाख महिलाओं को नई शक्ति प्राप्त हो रही है। नेपाल में अचानक आई बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 781 हो गई है। नेपाल सरकार ने भोटे कोशी नदी में बाढ़ को लेकर अलर्ट जारी किया है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि बाढ़ के बाद नेपाल में अब तक 149 भारतीय नागरिकों को बचाया गया है। पहले लापता करीब 50 भारतीय नागरिकों से फिर संपर्क हो गया है। 275 भारतीय नागरिक अभी भी लापता हैं, वहीं 128 भारतीय मूल के लोग भी लापता हैं। जर्मनी ने स्पेन को 1-0 से हराकर पुरुष हॉकी विश्व कप का खिताब जीत लिया है। बेल्जियम में खेले गए फाइनल मुकाबले के 44वें मिनट में जर्मनी के मिशेल स्ट्रोथॉफ ने एकमात्र गोल किया। इससे पहले आज तीसरे स्थान के लिए मैच में अर्जेंटीना ने नीदरलैंड्स को 2-1 से हरा दिया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashwani, the news read by Reshma Tiwari. India and Uzbekistan today decided to elevate their bilateral relationship to comprehensive strategic partnership. The two countries have also agreed to establish a long-term arrangement for the supply of uranium from Uzbekistan to India. Both sides have also set a target of increasing annual bilateral trade to $5 billion by 2030. The decisions were taken following delegation-level talks between Prime Minister Narendra Modi and Uzbekistan President Shavkat Mirziyoyev in Tashkent. The two leaders witnessed the exchange of 11 Memoranda of Understanding, MOUs, aimed at expanding bilateral cooperation across key sectors, including mining, culture, education, tourism, economic and financial dialogue, and Ayurveda. In his remarks during the talks, Prime Minister Modi said a stronger India-Uzbekistan partnership would be a powerful force for peace, progress and prosperity in Central Asia. Later, at a joint press conference with the Uzbekistan President, Prime Minister Modi said maintaining a zero-tolerance policy towards terrorism, extremism and separatism will remain their shared resolve.
0: दोनों देशों के बीच करीबी रक्षा और सुरक्षा सहयोग हमारे गहरे आपसी विश्वास को दर्शाता है। आने वाले समय में हम दोनों देशों की डिफेंस इंडस्ट्रीज के बीच डायरेक्ट लिंकेज, को प्रोडक्शन और को डेवलपमेंट को बढ़ावा देंगे। हमारा मानना है कि टेररिज्म, एक्सट्रीमिज्म और सेपरेटिज्म पूरे क्षेत्र के लिए गंभीर चुनौती है। इनके विरुद्ध जीरो टॉलरेंस हमारा साझा संकल्प रहा है और आगे भी रहेगा।
2: On the occasion, Prime Minister Modi was conferred with Uzbekistan's highest state honor, the Order of Oli Edarjali Dostalik, by President Shavkat Mirziyoyev. Prime Minister Modi dedicated the accolade to the 1.4 billion people of India and highlighted that it is a symbol of the enduring friendship between the two civilizations. Mr. Modi reached Tashkent yesterday on a two-day visit to Uzbekistan. After concluding his two-day visit to Uzbekistan, Prime Minister Modi reached Kyrgyz Republic to take part in the 26th Shanghai Cooperation Organization SCO Summit in capital Bishkek. Prime Minister Narendra Modi today shared his thoughts with the nation in the Mann Ki Baat program on Akashvani. In his address, Prime Minister Modi strongly warned against the social perils of drug abuse. He highlighted that Nasha Mukt Yuva for Viksit Bharat campaign for a drug-free youth and a drug-free India is gaining momentum with people joining in large numbers. The Prime Minister also championed women-led economic empowerment through the PM Swanidhi scheme, with nearly 35 lakh females across the country using the scheme to expand their businesses. Defence Minister Rajnath Singh has said India is moving rapidly towards self-reliance in the defence sector and witnessing a major transformation in its defence industrial ecosystem. Mr. Singh was addressing the PM Safe